एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 18वीं तिथि, तदनुसार 9 सितंबर सन 2026। प्रातः के 5:58 और 40 सेकंड हुए हैं। अब हमारा आज का प्रसारण शुरू।

0: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6 बजने को हैं, कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अब चिप से लेकर जहाज तक विनिर्माण के क्षेत्र में नया भविष्य तैयार कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश में उच्च तकनीक वाले इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर बड़े समुद्री जहाजों तक पूरी तरह आत्मनिर्भर आपूर्ति श्रृंखला विकसित की जा रही है। प्रधानमंत्री ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। प्रधानमंत्री ने पश्चिमी समर्पित माल गलियारे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 3 महत्वपूर्ण खंड भी राष्ट्र को समर्पित किए।
2: 2,800 किलोमीटर से अधिक का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट पूरा हो गया। ये 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इस बात का साक्षी है कि बीते 12 साल में देश की काम करने की संस्कृति कैसे बदली है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ने फिनटेक क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसमें नवाचार और वित्तीय समावेशन को सर्वाधिक महत्व दिया जा रहा है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में उन्होंने कहा कि नई प्रौद्योगिकियां वित्तीय क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत साइबर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले महीने यूपीआई से 2,400 करोड़ रुपए से अधिक लेन देन हुए। भारतीय यूपीआई अब 11 देशों में संचालित हो रहा है। श्री मोदी ने यूपीआई को फिनटेक क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया।
3: भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा यूपीआई। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो यूपीआई के बिना अधूरी ही होगी।
1: प्रधानमंत्री मोदी नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि इन बैठकों के दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी तरह

की सहायता करने के लिए तैयार है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत और चीन सीमा संबंधी मुद्दे पर लगातार संवाद कर रहे हैं। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत के शांति प्रयासों का स्वागत किया है। रूस की सरकार के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने कहा कि इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत के जैसा ही है। श्री पेस्कोव ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज गोवा में पोरवोरिम एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग 66 पर बना ये 6 लेन का कॉरिडोर 5 किलोमीटर से अधिक लंबा है और इसे करीब 641 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। कॉरिडोर 11 सितंबर से वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय आज वाराणसी में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत करेगा। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में इस अभियान का शुभारंभ करेंगी। उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए राज्य के हिस्से में 4,000 रुपये प्रतिमाह और सहायिकाओं के लिए राज्य के हिस्से में 2,000 रुपये प्रतिमाह की अतिरिक्त बढ़ोतरी की गई है। एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल को कल नई दिल्ली में शानदार विदाई दी गई। इस अवसर पर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया उपस्थित रहे। डॉक्टर मांडविया ने भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा, खेल सचिव

धैर्य का मनुष्य जीवन में बहुत महत्व होता है। धैर्य सहनशीलता की वह अवस्था है जो किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को क्रोध या ईर्ष्या जैसी नकारात्मक शक्तियों से बचाती है। विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो जाने पर भी मन में चिंता, शोक और उदासी उत्पन्न ना होने देने वाला गुण ही धैर्य कहलाता है। धैर्यवान व्यक्ति विपत्ति आने पर भी अपना मानसिक संतुलन बनाए रखता है और शांत चित होकर इस पर नियंत्रण करते हुए दुख से बचने का सरल मार्ग खोज लेता है। भक्ति मार्ग पर चलने के लिए भी व्यक्ति का धैर्यवान होना अति आवश्यक है। यानी धैर्य का गुण यदि मनुष्य में है तो वह भक्ति के मार्ग पर बड़ी ही आसानी से चल सकता है। धैर्य, संतोष और सहनशीलता ही जीवन की नौका की पतवार हैं जो हमें इस भवसागर से तार कर प्रभु तक पहुंचाते हैं। चिंतन के बाद श्रोताओं, आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

भक्ति केवल पूजा पाठ का नाम नहीं है, भक्ति तो उस भाव का नाम है जिसमें मनुष्य अपने आप को उस परम शक्ति के चरणों में समर्पित कर देता है। लेकिन इस समर्पण के साथ यदि विश्वास न हो तो भक्ति भी अधूरी सी रह जाती है।

सच्ची भक्ति केवल मंदिर में बैठने का नाम नहीं है या केवल पूजा पाठ करने का नाम नहीं है। सच्ची भक्ति तो तब है जब मनुष्य के हाथ कर्म में लगे हों और मन प्रभु के स्मरण में लगा हो।

तो श्रोतो, ये थी भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना की अंतिम प्रस्तुति। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:40 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान।

भरद्वाज ऋषि से आशीर्वाद और आज्ञा प्राप्त कर भरत जी दल बल समेत चित्रकूट की दिशा में चल पड़े हैं। राह में असंख्य जड़ चेतन जीव, जिन्हें पहले श्री राम के दर्शन हुए थे, अब भरत का साक्षात्कार पाकर मानो परम पद प्राप्त कर रहे हैं। किंतु भरत का प्रभाव देख देवराज इंद्र ये सोचने लगते हैं कि कहीं भ्रातृप्रेम के वशीभूत श्री राम अयोध्या न लौट जाएं और इस तरह पनी बनाई बात बिगड़ न जाए। उनकी चिंता देख देवगुरु बृहस्पति उन्हें सीख देते हैं कि श्री राम की भक्त वत्सलता और उदारता की महिमा को ध्यान में रखकर मन से इस प्रकार की कुटिलता निकाल देनी चाहिए। जो भी श्री राम के भक्तों का अपराध करता है वो उनकी क्रोधाग्नि में भस्म हो जाता है, और इस बात को दुर्वासा से अधिक और कौन जान सकता है।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6:50 हुए हैं। अब प्रस्तुत है आज प्रसारित व रिले होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। श्रोतोप से थोड़ी देर बाद सुबह ठीक 7:10 पर आप सुनेंगे हमारा दैनिक कार्यक्रम सुबह सुहानी। 7:40 पर सुनिएगा लोक संगीत का कार्यक्रम शुभ प्याग। सुबह 8:00 समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। और 8:30 पर सुनना ना भूलिएगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम गाने सुहाने। सुबह 9:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम गीतांजलि और आज का ये कार्यक्रम ईमेल्स पर आधारित रहेगा। 10:00 समय रहेगा फिल्म संगीत के कार्यक्रम गीतों का कारवां का। 10:30 पर लोक संगीत का कार्यक्रम पहाड़ों के सुर प्रसारित किया जाएगा। 11:05 पर आज आप सुनेंगे फिल्मों से कव्वालियां। 11:30 पर NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग प्रसारित किया जाएगा। दोपहर 12:00 समय रहता है फिल्म संगीत के कार्यक्रम सैनिकों के लिए का। 12:30 पर बहनें सुना करती हैं अपना कार्यक्रम सुनो सखी। दोपहर 1:10 से लेकर शाम 5:00 तक आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे। शाम 5:10 पर आपको सुनवाएंगे कुछ भजन। 5:25 पर सुनिएगा कार्यक्रम युवा मंच। शाम 6:05 पर सदाबहार गीतों का कार्यक्रम सुरमई सांझ प्रसारित किया जाएगा। 6:30 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम मौजां गराई दिया। 7:10 पर कार्यक्रम खेतीबाड़ी प्रसारित किया जाएगा। रात 8:00 सुनेगा विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस। देशभक्ति गीत आपको सुनवाएंगे 8:30 पर। 8:45 पर समाचार संध्या और

पुरानी फिल्मों से गीत आपको सुनवाएंगे। रात 10:30 पर कार्यक्रम होगा। शिक्षक समाचार आकाशवाणी शिमला से रिले किए जाएंगे। सुबह 9:18 पर, सुबह 11:00, दोपहर 3:00, शाम 6:00 और शाम 7:45 पर।

कार्यक्रमों की रूपरेखा में बस इतना ही। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 होने को हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले संस्कृत में समाचार, 7:00 हिंदी में समाचार और 7:05 अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।

0: शनेतृत्वेन सह वार्तां करिष्यति। भारतस्य पूर्व मुख्य न्यायाधीशः न्यायमूर्तिः दीपक मिश्रः कटकनगरे सरला साहित्य सांसदा कलिंगरत्न पुरस्कारेण सम्मानितः अस्ति। पुरस्कारे देवी सरस्वत्याः रजत प्रतिमा प्रशस्ति पत्रं च सम्मिलिते स्तः। अवसरे अस्मिन् भाषमाणाः न्यायमूर्तिः मिश्रः उक्तवान् यत् मनुष्यः जीवने कियत् दूरमपि गच्छेत् तथापि जन्मभूमेः मृत्तिका तस्य स्मृतिं परिचयं सांस्कृतिक परम्पराञ्च निरन्तरं निर्माति। संविधानस्य उल्लेखं कुर्वन् न्यायमूर्तिः मिश्रः प्रस्तावनायां वर्णितं बन्धुत्वम् एकं जीवन्तनैतिक सम्बन्धं वर्णितवान्। केन्द्रीय महिला बाल विकास मन्त्रालयेन अद्य वाराणस्याम् ऐषमः नवम राष्ट्रिय पोषण मासस्य शुभारम्भः करिष्यते। केन्द्रीय महिला बाल विकास मन्त्री अन्नपूर्णा देवी मुख्यमन्त्रिणः योगी आदित्यनाथस्य उपस्थितौ रुद्राक्ष कन्वेन्शन सेन्टर इत्यत्र अस्य अभियानस्य शुभारम्भं करिष्यति। अस्मिन् वर्षे राष्ट्रिय पोषण मासस्य विषयो वर्तते अस्माकं आंगनवाड़ी केन्द्राणि अस्माकं दायित्वम् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के फिनटेक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की सराहना की है। उन्होंने कहा कि फिनटेक की सफलता की कहानी में एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई का निर्विवाद रूप से महत्वपूर्ण योगदान है। श्री मोदी ने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करते हुए ये बात कही।
2: भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा यूपीआई। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो यूपीआई के बिना अधूरी ही होगी।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि केवल अगस्त महीने में यूपीआई के माध्यम से 24 अरब से अधिक लेन देन हुए। श्री मोदी ने कहा कि इसी प्रभाव के कारण फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा था कि यूपीआई केवल तकनीकी नहीं बल्कि सभ्यतागत कहानी है। प्रधानमंत्री ने भारत की प्रमुख डिजिटल भुगतान प्रणाली के वैश्विक विस्तार का जिक्र करते हुए बताया कि यूपीआई अब 11 देशों में उपलब्ध है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय भुगतान के क्षेत्र में जिस गतिविधि की कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी वो अब रोजमर्रा की वास्तविक बन गई है। छत्तीसगढ़ में कांकेर अदालत ने 2015 में सुरक्षा बलों पर हमले से जुड़े मामले में 5 माओवादियों को सजा सुनाई है। इनमें कुख्यात नक्सली प्रभाकर और उसकी पत्नी राजे कांगे भी शामिल हैं। दंडकारिणी स्पेशल जोनल कमेटी के कैडर प्रभाकर और डिविजनल कमेटी सदस्य उसकी पत्नी राजे कांगे को 7-7 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई है। इस मामले में शामिल 3 अन्य माओवादियों को 5-5 वर्ष की जेल की सजा दी गई। वर्ष 2015 में माओवादियों के एक समूह ने सुरक्षा बलों की उस टीम पर हमला किया था जो कोरार इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही थी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि प्रभाकर और राजे कांगे पर कुल मिलाकर लगभग 60 आपराधिक मामले दर्ज हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज गोवा में पोरवोरिम एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग 66 पर बना ये 6 लेन का कॉरिडोर 5 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है और इसे करीब 641 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। कॉरिडोर 11 सितंबर से वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय आज वाराणसी में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत करेगा। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में इस अभियान का शुभारंभ करेंगी। उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी किया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए राज्य के हिस्से में 4,000 रुपये प्रतिमाह और सहायिकाओं के लिए राज्य के हिस्से में 2,000 रुपये प्रतिमाह की अतिरिक्त बढ़ोतरी की गई है। अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कुल 12,000 रुपये प्रतिमाह और सहायिकाओं को 6,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। बढ़ा हुआ मानदेय सितंबर से लागू होगा और इसका भुगतान अक्टूबर में किया जाएगा। कनाडा ने अमेरिका के 600 से ज्यादा वस्तुओं पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाया है। इससे इन दोनों पड़ोसी देशों के बीच व्यापार विवाद बढ़ गया।

0: अमरीकी सामान पर ये शुल्क आधिकारिक रूप से कल रात से लागू हो गए। कनाडा के वाणिज्यिक उद्यम फेडरल सरकार के नए लागू किए गए डॉलर के बदले डॉलर शुल्क के तहत काम कर रहे हैं, जिसमें लगभग 28 अरब डॉलर मूल्य का अमरीकी आयात भी शामिल है। अमरीका के लगभग 700 उत्पादों पर 15-50% तक शुल्क लगाया गया है। प्रभावित सामानों में स्टील और एल्यूमिनियम जैसे औद्योगिक सामान, टॉयलेट पेपर जैसी रोजमर्रा की जरूरत की चीजें और क्वाइन ऑपरेटेड आर्किड मशीन जैसे विशेष उत्पाद शामिल हैं। एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल को कल नई दिल्ली में शानदार विदाई दी गई। इस अवसर पर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया उपस्थित रहे। डॉ. मांडविया ने भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा, खेल सचिव हरि रंजन राव और भारतीय दल के प्रमुख सहदेव यादव के साथ मिलकर खिलाड़ियों और सहयोगी सदस्यों की उपस्थिति में आधिकारिक जर्सी का अनावरण किया। यूएस ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स की मौजूदा चैंपियन और शीर्ष वरीयता प्राप्त एरिना सामालेंका तथा पुरुष सिंगल्स में फ्रांसिस टियाफो सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। एरिना सामालेंका ने रोमांचक क्वार्टर फाइनल में चेक गणराज्य की छठी वरीयता प्राप्त लिंडा नोस्कोवा को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। 11वीं वरीयता प्राप्त फ्रांसिस टियाफो ने 5 सेटों के रोमांचक मैच में अपने हमवतन अमरीकी खिलाड़ी एलेक्स मिशलिनसन को हराकर अंतिम 4 में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साहिरा मुज्तबा। Praising the remarkable achievement of India's rise in fintech, Prime Minister Narendra Modi has said that the country's Unified Payments Interface, or UPI, is the undisputed champion of this success story. Inaugurating the Global Fintech Fest 2026 in Mumbai, Mr. Modi said this is such a massive transformation that whenever fintech is discussed, it will remain incomplete without UPI.
2: भारत की fintech story अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा champion है हमारा यूपीआई। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो यूपीआई के बिना अधूरी ही होगी।
1: रीटरेटिंग हिज कोर फिलोसफी ऑफ टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट, The Prime Minister praised UPI as the ultimate tool for financial inclusion, successfully penetrating areas ignored by traditional banking models. Defence Minister Rajnath Singh has said that India will always stand firmly with Sri Lanka in times of crisis, underlining that the relationship between the two countries is based on shared history, culture and faith. Mr. Singh arrived in Colombo yesterday on his maiden 3-day visit to hold talks with Sri Lanka's top leadership. He made the remarks during an interaction with the Indian diaspora. He said both the nations share close cultural and civilizational ties, which have provided a strong foundation for the growth of the bilateral relationship. The Union Ministry of Women and Child Development will launch the 9th National Nutrition Month 2026 in Varanasi today. Union Women and Child Development Minister Annapurna Devi will launch the campaign at the Rudraksh Convention Centre in the presence of Chief Minister Yogi Adityanath. A report.
3: The campaign will be conducted throughout the month of September in Anganwadi centers, schools, panchayats and homes across the country with community participation. This year, the theme of National Nutrition Month is Our Anganwadis, Our Responsibility. Nutrition Month 2026 will highlight dietary diversity and adequate protein, fresh hot-cooked meals at Anganwadi centers, community ownership and accountability, education for nutrition and early childhood development, and completion of 10 years of the Pradhan Mantri Matrivandan Yojana. The inaugural event in Varanasi will feature a nutrition fair, a video presentation based on beneficiaries' experiences, and a dialogue between the Union Minister and Anganwadi workers. Union Minister of State Savitri Thakur and the State's Minister for Women's Welfare, Child Development and Nutrition, Baby Rani Maurya, will also be present. Sushil Chandra Tiwari, Akashwani News, Lucknow.
1: The Uttar Pradesh government has enhanced the honorarium for Anganwadi workers and helpers. The state government has issued an order in this regard. As per the order, an additional increase of 4,000 rupees per month has been made in the state share of Anganwadi workers and 2,000 rupees per month in the state share.

0: सुबह सुहानी।
1: श्रोताओ गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कार्यक्रम सुबह सुहानी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे अपनी रेडियो दोस्त सचिता के साथ। तो दोस्तों, सुबह की नई किरण के साथ किसी के घर में चाय की चुस्कियां शुरू हो चुकी हैं। कोई अपने कामकाज में जुट गया है, कोई बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर रहा है और कोई अपने सफर पर भी निकल चुका है। और इन सबके बीच रेडियो भी आपका एक साथी बनकर आपके साथ चल रहा है। आप अपने कामों में व्यस्त रहें, लेकिन हमारी बातें यूं ही आपका साथ देती रहेंगी। कभी चेहरे पर मुस्कान लाएंगी तो कभी पुरानी यादों को ताज़ा कर देंगी, और कभी कोई ऐसी बात हम कह जाएंगे कि आपका पूरा दिन बेहतर बन जाएगा। तो चलिए इसी खूबसूरत सुबह की शुरुआत करते हैं एक प्यारे से सुविचार के साथ। दोस्तों, कहते हैं कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए रास्तों का आसान होना जरूरी नहीं है, हमारे हौसलों का मजबूत होना बहुत जरूरी है। मुश्किलें तो हर किसी की राह में आती हैं, लेकिन जो इंसान अपने हौसले को बनाए रखता है वही अपनी मंजिल तक पहुंचता है। तो याद रखिए श्रोताओं, रास्ते चाहे जैसे भी हों, हौसला मजबूत रखिए और कदम आगे बढ़ाते रहिए। और साथ ही साथ जुड़े रहिए हमारे साथ 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। चलिए आपकी इस सुहानी सी सुबह को और भी सुहाना बनाते हैं इस प्यारे से गीत के साथ।

कार्यक्रम सुबह सुहानी में अब हम नजर डालेंगे आज के दिन के इतिहास पर और जानेंगे उन महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जिन्होंने आज के इस दिन को खास बना दिया। बात करें सन 1920 की तो श्रोताओं, आज ही के दिन यानी 9 सितंबर के दिन ही अलीगढ़ के मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में परिवर्तित कर दिया गया। 1949 में भारत की संविधान सभा ने हिंदी भाषा को देश की आधिकारिक राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। अगर बात करें विश्व के इतिहास की तो आज ही के दिन 1850 में कैलिफोर्निया अमेरिका का 31वां राज्य बना और 1948 में इसी दिन उत्तर कोरिया की स्थापना की घोषणा भी हुई थी। अब बात करते हैं उन महान हस्तियों के जिन्होंने 9 सितंबर को जन्म लिया। 1967 में आज ही के दिन अभिनेता अक्षय कुमार का जन्म हुआ था। देश के वीर सपूत कैप्टन विक्रम बत्रा का जन्म भी आज ही के दिन हुआ, साल 1974 में। विश्व साहित्य के महान लेखक लियो टॉल्स्टॉय का जन्म भी आज ही के दिन 1828 में हुआ था। और श्रोताओं, आधुनिक हिंदी साहित्य के महान और महत्वपूर्ण स्तंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म भी 1850 में आज ही के दिन हुआ था। इनके बारे में हम आपसे कार्यक्रम में आगे बात करेंगे। हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक महबूब खान का भी जन्म 1907 में हुआ आज ही के दिन। भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति और श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन का आज ही के दिन निधन हुआ था। इन्होंने अमूल ब्रांड की स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रसिद्ध चीनी क्रांतिकारी माओ त्से तुंग का भी निधन आज ही के दिन 1976 में हुआ था। साथ ही श्रोताओं, आपको बता दें कि राम वृक्ष बेनीपुरी भारत के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार, कहानीकार, निबंधकार, नाटककार और स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने भी आज ही के दिन साल 1968 में दुनिया को अलविदा कहा था। 1982 में श्रोताओं, जम्मू कश्मीर के प्रमुख नेता, स्वतंत्रता सेनानी और वहां के पूर्व मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला का भी निधन आज ही के दिन हुआ था। उन्हें शेरे कश्मीर भी कहा जाता है। आनंद कुमार स्वामी जी का भी निधन आज ही के दिन हुआ था, साल 1947 में। वे भारत के महान दार्शनिक, चिंतक, विख्यात कला मर्मज्ञ थे जिन्होंने भारतीय कला को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई। इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं को जानने के बाद फिर से वक्त हो चला है गीत संगीत का।

आकाशवाणी धर्मशाला से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुबह सुहानी और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सचिता। श्रोतो, जैसे कि हमने आपको बताया कि आज भारतेंदु हरीशचंद्र की जयंती हम मना रहे हैं। बाबू भारतेंदु हरीशचंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह और युग प्रवर्तक माना जाता है। इन्होंने अपने छोटे से जीवन काल में हिंदी साहित्य, भाषा और पत्रकारिता को एक नई दिशा दी। उनके योगदान को सम्मानित करते हुए ही हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के पहले चरण को भारतेंदु युग कहा जाता है। भारतेंदु जी ने कविता, नाटक, निबंध और यात्रा वृतांत जैसी विभिन्न विधाओं में प्रचुर मात्रा में रचनाएं की हैं और उन्हें हिंदी रंगमंच और नाटकों का जनक भी माना जाता है। और श्रोतो, पत्रकारिता के माध्यम से समाज में जन चेतना जगाने में उनका अहम योगदान रहा। उन्होंने कम उम्र में ही कई महत्वपूर्ण पत्रिकाओं का संपादन किया, जैसे कि कवि वचन सुधा, हरीशचंद्र मैगजीन, बाला बोधिनी। और उनके साहित्य में देश की गरीबी, पराधीनता, सामाजिक कुरीतियों और ब्रिटिश शासन के शोषण के खिलाफ स्पष्ट स्वर हमें दिखाई देते हैं। वे अत्यंत परोपकारी और दानशील स्वभाव के थे। उन्होंने अपनी संपत्ति का बहुत सा हिस्सा साहित्यकारों की मदद और समाज सेवा में ही खर्च कर दिया था। और साथ ही श्रोताओं, आज के दिन हम गजल सम्राट जिगर मुरादाबादी की पुण्यतिथि भी मना रहे हैं। उर्दू शायरी की दुनिया में उनका नाम अत्यंत आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। जिगर मुरादाबादी उर्दू गजल की क्लासिक परंपरा के सबसे मजबूत स्तंभों में एक माने जाते हैं। और साथ ही श्रोताओं, आपको बता दें कि आज से देश भर में शुरू हो रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह और इस बार उत्तर प्रदेश के वाराणसी से इस बड़े अभियान की शुरुआत हो रही है। इस वर्ष की थीम है हमारी आंगनबाड़ी, हमारी जिम्मेदारी। इस पोषण माह को मनाने का मुख्य उद्देश्य देश के 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान करवाने वाली माताओं और किशोरियों के पोषण स्तर में सुधार लाना और कुपोषण तथा अल्प पोषण की समस्या को दूर करना है। इसका मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि देश का हर बच्चा और महिला स्वस्थ, मजबूत और सुपोषित बने, जिससे एक स्वस्थ राष्ट्र की नींव रखी जा सके। और साथ ही श्रोताओं, आज 9 सितंबर को हम देश भर में हिमालय दिवस भी मना रहे हैं। इस दिन का मुख्य उद्देश्य हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र और पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना है। हिमालयी जलवायु को नियंत्रित करने और प्राकृतिक आपदाओं से देश की रक्षा करने में अहम भूमिकाएं निभाते हैं।

कार्यक्रम सुबह सुहानी इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। और अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है आज की ताजा खबरों का।

श्रोताओ, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी उत्तर प्रदेश के वाराणसी में देशव्यापी 9वें राष्ट्रीय पोषण माह 2026 की शुरुआत करेंगी। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। भारत के उपराष्ट्रपति अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र में आज भाग लेने के लिए ईटानगर पहुंच रहे हैं, जिसके चलते वहां पर सुरक्षा और ट्रैफिक के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तमिलनाडु में तमिलगा

बेटरी कझगम गठबंधन की दूसरी बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें कांग्रेस व अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर नए गठबंधन के नाम का ऐलान किया जा सकता है। तकनीकी दुनिया में आज का सबसे बड़ा इवेंट एप्पल का सरप्राइज एंड शाइन इवेंट है। भारतीय समय अनुसार आज रात 10:30 पर इस इवेंट का प्रसारण शुरू होगा, जिसमें पहली बार फोल्डेबल आईफोन और नई आईफोन 18 सीरीज को नए सीईओ जॉन टर्नर्स पेश कर सकते हैं। फ्रांस के पेरिस में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन शुरू हो रहा है, जिसमें भारत का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी हिस्सा ले रहा है। बेंगलुरु में फुटबॉल स्टेडियम में चल रहे नेशनल जूनियर चैंपियनशिप का ग्रैंड फिनाले आज खेला जाएगा। इस खिताबी मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियन मणिपुर की भिड़ंत पश्चिम बंगाल से होगी। श्रोताओ, बात करें मौसम की तो आज 9 सितंबर सन 2026 को हिमाचल प्रदेश में मौसम मुख्य रूप से साफ और शुष्क बना रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में मॉनसून की गतिविधियां कमजोर पड़ चुकी हैं। बात करें धर्मशाला और इसके आसपास के इलाकों के मौसम की तो हल्की धूप आज रहेगी और कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी भी होने की संभावना है। अब कार्यक्रम में चलते चलते आपको सुनवा रहे हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: तो श्रोतो, ये था हमारा आज का कार्यक्रम सुबह सुहानी।
1: सुबह सुहानी।
0: सुबह के 7:40 हुए हैं श्रोताओ, और अब आप सुनेंगे लोक संगीत का कार्यक्रम शुभ प्याग।

लोक संगीत का कार्यक्रम शुभ प्याग आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। श्रोताओं, एक आवश्यक सूचना सुनिए। लोक संपर्क अधिकारी जिला लोक संपर्क कार्यालय धर्मशाला के अनुसार सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि एलटी लाइन में केवल डालने के अंतर्गत दिनांक 10 सितंबर 2026 को यानी कल सुबह 9:30 से शाम कार्य समाप्ति तक 63 केवी लोअर मोहली, 250 केवी लोहर मोली एक, 400 केवी एजुकेशन बोर्ड कॉलोनी आदि ट्रांसफार्मरों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों, मस्जिद के आसपास तथा मोहली और सरीन होटल के आसपास के क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति पूर्णतः बाधित रहेगी। मौसम खराब होने या अन्य आकस्मिक आपदा में ये कार्य स्थगित या आंशिक रूप से किया जा सकता है। ये कार्य जनहित के लिए करना बहुत आवश्यक है। सर्वसाधारण जनता से सहयोग की अपील की जाती है। कृपया सभी लोग बिजली विभाग को सहयोग करें। सूचना समाप्त हुई।

हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर सुबह के 7:55 हुए हैं। अब सुनिए देशगान।

हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 8 बजने को हैं। थोड़ी देर में आकाशवाणी दिल्ली से 8 बजे समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज़ रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की फिनटेक सफलता की कहानी में निर्विवाद रूप से यूपीआई का महत्वपूर्ण योगदान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीलंका में भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण सेतु बताया। अमेरिका ने अपने युद्धपोत पर हमले के बाद फारस की खाड़ी में ईरान के 5 तेल टैंकर नष्ट किए। कनाडा ने 600 से अधिक अमरीकी वस्तुओं पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाया। दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी शुरू होने से पहले 12 से 21 सितंबर के बीच केंद्रीय, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी भारत के बड़े हिस्सों में तेज बारिश की आशंका। और खेलों में टेनिस में आर्ना सबलेंका और फ्रांसिस टियाफो यूएस ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के फिनटेक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की सराहना की है। उन्होंने कहा कि फिनटेक की सफलता की कहानी में एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई का निर्विवाद रूप से महत्वपूर्ण योगदान है। श्री मोदी ने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करते हुए ये बात कही।
1: भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा यूपीआई। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो यूपीआई के बिना अधूरी ही होगी।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि केवल अगस्त महीने में यूपीआई के माध्यम से 24 अरब से अधिक लेन देन हुए। श्री मोदी ने कहा कि इसी प्रभाव के कारण फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा था कि यूपीआई केवल तकनीकी नहीं बल्कि सभ्यतागत कहानी है। प्रधानमंत्री ने भारत की प्रमुख डिजिटल भुगतान प्रणाली के वैश्विक विस्तार का जिक्र करते हुए बताया कि यूपीआई अब 11 देशों में उपलब्ध है। श्री मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया की सफलता की कहानी अब एक नए अध्याय के लिए तैयार है।
1: डिजिटल इंडिया की सक्सेस स्टोरी अब एक नए अध्याय के लिए तैयार है। हमारी फिनटेक सक्सेस स्टोरी की अब तक की सफलता स्केल है, स्कोप है, सिक्योर सिस्टम है, डेमोक्रेटाइजेशन अब टेक्नोलॉजी है और जनता का ट्रस्ट है। इन्हीं कोर वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए फिनटेक सेक्टर को नेक्स्ट जनरेशन इनोवेशन पर फोकस करना है।
0: श्री मोदी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल भुगतान के लिए अगले रणनीतिक चरण की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए यूपीआई को साझेदार देशों की घरेलू भुगतान प्रणालियों के साथ तत्काल एकीकृत करने की आवश्यकता पर भी उन्होंने बल दिया। उन्होंने कहा कि जब दुनिया अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है और भारत इस दौर में भी 7.8% की दर से विकास करता है तो विश्व को एक नया भरोसा मिलता है।
1: दुनिया कॉन्फ्लिक्ट्स और अनसर्टेनिटी के दौर से गुजर रही है और इसमें भी जब भारत 7.8% से ग्रो करता है तो दुनिया को एक नया भरोसा मिलता है। भारत पर इस बढ़ते भरोसे का एक और उदाहरण हमारी सॉवरेन रेटिंग्स भी है।
0: प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि वैश्विक स्तर पर डिजिटल भुगतान प्रणालियों को एकीकृत करने से लोगों को स्वदेश में अपने परिवारों को धन भेजने में काफी तेजी आएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीलंका में रहने वाले भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच सेतु बताया है। उन्होंने कहा कि वो दोनों राष्ट्रों के बीच मित्रता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। श्री सिंह कल श्रीलंका के 3 दिन के दौरे पर कोलंबो पहुंचे। उन्होंने प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत में कहा कि भारत संकट के समय में हमेशा श्रीलंका के साथ मजबूती

0: से खड़ा रहेगा। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि दोनों देशों के बीच संबंध साझा इतिहास, संस्कृति और आस्था पर आधारित हैं। श्री राजनाथ सिंह ने भारत के तीव्र आर्थिक परिवर्तन का जिक्र करते हुए कहा कि देश विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
1: आज भारत दुनिया के ग्रोथ में 16% से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। पिछले 10-12 सालों में अब हमारी इकोनॉमी की साइज दोगुनी हो गई है और आज सारी दुनिया इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर जब चैलेंजेज का सामना कर रही है, उस समय भारत की जीडीपी ग्रोथ अप्रॉक्सिमेटली 7.8% है।
0: श्री सिंह रक्षा और विदेश मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। बंदरनायके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर श्रीलंका के उप रक्षा मंत्री सेवानिवृत्त मेजर जनरल अरुणा जयसेकरा ने रक्षा मंत्री का स्वागत किया। भारत और कुवैत विभिन्न क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी प्रगाढ़ करने पर सहमत हो गए हैं। कुवैत में कल 8वीं भारत कुवैत विदेश कार्यालय परामर्श बैठक में ये सहमति बनी। विदेश मंत्रालय के अपर सचिव असीम महाजन और कुवैत के विदेश मंत्रालय में एशिया मामलों के सहायक विदेश मंत्री नवाब अब्दुल लतीफ सुलेमान अल अहमद ने बैठक की सह अध्यक्षता की। एक रिपोर्ट।
2: बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने कई क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। इन क्षेत्रों में राजनीतिक संबंध, व्यापार, निवेश, रक्षा, सुरक्षा, ऊर्जा, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संबंध शामिल हैं। दोनों पक्षों ने सहयोग के लिए संयुक्त आयोग के तहत संयुक्त कार्य समूह की बैठकों में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष नई दिल्ली में आपसी सहमति वाली तारीख पर विदेश कार्यालय परामर्श का अगला दौर आयोजित करने पर सहमत हुए हैं। मंत्रालय ने कहा कि भारत और कुवैत के बीच लंबे समय से संबंध रहे हैं, जिन्हें दिसंबर 2024 में रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया था। मंत्रालय ने यह भी कहा कि कुवैत में रहने वाले 10.5 लाख भारतीय दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम कर रहे हैं। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका और ईरान के बीच लगातार हमलों के कारण पश्चिम एशिया में तनाव तेजी से बढ़ गया है। इससे व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका बढ़ गई है। अमेरिकी सैन्य बलों ने ईरान के कच्चे तेल के 5 टैंकर नष्ट कर दिए हैं। अमेरिका के अनुसार पिछले 2 दिनों में उनके एक युद्धपोत पर ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC ने हमले किए थे। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी। अमरीकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये हमले पिछले 2 दिनों में अमरीकी युद्ध पोत पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करने के ईरान के 2 प्रयासों के जवाब में किए गए। ओमान की खाड़ी में नष्ट किए गए ईरानी जहाजों में केवेक, चारमीनार, होराइजन 1 और रिस्को शामिल थे। कनाडा ने अमेरिका की 600 से ज्यादा चीजों पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाया है। इससे इन दोनों पड़ोसी देशों के बीच व्यापार विवाद बढ़ गया है। अमरीकी सामान पर ये शुल्क आधिकारिक रूप से कल रात से लागू हो गए। एक रिपोर्ट।
6: कनाडा के वाणिज्यिक उद्यम फेडरल सरकार के नए लागू किए गए डॉलर के बदले डॉलर शुल्क के तहत काम कर रहे हैं, जिसमें लगभग 28 अरब डॉलर मूल्य का अमरीकी आयात शामिल है। अमरीका के 600 से अधिक उत्पादों पर 15-50% तक शुल्क लगाया गया है। प्रभावित सामानों में स्टील और एल्यूमिनियम जैसे औद्योगिक सामान, टॉयलेट पेपर जैसी रोजमर्रा की जरूरत की चीजें और कॉइन ऑपरेटेड आर्केड मशीन जैसे विशेष उत्पाद शामिल है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल एजेंसियों को आदेश दिया है कि वे सरकार के मुख्य खरीद कैटलॉग के जरिए कनाडाई उत्पादों की खरीद तब तक रोक दे जब तक कनाडा अमेरिकी कारोबारियों और किसानों को अपने बाजार में सामान की पहुंच नहीं देता। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: छत्तीसगढ़ में कांकेर अदालत ने 2015 में सुरक्षा बलों पर हमले से जुड़े मामले में 5 माओवादियों को सजा सुनाई है। इनमें कट्टर नक्सली प्रभाकर और उसकी पत्नी राजे कांगे भी शामिल हैं। दंडकारिणी स्पेशल जोनल कमेटी के कैडर प्रभाकर और डिविजनल कमेटी सदस्य उसकी पत्नी राजे कांगे को 7-7 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई। इस मामले में शामिल 3 अन्य माओवादियों को 5-5 वर्ष की जेल की सजा दी गई। वर्ष 2015 में माओवादियों के एक समूह ने सुरक्षा बलों की उस टीम पर हमला किया था जो कोरार इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही थी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज गोवा में पोरवोरम एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग 66 पर बना ये 6 लेन का कॉरिडोर 5 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है और इसे करीब 641 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। कॉरिडोर 11 सितंबर से वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा। एक रिपोर्ट।
7: इस कॉरिडोर से रोज करीब 75-80 हजार वाहनों के गुजरने की उम्मीद है। इससे नीचे की मौजूदा सड़क पर करीब 60% ट्रैफिक कम होने की उम्मीद है। इससे मापुसा पणजी के व्यस्त रास्ते पर ट्रैफिक कम करने में मदद मिलेगी, साथ ही पर्यटकों और व्यावसायिक वाहनों की आवाजाही भी आसान होगी। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय आज वाराणसी में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में इस अभियान का शुभारंभ करेंगी।
8: इस वर्ष राष्ट्रीय पोषण माह की थीम हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी रखी गई है। पोषण माह 2026 में आहार विविधता और पर्याप्त प्रोटीन, आंगनवाड़ी केंद्रों पर ताजा गर्म पका हुआ भोजन, सामुदायिक स्वामित्व एवं जवाबदेही, पोषण एवं प्रारंभिक बाल विकास के लिए शिक्षा तथा प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना के 10 वर्ष पूरे होने को प्रमुखता दी जाएगी। वाराणसी में होने वाले शुभारंभ कार्यक्रम में पोषण मेले का आयोजन होगा। लाभार्थियों के अनुभव पर आधारित वीडियो का प्रदर्शन होगा। उसके साथ ही केंद्रीय मंत्री और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के बीच संवाद इसका प्रमुख आकर्षण होंगे। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर और प्रदेश की महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री बेबी रानी मौर्य भी मौजूद रहेंगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी कर दी गई है। राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए राज्य के हिस्से में 4,000 रुपये प्रतिमाह और सहायिकाओं के लिए राज्य के हिस्से में 2,000 रुपये प्रतिमाह की अतिरिक्त बढ़ोतरी की गई है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी शुरू होने से पहले 12 से 21 सितंबर के बीच केंद्रीय, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी भारत के बड़े भाग में वर्षा होने का अनुमान है। मौसम के मॉडलों ने संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में होने जा रही वर्षा कमजोर पड़ते मानसून चक्र को अस्थायी रूप से पुनर्जीवित कर सकती है। इसके कारण सितंबर के उत्तरार्ध में देश के कई भागों में बौछारें पड़ सकती हैं और गरज के साथ वर्षा हो सकती है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगई क्षेत्र, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज तेज वर्षा होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी और कराईकल में भी तेज हवा के साथ गरज चमक की संभावना व्यक्त की है। खेलों में यूएस ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स की मौजूदा चैंपियन और शीर्ष वरीयता प्राप्त अरीना सबालेंका तथा पुरुष सिंगल्स में फ्रांसिस टियाफो सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। अरीना सबालेंका ने रोमांचक क्वार्टर फाइनल में चेंगर राज्य की छठी वरीयता प्राप्त लिंडा नोस्कोवा को हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
9: अपडेट रहे, आगे रहे। expert@airnewshindi और Instagram पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
10: धन्यवाद फरहत। वडोदरा में माल ढुलाई गलियारे के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित की है। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा विपक्षी पार्टियां अब नए नए मुद्दे उठाएंगी। ब्रिक्स घोषणा पर सहमति बड़ी चुनौती, यूएई ईरान आमने सामने, राजस्थान पत्रिका की खबर है। पत्र लिखता है, आर्थिक और वित्तीय मामलों पर भी जोर, कृषि बीज और ऊर्जा पर साझेदारी को लेकर विशेष बातचीत होने की संभावना। देश भर में इमारतों की जांच पर विचार कर रहा शीर्ष कोर्ट, दिल्ली में 17 संपत्तियों पर चला बुलडोजर, अमर उजाला की खबर है। हिंदुस्तान ने श्रीनगर की शांत डल झील पर 4 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल के आगाज होने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, कश्मीर की डल झील पर शिकारी, ठहरी शाम और सिनेमा का जादू।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की फिनटेक सफलता की कहानी में निर्विवाद रूप से यूपीआई का महत्वपूर्ण योगदान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीलंका में भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण सेतु बताया। अमेरिका ने अपने युद्धपोत पर हमले के बाद फारस की खाड़ी में ईरान के 5 तेल टैंकर नष्ट किए। कनाडा ने 600 से अधिक अमरीकी वस्तुओं पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाया। और टेनिस में आरना सबालेंका और फ्रांसिस टियाफो यूएस ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
11: Akashvani presents Morning News. Good morning, I am Saira Mujtaba. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says UPI is undisputed champion of India's fintech success story. Defence Minister Rajnath Singh describes Indian community in Sri Lanka as important bridge between the two countries. US says it destroyed 5 Iranian oil tankers in Persian Gulf after attacks on American warship. Canada imposes retaliatory tariffs of up to 50% on more than 600 US goods. Rain likely to lash large parts of central, south, east and west India between September 12 and 21 before southwest monsoon begins its seasonal retreat. And in tennis, Aryna Sabalenka and Francis Tiafoe enter semifinals of US Open in New York. And now the news in detail. Praising the remarkable achievement of India's rise in fintech, Prime Minister Narendra Modi has said that the country's Unified Payments Interface, or UPI, is the undisputed champion of this success story. Inaugurating the Global Fintech Fest 2026 in Mumbai, Mr. Modi said, "This is such a massive transformation that whenever fintech is discussed, it will remain incomplete without UPI."
12: भारत की fintech story अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा champion है हमारा UPI. मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो यूपीआई के बिना अधूरी ही होगी।
11: Reiterating his core philosophy of technological empowerment, the Prime Minister praised UPI as the ultimate tool for financial inclusion, successfully penetrating areas ignored by traditional banking models. The Prime Minister pointed out that over 24 billion UPI transactions occurred in August alone. Highlighting the global expansion of India's flagship digital payment system, the Prime Minister said that UPI is now live in 11 countries, turning what was once unimaginable into an everyday reality for international payments.
12: 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर हमारे लिए और भी नई संभावनाओं लेकर आया है। एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन, क्वांटम, ऐसी टेक्नोलॉजीज फाइनेंशियल सेक्टर में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है। अब हमारे सामने चुनौती है इन संभावनाओं को वास्तविक इम्पैक्ट में कैसे बदले।
11: Defence Minister Rajnath Singh has described the Indian community in Sri Lanka as a bridge between the two countries, saying they play a crucial role in strengthening friendship between the two nations. Mr. Singh, who reached Colombo yesterday on a three-day visit to Sri Lanka, made the remarks while interacting with members of the Indian diaspora. The Defence Minister said that India will always stand firmly with Sri Lanka in times of crisis, underlining that the relationship between the two countries is based on shared history, culture and faith. In his address, Mr. Singh highlighted India's rapid economic transformation, saying the country is among the fastest growing major economies in the world and contributes more than 16% to global growth.
1: आज भारत दुनिया के ग्रोथ में 16% से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है.
13: टुडे इंडिया इज कंट्रीब्यूटिंग मोर देन 16% टू ग्लोबल ग्रोथ. ओवर द पास्ट 10 टू 12 इयर्स द साइज ऑफ आवर इकोनॉमी हैज डबल्ड एंड एट अ टाइम व्हेन द एंटायर वर्ल्ड इज फेसिंग चैलेंजेस रिलेटेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ इंडियाज जीडीपी इज ग्रोइंग एट अप्रोक्सीमेटली

0: Thanks, Shakun. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says UPI is undisputed champion of India's fintech success story. Defence Minister Rajnath Singh describes Indian community in Sri Lanka as important bridge between the two countries. US says it destroyed five Iranian oil tankers in Persian Gulf after attacks on American warship. Canada imposes retaliatory tariffs of up to 50% on more than 600 US goods. Rain likely to lash large parts of central, south, east and west India between September 12 and 21 before southwest monsoon begins its seasonal retreat. And in tennis, Aryna Sabalenka and Frances Tiafoe enter semifinals of US Open in New York. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a great day.
1: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8:30 हुए हैं। अब सुनिए कार्यक्रम गाने सुहाने। कार्यक्रम गाने सुहाने सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। सुबह के 8:30 हो चुके हैं और हम बिल्कुल तैयार हैं आपके मनोरंजन के लिए इस कार्यक्रम के साथ जिसका नाम है गाने सुहाने। और आज का ये कार्यक्रम बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस कार्यक्रम में बात होगी बॉलीवुड के असली खिलाड़ी अक्षय कुमार जी की, क्योंकि आज ही के दिन 9 सितंबर को उनका जन्म हुआ था। तो अपनी रेडियो दोस्त सचिता के साथ हो जाइए तैयार इस फिल्मी सफर पर चलने के लिए। जी हाँ श्रोतो, कहते हैं किस्मत सबकी बनती है लेकिन अपनी मेहनत से। अपनी किस्मत की लकीरें खुद खींचना कोई इनसे सीखे, एक ऐसा नाम जो पर्दे पर उतरे तो सिनेमा घरों में सीटियां बज उठती हैं और हंसाए तो लोट पोट कर देते हैं और रुलाए तो आंखें नम कर दे और एक्शन करे तो स्क्रीन ही फाड़ दे। सिल्वर स्क्रीन से लेकर हमारे दिलों तक राज करने वाले बॉलीवुड के असली खिलाड़ी अक्षय कुमार के आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे और उन्हीं की फिल्मों से आपको कुछ प्यारे प्यारे से गीत भी सुनवाएंगे।

जी हाँ श्रोताओं, अक्षय कुमार के बारे में आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं क्योंकि आज के दिन उनका जन्म हुआ था। और श्रोताओं, आपको बता दें कि अक्षय कुमार जी का जो असली नाम था वो था राजीव हरि ओम भाटिया। अक्षय कुमार का शुरुआती जीवन और बॉलीवुड तक का सफ़र किसी फिल्मी कहानी से कम संघर्षपूर्ण और प्रेरणादायक नहीं है, क्योंकि 9 सितंबर 1967 को जब से इनका जन्म हुआ तब से लेकर अभी तक का जो सफ़र है वो चुनौतीपूर्ण रहा। 1967 को अमृतसर पंजाब में एक मध्यम वर्गीय पंजाबी परिवार में इनका जन्म हुआ। इनके पिता हरिओम भाटिया सेना में थे और बाद में यूनिसेफ में अकाउंटेंट बने, और उनकी माता अरुणा भाटिया एक गृहिणी थी। उनका बचपन दिल्ली

दिल्ली के चांदनी चौक और फिर मुंबई के कोलीबाड़ा इलाके में बीता। बचपन में ही उन्हें स्पोर्ट्स और खासकर मार्शल आर्ट्स में उनका बहुत ही रुझान था। पढ़ाई में उनका मन कम लगता था और वे खेल कूद और मार्शल आर्ट्स में ज़्यादा ध्यान देते थे। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद श्रोताओं, इन्होंने मार्शल आर्ट्स में महारत हासिल करने के लिए बैंकॉक जाने का फैसला लिया और बैंकॉक में अपने खर्चों को चलाने के लिए और अच्छा जीवन जीने के लिए इन्होंने वहाँ पर कई छोटे छोटे काम भी किए, जैसे कि शेफ़ और वेटर के रूप में भी इन्होंने काम किया। और श्रोतो, कुछ साल थाईलैंड में बिताने के बाद अक्षय कुमार मुंबई वापस लौट आए। मुंबई में इन्होंने बच्चों को मार्शल आर्ट्स सिखाना शुरू किया। उनके एक छात्र जो खुद एक विज्ञापन एजेंसी में काम करते थे, उन्होंने अक्षय को मॉडलिंग की सलाह दी और अक्षय को एक ही दिन की मॉडलिंग के विज्ञापन शूट के लिए उतने पैसे मिल जाते थे जितने कि पूरे महीने मार्शल आर्ट्स सिखा कर भी वे नहीं कमा पाते थे। तो श्रोतो, इस तरह से उन्होंने अपने सफ़र की शुरुआत की। फिर उन्होंने मॉडलिंग के बाद अपनी फिल्मों के लिए ऑडिशन देना शुरू किया। साल 1991 में उन्होंने फिल्म सौगंध में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की और इसके तुरंत बाद 1992 में अब्बास मस्तान की थ्रिलर फिल्म खिलाड़ी रिलीज़ हुई और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही सुपरहिट साबित हुई और इसी फिल्म ने अक्षय कुमार को रातों रात स्टार बना दिया और उन्हें खिलाड़ी कुमार के नाम से भी जाना जाने लगा।

0: जी हाँ श्रोताओ, अक्षय कुमार जी एक्शन के तो बेजोड़ बादशाह हैं ही, कॉमेडी में भी उनका कोई जवाब नहीं है और देश प्रेम की कहानियों में तो उनका हर किरदार सीधा दिल पर जाकर लगता है। और आपको याद दिला दे कि आकाशवाणी धर्मशाला से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गाने सुहाने। इस कार्यक्रम में हम रुक रहे हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए।
1: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
2: दीदी नौकरी लग गई।
3: अरे वाह, बधाई हो।
4: तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
2: हाँ दी, नया मोबाइल।
4: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
2: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
4: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
2: पर दीप,
4: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
2: हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा।
4: अच्छा।
5: RBI कहता है
6: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

फिल्म जानवर का ये गीत श्रोताओं अभी आपने सुना अलका याग्निक और मनहर उदास की आवाजों में। अक्षय कुमार की बात आज के इस कार्यक्रम में हो रही है और उन्हीं के फिल्मों के गीत आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म जानवर का गीत जो अभी आपने सुना, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी और इस फिल्म ने अक्षय कुमार के करियर को एक नया टर्निंग पॉइंट दिया था, क्योंकि उस दौर में उनकी कुछ फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थी और जानवर की सफलता ने उनके करियर को फिर से ऊपर उठा दिया।

तो श्रोताओ, आज के गाने सुहाने कार्यक्रम में हमने बात की अक्षय कुमार जी की, और आज के इस दिन पर, उनके जन्म दिवस पर, हम सभी उन्हें ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। और धड़कन फिल्म के इसी गीत के साथ आज का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के ठीक 9 बज चुके हैं और अब आप सुनेंगे कार्यक्रम गीतांजलि।

स्वागत है आप सभी का हमारे इस डिजिटल सफर में। जी हाँ, आज के गीतांजलि कार्यक्रम हमारी ईमेल्स पर आधारित होने वाला है और मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त सचिता। हमारे इनबॉक्स में सिर्फ ईमेल्स ही नहीं बल्कि आप सबकी उम्मीदें, अनकही दास्तानें, मुस्कुराहटें और कभी कभी नम आंखें भी हमें दिख जाती हैं। ये ईमेल्स एक कहानी है और हर शब्द में एक एहसास है। तो श्रोतो, स्क्रीन पर टिमटिमाती इन ईमेल्स के दरवाजे खोलते हैं और पढ़ते हैं आप ही के दिल की अनकही किताब के कुछ पन्ने। बहुत सारे श्रोताओं ने हमें ईमेल्स भेजना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि अब से लेकर ठीक 10 बजे तक हमारे इस कार्यक्रम में आप हमें मेल्स भेज सकते हैं।

हाँ श्रोताओ, अब हम कार्यक्रम में अपनी पहली मेल शामिल करने वाले हैं। इन्होंने कहा है कि अपनी पसंद का कोई भी गीत हमें सुनवा दीजिएगा, सुरीला सा और सदाबहार गीत। जी बिल्कुल, आपको सुनवाएंगे। और आपको बता दें कि ये मेल करने वाले हैं बाबू कॉलोनी अब्दुल्ला मस्जिद खंडवा मध्य प्रदेश से, सहेली रेडियो संघ से ये हमें मेल कर रहे हैं, परदेसीपुरा खंडवा से शेख सईद रई और अनस भाई, और बेबी हलीमा डावर, बेबी जिक्रा डावर हमें ये मेल भेज रहे हैं। साथ ही एक और मेल हमें पहुंची है बक्सर बिहार से, शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और सुमित रमेश साहू, ठुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीवा और दानिश अंसारी, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य और परमानंद आर्य, सरीमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी, आसमा खातून अंसारी और इकबाल मस्तान। ये हमारे नियमित श्रोता हैं, सभी कार्यक्रम हमारे सुनते हैं और लगातार हमें मेल्स भी भेजते रहते हैं। जी हाँ श्रोता, एक और मेल हम तक पहुंची है मेरठ कैंट से, और इन्होंने, इनका नाम है दिग्दर्शन और कविता गौड़। इन्होंने हमें 3-4 फिल्में लिखकर भेजी हैं और कहा है कि इनमें से कोई सा भी गीत आप हमें सुनवा दीजिएगा। तो इनके लिए हम सुनवा रहे हैं फिल्म राजा हिंदुस्तानी का ये गीत। तो आइए सभी मिलकर सुनते हैं इस गीत को।

0: जोकर।
1: जी हां श्रोताओं, कार्यक्रम गीतांजलि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। और आज का ये कार्यक्रम हमारे प्यारे प्यारे श्रोताओं की प्यारी सी ईमेल्स पर आधारित है। अब हम अगली मेल शामिल कर रहे हैं, लेकिन मेल शामिल करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप भी हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं तो आप हमें मेल भेज सकते हैं musicmail@gmail.com पर। जी हाँ, तो अब हम शुरू करते हैं। विजेंद्र भ्यान जी ने हमें ये ईमेल भेजा है और इन्होंने अपने बाकी के साथियों के नाम भी हमें लिख कर भेजे हैं। सुरेंद्र भ्यान, शमशेर भ्यान, मनोज भ्यान और जेवरा हिसार से ये हमें मेल भेज रहे हैं। और साथ ही एक और हमारे श्रोता हैं मोहाली पंजाब से, बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा जी, इन्होंने हमें नमस्कार कहा है। जी आपको भी हमारा प्यार भरा नमस्कार। और इन्होंने कहा है कि किसी भी गीत में हमें शामिल कीजिएगा। रतन चंद ज्वालामुखी से हमें मेल भेज रहे हैं, ये भी हमारे कार्यक्रम सुनते हैं और इन्हें हमारे कार्यक्रम बहुत पसंद आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। तो श्रोताओ, इस तरह से आप भी हमें मेल भेज सकते हैं और अपनी पसंद का गीत सुन सकते हैं। तो श्रोताओ, आपको बता दें कि ये कार्यक्रम अब से लेकर ठीक 10 बजे तक इस कार्यक्रम में हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। आप हमें लगातार मेल्स भेज रहे हैं, लेकिन कुछ ही ईमेल्स हम कार्यक्रम में शामिल कर पाते हैं और कुछ ही श्रोताओं को गीत सुनवा पाते हैं, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि हम नाम सभी के शामिल करें। फिल्म हीर रांझा का गीत सुनना चाहते हैं हमारे ये श्रोता, जिनका नाम है संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया जी। और इन्होंने हमें मेल कहाँ से भेजा है, इन्होंने अपनी जगह का नाम लिखकर नहीं भेजा है, तो सभी श्रोताओं से हम कहना चाहते हैं कि अपनी जगह का नाम, अपना नाम अच्छी तरह से हमें लिखकर भेजें ताकि हमें पता चल सके हमारे श्रोता कहाँ कहाँ से हमें सुन रहे हैं। तो आइए इन्हीं की पसंद पर ये प्यारा सा गीत सुनते हैं।

0: छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: मैं हूं HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूं और आपका साथी बन जाता हूं। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
0: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
3: आकाशवाणी धर्मशाला से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतांजलि, और आज का ये गीतांजलि कार्यक्रम हमारे श्रोताओं की ईमेल्स पर आधारित है। हमारे श्रोता हमें मेल कर सकते हैं musicmail@gmail.com पर। बहुत सारे मेल्स हम तक पहुंच रहे हैं, लेकिन श्रोताओं आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के साथ हम फिर से वापस लौटेंगे 9:30 पर। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। सुबह के 9:19 होने को हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र से प्रदेश को अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने और उधार सीमा 3 से 4% करने का किया आग्रह। प्रदेश उच्च न्यायालय ने स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्स पर रोगी मित्र भर्ती करने पर लगाई रोक। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर भाजपा विधायकों के विधानसभा क्षेत्रों के साथ भेदभाव करने का लगाया आरोप। पूर्ण साक्षरता दर हासिल करने पर हिमाचल प्रदेश को राष्ट्रीय सम्मान। शिक्षा मंत्री ने कहा, डिजिटल साक्षरता और व्यावसायिक कौशल को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता। और हिमालयन गोल्ड के नाम से प्रसिद्ध सीबकथॉर्न लाहौल स्पीति जिले के लोगों के लिए बन रहा है आजीविका का अतिरिक्त साधन। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र से राज्य की भौगोलिक व आर्थिक परिस्थितियों के मद्देनजर अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद वित्तीय वर्ष 2026-27 से राजस्व घाटा अनुदान बंद होने के कारण प्रदेश को करीब 8,000 करोड़ रुपए के वार्षिक वित्तीय अंतर का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री ने राज्य की उधार लेने की सीमा को वर्तमान 3% से बढ़ाकर सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4% करने का भी अनुरोध किया, ताकि प्रतिबद्ध देनदारियां पूरी करने के साथ सार्वजनिक सेवाओं और विकास कार्यों के लिए संसाधन जुटाए जा सकें। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा उठाई गई मांगों पर राज्य की वित्तीय आवश्यकताओं और विकासात्मक प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। राज्य सरकार के आउटसोर्स पर 1,000 रोगी मित्र भर्ती करने के फैसले पर प्रदेश उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया व न्यायाधीश विपिन चंद्र नेगी ने सरकार की आउटसोर्स कर्मचारी तैनात करने की नीति पर गंभीर सवाल उठाए हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि नियमित कर्मचारियों के बराबर काम लेने के बावजूद भी केवल 15,000 रुपये मानदेय पर रखना युवाओं के शोषण को बढ़ावा देता है। इसके अलावा स्वास्थ्य संस्थानों में 290 पदों की भर्ती के लिए मांग पत्र पर भी रोक लगाई गई है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने समाज के सभी वर्गों से युवाओं को नशे की दलदल से बचाने के लिए आगे आने का आह्वान किया है। चंबा जिला की खिरडीधार में आयोजित छिंज मेले में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रखने में खेल व शारीरिक गतिविधियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि वर्तमान परिदृश्य में युवाओं का नशे की ओर बढ़ता रुझान चिंताजनक है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भाजपा विधायकों के विधानसभा क्षेत्रों के साथ राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से भेदभाव करने का राज्य सरकार पर आरोप लगाया है। सराज विधानसभा क्षेत्र के थाची में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि विकास किसी पार्टी या विधायक का नहीं बल्कि जनता का अधिकार है और राजनीतिक विरोध के चलते किसी भी क्षेत्र के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। जयराम ठाकुर ने कहा कि जिन क्षेत्रों में भाजपा विधायक हैं वहां जरूरी कार्यों को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर प्रदेश को विकास के क्षेत्र में पीछे धकेलने का आरोप भी लगाया। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण साक्षरता दर हासिल करने पर राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया है। नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने ये सम्मान ग्रहण किया। इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश ने 99.55% साक्षरता दर हासिल की है और गोवा के बाद देश का दूसरा सर्वाधिक साक्षर राज्य बन गया है। रोहित ठाकुर ने कहा कि डिजिटल साक्षरता और व्यावसायिक कौशल को बढ़ावा देने पर सरकार विशेष ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2027 तक प्रदेश को 100% साक्षर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लाहौल स्पीति जिले में हिमालयन गोल्ड के नाम से प्रसिद्ध सीबकथॉर्न फल की तुड़ाई का काम शुरू हो गया है। हमारे संवाददाता के अनुसार

0: बकथोर्न जिले में स्वास्थ्य, पर्यावरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में समृद्धि की नई उम्मीद बनकर उभर रहा है।
1: हिमालय के ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्रों का अनमोल प्राकृतिक खजाना और हिमालयन गोल्ड के नाम से प्रसिद्ध सिवकथोन अब फलतुड़ा के मौसम में प्रवेश कर चुका है। सिवकथोन को अब एक जिला एक उत्पाद यानी ODOP के तहत भी महत्वपूर्ण उत्पाद के रूप में पहचान मिली है। इसके फलों से रस, शरबत, तेल और चूर्ण जैसे मूल्य वर्धित उत्पाद तैयार किए जाते हैं। कांटों से भरे इस पौधे की तुड़ाई आसान नहीं होती, लेकिन ये स्थानीय लोगों के लिए अतिरिक्त आय और स्वरोजगार की नई संभावनाएं खोल रहा है। साथ ही इसकी जड़ें मिट्टी को बांधने और नदी किनारों कटाव को रोकने में भी सहायक है। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति समय सुरेंद्र कुमार।
0: ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। शेष समाचार इस अंतराल के बाद।
2: ये है मेरे बच्चे की आवाज जब उसका पेट भरा हो। ये है मेरे बच्चे की आवाज जब उसको सांस में तकलीफ है। और अब जानती हूँ, अगर खांसी जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज तो बिल्कुल नहीं, तुरंत इसको नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाऊंगी। निमोनिया नहीं तो बचपन सही।
3: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।
0: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश भाजपा ने राज्य सरकार के प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के दावे को जनता को गुमराह करने वाला करार दिया है। एक बयान में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि बढ़ते कर्ज, वित्तीय कुप्रबंधन और विकास कार्यों की धीमी गति ने जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ भाजपा लगातार संघर्ष करेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि प्रदेश के 171 मंडलों सहित करीब 200 संस्थानों पर हर महीने स्थानीय मुद्दों को लेकर धरने प्रदर्शन किए जाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जरूरतमंदों के लिए मददगार साबित हो रही है। हमारे कुल्लू जिला संवाददाता ने बताया कि इस योजना से जिला के जरूरतमंद लोग लाभान्वित हो रहे हैं।
4: ये एक ऐसी जीवन बीमा योजना है जो किसी भी कारण से मृत्यु होने पर 2 लाख का बीमा कवर देती है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत मात्र 436 रुपए के वार्षिक प्रीमियम पर 2 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर मिलता है तथा 18 से 50 वर्ष की आयु सीमा के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। इस योजना से जुड़ने के लिए बैंक या डाकघर में बचत खाता होना जरूरी है। हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक की कुल्लू जिला की सरसाड़ी शाखा ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत एक आश्रित परिवार को 2 लाख रुपए की बीमा क्लेम राशि सौंपी। गांव सहिटा निवासी स्वर्गीय दुनीचंद के आकस्मिक निधन के पश्चात बैंक की शाखा प्रबंधक सोनिया नागर ने उनकी धर्मपत्नी खिमी देवी को 2 लाख रुपए की बीमा राशि का सहायता चेक प्रदान किया। इसी तरह कई अन्य आश्रितों को भी विभिन्न बैंकों द्वारा बीमा सहायता राशि प्रदान की जा चुकी है। आकाशवाणी के लिए कुल्लू से आशीष शर्मा।
0: मंडी जिले में राजस्व की लंबित मामलों में 22% से अधिक की कमी आई है। इस वर्ष मार्च से अगस्त की अवधि के दौरान जिले में 19,865 इंतकाल किए गए। उपायुक्त अपूर्व देवगन ने कहा कि राजस्व मामलों का समयबद्ध निस्तारण जिला प्रशासन की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है और सभी तहसीलदारों व नायब तहसीलदारों को नियमित रूप से राजस्व अदालतें लगाने और पुराने मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के निर्देश दिए गए हैं। और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। अमर उजाला की सुर्खी है, सीएम सुक्खू वो आधे से ज्यादा कैबिनेट दिल्ली डटी, ड्रॉप हो सकता है एक मंत्री। पंजाब केसरी के शब्द हैं, सुक्खू सरकार के वरिष्ठ मंत्री बुलाए दिल्ली, कैबिनेट विस्तार पर निर्णय संभव। दिव्य हिमाचल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात पर लिखा है, हिमाचल की लोन लिमिट बढ़ाएं, वित्तीय मदद करें। वहीं हिमाचल दस्तक का कहना है, हिमाचल को अपने निःशुल्क विद्युत हिस्से का मिलना चाहिए उचित लाभ। दैनिक जागरण ने प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश को सुर्खी दी है, हिमाचल में रोगी मित्र रखने पर रोक। मौसम पर दैनिक भास्कर लिखता है, 5 साल में इस बार सबसे कमजोर रहा मॉनसून, अब तक 10% से कम बारिश, पिछले साल के मुकाबले नुकसान भी करीब 3 गुना कम हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र से प्रदेश को अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने और उधार सीमा

0: 3 से 4% करने का किया आग्रह। प्रदेश उच्च न्यायालय ने स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्स पर रोगी मित्र भर्ती करने पर लगाई रोक। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर भाजपा विधायकों के विधानसभा क्षेत्रों के साथ भेदभाव करने का लगाया आरोप। पूर्ण साक्षरता दर हासिल करने पर हिमाचल प्रदेश को राष्ट्रीय सम्मान। शिक्षा मंत्री ने कहा, डिजिटल साक्षरता और व्यवसायिक कौशल को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता। और हिमालयन गोल्ड के नाम से प्रसिद्ध सिबक थॉर्न लाहौल स्पीति जिले के लोगों के लिए बन रहा है आजीविका का अतिरिक्त साधन। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
1: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले।
2: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण।
1: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
2: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
1: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:31 हो चुके हैं और अब हम लेकर हाजिर हैं फिर से कार्यक्रम गीतांजलि का शेष भाग। कार्यक्रम गीतांजलि में एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का स्वागत है और आपको बता दें कि आज का ये कार्यक्रम ईमेल्स पर आधारित है। आप हमें मेल्स भेज सकते हैं और अपनी पसंद का गीत सुन सकते हैं। साथ ही आप अपने दोस्तों और अपने परिवार जनों के नाम भी हमें लिखकर भेज सकते हैं। और आपको मेल भेजना है musicmail@gmail.com पर, musicmaildshala@gmail.com पर आप हमें मेल भेज सकते हैं। तो इसी ईमेल एड्रेस पर हमें मेल भेजा है सुखविंदर सिंह जोड़ा जी का, जो कि हमें नमस्कार कह रहे हैं। आपको भी हमारा प्यार भरा नमस्कार। कृष्णा पार्क दिल्ली से इन्होंने हमें मेल भेजा है और अपने दोस्तों के नाम भी हमें लिख कर भेजे हैं। गुरवंश सिंह जोड़ा, सीटी दीवाना, सुखविंदर सिंह जोड़ा, ये सभी हमारी पसंद का कोई सभी गीत सुनना चाहते हैं। जी ज़रूर आपको सुनवाएंगे। और अगली मेल हम शामिल करते हैं सराहनपुर कुम्हार हैडा से, और मेल करने वाले हैं सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम, और इन्होंने कहा है कि किसी भी गीत में हमें शामिल कीजिएगा। जी अगली मेल हम शामिल कर रहे हैं संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव का। जी हमारे एक और श्रोता हैं, उन्होंने हमें लिख भेजा है कि आप अपनी पसंद का कोई भी गीत हमें सुनवा दीजिएगा, और उन्होंने कहा है कि हमारे कार्यक्रम उन्हें बेहद पसंद आते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जय जिनेंद्र श्रोता संघ परभणी से, महाराष्ट्र से ये हमें मेल भेज रहे हैं रुपेश संघई, महेश संघई, प्रगेश संघई और प्रीतेश संघई और इनका पूरा संघई परिवार। जी और एक और हमारे श्रोता है जिन्होंने हमें मेल भेजा है मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज़, हसन नवाज़, बाबू अहमद, मिफ्रा नवाज़ और बेबी चाहत, ये भी हमारी पसंद का कोई सा भी गीत सुनना चाहते हैं। जी एक और श्रोता है हमारे नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी जी, और इन्होंने भी कोई सा भी गीत सुनने के लिए हमें मेल किया है। चौटाला हरियाणा से दारा पंडित, संजय शर्मा और प्रियंका शर्मा जी भी हमें मेल भेज रहे हैं। जी तो श्रोताओं एक और श्रोता हैं, इनका मेल शामिल करते हैं नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से PS नहलवरकर, निर्मला नहलवरकर और विशाल नहलवरकर, इन्होंने हमें लिख भेजा है कि फिल्म जानवर से मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ ये गीत हमें सुनवा दीजिएगा। तो आइए हम सभी मिलकर सुनते हैं इनकी पसंद का ये गीत। और साथ ही मलकापुर महाराष्ट्र से

इन्होंने अपने दोस्तों के नाम भी लिख भेजे हैं, नारायण इंगले, सोपान तायते और आशीष मुनहेकर, और इन्होंने हमें धन्यवाद कहा है हमारी मेल शामिल करने के लिए। जी आपका भी बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतना प्यारा सा मेल किया।

कार्यक्रम गीतांजलि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो दोस्त सचिता। और हमारे बहुत सारे श्रोता लगातार हमें ईमेल्स भेज रहे हैं। कुछ श्रोता जिनके नाम हमने पढ़ लिए हैं फिर से वे हमें मेल भेज रहे हैं, तो उनसे कहना चाहते हैं कि आपके नाम हमने शामिल कर लिए हैं, तो अब आप अगली बार सोमवार के दिन हमें मेल कीजिएगा। हमारे नए श्रोता हमारे साथ जुड़े, यही हमारी कोशिश रहती है। जी, गांव बिटोवा भोयर तहसील मंगरूल पीर जिला बाशीम पश्चिम विदर्भ से ये हमें मेल भेजी हुई है। योगराज मस्के, श्रीहरि मस्के, इंदुमती मल्हार, कविता मोहन, विशाल, कुशल गोपाल, श्याम गोविंद मस्के और इनके सभी साथी जन। जी, टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप जी हमें मेल भेज रहे हैं सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से। और कालका से शुभचंद्र बजाज, शाहिल बजाज और बिट्टा बजाज।

प्रोग्राम गीतांजलि पेश करता जी को हमारा प्यार भरा नमस्कार जी, आपको भी हमारा नमस्कार। और इन्होंने फिल्म कारवां का गीत सुनना चाहा है जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी और आशा भोंसले ने। और दुर्गा कॉलोनी हांसी से ये हमें मेल भेज रहे हैं राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बबलू डब्लू। राजू मिगलानी जी आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।

कार्यक्रम गीतांजलि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। और श्रोताओं, आपकी ईमेल्स हम लगातार इस कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं। अब जो एक मेल हमारे पास आया है उसे पढ़ते हैं। ये मेल हमें भेजा है मुकाम पोस्ट कालेगाम जाफराबाद से श्री सुधाकर राजे जाधव देशमुख, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव देशमुख और जग्गूताई राजे जाधव देशमुख और कुमार संचित देशमुख, प्रथमेश सर्वद हर्षिता शानवी और इनका पूरा देशमुख परिवार हमारे साथ ये जुड़े, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही श्रोताओं, एक और मेल हम कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं जो हमें आया है जिला नांदेड़ येताला महाराष्ट्र से। शंकर लाल जयसवाल, गणेश लाल जयसवाल, शुभम प्रसाद अर्णब, दुर्गेश्वरी राखी, तृप्ति जयसवाल जी, और इन्होंने सुनना चाहा है फिल्म ब्रह्मचारी से सुमन कल्याणपुर और साथियों की आवाज़ों में ये गीत।

जी ब्रह्मचारी फिल्म से ये गीत हमारे श्रोता भी सुन रहे थे। और श्रोता इसी तरह से अगर आप भी अपनी पसंद का गीत सुनना चाहते हैं तो हमें मेल भेज सकते हैं musicmaildshala@gmail.com पर, लेकिन हमारे पास समय बहुत कम अभी बचा है। हम फटाफट से अपने श्रोताओं की ईमेल को शामिल करते हैं। हमारे श्रोता हैं राम शरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा जी। इन्होंने हमें मेल लिख भेजा है ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से। इतनी दूर दूर से हमारे श्रोता हमारे साथ जुड़ते हैं। इन्होंने हमें नमस्कार भी लिख भेजा है, तो आपको भी हमारा प्यार भरा नमस्कार। साथ ही बंडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा जी भी हमें मेल भेज रहे हैं। और भादुबाड़ी ढाणी से टेकचंद चारण, संतोष देवी, सत्यप्रिय चारण, जय सिंह चारण, बिटिया योगेश्री, रणजीत सिंह सुथार, गुरुदेव सिंह भगणिया और हरनेक सिंह भगणिया जी। और इन्होंने कहा है कि मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ कोई सभी गीत हमें सुनवा दीजिएगा। तो श्रोता बहुत सारे हमारे श्रोता हमें लगातार मेल भेज रहे हैं, लेकिन सभी को शामिल कर पाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल रहता है। हम जल्दी जल्दी से नाम पढ़ते हैं। यंग बरेली कार्यक्रम गांव अमरापुरा जालूखाट तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से ये हमें मेल भेजी है। जगदीश चंद्र प्रजापति, मोनू प्रजापति, राजेंद्र प्रजापति, और इन्होंने सुनना चाहा है अनाड़ी फिल्म का ये प्यारा सा गीत। हम सभी इनकी पसंद पर आइए सुनते हैं ये गीत।

तो श्रोताओ, आज की संगीतांजलि कार्यक्रम का समय अब समाप्ति की ओर है, लेकिन चलते चलते हम एक और श्रोता को शामिल कर लेते हैं। नागचून रोड संजय कॉलोनी खंडवा से ये हमें मेल भेज रहे हैं। अब्दुल गफ्फार डावर, खुश नसीब अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर और भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी जी, इन्होंने हमें मेल किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और श्रोताओ, इसी गीत के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम भी यहीं पर संपन्न होता है। आपको याद दिला दे कि ये कार्यक्रम हर सोमवार और बुधवार को हम प्रसारित करते हैं। आप हमें ईमेल्स भेज सकते हैं, म्यूजिक मेल dshala@

और इसी के साथ अब अपनी रेडियो दोस्त सचिता को ये कार्यक्रम संपन्न करने की दीजिए अनुमति। फिर किसी दिन इसी कार्यक्रम में होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और सुनते रहिए आकाशवाणी धर्मशाला।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतांजलि एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजने को हैं। लीजिए अब सुनते हैं कार्यक्रम गीतों का कारवां।

श्रोता, अभी आपने सुना कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में 1942 लव स्टोरी फिल्म का ये गीत। लीजिए, कार्यक्रम का अगला गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं, याद रखेगी दुनिया फिल्म का।

श्रोताओ, इस समय आप सुन रहे हैं गीतों का कारवां आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए कार्यक्रम का अगला गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं, आग ही आग फिल्म से।

श्रोताओं, गीतों का कारवां एंजॉय कर रहे हैं आप आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आशिक बनाया फिल्म से। इस गीत को गाया है सुनिधि चौहान और अभिजीत सावंत ने, तो आइए एंजॉय करते हैं इस गीत को।

0: साल ने निकला है कोई क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: शोधो अंतराल के बाद कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस समय आप एंजॉय कर रहे हैं गीतों का कारवां आकाशवाणी के धर्मशाला

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे गीतों का कारवां आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। सुबह के 10:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं गीतों का कारवां। गीतों के कारवां में, माफ कीजिएगा, पहाड़ों के सुर। इस समय आप सुन रहे हैं पहाड़ों के सुर कार्यक्रम का पहला हिमाचली गीत। हम आपको सुनवा रहे हैं प्रदीप परदेसी व फौजा सेन की आवाजों में।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं पहाड़ों के सुर आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए अगला हिमाचली गीत आपको सुनवा रहे हैं पवन डोगरा की आवाज़ में।

0: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे पहाड़ी गीत पहाड़ों की सुर आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 11 बजने को है। अब आकाशवाणी के शिमला केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के वित्तीय प्रौद्योगिकी फिनटेक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की सराहना की है। उन्होंने कहा कि फिनटेक की सफलता की कहानी में एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI का निर्विवाद रूप से महत्वपूर्ण योगदान है। श्री मोदी ने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करते हुए ये बात कही।
2: भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा UPI। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो UPI के बिना अधूरी ही होगी।
1: बताया कि केवल अगस्त महीने में UPI के माध्यम से 24 अरब से अधिक लेन देन हुए।

0: श्री मोदी ने कहा कि इसी प्रभाव के कारण फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा था कि यूपीआई केवल तकनीकी नहीं बल्कि सभ्यतागत कहानी है। श्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल भुगतान के लिए अगले रणनीतिक चरण की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए यूपीआई को साझेदार देशों की घरेलू भुगतान प्रणालियों के साथ तत्काल जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीलंका में रहने वाले भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच सेतु बताया है। उन्होंने कहा कि वे दोनों देशों के बीच मित्रता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। श्री सिंह श्रीलंका की 3 दिन की यात्रा पर कल कोलंबो पहुंचे। उन्होंने प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत में कहा कि भारत संकट के समय में हमेशा श्रीलंका के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
1: आज भारत दुनिया के ग्रोथ में 16% से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। पिछले 10-12 सालों में अब हमारी इकोनॉमी की साइज 2 गुनी हो गई है और आज सारी दुनिया इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर जब चैलेंजेस का सामना कर रही है, उस समय भारत की GDP ग्रोथ अप्रोक्सीमेटली 7.8% है।
0: भारत और कुवैत विभिन्न क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी प्रगाढ़ करने पर सहमत हो गए हैं। कुवैत में कल 8वीं भारत कुवैत विदेश कार्यालय परामर्श बैठक में ये सहमति बनी। विदेश मंत्रालय के अपर सचिव असीम महाजन और कुवैत के विदेश मंत्रालय में एशिया मामलों के सहायक विदेश मंत्री नवाक अब्दुल लतीफ सुलेमान अल अहमद ने बैठक की सह अध्यक्षता की। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के काठमांडू में भारतीय फोरेंसिक टीम ने अपने काम में महत्वपूर्ण प्रगति की है। टीम अब तक 1400 से अधिक DNA नमूनों की जांच कर चुकी है और 378 DNA प्रोफाइल तैयार किए गए हैं। इस बीच भारत की संयुक्त तकनीकी टीम ने आज चिलिमे की सुरंग में पानी निकालने और कीचड़ हटाने का काम जारी रखा। सुरंग की ढलान और वहां पहुंचने में कठिनाई के कारण टीम को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए टीम नए और प्रभावी तरीकों का इस्तेमाल कर रही है। अमरीका और ईरान के बीच लगातार हमलों के कारण पश्चिम एशिया में तनाव तेजी से बढ़ गया है। इससे व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका बढ़ गई है। अमरीकी सैन्य बलों ने ईरान के कच्चे तेल के 5 टैंकर नष्ट कर दिए हैं। उधर अमरीका के अनुसार पिछले 2 दिन में उसके एक युद्धपोत पर ईरान ने हमले किए थे। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें भी दागी। महिला और बाल विकास मंत्रालय आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत कर रहा है। इस वर्ष राष्ट्रीय पोषण माह का विषय है हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी। पोषण माह 2026 के दौरान आहार में विविधता और पर्याप्त प्रोटीन, आंगनवाड़ी केंद्रों पर ताजा और गर्म पका हुआ भोजन, समुदाय की भागीदारी और जवाबदेही, पोषण तथा बच्चों के शुरुआती विकास के लिए शिक्षा और प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के 10 वर्ष पूरे होने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अमरीकी ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में स्पेन के कार्लोस अल्कराज और अमरीका के बेन शेल्टन के बीच मुकाबला जारी है। वहीं जेसिका पेगुला ने महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में आज जेसिका ने एम्मा नवारो को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्मी कवालियां।

ممنون ہوں شوتو. ابھی آپ سن رہے ہیں فلمی قوالیاں آکاشوانی کی فلم شالا کی وجہ سے. हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर. सुबह के 11:30 हुए हैं. आज ये सुनते हैं एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग. यारी है ये मान मेरा, यार मेरी जिंदगी, यारी है ये मान.

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सबको विमलेश का नमस्कार और जोहार। आज के उमंग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। सुनते हैं आज का एक सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतनमाला सुरलकर जी ने। लिखते हैं, जीवन में वही आगे बढ़ता है जो अपनी गलतियों से सीखता है। अक्सर ठोकरें रास्ते की रुकावट नहीं बल्कि मंजिल की तैयारी का प्रशिक्षण होती हैं। धन्यवाद आप दोनों का इस सुंदर विचार के लिए।

और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। गांव ठाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी गुर्जर, अवाना, अवनी, प्रियांशी, रियांशी, ओजस, अनाया, गुरदीप और बेबी किरत ने लिखा है। आदरणीय विमलेश जी एवं अजीत जी, सादर नमस्कार। 13 अगस्त 2026 को 1857 के गुमनाम वीर स्वतंत्रता सेनानियों की श्रृंखला के अंतर्गत वीर सावरकर जी के जीवन को जानने का अवसर मिला। आपकी ये प्रेरणादायी प्रस्तुति हमें स्वतंत्रता के मूल्य और हमारे वीरों के त्याग एवं बलिदान से परिचित कराती है। इतिहास के ऐसे प्रेरणादायी प्रसंगों को जन जन तक पहुँचाने के लिए आप दोनों का हार्दिक धन्यवाद और साधुवाद। आपको भी हमारा बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। ग्राम पजोनिया, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया जी ने लिखा है। आदरणीय अजीत जी और विमलेश जी, आज हमने उमंग कार्यक्रम के अंतर्गत ये भी जानिए मैं पिंगली वेंकैया जी के बारे में, अपने राष्ट्रध्वज के बारे में और आजाद हिंद फौज के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस के बारे में बहुत कुछ जाना। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और उमाराज, लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी। आप सबके संदेशों के लिए धन्यवाद। श्रोताओ, जैसा कि आप जानते हैं, इन दिनों हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं बहुत सारे प्रेरक प्रसंगों को। आज हम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी लेकर आए हैं जिसने न कोई बड़ी मशीन इस्तेमाल की, न उसके पास कोई बड़ी टीम थी। उसके पास था एक हथौड़ा, एक छेनी और एक अद्भुत संकल्प। आज के प्रेरक प्रसंग का शीर्षक होगा पहाड़ से भी ऊंचा आदमी। ये कहानी भी NCERT की हिंदी की कक्षा 8 की पूर्व पाठ्य पुस्तक वसंत से संदर्भित है। ये कहानी है दृढ़ संकल्प के धनी दशरथ मांझी जी की। श्रोताओ, ये कहानी शायद आपने भी सुनी होगी, लेकिन हम इसे आज एक अलग परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करेंगे। उनकी कहानी शुरू होती है बिहार के गया जिले के गहलोर गांव से। श्रोता मित्रों, ये वो समय था जब आज के युग के उन्नत यातायात, संचार और चिकित्सा के साधन नहीं थे। उन दिनों में गहलोर गांव के लोगों को अस्पताल और बाजार तक पहुंचने के लिए एक बड़े पहाड़ के चारों ओर घूमकर जाना पड़ता था। रास्ता बहुत लंबा और कठिन था। कहा जा सकता है कि पहाड़ मात्र एक प्राकृतिक बाधा ही नहीं था, बल्कि गांव के लोगों के जीवन में रोज की परेशानी भी था। दशरथ मांझी मजदूरी करते थे। एक दिन उनकी पत्नी फाल्गुनी देवी पहाड़ के दूसरे छोर पर काम कर रहे अपने पति दशरथ मांझी के लिए खाना लेकर जा रही थीं। पहाड़ पार करते समय वे दुर्घटनाग्रस्त हो गईं। चोट गंभीर थी। उन्हें समय पर चिकित्सा सहायता नहीं मिल सकी और उनकी मृत्यु हो गई। सचमुच बहुत दुखद घटना थी, लेकिन उस दुख ने दशरथ मांझी के भीतर एक ऐसा संकल्प पैदा किया जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। उन्होंने फैसला किया, मैं इस पहाड़ को काटकर रास्ता बनाऊंगा। और ये फैसला उन्होंने अकेले ही किया। उनके पास था एक साधारण हथौड़ा और छेनी। दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने पहाड़ पर प्रहार करना शुरू किया। एक दिन, दो दिन, एक महीना, एक साल, समय बीतता गया। हो नहीं सकता मित्रों कि गांव वालों ने उनका मजाक नहीं उड़ाया होगा, लेकिन उन्होंने लोगों की बातों की चिंता नहीं की। वे रोज काम करते रहे। दशरथ मांझी जानते थे कि उन्हें एक ही दिन में पहाड़ नहीं काटना है, उन्हें बस हर दिन थोड़ा सा काम करना है। और श्रोता मित्रों, यही बात बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम कई बार बड़े लक्ष्य को देखकर डर जाते हैं। हम सोचते हैं इतना बड़ा काम कैसे होगा, लेकिन दशरथ मांझी ने सुनिश्चित कर लिया था कि वे अपने काम में निरंतरता बनाए रखेंगे। उन्होंने हथौड़ा उठाया और पहाड़ पर एक चोट की, फिर दूसरी, फिर तीसरी और फिर हजारों चोटें, लाखों चोटें, और धीरे धीरे वो पहाड़ टूटने लगा। श्रोताओं, आपको बता दें कि लगभग 22 वर्षों तक वे लगातार काम करते रहे। जी हाँ श्रोताओं, पूरे 22 साल। और उन्होंने अंततः पहाड़ के बीच से लगभग 110 मीटर लंबा और लगभग 9 मीटर चौड़ा रास्ता बना दिया। और जिस रास्ते के लिए लोगों को बहुत दूर घूमकर जाना पड़ता था, वो दूरी काफी कम हो गई थी। मुझे लगता है मित्रों कि आज के उमंग कार्यक्रम का यही संदेश है, विशेषकर विद्यार्थियों के लिए। हम सबके जीवन में कोई न कोई पहाड़ होता है, कोई न कोई कठिनाई अवश्य होती है, सीखने में, समझने में। और कई बार हम उस पहाड़ को देखकर सोचते हैं
ये मेरे बस की बात नहीं, लेकिन दशरथ मांझी की कहानी बताती है, एक दिन में पहाड़ नहीं टूटता, लेकिन रोज की एक चोट उसे धीरे धीरे बदल सकती है। यानी सफलता का रहस्य केवल शक्ति ही नहीं, दृढ़ संकल्प के साथ निरंतरता भी है। श्रोताओं, कई बार हमारी छोटी छोटी कोशिशें हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन यदि निरंतरता बनी रहे तो हम वर्षों बाद पीछे मुड़कर देखते हैं तो पता चलता है कि हमने बहुत लंबी यात्रा तय कर ली है। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का प्रेरक प्रसंग। आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर भेजें। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है, दृढ़ संकल्प के धनी दशरथ मांझी जी को पहाड़ खोदकर रास्ता बनाने में कितना समय लगा? प्रश्न एक बार फिर से सुन लेते हैं। दृढ़ संकल्प के धनी दशरथ मांझी जी को पहाड़ खोदकर रास्ता बनाने में कितना समय लगा? आप 8800440559 पर अपने उत्तर हमें भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। और हाँ, ताज़ा जानकारी के लिए आप इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी CIT NCERT को लगातार फॉलो करते रहें। NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनने या हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों को सुनने के लिए आप NCERT ऑफिशियल यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। पहला कार्यक्रम है कम बैक सून। ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता पर आधारित है, जिसमें गीत के द्वारा यातायात के कुछ साधनों के बारे में जानकारी दी गई है।

0: जी हाँ, जन जन होगा अब साक्षर उल्लास के साथ। आइए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के इस अभियान में बटाएं हाथ उल्लास के साथ। उल्लास भारत सरकार की एक अनूठी पहल।
1: उस रात ऑफिस से निकलने में तुबा हो गई थी, आंखें भी भारी हो रही थी, पर सोचा 15 किलोमीटर ही तो है, निकल जाता हूँ। हाईवे पर एक ट्रक के पीछे चला गया। ट्रक के पीछे एक आयरन रॉड लगी थी, टेल लाइट दिखाई नहीं दे रही थी। मुझे लगा कि वो सीधा जा रहा है, पर जैसे ही उसने ब्रेक मारे,
2: मुझे समझने में 1 सेकंड ज्यादा लग गया। नींद में गाड़ी चलाना और पीछे की रोशनी ना दिखना, दोनों ही गंभीर हादसे को बुलावा देना है।
3: थकान या नींद की अवस्था में वाहन चलाने से बचें। यात्रा के दौरान यदि थकान या नींद महसूस हो तो आगे बढ़ने के बजाय थोड़ी देर रुककर आराम करना सुरक्षित होता है।
4: और अब सुनते हैं कार्यक्रम रेलगाड़ी। इस कार्यक्रम में बच्चों को रेलगाड़ी, रेलवे स्टेशन और इससे जुड़ी कई बातों को बड़े ही मनोरंजक ढंग से बताया गया है। गीतों और ध्वनि प्रभावों का प्रयोग करके कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी बनाया गया है।
5: बच्चों, रेलगाड़ी तो तुमने देखी होगी, है ना? पहचान गए ना? रेलगाड़ी में होता है एक बड़ा सा इंजन और उसमें जुड़े होते हैं बहुत सारे डब्बे, तभी तो बहुत सारे लोग रेलगाड़ी में बैठकर आते और जाते हैं। और हाँ बच्चों, कितना मजा आता है जब तुम रेलगाड़ी का खेल खेलते हो, है ना? कैसे? तो आओ चलते हैं राजू और संजू के घर, जहां हो रहा है रेलगाड़ी का खेल।
6: रेल चली भाई रेल चली, छुक छुक करती रेल चली। रेल चली भाई रेल चली, छुक छुक करती रेल चली।
7: अरे संजू वो देखो, राजू तो पीछे छूट गया।
8: अरे हाँ, गाड़ी रुको गाड़ी रुको।
7: आ जाओ संजू, अब मुझे पकड़ लो, छूटना मत।
8: हाँ अब बन गई रेल।
6: रेल चली भाई रेल चली, छुक छुक करती रेल चली।
8: दादाजी आप भी हमारे संग खेलिए ना।
9: अच्छा भाई, पर मैं तो तुम सबसे बड़ा हूँ और भारी भी, तो ऐसा करते हैं मैं इंजन बन जाता हूँ।
8: हाँ, हाँ दादाजी ये ठीक रहेगा।
9: चलो
6: रेल चली भाई रेल चली,
9: रेल चली भाई रेल चली, एक के पीछे एक आओ रेल बनाओ रेल बनाओ। इंजन आगे डिब्बे पीछे, लोहे की पटरी पर खींचे, गांव गांव और शहर शहर में धूल उड़ाती रेल चली भाई रेल चली, चुक चुक करती रेल चली, चुक चुक करती रेल चली। अरे अरे भाई मैं तो थक गया, अब रेल गाड़ी रोकनी पड़ेगी।
7: हाँ दादाजी हम भी थक गए।
9: अच्छा तो फिर आओ यहाँ बैठते हैं, हैं?
7: अच्छा
9: अच्छा अब ये बताओ, तुम में से किसने सचमुच की रेलगाड़ी देखी है?
8: दादाजी मैंने देखी है।
9: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है।

0: जब माँ के साथ नाना जी को लाने स्टेशन गया था तभी देखी है बस।
1: अच्छा तो चलो, मैं आज तुम लोगों को सचमुच की रेलगाड़ी दिखाऊंगा।
0: अरे वाह,
1: यही पास में तो है रेलवे स्टेशन।
2: हाँ, आज तो बड़ा मजा आ जाएगा, हम लोग रेलगाड़ी देखेंगे। चलो चलो जल्दी चले। हाँ
1: अरे ओ रामू भैया, कहाँ जा रहे हो?
3: अरे दादाजी, स्टेशन जा रहा हूँ सवारी लेने को।
1: अरे भैया, तब तो हमारे बच्चों को भी साथ लेते चलो, रेलगाड़ी देख आएंगे।
3: अरे हाँ हाँ दादाजी, आओ आओ बच्चों, आ जाओ बैलगाड़ी में चढ़ो।
1: बैठो बैठो, जल्दी करो, जल्दी करो, बैठो बैठो बैठो। चलो चलो चलो, उतरो बच्चों, जल्दी करो, गाड़ी आने ही वाली है। उतरो उतरो।
0: रानी जल्दी चलो, नहीं तो गाड़ी चली जाएगी।
1: हाँ हाँ, उतरो बेटी।
4: बच्चों, रेलवे स्टेशन पहुंचकर दादाजी और बच्चों ने सबसे पहले खरीदे प्लेटफॉर्म टिकट और फिर झटपट पहुंचे स्टेशन के अंदर।
2: दादाजी, यहाँ तो बड़े सारे लोग हैं।
1: हाँ बच्चों, कुछ लोग तो रेलगाड़ी में चढ़कर आने वाले हैं और अच्छा, कुछ जाने वाले हैं।
2: अच्छा तो ये बात है।
1: अच्छा बच्चों, वो देखो, वो है लोहे की पटरी, इसी पर रेलगाड़ी छुक छुक करके चलती है। बच्चों जल्दी जल्दी पीछे आ जाओ।
5: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, बिलासपुर से रामपुर को जाने वाली सवारी गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर कुछ ही समय में आ रही है।
2: हो हो हो, रेलगाड़ी आ गई, रेलगाड़ी आ गई।
0: अरे वाह दादाजी, ये तो बहुत बड़ी गाड़ी है।
1: हाँ बच्चों, देखा, ये है सचमुच की रेलगाड़ी। वो सबसे आगे इंजन है और उसके पीछे डिब्बे।
2: दादाजी वो देखिए, एक आदमी हरी झंडी दिखा रहा है। वो हरी झंडी क्यों दिखा रहा है?
1: इसलिए क्योंकि हरी झंडी दिखाने से तो गाड़ी चलती है और लाल झंडी दिखाने से रुक जाती है।
2: अच्छा, अच्छा। अरे हाँ, रेलगाड़ी तो चल रही। आइए दादाजी, अब तो गाड़ी चली गई, सब लोग भी चले गए।
1: हाँ हाँ बच्चों, चलो चलो वापस घर चले।
2: हाँ हाँ दादाजी, चलिए।
5: छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक रेलगाड़ी आती है, छुक छुक छुक छुक छुक।

तब वे पीछे लोहे की पटरी पर खींचे। इंजन आगे डब्बे पीछे लोहे की पटरी पर खींचे, गांव गांव और शहर शहर तक वो

लाल दिखे जब उसको वो झट से रुक जाती है। झंडी लाल दिखे जब उसको वो झट से रुक जाती है। हरी हरी जब झंडी देखे वो झट दौड़ लगाती है। छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक रेलगाड़ी आती है। छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक रेलगाड़ी आती है। कु कु कु कु कु कु कु कु कु

अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अब आपकी मित्र विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

श्रोताओं, कार्यक्रम से संबंधित एक सूचना आपको देते हैं। थोड़ी ही देर में 12 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए, और 12:30 पर बहने सुनेंगे अपना कार्यक्रम सुनो सखी। एक आवश्यक सूचना सुनिए। लोक संपर्क अधिकारी जिला लोक संपर्क कार्यालय धर्मशाला के अनुसार सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि एलटी लाइन में केवल डालने के अंतर्गत दिनांक 10 सितंबर 2026 यानी कल सुबह 9:30 से शाम कार्य समाप्ति तक 63 केवी लोअर मोहली, 250 केवी लोअर मोहली 1, 400 केवी एजुकेशन बोर्ड कॉलोनी आदि ट्रांसफार्मरों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों, मस्जिद के आसपास तथा मोहली और सरीन होटल के आसपास के क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। मौसम खराब होने पर या अन्य आकस्मिक आपदा में ये कार्य स्थगित या आंशिक रूप से किया जा सकता है। ये कार्य जनहित के लिए करना बहुत आवश्यक है। सर्वसाधारण जनता से सहयोग की अपील की जाती है। कृपया सभी लोग बिजली विभाग को सहयोग करें। सूचना समाप्त हुई।

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12 बजे हैं। अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक भाइयों, जय हिंद। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो दोस्त सचिता। सबसे पहले फिल्म जीत से ये खूबसूरत सा गीत आपको सुनवा रहे हैं उदित नारायण, अलका याग्निक और साथियों की आवाजें हैं।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कुमार सानू और अलका याग्निक का गाया हुआ ये गीत अब सैनिक भाइयों आपको सुनवा रहे हैं। इस गीत को हमने लिया है फिल्म

0: फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से।
1: मैं हूं HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूं और आपका साथी बन जाता हूं। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

सैनिक भैया अभी दीवाने फिल्म से गीत आपने सुना अलका याग्निक, उदित नारायण और कुमार सानू की आवाजें थी। उदित नारायण का गाया हुआ गीत अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म बेवफा से।

कार्यक्रम सुनो सखी के इस सुहाने सफर में सखी आज मैं हूँ आपके साथ, आपकी अपनी सखी सुमन। सभी सखियों को हमारी ओर से प्यार भरी नमस्ते। साथ ही साथ सभी सखियों का कार्यक्रम में स्वागत है। और इन्हीं बातों और जानकारियों के साथ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जानकारियां तो खैर अभी शुरू नहीं की है, अभी तो अपना परिचय ही दिया है। वैसे हमें पता है कि हमारी सखियां हमें आवाज़ के माध्यम से पहचान लेती हैं, लेकिन आए दिन हमारे साथ नई नई सखियां जुड़ती रहती हैं। सखियों तो उनकी जानकारी के लिए थोड़ा सा परिचय देना तो बनता ही है। तो सखियों परिचय तो खैर हमने दे दिया है और बातों का सिलसिला तो हमारा यूं ही चलता रहेगा, लेकिन बात करते हैं आज के दिन की। आज के दिन को सखियों हम मना रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जयंती के रूप में। भारतेंदु हरिश्चंद्र जयंती हर साल आज के दिन यानी 9 सितंबर को मनाई जाती है, क्योंकि उनका जन्म दिवस 9 सितंबर 1950 को हुआ था। उन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह और हिंदी नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। उनका जन्म वाराणसी काशी उत्तर प्रदेश के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था और उनके पिता का नाम गोपाल चंद्र गिरिधर दास उपनाम से कविता भी वो लिखते थे और माता का नाम पार्वती देवी था। उन्होंने नाटक, निबंध, कविता, व्यंग्य और पत्रकारिता सहित साहित्य के लगभग सभी विधाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है और उनके नाम पर ही हिंदी साहित्य के एक कालखंड का नाम भारतेंदु युग रखा गया था। साथ ही साथ सखियो भारतेंदु जी की ये विशेषता रही है कि जहां उन्होंने ईश्वर भक्ति आदि प्राचीन विषय पर कविता लिखी, वहां उन्होंने समाज सुधार, राष्ट्र प्रेम आदि नवीन विषयों को भी अपनाया है। सखी कार्यक्रम में हम और भी जानकारियां लेकर आए हैं, लेकिन पहले कार्यक्रम में रुकते हैं और आप सभी का करवाते हैं मनोरंजन कार्यक्रम के पहले प्यारे से गीत के साथ। तो आप सुनती रहिए आकाशवाणी धर्मशाला में सुनो सखी कार्यक्रम को।

0: मैं हूँ एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ, एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस, मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
0: मैं हूँ एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ, एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस, मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: सखी संतराल के बाद कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो हम भारतेंदु जी की बात कर रहे थे, जहां उन्होंने ईश्वर भक्ति आदि प्राचीन विषय पर कविता लिखी, वहीं उन्होंने समाज सुधार, राष्ट्र प्रेम आदि नवीन विषयों को भी अपनाया। उन्होंने अपनी रचनाओं में देशभक्ति और सामाजिक सुधार जैसी समस्याओं का बखूबी से जिक्र किया। उन्होंने नाटक, पत्रिकाओं और कविता के माध्यम से हिंदी साहित्य को एक नई पहचान दी। यही वजह है कि हिंदी साहित्य का एक पूरा कालखंड भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। ये तो थी बातचीत सखियों भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी बात हम अपने घर परिवार की करते हैं, क्योंकि घर परिवार एक ऐसी जगह है जहां पर हम रहती हैं, अपना ज़्यादातर समय बिताती है। सखियों, घर परिवार में सबसे ज़्यादा जो है हमें ड्राइंग रूम की ज़रूरत पड़ती है। जब भी कोई मेहमान आता है तो ड्राइंग रूम में हम बिठाना पसंद करते हैं। ड्राइंग रूम को नया और आकर्षण लुक देना भी बेहद ज़रूरी होता है, और हम सभी चाहते हैं कि हमारा ड्राइंग रूम, हमारा बैठक, हमारा बैठने का कमरा सुंदर और बढ़िया सा लगे। इसके लिए हम सबसे पहले कलर का यानी रंगों का चुनाव करती हैं। बढ़िया रंग हमारे ड्राइंग रूम की शोभा को बढ़ाते हैं।

देता है। फिर ऊपर से खूबसूरत से पर्दे भी हम लगाना चाहते हैं। इसके बाद फर्नीचर की बारी आती है। कमरे को खुला और रोशनी से भरा रखने के लिए हल्के रंगों का चुनाव हम करती हैं या फिर कर भी सकती हैं, जैसे सफ़ेद, क्रीमी, हल्का पीला, हल्का नीला, इस तरह के कलर हम करवाते हैं। सखियों, हम सभी चाहते हैं कि रात के समय हमारा ड्राइंग रूम और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखे। इसके लिए हम छत को लाइटों से सजाते हैं। एक छत पर निर्भर नहीं करते हैं, एक लाइट को पर निर्भर नहीं रहते हैं, क्योंकि अमूमन ये देखा गया है कि हर घर में एक या दो लाइट होती हैं, लेकिन आजकल का ट्रेंड ऐसा है कि अपनी छत को ही लाइट से सजाया जाता है ताकि रोशनी जो है कमरे में बढ़ जाए और सुंदर कमरा दिखे। कमरे के कोने में खूबसूरत सा फ्लोर लैंप या टेबल लैंप हम सभी रख सकती हैं। फर्नीचर की बात करें तो उसे दीवारों से हटाकर लगाना चाहिए। और फर्नीचर हर घर में हम सुंदर से सुंदर लाना चाहते हैं। हर कोई देखा देखी में चाहता है कि हमारे घर पर सुंदर से बैठक हो, सुंदर सा फर्नीचर हो, सुंदर से सोफे हो, और अपनी अपनी जेब के हिसाब से हम फर्नीचर का चुनाव करते हैं और उसे अपने घर पर लाते हैं। और बैठने की व्यवस्था इस तरह से हो कि आसानी से हम एक दूसरे से बातचीत कर सके। सो फिर ड्राइंग रूम एक ऐसा कोना होता है जहाँ मेहमान सबसे ज़्यादा आते हैं और सबसे पहला कदम रखते हैं। बैठने की जगह साफ सुथरी और व्यवस्थित हो। सेंटर टेबल होना भी बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि जब गेस्ट आते हैं तो हम चाय पान का इंतज़ाम करते हैं और हर चीज़ उन्हें रखनी होती है, तो सेंटर टेबल की ज़रूरत पड़ती है। सेंटर टेबल पर एक ट्रे होनी चाहिए, छोटा सा फूलदान होना चाहिए, एक या दो सजावटी वस्तुएं हम रख सकती हैं। ज़्यादा सामान ना रखें, क्योंकि ज़्यादा सामान रखने से टेबल भी भरा भरा सा लगता है और हमारा कमरा भी भरा भरा सा दिखता है। कमरे में यानी ड्राइंग रूम में एक बड़ा पौधा इनडोर प्लांट लगाएं, जिससे कमरा फ्रेश दिखे। ड्राइंग रूम में एक आकर्षक छत हमारे कमरे को स्टाइलिस्ट लुक देती है, ताकि सबका ध्यान जो है छत की तरफ जाए। और अगर कमरे की बात करें तो हर तरह से हम सजाना चाहते हैं। अपनी किताबों को हम कैसे भूल सकते हैं सखियो? किताबों का एक शोकेस हमारे ड्राइंग रूम की सजावट को निखारने का एक शानदार और अनोखा तरीका है। स्टाइलिस्ट बुक शेल्फ हमारी किताबों से भरा हो, जो कमरे में व्यक्तित्व और आकर्षण दोनों का संचार करें। कुछ छोटा सा रीडिंग कॉर्नर भी हम बना सकते हैं। ये तरीका हमारे कमरे को और भी ज़्यादा सुंदर और आकर्षण बना देता है। हर किसी का मन करता है कि बैठक में बैठा जाए। गेस्ट के साथ तो हम बात कर सकते हैं, लेकिन हर समय तो गेस्ट नहीं होते हैं ना, तो सखियो उस समय हम अकेले अपने कोने में बैठकर, अपने कॉर्नर में बैठकर अपनी किताबों में अपने आप को व्यस्त रख सकते हैं, क्योंकि किताबों में जितना हम अपने आप को व्यस्त रखेंगे उनसे उतना ही ज्ञान हमारा बढ़ता है। तो ज्ञान तो खैर हमने बढ़ाना ही है, ज्ञान के साथ साथ मनोरंजन भी बेहद ज़रूरी है। तो आइए थोड़ा सा कार्यक्रम में आप सभी का करवाते हैं मनोरंजन।

सखे, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो हम कार्यक्रम में बात अपने ड्राइंग रूम को सजाने के बारे में कर रहे थे कि हम सभी चाहती हैं कि हमारी बैठक सुंदर दिखे, ताकि घर पर जो भी आए वो ये कहे कि आपने बहुत अच्छे तरीके से सजाई है। और तकरीबन हम सगियों को यही रहता है कि हमारा घर जो है, हमारी बैठक सुंदर दिखे।

कि हर हर कोई तारीफ करे। और उसे सजाने के लिए हम खूब सारी मेहनत करती हैं और हर तरह का सामान घर की सजावट के लिए लेकर आती हैं, ताकि जो है बैठक बढ़िया सी लगे। उसके लिए सोफ़े तो लाती हैं, सोफ़े के कवर, कुशन कवर, बेडशीट बढ़िया सी, क्योंकि बेड भी वहाँ पर लगा होता है एक सिंगल, उसे भी अच्छे तरह से रखती हैं। और झाड़ू पोछा करने के बाद अच्छे से डस्टिंग भी करती हैं और हर तरह से अपने बैठक को खूबसूरत दिखाने की हम सखियां कोशिश करती हैं। तो सखियों, बैठक सुंदर होनी चाहिए, उसमें दलीचा भी हम बिछाते हैं, और दलीचा भी खूबसूरत तभी रहता है जब नियमित रूप से उसकी सफाई हो। सफाई हर दिन तो अच्छे से नहीं हो सकती है, क्योंकि जिन सखियों के पास वैक्यूम क्लीनर है उससे तो वो कर सकती हैं, लेकिन जिन सखियों के पास ये नहीं है, क्योंकि हर कोई महंगी चीज़ों को नहीं ले सकता है, कुछ मिडिल फैमिली से भी होते हैं तो हर किसी के बस की बात नहीं होती है महंगा सामान लेना, तो वो सखियाँ क्या कर सकती हैं कि 2-4 दिन के बाद मैं जो अपना दलीचा है उसे उठाकर बाहर अच्छी तरह से झाड़ू की सहायता से या कपड़े धोने वाले ब्रश की सहायता से बैठकर हम उसे साफ़ कर सकती हैं, ताकि उससे डस्ट भी निकल जाए, थोड़ी धूप भी लगवा लें। धूप लगवाने के बाद जो हमारी कादीन वाली जगह होती है उसमें भी झाड़ू पोछा लगा के अच्छी तरह से पोछा सुखाने के बाद हम कालीन को वहाँ पर लगा सकती है, और उसके ऊपर सेंटर टेबल रख दिया जाए तो खूबसूरत लगता है। कई बार क्या होता है सखियो, हम किसी के भी घर जाते हैं तो चप्पल या जूते पहनकर बैठक में चले जाते हैं, और कई बार बाहर की गंदगी जो है अंदर मिट्टी, या कई बार क्या होता है रास्ते में गोबर भी पड़ा होता है वो भी लग जाता है, तो किसी का महंगा सामान या बैठक खराब हो जाए। उससे अच्छा है कि जब भी किसी के घर जाए अपनी जूतल जूते और चप्पलों को बाहर उतार कर ही जाए। तो सखी, इसके साथ साथ हम थोड़ा सा कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। खैर, बैठक हम सभी सखियों की सुंदर होगी, क्योंकि सखियों को बहुत ही शौक होता है अपने घर को खूबसूरत बनाने का, एक आशियाना ही होता है हम जिसमें अच्छे से सजा कर रखती हैं, साफ़ सुथरा रखती हैं, क्योंकि दिन भर की थकान के बाद वहाँ हम आराम करते हैं, रहते हैं, एक अपना घर होता है, जहाँ मर्जी हम घूम फिर के आ जाएं, एक सुकून जो है अपने घर पर आकर ही मिलता है। कितनी दूर जाकर आ जाए अपने घर से, कुछ मिल थोड़ा दूरी पर हमारा घर रह जाता है तो उस समय एक आस हो जाती है कि अरे हम तो अपने घर के करीब पहुंच ही गए हैं, और जब घर के आस पास हम पहुंच जाते हैं तो राहत सी मिलती है, ऐसे मन खुश हो जाता है कि अरे हम आ गए अपने घर। और आते हैं तो बहुत सारा आराम मिलता है, बहुत सारी खुशी मिलती है अपने घर आकर, और अपने घर की जो बातचीत है वो अलग ही होती है। तो अपनी बातचीत के साथ, अपने ड्राइंग रूम की साफ़ सफाई और खूबसूरती के साथ फिर से आगे कार्यक्रम में बढ़ते हैं और बात करते हैं क्रीमी पास्ता बनाने की। हर कोई हर दिन खाना चावल दाल रोटी सब्जी खाता है, लेकिन कभी कभी मन करता है कुछ चटपटा खा लिया जाए, तो जल्दी से क्रीमी पास्ता बनाते हैं। सबसे पहले तो क्या करना है, बाज़ार से पास्ता लाना है सखियों। कई बार क्या होता है बनाने लग पड़ते हैं हम और किचन में देखते हैं पास्ता नहीं होता है, तो पहले ला कर रखें। जैसे हम जो महीने का सामान इकट्ठा लेते हैं उसमें भी हम ला कर रख सकती हैं, नहीं लेकर आई हैं तो ले आए पहले। और पास्ते को सबसे पहले क्या करना है, उबालना है। अब उबाल कर थोड़ा सा देखना है सॉफ्ट हो गया है तो उसे ड्रेन कर देना है, यानी नितार देना है। अब थोड़ी सी सब्जियां ले ले, जैसे गाजर ले, गाजर को चॉप कर ले, काट ले, शिमला मिर्च को भी अच्छे से काट ले छोटे टुकड़ों में, और कॉर्न को भिगो कर रख ले कुछ समय के बाद, और फिर उसे नरम होने पर नितार दे। प्याज ले, प्याज को भी काट ले, थोड़े से ऑलिव ले, सजावट के लिए बढ़िया लगते हैं और हमारी सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं। अब लहसुन को छील ले, थोड़ा सा उसे कूट ले, दरदरा कर ले, काली मिर्च ले, ऑरिगैनो ले, इटालियन हर्ब्स भी हमें लेने हैं, क्योंकि ये चीज़ों के बिना पास्ता थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, यह स्वादिष्ट नहीं लगता है। थोड़ा सा दूध लेना है, मैदा लेना है, बटर ले, 3-3 टेबलस्पून दूध, मैदा और बटर के लेने हैं, यानी बराबर लेने। अब पैन में तेल ले, इसमें लहसुन और प्याज डाले, थोड़ा सा सोटे होने पर, यानी इन्हें ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा कि पक जाए। अब गाजर ले, गाजर को उसके बीच में डाल दे, प्याज गाजर सॉफ्ट हो जाए। अब कॉर्न और ऑलिव भी इसमें डाल दे। अब क्रीम बनाने के लिए एक पैन में बटर डाले, थोड़ा सा उसमें सूखा मैदा डालें, थोड़ा थोड़ा सा पानी करते हुए बिस्क के साथ उसे हिलाते रहें ताकि उसकी गुठलियाँ ना बने। अब जायफल सभी घरों पर होता है, अब जायफल को भी ले, थोड़ा सा कद्दू कस करके उसमें डाल दें, थोड़ा सा उसका स्वाद बढ़ जाता है। अब
क्या करना है सखियो, अब हमने अच्छे से

0: से मिक्स करने के बाद जो हमने अपना पास्ता बनाया है पास्ते को मिक्स कर देना है, और जो आप मैदे को मिक्स कर रहे हैं उसे दूध के साथ मिक्स करना है, कहीं पानी मत डाल देना क्योंकि दूध की हमने पहले बात की है, वो आपका क्रीमी सी मिक्सचर बन जाएगा। जब क्रीमी सा बन जाए तो थोड़ा पका लें, पकाने के बाद हमने अपना पास्ता उसमें डाल देना है, थोड़े से हर्ब्स जो हमने रखे हैं ऑर्गेनो रखा है उसे भी मिक्स कर देना है, और फिर क्या करना है, फिर पास्ता डालकर उसे थोड़ा सा पकाना है हल्की आंच पर, और लास्ट में क्या करना है, लास्ट में फ्रेश क्रीम डालकर सर्व करना है। तो देखिए सखियो, दिखने में भी बहुत खूबसूरत हो गया है, खाने में भी बढ़िया लग रहा है। तो अब चलते चलते हम आपको सुनवा देते हैं एक प्यारा सा गीत। गीत से पहले लेते हैं एक अंतराल।
1: मेहरबान कदरदान, बच्चे बूढ़े और जवान, सौ बात की एक बात है सही, सिर्फ पैसे भेजने के लिए QR स्कैन करते हैं या पिन डालते हैं, पैसे मिलने के लिए नहीं।
2: RBI कहता है QR कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनो सखी, FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर का 1 बजने को है। अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर से 1 महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। ये अभियान प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली में आज संवाददाता सम्मेलन में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर को जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करेंगे। प्रधानमंत्री ने 7 अक्टूबर 2001 को ही गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इन वर्षों में जनसेवा से राष्ट्र सेवा के मंत्र के साथ सेवा की यात्रा को लगातार आगे बढ़ाया है।
2: जो आम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास रहा है, एक बहुत बड़ा योगदान नेतृत्वकर्ता के रूप में उन्होंने दिया है। उनका सफर एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में जो प्रारंभ हुआ और आज देश के प्रधान सेवक के रूप में जो उन्होंने काम को आगे बढ़ाया, ये केवल उनके स्पष्ट विजन, उनके दृढ़ संकल्प, सामाजिक जीवन में लगातार गुणात्मक कैसे परिवर्तन आए, कैसे उनके जीवन में बदलाव आए, इसका प्रयास उन्होंने किया।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायका से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और श्रीलंका के बीच सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने दोनों देशों के विकास और लोगों की भलाई के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री सिंह ने कहा कि दोनों देश क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए भी मिलकर काम करते रहेंगे। भारत ने सऊदी अरब में हाउसी विद्रोहियों के हमलों की निंदा की है। भारत ने आम नागरिकों और आर्थिक ठिकानों को निशाना बनाए जाने पर चिंता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे हमलों से बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य में आवाजाही प्रभावित होती है और इन्हें बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के काठमांडू में भारतीय फोरेंसिक टीम ने अपने काम में महत्वपूर्ण प्रगति की है। टीम अब तक 1400 से अधिक डीएनए नमूनों की जांच कर चुकी है और 378 डीएनए प्रोफाइल तैयार किए हैं। इस बीच भारत के संयुक्त तकनीकी टीम ने आज चिले में स्थित सुरंग में जल निकासी और कीचड़ हटाने का काम जारी रखा। इस्माइली समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम आज से 15 सितंबर तक भारत की यात्रा पर रहेंगे।

0: वे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के निमंत्रण पर भारत आए हैं। प्रिंस रहीम का कल उपराष्ट्रपति से मिलने का कार्यक्रम है। वे नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे। न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी ने आज बंबई उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत की। इस वर्ष का विषय है हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी। जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए 27वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह कल नई दिल्ली के संसद भवन परिसर में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन विक्रम बत्रा की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। अमरीकी ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में स्पेन के कार्लोस अल्कराज और अमरीका के बेन शेल्टन के बीच मुकाबला जारी है। वहीं अमरीका की जेसिका पेगुला ने महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। मौसम विभाग ने कल बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। अगले दो दिनों तक उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आंधी तथा बिजली कड़कने की स्थिति बनी रहेगी। आज तटीय आंध्र प्रदेश, केरलम और माही में गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. The BJP will launch a month-long Seva Sankalp Abhiyan from the 17th of this month on the occasion of the birthday of Prime Minister Narendra Modi to mark the completion of his 25 years in public life. Addressing a press conference in New Delhi today, BJP President Nitin Naveen said the Prime Minister will complete 25 years of his public service on the 7th of October, as on this day. In 2001, Mr. Modi began his tenure as the Chief Minister of Gujarat. The BJP President emphasized that under the leadership of Prime Minister Modi, India's progress has not been limited to development, but India's cultural identity and heritage have also been strengthened.
2: उन्होंने केवल इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट की बात नहीं।
3: He did not just focused on infrastructure and development. He also sought to change the way the people of this country think. When we look at his entire tenure, we can see that his decisions were not merely transformative in terms of governance and development, but also brought about a significant change in the lives of ordinary people. His 25 years of service and dedication have been marked by continuous efforts, a life rooted in values and committed governance. His contribution has given a new dimension to the history of democracy in the world.
2: दुनिया भर के लोकतंत्र के इतिहास को एक अलग परिभाषा के साथ सामने लाया है।
1: The Seva Sankalp Abhiyan will begin with organizing blood donation camp. Mr. Naveen informed that Seva Jyoti Kalash Yatra will also be taken out on the 7th of October, connecting villages and urban areas to express gratitude to the Prime Minister. He said that Seva Mera Yogdan program will be held from the 17th of this month to the 17th of October, with public participation under which various activities will be undertaken. Defence Minister Rajnath Singh held a meeting with President of Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake in Colombo today. During the meeting, both the leaders reaffirmed that as civilizational twins, close neighbours and maritime partners, India and Sri Lanka will continue to work together for the development of both the countries and also for the welfare of their people. In a social media post, Mr. Singh said that they also reaffirmed the work jointly to ensure the safety, security, peace and prosperity of the region. The External Affairs Ministry today stated that the Indian forensic team in Kathmandu has made significant progress in its work, processing more than 1,400 DNA samples so far. It said that the team has generated 378 DNA profiles till now. Meanwhile, the joint technical team from India sustained its

बहुत सारे श्रोताओं ने सही जवाब दिया फिल्म का नाम उस्तादों के उस्ताद, और कुछ श्रोताओं ने फिल्म का नाम गलत भी पूछा है, जबकि ये गाना तो अक्सर विविध भारती से आप सुनते ही रहते हैं और वैसे भी सुनते होंगे, आपके संग्रह में ये गाना ज़रूर होगा। और एक श्रोता की टिप्पणी आई है, लिखा है कि चाहतों से भरी ज़िंदगी में सपने आरामगाह की तरह होते हैं, जब भी हकीकत के गर्म थपेड़ों से ऊब होने लगती है, ज़िंदगी सपने में अपना सुकून खोज ही लेती है। ये अलग बात

है कि सपने कभी अपने नहीं होते। वैसे भी जीवन किसी और का लिखा हुआ उत्तर पत्र नहीं है, एक खाली पन्ना है जिस पर हर निर्णय बड़ा महत्वपूर्ण है। यहाँ हर साहस एक अध्याय और हर एक भूल सबक है, इसलिए जब कभी रास्ता धुंधला लगे तो किसी कहने सुनने का इंतजार मत करो, एक छोटा सा कदम उठाना, क्योंकि रास्ते चलने वालों के नीचे बनते हैं, खड़े रहने वालों के सामने नहीं। क्या बात लिखी है भाई, आप अपने अनुभव साझा कीजिए कि कौन सा वो लम्हा था जब आपके जीवन में रुकावट आई, पढ़ाई के दिनों में, नौकरी के दिनों में और अपनी कामयाबी हासिल करने के दिनों में। हर किसी की ज़िंदगी में, हर किसी के जीवन में उतार चढ़ाव होते हैं और कभी न कभी ऐसा लम्हा आता है जब हम टूटने लगते हैं, हारने लगते हैं। कोई एक ऐसी शक्ति होती है, कोई ऐसी किसी की बात सामने आती है, कोई ऐसा गाना सुन लेते हैं जब हमारे भीतर हौसले का संचार होता है। तो उस लम्हे के बारे में बताइए कि कौन सा वो क्षण था जब आप अपने खुद ही से हारने लगे और लगा कि बस अब तो जीवन खत्म होने वाला है, लेकिन उसके बाद भी आप आगे बढ़ते रहे। अपने अनुभव साझा कीजिए, साथ में पहेलियों के जवाब भी देते चलिए। अब आपको सुनवा रहे हैं मौसम फिल्म का गाना, आपको पूछना है हीरो हीरोइन का नाम। बहुत आसान सवाल है वैसे। इबारत के कौन से शब्द इसमें शामिल हो रहे हैं ये भी आप बता सकते हैं। जो लोग हीरो हीरोइन का नाम नहीं पूछ सकते बताएं गीतकार और संगीतकार का नाम।

कई बार हमारे कदम रुक जाते हैं जब हम थक जाते हैं, लेकिन भीतर एक बात आती है कि हम फिर चल पड़ते हैं। ऐसा लम्हा आपके जीवन में कब आया?

0: रुके रुके से कदम रुके बार बार चले, ये हमारी एक श्रोता लिख रही हैं कि ये गीत प्रेम इंतज़ार और अधूरेपन की एक खूबसूरत दास्तां हैं। गुलजार साहब के शब्द दिल को छू लेते हैं, संगीत मदन मोहन का बहुत ही धीमा और सुरीला है, ये गाने के उदास और तनाव माहौल को पूरी तरह से उभारता है। लता मंगेशकर की आवाज़ का ठहराव कमाल का है। और भी बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं इस तरह की बातें और सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया। संजीव कुमार और शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया था ये गाना। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि अरे वाह, चयनित गीतों में दूसरा गीत सुन रहे हैं। और कई श्रोताओं ने लिखा है कि आज तो हमारी लिस्ट के ये गाने सुनाए जा रहे हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि संजीव कुमार, शर्मिला टैगोर, बहुत सारे श्रोताओं ने ये लिखा है। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि तुम पुकार लो, तुम्हारा इंतज़ार है, ये गाना आना चाहिए। और एक श्रोता की टिप्पणी है, रुक जाना नहीं तो कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ये सिर्फ एक गीत की पंक्तियां नहीं है, ये मेरी आत्मा का वो उजाला है जिसने मुझे हर बार अंधेरे से खींचकर बाहर निकाला है। जब भी दुनिया ने कहा कि सब खत्म हो गया, तब इस गीत ने धीरे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। दरअसल ये गीत ऐसे ही हैं, विविध भारती से जो गाने आप सुनते हैं अक्सर हमारे सुख दुख के साथी हो जाते हैं। कई बार पढ़ाई के दिनों में, छात्र जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं, लगता है कि अब क्या होगा। इम्तिहान जब करीब होता है और जब रिज़ल्ट आता है, परिणाम घोषित होता है, तब दिल की धड़कनें बढ़ी होती हैं। जब आपके रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता, तब क्या हाल होता है, लगता है कि बस अब तो ख़त्म, टूटन सी होती है। तो ऐसे जो लम्हात आपके जीवन में आए हैं, उन्हें आप साझा करें विविध भारती के फेसबुक पेज पर, और साथ में हमारी टिप्पणियों के जवाब भी दें। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, दूर गगन की छाँव में फिल्म का गाना, राही तो रुक मत जाना। और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है, जो राह चुनी तूने, ये वाला गाना सुनवाए। गानों की लंबी फहरिस्त भेज रहे हैं हमारे श्रोता, तो चलिए अब यही गाना सुन लिया जाए, दूर गगन की छाँव में। आपको बूझना है संगीतकार का नाम और साथ में गीतकार का नाम, आवाज किसकी है ये भी बताइएगा। किसकी है आवाज, गीतकार और संगीतकार कौन?
1: राही तू

कई श्रोता इस गाने में भ्रमित हो गए। हेमंत कुमार की आवाज़ किशोर कुमार का संगीत, लेकिन कई श्रोताओं ने उल्टा कह दिया, किशोर कुमार की आवाज़ हेमंत कुमार का संगीत। तो भाई, शैलेंद्र की रचना थी हेमंत कुमार की आवाज़ किशोर कुमार का संगीत, फिल्म दूर गगन की छांव में। और ये गाना जब बहुत आप परेशान होते हैं तो दुख पर जैसे फाहे का काम करता है, जैसे औषधि का काम करता है, और हम सबके मन में उत्साह का संचार हो जाता है। बहुत सारे श्रोताओं ने लगभग इस तरह की बात लिखी है। एक श्रोता ने लिखा है कि 100 बार जन्म लेंगे गीत 1963 की फिल्म उस्तादों के उस्ताद का बेहद प्रसिद्ध और रूहानी गाना है। हमने जो पहले गाना सुनवाया उसके लिए इन्होंने ये लिखा है। और मोहम्मद रफ़ी ने इसे अपनी जादुई आवाज़ से सजाया। संगीतकार के का संगीत बहुत ही सुरीला है और रफ़ी साहब की आवाज़ जैसे इस गीत की आत्मा है। एक श्रोता ने लिखा है कि इस रंग बिरंगी दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो अजीब से लोगों से मिल जाते हैं, जो आगे बढ़ने नहीं देते, लेकिन जिन लोगों के राह में ऐसे लोग आते हैं उनके भीतर जीतने का हौसला भी होता है। वही तो बादलों को चीरते हुए पहाड़ों की चोटियों तक पहुंच जाते हैं, यानी कि अपनी कामयाबी तक पहुंच ही जाते हैं। आप अपने बारे में बताइए कि आपकी कामयाबी में कौन सा ऐसा वक्त आया जब आपको ऐसा लगा कि आपको कामयाबी से पीछे हटना पड़ रहा है, या कोई ऐसा रोड़ा, ऐसा कोई पत्थर आ गया जिसके कारण आप नहीं आगे बढ़ पा रहे। कई बार जिम्मेदारियों के बोझ तले भी हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, घर परिवार की जिम्मेदारियां आपको आगे नहीं बढ़ने देती हैं। तो ऐसी कोई बात आप साझा कर सकते हैं, अपने निजी अनुभव भी साझा कर सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। अब आपसे हम कई सवाल पूछ रहे हैं। आपको पूछना है निर्देशक का नाम, आपको पूछना है निर्माता का नाम, पूछना है कलाकारों के नाम। फिल्म बहारें फिर भी आएंगी, इसमें कौन सा शब्द इबारत वाला आता है ये भी बताइए। कहीं भ्रमित तो नहीं हो रहे? दोहरा देते हैं सवाल, बूझिए निर्देशक और निर्माता का नाम, कलाकारों के नाम, और बूझिए इबारत में कौन सा शब्द आया है जिसके लिए ये गाना सुनवाया है, फिल्म बहारें फिर भी आएंगी। और इस शब्द के बहुत कम गाने हैं।

भाई सभी ने लिखा है, बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि माली शब्द वाला गाना है, इबारत में माली है कि माली ने कहा कि घबराना नहीं, इस तरह की बात है। और उसमें एक शब्द और आता है पत्थर और शाम, तो इससे और सुनहरा शब्द सुनहरी शाम, तो इस पर कोई गाना आपको याद आ रहा है तो ज़रा बताइए, क्योंकि आगे हम वो गाना भी सुनवाना चाहते हैं और आप जो सुनना चाहते हैं हम चाहते हैं वही सुनवाना, तो इसलिए आप ही लिखिए अगला गाना कि कौन सा हम सुनवाएं। और सभी श्रोताओं ने जवाब सही दिया है, लेकिन निर्माता निर्देशक का नाम बहुत कम श्रोताओं की ओर से आया है। शाहिद लतीफ़ निर्देशक और गुरुदत्त प्रोड्यूसर थे। निर्माता धर्मेंद्र, माला सिन्हा और तनुजा इस फिल्म में कलाकार हैं। हमारे सभी श्रोताओं ने ये सही बूझा है। एक श्रोता ने लिखा है कि ये फिल्म गुरुदत्त साहब के चले जाने के बाद रिलीज़ हुई थी और धर्मेंद्र साहब ने इसमें काफ़ी मदद की थी। और बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं कि इसमें पत्थर शब्द भी आया है और माली शब्द भी आया है। फिर फूलों के लिए बहुत सारे गाने हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि फूलों की बात भी है और शाम और सुनहरी शाम से जुड़ा हुआ कोई गाना आपको याद आ रहा है, मतलब जिसमें सुनहरा शब्द हो, धूप हो और पत्थर हो, वो गाना भी बताइए, इबारत में ये शब्द भी हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि तकरीबन 10 साल पहले जब मेरे पतिदेव इस दुनिया को छोड़कर चले गए, उनके जाने के बाद मेरी ज़िंदगी जैसे रुक गई थी, कहीं कुछ समझ में नहीं आता था कि क्या करूं। लेकिन मेरे पापा बहुत स्ट्रांग थे और वो हमेशा एक ही गाना गाते थे, नदियाँ चले चले रे धारा तुझको चलना होगा। मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा अनुभव था जो मेरी रुकी हुई ज़िंदगी उस गाने से आज चल पड़ी। आज जब भी मैं उस गाने को सुनती हूँ तो मुझे वो वाक्या याद आ जाता है। और सचमुच गाने से आपको सहारा भी मिलता है। कई बार हम बहुत उदास बैठे हों, यूं ही अकेलेपन के एहसासात से घिरे हुए हों, तो कोई गाना हम सुन लेते हैं तो चेहरे पर मुस्कान तिराती है। कोई रूमानी सा गाना, कोई इंस्पायर करने वाला प्रेरणादायक गाना, तो हमें अच्छा लगता है। तो ऐसे ही कोई गाने आपके जहन में आ रहे हैं तो ज़रा बताइए। एक श्रोता ने लिखा है, राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, सुख है एक छांव ढलती आती जाती है। फिल्म दोस्ती के इस गाने में जीवन का फलसफा है और भी बहुत कुछ है जो हमें जीने की प्रेरणा देता है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि ज़िंदगी एक पुराने रेडियो पर बजते किसी मधुर गीत की तरह लगती है जो हमें अतीत की सुनहरी यादों में ले जाती है। कभी ये एक नए सफ़र की तरह होती है जहां अगला मोड़ अनजाना पर रोमांच से भरा होता है। इसमें सिर्फ खुशियाँ और सफलताएँ ही शामिल होती हैं। इसमें कभी कभी दिल का टूटना, हार मान लेने का एहसास होता है। हमारे श्रोता जो लिख रहे हैं कि अगला मोड़ अनजाना, इस पर मेरे जहन में एक बात आ रही है, ज़रा बताइए कि जब हम छोटे होते हैं, बचपन के दिन होते हैं, कहीं जा रहे होते हैं, रास्ता भूल जाते हैं, भटक जाते हैं कि कौन सी वाली गली से हमें जाना है। और एक समय था जब गूगल नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, आपके पास फ़ोन नहीं था, माता पिता का बताया हुआ ही रास्ता होता था, भाई बहनों का बताया हुआ रास्ता होता था कि ऐसे सीधे जाना, फिर बाएं मुड़ना, फिर दाहिने मुड़ना, फिर सीधे जाना, वहाँ पर

वो दुकान आएगी, उस दुकान से ये सामान ले आना, या फलाने जी का घर होगा उनके घर जाके ये संदेशा देना। तो ऐसा कभी हुआ है कि आपके साथ आप रास्ता भूल गए हों? कभी तेज़ बारिश हो जाती थी और चारों ओर से पानी ही पानी, बूंदों की बौछार, रास्ता सूझता नहीं था, तो ऐसे में क्या करते थे? तो ये ज़माना अब अलग है। एक ज़माना ऐसा था जब कोई आपको बताने वाला मार्गदर्शक या पथ प्रदर्शक नहीं होता था। वो दिन याद कीजिए और बताइए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। फिलहाल फिल्म का नाम बताइए और गीतकार का नाम, संगीतकार का नाम बूझिए। कौन सी है फिल्म ये?

बहुत सारे श्रोता हमारे बहुत सारे गाने सुझा रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है एक अंधेरा लाख सितारे फिल्म आखिर क्यों, और एक श्रोता लिख रहे हैं एक हंसी शाम को दिल में रखो गया फिल्म दुल्हन एक रात की, और एक श्रोता ने लिखा है कि एक सुनहरी शाम थी सायरा बानो जॉय मुखर्जी की फिल्म आओ प्यार करें, और हमने फिल्म का नाम आपसे पूछा था। एक श्रोता ने लिखा है ये शाम की तन्हाई है ऐसे में तेरा गम, और एक आगे इन्होंने लिखा पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना। एक श्रोता ने लिखा है कि भाई बहुत बढ़िया बढ़िया गाने सुनने को मिल रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ बारिश बहुत हो रही है, बारिश का आनंद लेते रहिए, गाने सुनते रहिए। और बहुत सारे श्रोताओं ने फिल्म का नाम लिखा है, और हमारे एक सुधीर श्रोता हैं जिन्होंने जानकारी दी है कि फिल्म बाहरें फिर भी आएंगी का निर्माण गुरुदत्त ने शुरू किया था, पर उनके पात्र को धर्मेंद्र से रिप्लेस करवाकर आत्माराम ने पूरा किया था। और एक श्रोता ने लिखा है कि

10 साल पहले की बात है और एक इन्होंने यात्रा साझा की है, बहुत लंबी सी टिप्पणी है और बहुत सारे श्रोताओं ने दुनिया पर गाने लिखे हैं, दुनिया करे सवाल तो हम क्या जवाब दें, रंग बिरंगी ये दुनिया रंग बिरंगी बाबा, और तुम पुकार लो तुम्हारा इंतज़ार, 100 बार जन्म लेंगे, ये गाना तो हम आपको सुनवा चुके हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि दुनिया एक मेला है, उसमें खुशी गम आशा निराशा की बहुत सारी राहें नज़र आती हैं, इस मोहजाल से भ्रमित मत होना, खुद पर भरोसा रखते हुए अपने सपने सच करते हुए जीवन पथ पर चलते जाना, हे राही आत्मविश्वास से चलते जाना। और अब दुनिया की बात है तो चलिए दुनिया वाला ही गाना एक और सुन लेते हैं। आपके जहन में इस समय सलामत रहने वाली कौन सी बात और कौन सा गाना आ रहा है बताइएगा, तो हम ये दुनिया के बाद, दुनिया वाले गाने के बाद वो गाना सुनवाएंगे, सलामत। फिलहाल ये दुनिया, दुनिया वालों से दूर, फिल्म का नाम आपको पूछना है।

जबक फिल्म का गाना था। हमारे श्रोताओं ने जवाब इसका सही दिया, कम श्रोताओं को जवाब शायद पता था इसके बारे में, कम जवाब आए हैं। अब दुनिया और दुनिया से जुड़ा हुआ एक गाना और आपको सुनवा रहे हैं। हमने आपसे पूछा था सलामत शब्द जो इबारत में है उससे जुड़ा हुआ गाना आप याद कीजिए, तब तक हम ये गाना सुनवा रहे हैं फिल्म बहू बेगम। इसकी भी इस गाने का भी जिक्र हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने किया है और लिखा है इसमें इबारत के कौन कौन से शब्द आते हैं, कुछ श्रोताओं ने लिखा है, ज़रा आप भी बताइए फिल्म बहू बेगम और बताइए किस हीरोइन पर ये गाना फिल्माया गया है और साथ में बूझिए गीतकार और संगीतकार का नाम। फिल्म बहू बेगम

बहु बेगम फिल्म का गाना था लता मंगेशकर की आवाज़, शब्दकार थे साहिर लुधियानवी और संगीतकार थे रोशन। और पूछा था हमने हीरोइन का नाम, सभी ने बताया सही बिल्कुल, मीना कुमारी और हीरो प्रदीप कुमार। और अब सलामत रहने के लिए तो हमारे श्रोताओं ने बहुत सारे गाने सुझाए हैं, लेकिन उससे पहले हम आपसे ज़रा पूछ लें कि कई श्रोताओं ने खामोशी फिल्म का गाना चुना है, वो शाम कुछ अजीब थी, और शाम के बहुत सारे गाने सुझाए हैं, तो आप सभी तय कीजिए कि कौन सा गाना शाम वाला सुनवाएं। अभी फ़िलहाल हम आपकी टिप्पणी आप तक पहुँचा दें। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरा ग्रेजुएशन कम्प्लीट हुआ था और मैं दुखी इस सोच में कन्फ्यूजन में था कि आगे क्या। मैं लेटा हुआ था, रेडियो पर विविध भारती के गीत बज रहे थे, उस समय गीत बजा आज फिर जीने की तमन्ना है गाइड फिल्म का। मैं उत्साह से भर गया और निर्णय लिया कि जॉब ही करना है। क्या बात है भाई, रेडियो विविध भारती आपका किस तरह से साथी होता है, बड़ा अच्छा लगा जानकर। और एक श्रोता ने लिखा है कि रोशन तुम्ही से दुनिया दूसरा गाना, अब तो सलामत, फिर फिल्म प्यार ही प्यार के दो शीर्षक गीत में से एक। और आगे एक श्रोता ने लिखा है कि सलामत से मुझे सिर्फ एक ही गाना बहुत पसंद है, मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है और बहुत अच्छे दोस्त हैं, भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया है, मुझे मेरे दोस्त बहुत प्यारे हैं, इसलिए मैं हमेशा अपने दोस्तों को ये गाना सुनाती हूँ और गाती भी हूँ, अपने सभी दोस्तों को सुनवाना चाहूँगी, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। लेकिन अभी आपको ये गाना हम नहीं सुनवा रहे हैं, बल्कि ये गाना सुनवा रहे हैं, ज़रा फिल्म का नाम बूझिए और जल्द बूझिएगा फिल्म का नाम। गीतकार का नाम हम बता देते हैं इंदिवर, संगीतकार का नाम ज़रा आप बताइए, फिल्म का नाम, संगीतकार का नाम आपको बताना।

भाई, इस गाने का जिक्र तो बहुत सारे श्रोताओं ने किया था और हमें लगता है कि आपकी और यहाँ पर हमारे प्लेलिस्ट की बात गाने एक हो गए। फिल्म थी पारसमणि और गीतकार थे इंदिवर, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की थी। आप सभी ने जवाब बिल्कुल सही दिया है, बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत ही आसान सवाल था। एक श्रोता ने लिखा है कि दो रंग दुनिया के और दो रास्ते, जिंदगी के रंग कई रे, मैं राही अनजान राहों का और मेरा नाम अनजाना, रुके रुके से कदम, गाने के बोल बहुत सारे लिखे हैं। और एक श्रोता ने लिखा है ये पर्वतों के दायरे, बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं गानों के बोल जो विविध भारती के फेसबुक पेज पर सुरक्षित रहता है। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं जब नए मकान में शिफ्ट हुई तो उस समय कॉलोनी काफ़ी वीरान थी, लौटते समय रास्ता ढूंढने में बड़ी दिक्कत हुई। हमने आपसे पूछा था कि कभी ऐसा मौका आया जब आप राह भूल गए हों, क्योंकि एक ज़माना था जब हम सबका बचपन था, तब सोशल मीडिया या गूगल राह दिखाने वाला नहीं था। अब बात सपने वाली रह गई है, तो सपने वाला कौन सा गाना, ये जो हम सुनवाने जा रहे हैं या कोई और है? अगर कोई और गाना आपके जहन में तो बताइए। फिलहाल बुझिए फिल्म का नाम और गीतकार का नाम। आपके जहन में सपने वाले और कौन से गाने आए हैं इस समय?

नई रोशनी फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज़, राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, रवि का संगीत था। श्रोताओं ने इसका भी जवाब सही दिया और अतिरिक्त जानकारी भी दी है माला सिन्हा, धर्मेंद्र, अशोक कुमार, राजकुमार, तनुजा और अनवर हुसैन होते हैं फिल्म में कलाकार। और बहुत सारे श्रोता अगले गाने के लिए लिख रहे हैं, लेकिन क्या आपने ये गाना सोचा था जो हम सुनवाने जा रहे हैं? आपको बूझना है हीरो हीरोइन का नाम और फिल्म का नाम। एक सवाल यहाँ पर और बनता है, गायक का नाम भी जरा बूझिए।

कुछ श्रोताओं ने गायक का नाम बूझ लिया है, आपको पता है तो जरूर बताइए, और साथ में हीरो हीरोइन का नाम भी।

शबाना आज़मी होती हैं फिल्में, और नसीरुद्दीन शाह पर फिल्माया गया था ये गाना। साथ में हीरोइन सुप्रिया पाठक भी हैं, जुगल हंसराज बाल कलाकार के रूप में आते हैं। हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही जानकारी दी, और जो हमने ख़ास सवाल पूछा था, अनूप घोषाल की आवाज़ में ये गाना था, सभी श्रोताओं ने बहुत त्वरित बूझा। फिल्म थी मासूम, गुलजार के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत था। और एक श्रोता ने लिखा है कि जिंदगी की जटिलता को बताया गया था इस फिल्म में, और अब बिल्कुल वक्त नहीं है कि कोई गाना सुनवाएं, सिर्फ इतना बता देते हैं। और बहुत सारे श्रोताओं ने ये लिखा है कि हमेशा की तरह ये लाजवाब प्रस्तुति थी, तो हम ये भी आपसे कहते चलें कि हमेशा की तरह आपकी टिप्पणियाँ लाजवाब थी। अब आज का सुरीला सफ़र कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। सफ़र आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

नमस्कार श्रोताओं, आज हम जिस शब्द को लेकर जीवन की कुछ बातें करेंगे वो है मुसाफिर। जी हाँ, यानी चलने वाला, आगे बढ़ने वाला। लेकिन अगर गौर करें तो हम सब मुसाफिर ही हैं, है ना? जन्म से लेकर जीवन के अंतिम सांस तक हमारा सफर चलता रहता है। कभी रास्ते आसान होते हैं, कभी मुश्किल। कभी कोई हमारे साथ कदम मिलाकर चलता है और कभी भीड़ में भी हम अकेले रह जाते हैं। लेकिन हर रास्ता हमें कुछ न कुछ सिखा कर जाता है। जिंदगी की खूबसूरती शायद इसी में है कि हमें केवल मंजिल नहीं, सफर भी जीना है। तो आइए शुरुआत करते हैं उस मुसाफिर से जिसे न घर की चिंता है न ठिकाने की, बस चलते जाने का जुनून है। जी हाँ साथियों, एक मुसाफिर के पास शायद कोई स्थायी ठिकाना ना हो, लेकिन उसके पास रास्तों के अनुभव और यादें जरूर होती है। हम सभी जिंदगी में एक निश्चित मंजिल चाहते हैं। सोचते हैं कि जब सब कुछ हमारी इच्छा के मुताबिक हो जाएगा तभी खुश होंगे। लेकिन जिंदगी कभी पूरी तरह हमारे हिसाब से नहीं चलती। कभी रास्ते बदलते हैं, कभी रिश्ते बदलते हैं, और कभी हमारे सपने ही बदल जाते हैं। हाँ, इसलिए हमें अपने सफर की तुलना किसी और से नहीं करनी चाहिए। किसी की मंजिल जल्दी आ जाती है तो किसी को लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। हर मुसाफिर का रास्ता अलग होता है।

सुबह से शाम से मेरा दोस्ताना। जी हाँ दोस्तों, हमें याद रखना चाहिए कि सुख और दुख दोनों इस यात्रा के पड़ाव हैं। सुख आए तो अहंकार ना करें और दुख आए तो निराश ना हो, क्योंकि चलते रहने वाला ही एक दिन अपनी मंजिल तक पहुंचता ही है। हम अपनी पूरी जिंदगी धन संपत्ति और नाम कमाने में लगे रहते हैं, लेकिन कई बार उन चीज़ों को भूल जाते हैं जो जीवन को सच में खूबसूरत बनाती है। वो क्या है? अपनों का साथ, रिश्तों की गर्माहट और किसी के चेहरे पर लाई गई एक मुस्कान। एक मुसाफिर जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसे रास्ते की लंबाई नहीं, रास्ते में मिले लोग और उनके साथ बिताए पल याद आते हैं। इसलिए जिंदगी को केवल कल के लिए न टालते हुए आज किसी को अपने से प्यार से बात करके मना लीजिए। किसी से नाराज हैं तो संभव हो तो मन की दूरी मिटा दीजिए, और जहाँ किसी की मदद कर सकते हैं वह ज़रूर कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी का सफ़र कितना लंबा है ये हम नहीं जानते, लेकिन इसे खूबसूरत बनाना हमारे हाथ में ही है।

एक समय आता है जब मुसाफिर को बाहर की दुनिया से ज्यादा अपने भीतर झांकने की जरूरत महसूस होती है। मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरी असली मंजिल क्या है और इस सफर में मेरे साथ वास्तव में कौन है। हम सारी जिंदगी मंजिलें तलाशते रहते हैं लेकिन कभी खुद से पूछते नहीं कि हम आखिर किस मंजिल की ओर जा रहे हैं। इसलिए जिंदगी की भागदौड़ के बीच कभी कभी रुकिए और खुद से पूछिए, मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूँ, क्योंकि आखिर में हमारी पहचान हमारे धन या पद से ज्यादा हमारे व्यवहार और हमारे कर्मों से होती है। हम सब इस दुनिया में मुसाफिर हैं, कोई थोड़ा पहले आया कोई बाद में, किसी का सफर लंबा है किसी का छोटा, लेकिन मंजिल सबकी एक है। तो क्यों ना इस सफर को प्रेम अपनापन से बना के आगे बढ़ते चले। हाँ, मंजिलें दूर हो तो घबराइए नहीं, और अगर किसी का रास्ता हमारे रास्ते से अलग है तो उसकी यात्रा का सम्मान हमें करना चाहिए, क्योंकि मुसाफिर की पहचान उसकी मंजिल से नहीं उसके कदमों से होती है। तो साथियों, चलते रहिए, सीखते रहिए और जहाँ तक संभव हो इस सफर में किसी के लिए रोशनी बनते रहिए।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्र की सुरक्षा, शांति और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई। ब्रिक्स के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की वित्तीय मामलों पर अंतिम बैठक मुंबई में। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने वाराणसी में राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी 17 सितंबर से एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और अमरीकी ओपन टेनिस में बेन शेल्टन ने मौजूदा चैंपियन कार्लोस अल्कराज को हराकर पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिक्सानायके से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और श्रीलंका के बीच सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने दोनों देशों के विकास और लोगों की भलाई के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री सिंह ने कहा कि दोनों देश क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए भी मिलकर काम करते रहेंगे। ब्रिक्स नेताओं के शिखर सम्मेलन से पहले आज मुंबई में ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की अंतिम बैठक हो रही है। ये कल भी जारी रहेगी। इस वर्ष ब्रिक्स वित्तीय चर्चाओं का विषय है मजबूत नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। इससे पहले वित्त मंत्री और गवर्नर पिछले महीने जयपुर में बैठक कर चुके हैं। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारामन ने मुंबई में इस बैठक से पहले पिछली बैठकों के मुख्य निष्कर्षों की समीक्षा की। भारत ने सऊदी अरब में हौसी विद्रोहियों के कथित हमलों की निंदा की है। भारत ने आम नागरिकों और आर्थिक ठिकानों को निशाना बनाए जाने पर चिंता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले अस्वीकार्य हैं और इनसे बाब अल मंदीब जलडमरू मध्य में आवाजाही प्रभावित होती है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के काठमांडू में भारतीय फोरेंसिक टीम ने अपने काम में महत्वपूर्ण प्रगति की है। टीम अब तक 1400 से अधिक डीएनए नमूनों की जांच कर चुकी है और 378 डीएनए प्रोफाइल तैयार किए हैं। इस बीच भारत की संयुक्त तकनीकी टीम ने आज चिले में स्थित सुरंग में जल निकासी और कीचड़ हटाने का काम जारी रखा। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,365 हो गई है। बचाव दल 5,326 लोगों की तलाश में जुटे हैं, जिनमें लगभग 589 विदेशी नागरिक शामिल हैं। अब तक 102 शव परिजनों को सौंपे जा चुके हैं। चीन की मीडिया के अनुसार इस आपदा में चीन के लगभग 43 नागरिकों की मौत हुई है, जबकि तिब्बत में 500 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। इस्माइली

0: समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम आज से 15 सितंबर तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। वे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के निमंत्रण पर भारत आए हैं। प्रिंस रहीम का कल उपराष्ट्रपति से मिलने का कार्यक्रम है। वे नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश ने आशा व्यक्त की है कि हाल के कूटनीतिक प्रयासों से रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता फिर शुरू हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन ज्यूजारिक ने कहा है कि इन प्रयासों से तत्काल, पूर्ण और बिना शर्त युद्ध विराम का रास्ता खुल सकता है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र शांति के लिए किए जा रहे सभी सार्थक प्रयासों का समर्थन करने के लिए तैयार है। अमरीका और ईरान के बीच लगातार हमलों के कारण पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ गया है। इससे व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका बढ़ गई है। अमरीकी सैन्य बलों ने ईरान के कच्चे तेल के 5 टैंकर नष्ट कर दिए हैं। अमरीका के अनुसार पिछले 2 दिनों में उसके एक युद्धपोत पर ईरान ने हमले किए थे। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें भी दागी। ये समाचार हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आज अंतर्राष्ट्रीय रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर और उत्तर प्रदेश सरकार के अन्य मंत्री भी उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि 9वां राष्ट्रीय पोषण माह स्वस्थ और सशक्त भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने का अभियान है। उन्होंने कहा कि ये अभियान हर माँ के स्वास्थ्य, हर बच्चे के पोषण और हर परिवार की खुशहाली से जुड़ा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2014 से गरीबों, बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्रों में भी बड़े बदलाव किए गए हैं।
2: हमने पिछले 9.5 वर्ष में 70,000 से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों को एक नया स्वरूप दिया है और हमने प्रायोरिटी ली है। इसमें राज्य वित्त आयोग हो, केंद्रीय वित्त आयोग का हो या राज्य के स्वयं का अपने बजट का पैसा, आंगनवाड़ी केंद्र उसकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। उसके निर्माण की, वहां पर बच्चों के लिए टॉयलेट की, शुद्ध पेयजल की, ये उसकी प्रायोरिटी का हिस्सा है। आज वहां पे बाल वाटिकाएं चलती हैं। खेल खेल में कैसे अक्षर ज्ञान और कैसे अंकों का ज्ञान बच्चे वहां प्राप्त करते हैं।
0: इस वर्ष पोषण माह का विषय है हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन सेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर से 1 महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। ये अभियान प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली में आज संवाददाता सम्मेलन में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर को जन सेवा के 25 वर्ष पूरे करेंगे। प्रधानमंत्री ने 7 अक्टूबर 2001 को ही गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इन वर्षों में जनसेवा से राष्ट्र सेवा के मंत्र के साथ सेवा की यात्रा को लगातार आगे बढ़ाया है।
3: जो आम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास रहा है, एक बहुत बड़ा योगदान नेतृत्वकर्ता के रूप में उन्होंने दिया है। उनका सफर एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में जो प्रारंभ हुआ और आज देश के प्रधान सेवक के रूप में जो उन्होंने काम को आगे बढ़ाया, ये केवल उनके स्पष्ट विजन, उनके दृढ़ संकल्प, सामाजिक जीवन में लगातार गुणात्मक कैसे परिवर्तन आए, कैसे उनके जीवन में बदलाव आए, इसका प्रयास उन्होंने किया।
0: भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश की प्रगति केवल विकास तक सीमित नहीं रही, बल्कि भारत की सांस्कृतिक पहचान और विरासत भी मजबूत हुई है।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम कह सकते हैं कि केवल विकास ही नहीं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भी जड़ों को मजबूत किया गया। आज अगर हम भव्य राम मंदिर की बात करते हैं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात करते हैं, सोमनाथ की बात करते हैं, महाकाल

0: कॉरिडोर की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि देश के सांस्कृतिक धरोहर को पूरी तरह से सृजित और विकसित करने में उन्होंने पहल किया।
1: भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि जब प्रधानमंत्री ने देश को संभाला उस समय भारत नीतिगत गतिरोध से जूझ रहा था और दुनिया की कमजोर मानी जाने वाली 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल था। उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। श्री नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पूरे देश के लोगों की सोच को बदलने का भी प्रयास किया।
0: उन्होंने केवल इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट की बात नहीं की, उन्होंने इस देश के सोच को भी बदलने का प्रयास किया। उनके पूरे कालखंड को हम जब देख रहे हैं तो केवल युगांतकारी निर्णय ही नहीं हुए, आम लोगों के जीवन में बदलाव ही नहीं हुआ, आम लोगों के जीवन के सोच में भी बदलाव आया है। और 25 साल के ये सशस्त्र सेवा और समर्पण के जो उनके कार्यकाल रहे हैं, जो उनके बेदाग जीवन, लगातार शासन दुनिया भर के लोकतंत्र के इतिहास को एक अलग परिभाषा के साथ सामने लाया है।
1: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना के बाद राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने नगर निगम के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को कार्रवाई के दौरान मौके पर मौजूद रहने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने दिल्ली में PG आवासों का निरीक्षण करने और वहाँ अनधिकृत निर्माण की जाँच के साथ साथ इमारतों से जुड़े रिकॉर्ड की भी जाँच करने को कहा है। न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी ने आज बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। मुंबई के लोक भवन में महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति त्रिपाठी बम्बई उच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने कर्नाटक में 18 स्थानों पर छापेमारी की है। इनमें राज्य के लोक निर्माण मंत्री सतीश जारकीहोली, उनकी बेटी और लोकसभा सांसद प्रियंका जारकीहोली के आवास भी शामिल हैं। गुजरात विधानसभा का 3 दिन का मॉनसून सत्र आज गांधीनगर में शुरू हुआ। सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू हुई। इस दौरान सामान्य प्रशासन, राजस्व और पंचायती राज समेत विभिन्न विभागों से जुड़े तारांकित प्रश्नों पर चर्चा हुई। पुद्दुचेरी में तट्टान सावड़ी विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए आज नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 16 सितंबर है। राजस्थान में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान जारी है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 दिनों तक उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आंधी तथा बिजली कड़कने की स्थिति बनी रहेगी। आज तटीय आंध्र प्रदेश, केरलम और माही में गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। बिहार में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। गंगा, गंडक, कोसी, सोन, पुनपुन और दूसरी नदियों के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। ब्योरा हमारी संवाददाता से।
3: गंगा नदी का जलस्तर पटना के गांधी घाट में खतरे के निशान से 171 सेंटीमीटर, दीघा घाट में 109 सेंटीमीटर और हाथीदह में 165 सेंटीमीटर ऊपर दर्ज किया गया। इधर मुंगेर, भागलपुर और कहलगांव में गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति बनी हुई है। तटबंधों पर दबाव की स्थिति को देखते हुए जल संसाधन विभाग और विभिन्न जिला प्रशासन की टीम लगातार निगरानी कर रही है। पटना, सारण, वैशाली, बेगूसराय, खगड़िया, समस्तीपुर, जहानाबाद और अरवल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर राहत कार्य चलाया जा रहा है। 456 सामुदायिक किचन का संचालन किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
1: वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए उसके निर्देशों को संबंधित एजेंसियों द्वारा प्रभावी ढंग से लागू करना जरूरी है। आयोग ने कहा है कि संबंधित एजेंसियों को उसके आदेशों का समय पर पालन सुनिश्चित करने के साथ निगरानी और कार्रवाई की व्यवस्था को भी मजबूत करना चाहिए। बेन शेल्टन ने अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में आज शेल्टन ने कड़े मुकाबले में मौजूदा चैंपियन कार्लोस अल्कराज को हराया। सेमीफाइनल में शेल्टन का सामना अमरीका के फ्रांसिस डियाफो से होगा। दोनों अमरीकी खिलाड़ी पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचने के लिए मुकाबला करेंगे।

0: वहीं जेसिका पेगुला ने महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 437 अंक गिरकर 75,140 पर, जबकि निफ्टी 89 अंक फिसलकर 23,547 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्र की सुरक्षा, शांति और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई। ब्रिक्स के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की वित्तीय मामलों पर अंतिम बैठक मुंबई में। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने वाराणसी में राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारम्भ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी 17 सितंबर से एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और अमरीकी ओपन टेनिस में बेन शेल्टन ने मौजूदा चैंपियन कार्लोस अल्कराज को हराकर पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह।

0: ना पाए हो गाड़ी वाले।
1: मदर इंडिया फिल्म का गाना आप सुन रहे थे शमशाद बेगम, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में। शकील बदायूनी के बोल थे, नौशाद का संगीत था।

0: आइए अब सुने नौरंग फिल्म का गाना आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजों में। लिखा है इसे भरत व्यास ने, धुन बनाई है सी रामचंद्र ने।
1: अटक अटक झटपट पन घट पर चटक मटक इक नार नवेली गोरी गोरी ग्वाल नकी छोरी चली चोरी चोरी मुख मोरी मोरी मुस्काए अलबेली कंकरी गली में मारी कंकरी कन्हई ने पकड़ी बाह और की अटखेली भरी पिचकारी मारी सरा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा भोली पनी हारी बोली

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी के जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी बंदिनी, वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में, सिर्फ विविध भारती पर।

0: सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
1: याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: मदारी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। फारूक कैसर के बोल थे, कल्याण जी आनंद जी का संगीत था।
1: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
2: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
3: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
1: इसके अलावा वेव्स OTT, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी विविध भारती।

0: छलिया फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के स्वर में। रचना थी कमर जलालाबादी की, संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गड्डी ले
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
3: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
4: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
5: चिट्ठी ना कोई संदेश।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ

सारंगा फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में। शब्दकार थे भरत व्यास, संगीतकार सरदार मलिक। आइए प्रोग्राम के आखिर में सुनते हैं अनपढ़ फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। रचना है राजा मेहदी अली खां की, संगीतकार मदन मोहन। सुनिए ये प्रोग्राम का आखिरी गाना और इसी के साथ अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: और अब आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: FM बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 3 बजे हैं। अब आकाशवाणी मुंबई से प्रादेशिक समाचार व सामायिक चर्चा रिपोर्ट किए जाएंगे।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि हिमाचल तकनीकी शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जापान के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों और संस्थानों के साथ सहयोग की नई संभावनाएं तलाश रहा है। इस पहल का उद्देश्य प्रदेश के विद्यार्थियों और शिक्षकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शैक्षणिक व तकनीकी अनुभव प्रदान करने के साथ साथ उन्हें वैश्विक ज्ञान, अनुसंधान और तकनीकी नवाचार से जोड़ना है। अपने जापान दौरे के दौरान राजेश धर्माणी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से सहयोग युवाओं के लिए नए अवसरों के द्वार खोलेगा। उन्होंने कहा कि भारत और जापान के बीच उन्नत प्रौद्योगिकी, सतत कृषि, स्वास्थ्य सेवाओं, पर्यावरण संरक्षण, उन्नत सामग्री, अनुसंधान और कौशल विकास सहित अनेक क्षेत्रों में सहयोग की व्यापक संभावनाएं हैं। धर्माणी ने यह भी कहा कि भारत जापान साझेदारी तकनीक और सतत विकास के नए युग की आधारशिला बनेगी। शाहपुर के विधायक व उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने नवनिर्मित चंबी पुल का कल निरीक्षण किया। उन्होंने इस मौके पर लोगों को आश्वस्त किया कि जमीनी विवादों के कारण रुके संपर्क मार्गों का कार्य अब तेज गति से होगा। उन्होंने बताया कि जमीन मालिकों की सहमति मिल गई और शीघ्र ही इन संपर्क मार्गों का कार्य आरंभ कर दिया जाएगा। पठानिया ने रैत बाजार का भी निरीक्षण किया और पानी की उचित निकासी के अधिकारियों को निर्देश दिए ताकि बारिश के दौरान स्थानीय लोगों और दुकानदारों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव आशीष सिंह मार ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश ड्रग्स कंट्रोल प्रशासन ने सिरमौर जिला के कालाअंब स्थित मैसर्स वेलक्योर रेमेडीज के खिलाफ कड़ी नियामक कार्रवाई की है। ये कार्रवाई राज्य और केंद्र के अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण के दौरान गंभीर व लगातार पाई कमियों के बाद की गई है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य के अधिकारियों द्वारा संयुक्त अनुपालन सत्यापन किया गया, जिसके दौरान कुछ कमियां अभी भी पाई गई। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट और नियमों के उल्लंघन के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। उन्होंने कहा कि गंभीर गैर अनुपालन के मामलों में कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी ताकि सुरक्षित, प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके और जन स्वास्थ्य की सुरक्षा भी हो। सिरमौर जिला में नशे के खिलाफ काम कर रही स्वयंसेवी संस्था आदर्श ने आज उपायुक्त प्रियंका वर्मा के माध्यम से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को एक ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में राज्य में नशे के बढ़ते प्रचलन को रोकने के लिए कड़ा कानून बनाने की मांग की गई है। संस्था के अध्यक्ष अमरजीत परमार ने कहा कि नशे के अवैध कारोबार में एक बार पकड़े जाने वाले किसी भी व्यक्ति की जमानत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार व्यवस्था परिवर्तन के दावे तो कर रही है, लेकिन नशे के खिलाफ अभी तक कोई भी कड़ा कानून नहीं बनाया है।
3: आज आदर्श संस्था हिमाचल प्रदेश और जिला सिरमौर आदर्श संस्था आज उपायुक्त महोदय श्रीमती प्रियंका वर्मा जी से मिले। जो हमारी बातचीत हुई बहुत अच्छी रही और जो इसके का चलावा पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर, जो पंजाब के बाद बिल्कुल है हिमाचल प्रदेश की, जहाँ पर डेली आप देखते होंगे अखबार, जब हम पढ़ते हैं अखबार को तो डेली 4-5 लोग चीटे की पेट में आते हैं। तो हम इस विषय में मैडम से मिले हैं, हमने इनकी पूरी समस्या बता दी है क्योंकि डे बाई डे बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। जैसे 6 से 12 साल तक के बच्चे बिताने हमको बहुत ज्यादा मुश्किल हो गए हैं, जैसे कि पहले 12 से 18 से 18 से 22 से, तो ये चीटा है, चीटा बहुत जल्दी रुकना चाहिए। हमने हिमाचल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से भी आग्रह किया है कि कानून परिवर्तन चाहते हो, अगर व्यवस्था परिवर्तन चाहते हो तो कानून ऐसा लाया जाए जिससे जो बड़े बड़े सौदागर है जेल से बाहर ही ना आए।
2: चंबा जिला में चल रही विश्व प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा के दौरान 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। इनमें से 1 श्रद्धालु की मौत हृदय गति रुक जाने के चलते हुई। ये श्रद्धालु हरियाणा के फतेहगढ़ का रहने वाला बताया गया है। एक अन्य व्यक्ति की मौत लंगर सेवा के दौरान हुई। इसकी पहचान पंजाब के सुच्चा सिंह के रूप में हुई है।

0: इन दोनों श्रद्धालुओं को तबीयत बिगड़ने पर तुरंत चिकित्सा उपलब्ध करवाई गई, लेकिन इनकी जान नहीं बच पाई। इस बीच मणिमहेश यात्रा सुचारू रूप से चल रही है और अभी तक 20,000 से अधिक श्रद्धालु पवित्र मणिमहेश झील में डुबकी लगा चुके हैं। इस बार मणिमहेश यात्रा के लिए पंजीकरण जरूरी बनाया गया है। प्रदेश में मॉनसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है। बीते 24 घंटों के दौरान राज्य के धौलाकुआं में 40 मिलीमीटर, धर्मशाला में 18, पांवटा साहिब में 4, नैरी में 3 और कांगड़ा में 2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 6:30 बजे। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचारों के बाद आइए सुनते हैं सामयिक चर्चा। विषय है भारत की मजबूत आर्थिक रफ्तार। वाचक स्वर है राजकुमारी चंदेल का।
0: भारत की अर्थव्यवस्था ने एक बार फिर अपनी मजबूती और क्षमता का परिचय दिया है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून के दौरान देश की सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि दर 7.8% रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे एक असाधारण उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं, तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ी चुनौतियों के बावजूद भारत ने ये मजबूत आर्थिक वृद्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये उपलब्धि देशवासियों की सामूहिक शक्ति और कठिन परिस्थितियों से उबरने की क्षमता को दर्शाती है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर अपने संदेश में कहा कि भारत की ये आर्थिक प्रगति ऐसे समय में हुई है जब दुनिया कई तरह की चुनौतियों से गुजर रही है। कोविड महामारी के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था पूरी तरह स्थिर नहीं हो पाई है। कई क्षेत्रों में संघर्ष की स्थिति है, आपूर्ति श्रृंखलाएं प्रभावित हैं और ऊर्जा बाजार में भी अनिश्चितता बनी हुई है। इन परिस्थितियों के बीच भारत की 7.8% की GDP वृद्धि देश की मजबूत घरेलू अर्थव्यवस्था को दर्शाती है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी इस आर्थिक प्रदर्शन पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि इस शानदार प्रदर्शन का श्रेय देश की जनता और उनके परिश्रम को जाता है। अब सवाल है कि वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत कैसे बनी हुई है। इसका एक बड़ा कारण देश की घरेलू मांग है। भारत की बड़ी आबादी और तेजी से बढ़ता मध्यम वर्ग अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करता है। जब देश में लोग वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च करते हैं तो बाजार में मांग बढ़ती है, इससे उत्पादन बढ़ता है, उद्योगों को गति मिलती है और रोजगार के अवसर भी पैदा होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी संदर्भ में आत्मनिर्भरता और वोकल फॉर लोकल पर जोर दिया है। उनका कहना है कि वैश्विक परिस्थितियां लगातार बदल रही हैं, ऐसे में भारत के विकास की गति को बनाए रखने के लिए देश को अपनी घरेलू क्षमता को और मजबूत करना होगा। स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना और भारतीय वस्तुओं का अधिक से अधिक उपयोग करना इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। स्वदेशी उत्पादों को अपनाने से देश के उद्योगों को बढ़ावा मिलता है। जब लोग देश में बने सामान खरीदते हैं तो मांग घरेलू बाजार में बनी रहती है, इससे उत्पादन बढ़ता है और छोटे बड़े उद्योगों को फायदा मिलता है। रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं और आयात पर निर्भरता भी कम की जा सकती है। प्रधानमंत्री ने सोने की खरीदारी और गैर जरूरी विदेशी यात्राओं को लेकर भी देशवासियों से विचार करने का आग्रह किया है। इसका सीधा संबंध देश की विदेशी मुद्रा और अर्थव्यवस्था से है। भारत बड़ी मात्रा में सोने का आयात करता है। जब सोने का आयात बढ़ता है तो देश की विदेशी मुद्रा का एक बड़ा हिस्सा इसके भुगतान में चला जाता है। ऐसे में यदि लोग जरूरत के अनुसार ही सोने की खरीद करें और अपनी बचत को देश की अर्थव्यवस्था में दूसरे उत्पादों और सेवाओं पर खर्च करें तो घरेलू मांग को बढ़ावा मिल सकता है। इसी तरह गैर जरूरी विदेशी यात्राओं पर होने वाला खर्च भी देश से बाहर जाता है। विदेशी यात्रा के दौरान होटल, भोजन और परिवहन के अलावा खरीदारी पर भी काफी पैसा खर्च होता है। यदि लोग घरेलू पर्यटन को प्राथमिकता दें और देश के अलग अलग हिस्सों में यात्रा करें तो इसका लाभ सीधे भारतीय अर्थव्यवस्था को मिल सकता है। घरेलू पर्यटन से होटल, रेस्तरां, परिवहन, हस्तशिल्प और स्थानीय व्यवसायों को बढ़ावा मिलता है। प्रधानमंत्री ने विदेशों में शादी समारोह आयोजित करने के बजाय देश में ही ऐसे आयोजन करने की अपील की है। भारत में शादी समारोह से जुड़े कई क्षेत्र हैं, कैटरिंग, होटल, कपड़े, आभूषण, सजावट, परिवहन, फोटोग्राफी और अनेक तरह की सेवाएं। जब ऐसे समारोह देश में आयोजित होते हैं तो इन क्षेत्रों में काम करने वाले लाखों लोगों को आर्थिक लाभ मिलता है, इससे स्थानीय कारोबार और रोजगार को भी बढ़ावा मिलता है। भारत के सामने वैश्विक स्तर पर एक और बड़ी चुनौती ऊर्जा की

0: कीमतों से जुड़ी है। पश्चिम एशिया और यूरोप में जारी संघर्ष का असर कच्चे तेल की आपूर्ति और कीमतों पर पड़ सकता है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के एक बड़े हिस्से के लिए आयात पर निर्भर है, इसलिए तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर परिवहन से लेकर उत्पादन लागत और महंगाई तक दिखाई दे सकता है। ऐसी परिस्थिति में घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत रखना और आत्मनिर्भरता बढ़ाना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। देश की विशाल आबादी एक बहुत बड़ा बाजार है। इसी के साथ सामूहिक चर्चा समाप्त हुई। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे सामयिक चर्चा, विषय था भारत की मजबूत आर्थिक रफ्तार। वाचक स्वर था राजकुमारी चंदेल का। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है, कृपया हमारी अगले उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 3:10 हुए हैं। कुल्लू एवं कल्पा रिले केंद्रों पर अब से लेकर 4:20 तक आप सुन सकते हैं विविध भारती के कार्यक्रम। आकाशवाणी शिमला से हमारे कार्यक्रमों का प्रसारण अब बंद होता है। शाम 4:20 पर दूसरी सभा में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।

0: हम धरने की बात कर रहे हैं। गाना ऐसा हो गया कि भैया ना धरो, बहुत सुंदर सा गाना हमने सुना सखियों के संग। और जैसे पारिवारिक मिलन समारोह की बात चल रही है मंदाकिनी जी, तो पारिवारिक समारोहों में त्योहार, लोकगीत, पारंपरिक भोजन, पूजा पद्धति, पारिवारिक रीति रिवाज और सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल किए जाते हैं। इससे हमारी परंपराएं केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं रहती है बल्कि अगली पीढ़ी तक जीवंत रूप से पहुंचती भी है।
1: बिल्कुल सही कहा। अभी थोड़ी देर पहले जब हम बात कर रहे थे सोनाली कि पारिवारिक मिलन कितना जरूरी है हमारी जिंदगी में, और ये जो समारोह ये एहसास कराता है कि व्यक्ति अकेला नहीं है, परिवार उसके साथ है और परिवार उसके सुख में खुशी मनाने के लिए और कठिन समय में उसका साथ देने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, और यही भावना परिवार को भावनात्मक रूप से भी मजबूत बनाती है।
0: और ऐसा होता है ना मंदाकिनी जी, रिश्ते केवल खून से नहीं, समय देने और साथ निभाने से मजबूत होते हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में परिवार के सदस्य अपनी अपनी जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त हो गए हैं कि साथ बैठकर बातचीत करने का समय ही कम मिलता है। ऐसे में पारिवारिक मिलन समारोह रिश्तों में नई ऊर्जा और अपनापन भरने का सुंदर अवसर बन जाता है।
1: बिल्कुल सही कहा। परिवार के साथ हंसना, बातें करना, साथ साथ भोजन करना, ये सभी चीजें हमें बहुत खुश कर देती हैं। और रोजमर्रा के तनाव और व्यस्तताओं से अगर कुछ समय हम निकाल लेते हैं अपने परिवार के साथ, तो एक राहत भी मिलती है। और एक दूसरे की उपस्थिति से क्या होता है, व्यक्ति को या हम सभी को भावनात्मक सुरक्षा और संतोष का भी एहसास होता है।
0: कभी कभी ऐसा होता है ना कि नौकरी के कारण किसी को, जो परिवार के सदस्य है, उन्हें दूसरे शहर जाना पड़ता है, कोई पढ़ाई के लिए बाहर जाता है, तो कोई अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो जाते हैं। ऐसे में पारिवारिक मिलन समारोह एक ऐसे अवसर होते हैं जब सभी लोग अपनी व्यस्तताओं से समय निकालकर परिवार के साथ सुखद समय बिताते हैं।
1: बिल्कुल आपने सही कहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह के जब समारोह होते हैं तो हम सब बहुत ही खुशी के साथ उसमें शरीक होते हैं। और एक सफल पारिवारिक मिलन समारोह भी हमें ये संदेश देता है कि परिवार की शक्ति उसकी संख्या में नहीं बल्कि उसके प्रति प्रेम, एक दूसरे के प्रति सम्मान और सहयोग से होती है। तो जब परिवार एकजुट रहता है सोनाली, तो हम कठिन परिस्थितियों में भी थोड़ा सा अपने आप को सहज महसूस करते हैं।
0: हमारे साथियों ने भी बहुत सारे कमेंट्स लिखे हैं इस विषय पर।

0: हमारे एक साथी कहते हैं, हमारे भारत में यहाँ बसे पारिवारिक समारोह यानी कि बच्चों का जन्म होना, मुंडन, शादी ब्याह, मृत्यु से लेकर ऐसे बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम होते हैं, कुछ परिवार और करीबी मित्र इकट्ठा होते हैं, इस तरह पारिवारिक मेल जोल बना रहता है और सामूहिक सामूहिक सौहार्द भी बना रहता है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और कई बार हमने देखा होगा कई परिवारों में प्रेम ज़्यादा नहीं महसूस करते। हमें लगता है कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो बहुत कम मिलते जुलते हैं, आपस में कम समारोह में इकट्ठा होते हैं, तो हमें लगता है कि वहाँ शायद प्रेम कम हो गया है और रिश्ते कहीं कमज़ोर हो गए हैं। तो वो इसलिए नहीं होते कि उनमें संवाद नहीं हुआ है या एक दूसरे का साथ नहीं देते, बल्कि कहीं ना कहीं भावनात्मक दूरियां बढ़ गई हैं, विश्वास कम हो गया है। एक दूसरे को कहने सुनने की जो क्षमता है ना,
0: वो कम
1: वो
0: हो
1: कम हो गई है। एक
0: जी,
1: दूसरे को हम शिकायतें तो
0: समझने
1: कर
0: की
1: देते,
0: क्षमता।
1: हाँ,
0: हाँ
1: समझ नहीं पाते एक
0: जी।
1: दूसरे को और दूरियां बना लेते हैं।
0: और क्या कैसे होता है ना कि मंदाकिनी जी, कभी कभी ना हम कहते हैं ना, जजमेंटल हो जाते हैं कि उनके प्रति हम एक धारणा बना लेते हैं
1: हाँ
0: कि वो तो अब जैसे उसके घर की कुछ बातें होंगी कि वो शायद दूसरों से शेयर नहीं करना चाहते, पर हमें ऐसे लगता है कि देखिए उन्हें तो घमंड आ गया है, वो तो हमसे मिलना नहीं चाहते। पर ऐसा नहीं होता है, किसी किसी की परिस्थिति के कारण कुछ व्यक्ति इस तरह से व्यवहार करते हैं। वैसे हमारे एक साथी ने लिखा है कि परिवार के साथ पॉजिटिव रिलेशन होने से आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहती है और आप अपनी एंग्जाइटी और चिंताओं को दूर कर पाते हैं और मुसीबत में होने पर आपको सही मार्गदर्शन और सलाह मिल पाती है। जो लोग आपसे प्यार करते हैं उनसे घिरे होने पर आपकी मानसिक स्थिति में सुधार आ सकता है और चुनौतियों से उभरने के लिए आपको एनर्जी मिल सकती है।
1: बिल्कुल
0: बहुत
1: सही
0: सुंदर
1: कहा, बहुत सुंदर लिखा है। और वहीं
0: जी।
1: एक श्रोता ये भी लिखते हैं कि पारिवारिक जो बंधन है उससे आप मजबूत होते हैं, बीते सालों की खूबसूरत यादों का सृजन होता है। घर के बुजुर्गों से बच्चों और युवाओं को अपने पूर्वजों से जुड़े पारिवारिक इतिहास के बारे में, उनकी जड़ों के बारे में जानकारी मिलती है। और मैंने भी हमारे पिछले 7 पीढ़ियों तक का वटवृक्ष बनाकर हमारे कंप्यूटर ट्री ऐप पर डाला हुआ है, जिसमें मेरे पोते से लेकर दादा परदादा तक की सारी जानकारियां हमने साझा कर रखी हैं।
0: वही एक साथी कहते हैं कि पारिवारिक मिलन समारोह केवल एक आयोजन नहीं बल्कि बिखरी हुई जड़ों को फिर से सींचने का अवसर है। जहां वर्षों से दूर रहे चेहरे एक ही आंगन में मिलते हैं तो समय जैसे थमसा जाता है। पिता की झुकी हुई पीठ में बचपन का सहारा दिखता है, माँ की आंखों में वही पुरानी ममता लौट आती है और भाई बहनों की हंसी फिर गूंज उठती है। ये मिलन हमें याद दिलाता है कि नौकरी, शहर और व्यस्तताओं ने हमें कितना भी दूर कर दिया हो, हमारा अस्तित्व आज भी उसी एक थाली, उसी एक कहानी, उसी एक आशीर्वाद से बंधा है, जो अगली पीढ़ी को भी सिखाता है कि परिवार वो अंतिम घर है जहाँ लौट कर आदमी फिर से पूरा हो जाता है।
1: बिल्कुल, बहुत
0: कितने सुंदर,
1: सुंदर
0: बहुत
1: शब्दों में
0: सुंदर
1: कहा।
0: जी
1: काश हम सभी ऐसा समझें,
0: जी
1: सोचें और इस तरह के जो जीवनचर्या बिताएं, तो हमें लगता है कि जो आजकल एकल परिवारों की जो प्रथा चल निकली है
0: जी
1: उसमें बहुत कमी फिर से आने लगेगी,
0: या
1: है ना।
0: उसमें उसमें जो है ना, जो सुधार हो जाएगा कि हम दूर दूर जाने लग गए हैं एक दूसरे से।
1: हाँ, हम अकेलेपन के आदी हो गए हैं, हम अकेलेपन में रहना चाहते हैं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, जिस
0: जी
1: तरह की भावना हमने रख ली है, हम ये भूल जाते हैं कि जो हमारा परिवार है, हमारे जो सास ससुर हैं या माता पिता हैं, वो भी किसी न किसी से जुड़े हुए हैं
0: जी
1: और उन्हें भी उस साथ की ज़रूरत है।
0: और बच्चे भी ना शेयरिंग और केयरिंग सीखते हैं, क्योंकि घर में आजकल एक या दो ही बच्चे होते हैं, उनका सब चीज़ पर्सनल होता है,
1: बिल्कुल,
0: उनका खिलौना अलग, उनका बिस्तर अलग, उनका कमरा अलग, उनकी किताबें अलग है। तो जब घर में परिवार के दूसरे लोग आते हैं गेट टुगेदर के बहाने, उस वक्त वो उनकी थाली में खाएंगे, उनके खिलौने खेलेंगे,
1: अपनी
0: तो उन्हें
1: चीज़ों
0: भी
1: को देना सीखेंगे। जब आप
0: हाँ
1: उन्हें बताएंगे कि बेटा
0: जी
1: आप अपनी चीज़ें इन्हें भी दे सकते हैं, तो उनके अंदर ये भावना पनपती है कि
0: जी
1: हम मिलजुल कर रहे हैं, है ना।
0: जी
1: और एक श्रोता लिखते हैं कि रोज़मर्रा की व्यस्त जिंदगी के कारण अक्सर लोग अपने ही परिवार के सदस्यों से दूर हो गए हैं। पारिवारिक मिलन समारोह सभी को एक जगह इकट्ठा होने का अवसर देता है। एक साथ बैठकर बातचीत करना, पुराने दिनों को याद करना, सुख दुख साझा करना, प्रेम, विश्वास, सौहार्द, ये सभी बड़ा अच्छा लगता है। आजकल के बच्चे अक्सर दूर के रिश्तेदारों जैसे चाचा चाची, बुआ मौसी, चचेरे भाई बहनों को ठीक से नहीं जानते। ऐसे समारोह के माध्यम से नई पीढ़ी को अपने परिवार के इतिहास, परंपराओं और मूल्यों को जानने का मौका मिलता है और ये बच्चों में पारिवारिक संस्कारों को विकसित करने का एक बेहतरीन मंच भी है।
0: एक साथी कहते हैं कि पारिवारिक मिलन समारोह मैंने शहरों में देखा है, जहाँ पर हर त्यौहार पर लोग एक पार्क में या किसी के घर के लॉन में मिलते हैं और अपने सुख दुख बांटते हैं। हमारे गांव में दिवाली के अगले दिन अक्सर सारे गांव के लोग इकट्ठा होते हैं, क्योंकि इस त्यौहार पर जो बाहर नौकरी करते हैं वे सब भी परिवार सहित छुट्टी मनाने आते हैं, तो उनसे लोग ज़्यादा घुलते मिलते हैं और बच्चे इनाम भी मांगते हैं। हाँ, दूसरा मौका होली का होता है, जब होली के दिन सारा गाँव एक रंग में रंगा होता है और दोपहर के बाद नए कपड़े पहनकर

0: एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हैं और गुजिया खाते हैं, खिलाते हैं, फाग पर तरह तरह के गीत गाते हैं, पूरा गांव मस्ती में झूमता है। अब तो लोग ऐसे कुछ उन्होंने अलग बातें भी
1: लिखी है।
0: जी
1: एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी फैमिली में चाचा चाची उनके लड़के लड़की कुल मिला के 45 लोग हैं। हम सब हर साल समर वेकेशन में एक दिन की पिकनिक टूर पर जाते हैं, धार्मिक स्थल, दरिया का किनारा, फार्म हाउस, वहाँ सब एक दूसरे से मिलते हैं, बातें करते हैं, गेम्स खेलते हैं, टैलेंट दिखाते हैं, साथ में खाना खाते हैं, ग्रुप फोटोग्राफी करते हैं और उस दिन कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं होता, सब एक दूसरे की मजाक भी उड़ाते हैं, मस्ती भी करते हैं और बहुत मजा आता है। ऐसा टूर होते रहना चाहिए।
0: एक साथी कहते हैं, परिवार हमारी शक्ति है और आंतरिक ऊर्जा का केंद्र है, इसके बल पर ही हम सामाजिक जीवन का सर्वोच्च प्राप्त कर सकते हैं। ये संस्कृति और जीवन मूल्यों की प्राथमिक पाठशाला भी है। परिवार से ही हमारे भीतर सद्गुणों का विकास होता है। किसी भी व्यक्ति के विकास में उसके परिवार का बहुत बड़ा योगदान होता है।
1: बिल्कुल, बहुत बड़ा योगदान होता है। और एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे भारत में तो यहाँ पारिवारिक समारोह बच्चे पैदा होने में, मुंडन, शादी, ब्याह, मृत्यु तक बहुत से होते हैं। कुछ परिवार और करीबी मित्र इकट्ठा होते हैं, इस तरह पारिवारिक मेलजोल बनता है और सामूहिक सौहार्द भी बना रहता है।
0: और अब गीत सुन लिया जाए।
1: बिल्कुल, सुनते हैं ये गीत।

0: उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर। हाँ तो सोनाली, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही असम की सांस्कृतिक पहचान मेखला चादर के बारे में।
2: चलते हैं असम की ओर।
0: हाँ बिल्कुल, चलिए।
2: मेखला चादर, असम के इसे मेखला चादर भी कहते हैं। असम की सबसे प्रसिद्ध पारंपरिक पोशाकों में से एक है। इसकी खासियत केवल इसकी सुंदरता नहीं बल्कि इसके पीछे छिपी सदियों पुरानी बुनाई कला और असम के जीवन से जुड़ी परंपराएं भी हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। और मेखला चादर पर जब हम बात कर रहे हैं तो ये मुख्यतः दो हिस्सों से बनकर एक बड़ी सुंदर पोशाक बनती है, मेखला और चादर। तो मेखला इसका निचला हिस्सा होती है जिसे कमर के चारों ओर लपेटा जाता है और इसे विशेष ढंग से मोड़कर सामने की ओर इसकी प्लीट्स बनाई जाती हैं जो कि बहुत ही सुंदर लगती हैं।
2: और चादर जिसे कई बार सादोर या चादोर भी कहा जाता है, इसका ऊपरी हिस्सा है, इसे शरीर के ऊपरी भाग पर लपेटकर कंधे पर यानी कंधे पर रखा जाता है।
0: तो इस तरह दोनों हिस्से मिलकर क्या बनते हैं,
2: मेखला चादर। और मेखला चादर की सबसे बड़ी विशेषता इसकी हस्त बुनाई है। असम में बुनाई केवल रोजगार का साधन नहीं बल्कि पारिवारिक और सांस्कृतिक परंपरा भी रही है।
0: हाँ, और असम की बुनाई में प्रकृति की हमें झलक भी दिखाई देती है। इसमें फूल, पत्तियां, पक्षी, ज्यामिति आकृतियां और पारंपरिक प्रतीक इसके डिजाइनों में नजर आते हैं। इसीलिए हर सुंदर मेखला चादर अपने भीतर बुनकर की कल्पना और मेहनत की कहानी भी कहती है।
2: और मेखला चादर में असम के विभिन्न प्रकार के रेशम का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मूंगा सिल्क या इसे मूंगा सिल्क भी कहते हैं। असम का मूंगा रेशम अपने प्राकृतिक सुनहरी चमक के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। ये मजबूत और टिकाऊ भी माना जाता है और मूगा सिल्क की मेखला चादर को बहुत प्रतिष्ठित भी माना जाता है।
0: हाँ, इसके अलावा पाट रेशम मुलायम और चमकदार होता है और उससे बनी मेखला चादर विशेष अवसरों पर खूब पसंद भी की जाती है।
2: साथ ही एरी सिल्क, एरी रेशम को असम की रेशम परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। इसकी बनावट अपेक्षाकृत गर्म और मुलायम होती है।
0: हाँ, और मेखला चादर में रंगों का जो संयोजन है वो बहुत ही सुंदर होता है सोनाली। लाल, क्रीम, सुनहरा, हरा, सफेद और गहरे रंगों के साथ पारंपरिक बॉर्डर बनाए जाते हैं, बहुत ही सुंदर बॉर्डर बनाए जाते हैं।
2: और इसके बॉर्डर और पल्लू जैसे हिस्सों पर पारंपरिक असमिया आकृतियां इसकी सुंदरता बढ़ाती है। फूल, पत्तियां, मोर, पक्षी और ज्यामितीय पैटर्न इसकी लोकप्रिय डिजाइन है।
0: हाँ बिल्कुल, और असम का जो प्रसिद्ध बिहू त्योहार है ना, मेखला चादर से गहराई से जुड़ा हुआ भी है ये त्योहार। विशेष रूप से बोहाग बिहू के अवसर पर महिलाएं जो हैं पारंपरिक मेखला चादर पहनती हैं और इस उत्सव में शामिल भी होती हैं। बिहू के गीत हैं, नृत्य हैं और पारंपरिक परिधान जब मिलकर असम की जो संस्कृति है उसकी सुंदर तस्वीर हमारे सामने एक पेश करते हैं।
2: और मेखला चादर का इस्तेमाल विवाह समारोह, धार्मिक कार्यक्रम और अन्य पारंपरिक अवसरों पर भी किया जाता है। दुल्हन की मेखला चादर पर अक्सर जटिल बुनाई, सुंदर बॉर्डर और पारंपरिक रूपांकन दिखाई देते हैं।
0: हाँ, और मेखला चादर इसके आधुनिक रूप भी अब आ गए हैं, थोड़ा सा मॉडर्न रूप भी आने लगे हैं जिनमें पारंपरिक बुनाई के साथ नए रंग आ गए हैं, नए डिजाइन आ गए हैं। और ये केवल पारंपरिक अवसरों तक नहीं बल्कि आम प्रोग्राम्स में या डेली रूटीन में भी वहाँ की महिलाएं जो हैं
2: पहन सकती हैं।
0: जो नौकरी में जाती हैं वो महिलाएं भी मेखला चादर पहनती हैं और वो कॉटन के बने जो मेखला चादर है वो पहनावा में है।
2: मेखला चादर को केवल एक वस्त्र कहना इसके महत्व को कम कर देना होगा। ये असम की पहचान, लोक कला, बुनकरों की मेहनत और महिलाओं की रचनात्मकता का भी प्रतीक है। इसके हर धागे में असम की प्रकृति की छाप दिखाई देती है। कहीं ब्रह्मपुत्र की विशालता, कहीं हरे भरे जंगलों की छटा और कहीं स्थानीय लोक कला की इसमें झलक दिखाई देती है।
0: बिल्कुल, और मेखला चादर असम की एक ऐसी विरासत है जिसमें पहनावे के साथ इतिहास है, कला है, संस्कृति है और ये केवल शरीर को सजाने के लिए कोई वस्त्र नहीं है सोनाली, बल्कि असम की पहचान को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ले जाने वाली एक जीवंत परंपरा का भी नाम है मेखला चादर। और अब ले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
2: जी,

0: इस अंतराल के बाद सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। और सोनाली, अगर अब आप कहें तो एक गीत सुनवा दें।
1: बिल्कुल, सुनवाते हैं गीत।

0: तो बहुत ही सुंदर गीत लगा, ऐसा लगा कि हम मेखला चादर पहनकर ये नृत्य कर रहे हैं, है ना
1: जी। और एक हमारे सखी ने लिखा है कि असम घूमने गई थी, तब वहाँ की महिलाओं को मेखला पहनते हुए देखा तो मुझे अच्छा लगा। दुकान में हर तरह के मेखला उपलब्ध है, सस्ती भी है और महंगी भी है, कॉटन में, चंदेरी सिल्क में, और ये उनका पारंपरिक ड्रेस है और बहुत अच्छा लगता है।

0: मैंने अपने लिए तो नहीं, पर किसी ने मुझसे मंगवाया था, तो मैं उनके लिए लेकर आई थी। हल्का क्रीम कलर का सिल्क पर रेड बूटी और बॉर्डर वाली बेहद खूबसूरत मेखला थी।
1: क्या बात है, तो आपने खुद के लिए क्यों नहीं खरीदा भाई?
0: हाँ ना, आज बोलती क्या, मेरे पास भी मेखला है।
1: हाँ, ये कहती है ना कि मेखला
0: हाँ
1: है,
0: हाँ
1: यहाँ मैं कहूंगी मेरे पास मेखला है।
0: पर है आपके पास मेखला? अरे वाह, अभी पहनकर आइएगा।
1: बिल्कुल, मैं पहन के आई थी, आपने मुझे नहीं देखा शायद, आप उस दिन नहीं थी
0: ओके।
1: ऑफिस में।
0: हाँ हाँ हाँ
1: और अभी आपको एक बात बताऊं, जब मैं अपनी एक यात्रा में कहीं गई थी बाहर, तो मेरी एक दोस्त अचानक स्टेशन पर आई जहां पर ट्रेन रुकी हुई थी, और उन्होंने आते ही मुझे उठाया और बोले, अरे सो रही है, उठ, तेरे लिए मेखला लेकर आई हूँ।
0: ओहो।
1: हाँ सच में, तो ऐसा भी होता है कई बार कि जब आप नहीं सोच रहे होते, अनएक्सपेक्टेड उपहार आपको मिल जाते हैं।
0: तो अगले इसमें यही सब्जेक्ट ले लेंगे।
1: कि आपको न चाहते हुए भी बहुत कुछ मिल जाता है
0: सरप्राइज
1: जीवन में, सरप्राइज गिफ्ट मिल जाते
0: गिफ्ट।
1: हैं।
0: जी
1: तो चलिए, हमारे और हमने एक नया आज शब्द लिखा है, विश्वास, ना, उस पर हम बात करने वाले हैं,
0: जी
1: जो कि अपने आप में बहुत ही खूबसूरत शब्द है, भावार्थ लिए, और
0: जी
1: हमारे जीवन में इसका होना बहुत जरूरी है।
0: और ये श्रोताओं का सेगमेंट है, तो श्रोताओं ने भर भर के कमेंट्स लिखे हैं विश्वास
1: हाँ, तो
0: पर।
1: उन्हें विश्वास है ना हम पर, कि हम उनके सेगमेंट को पढ़ना पसंद करेंगे,
0: जी
1: और ये कार्यक्रम उन्हीं के लिए है,
0: जी
1: तो उन्होंने हमारे विश्वास को बनाए रखा है।
0: जी एक साथी कहते हैं, विश्वास दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, विशेष आस या विश्व आस। विश्व है तो आस है, अगर विश्व में हम आस रखते हैं तो ये बात खास है। संसार में हर कोई चाहता है हर इंसान उस पर विश्वास करे, लेकिन वो दूसरों पर जल्द विश्वास नहीं कर पाता। विश्वास किसी व्यक्ति, वस्तु, शक्ति या विचार के सत्य, क्षमता और चरित्र पर बिना किसी संदेह पूर्ण भरोसा करने की मानसिक स्थिति है। उदाहरण स्वरूप कहूँ तो मंदाकिनी जी और सोनाली बिटिया पर मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है कि हमारे कमेंट जरूर शामिल करेंगी। ये मानवीय संबंधों की नींव है जो आपसी रिश्तों, समाज और आध्यात्मिकता को आपस में जोड़कर रखती है। दूसरों की ओर से विश्वास रखने की आस रखने के साथ खुद पर विश्वास यानी आत्मविश्वास होना भी
1: बहुत
0: जरूरी है।
1: जरूरी है,
0: यस,
1: बिल्कुल
0: आई कैन डू इट।
1: बिल्कुल, आत्मविश्वास और विश्वास, ये दो
0: जी
1: शब्द बहुत जरूरी हैं जीवन में,
0: जी
1: खुद पर विश्वास होना और दूसरों पर भी विश्वास करना।
0: जी
1: हाँ, अंधविश्वास नहीं करना चाहिए,
0: जी
1: है ना, उससे हमें अपने आप को बचाए रखना चाहिए, लेकिन विश्वास जीवन में बहुत जरूरी है। एक श्रोता लिखते हैं कि शब्द हमारे विचार आपके में, कितना सुंदर आपने शब्द चुना है विश्वास। विविध भारती के शब्द जब श्रोताओं तक पहुंचते हैं, तो उनके विचारों से मिलकर और भी खूबसूरत हो जाते हैं। कभी कोई गीत याद बन जाता है, कभी कोई बात दिल को छू जाती है, बस यही तो विविध भारती की खासियत है। आवाज आपकी और लिखा हुआ हमारा, जब दोनों मिलकर कुछ पढ़ते हैं तो कुछ मस्त सा रचते भी हैं। और एक श्रोता लिखते हैं कि विश्वासम फलदायकम, एक प्रसिद्ध सूक्ति है जिसका अर्थ है कि विश्वास हमेशा फलदायी यानी सार्थक और परिणाम देने वाला होता है। खुद पर और दूसरों पर भरोसा रखने से मानसिक शांति और जीवन के हर पहलू में सफलता मिलती है।
0: एक साथी कहते हैं, विश्वास एक नींव की तरह होता है जिस पर हमारे सामाजिक और व्यावसायिक रिश्तों की इमारत खड़ी होती है। इंसान के सभी कार्यकलाप, लेन देन, आपसी व्यवहार विश्वास के सहारे चलते हैं। घर में माता पिता को अपनी संतान पर विश्वास रहता है कि वे कोई गलत काम नहीं करेंगे। दुकानदार भी पैसे बाद में आ जाएंगे के विश्वास पर ग्राहक को सामान उधार दे देता है। बिल पर जो भूल चूक लेनी देनी वाक्य लिखा होता है, व्यापारी और ग्राहक के आपसी विश्वास की लिखित गारंटी होती है। बैंक में, नौकरी में तो हर व्यवहार विश्वास के आधार पर ही होता है। सच भी यह है कि विश्वासघात भी वही होता है जहाँ विश्वास होता है। विश्वास के मामले में सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाला
1: घटी
0: सिद्धांत लागू होता है।
1: जी,
0: किसी पर इतना भी विश्वास न करके बाद में पछताना पड़े, और नहीं इतना अविश्वास दिखाए कि आप अपनी ही विश्वसनीयता खो बैठे।
1: बहुत
0: कितना
1: सुंदर,
0: सुंदर उदाहरण
1: बहुत
0: देखिए
1: सुंदर,
0: लिखा है।
1: बहुत सुंदर, कि आप धोखा भी ना खाएं और अविश्वास भी ना करें,
0: जी
1: मतलब कितनी महीन रेखा है ना हर रिश्ते के बीच
0: बीच
1: में,
0: में
1: जो हमें मेंटेन रखनी होती है,
0: जी
1: बैलेंस बनाकर जीवन में चलना
0: जी
1: पड़ता
0: और
1: है,
0: जो बैलेंस बना के रखता है उसका जीवन सफल होता
1: सफल
0: है।
1: होता है।
0: जी
1: तो एक श्रोता लिखते हैं कि जीवन के हर क्षेत्र में विश्वास की आवश्यकता होती है, चाहे वो माता पिता, बच्चों का हो, मित्रों का हो, व्यापार का हो, सफलता की पहली सीढ़ी विश्वास ही है। आत्मविश्वास की जो कमी होती है, वो आत्मविश्वास व्यक्ति को कठिन से कठिन परिस्थितियों से लड़कर आगे बढ़ने की शक्ति देता है, जबकि दूसरों पर सही विश्वास सामाजिक जीवन को सुखमय बना देता है।
0: एक साथी कहते हैं, विश्वास एक ऐसा अदृश्य धागा है जो रिश्तों को मजबूती से बांधे रखता है। इसे न देखा जा सकता है न छुआ जा सकता है, लेकिन इसकी मौजूदगी हर रिश्ते में महसूस होती है। जहां विश्वास होता है वह शब्द कम और भावनाएं अधिक बोलती है। विश्वास पाने में समय लगता है।

0: लेकिन इसे खोने में एक पल भी काफी होता है। इसलिए कि किसी के विश्वास को जितना जितना महत्वपूर्ण होता है उसे निभाना उससे भी अधिक जरूरी है।
1: बिल्कुल सही कहा, बहुत सुंदर हमारे श्रोताओं ने लिखा है,
0: पूरे जीवन का सारी
1: लिख दिया है कि वाकई हम विश्वास जमाते हैं ना सोनाली, पूरी जिंदगी निकल जाती है किसी पर विश्वास बनाते, एक सेकंड लगता है उस विश्वास को तोड़ने में आप एक सेकंड लगाते हैं, ये कितना रिश्तों में सोचिए कदम कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है।
0: एक साथ ही कहते हैं, एक विश्वास ही है जो एक बार टूट जाए तो जीवन भर नहीं जुड़ता, इसलिए सावधान रहे, इसे कभी टूटने न दे।
1: सबसे बड़ी बात ये है, एक श्रोता लिखते हैं कि विश्वास वो अद्भुत और अलौकिक अदृश्य धागे की डोर है जो हमें बांधती है, जिसके हम विश्वास पात्र होते हैं, और इस धागे में जब स्नेह सद्भाव और प्रेम का मांझा चढ़ता है फिर तो दो हृदय नहीं अभी तो उनसे अनुस्यूत समस्त विश्व की दुख दारिद्र्य से रहित हो जाए, और इसमें कोई आश्चर्य भी नहीं होना चाहिए।
0: और अब गीत सुन ले,
1: गीत सुन लेते हैं, हमारे श्रोताओं का भी तो हम पर विश्वास है ना
0: कि गीत सुनवाएंगे
1: बिल्कुल

0: हाँ तो सोनाली, हमारे श्रोताओं ने विश्वास जैसे शब्द पर बहुत अपने सुंदर विचार हम तक पहुंचाए हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि विश्वास एक ऐसा चमत्कारी शब्द है, ये अगर किसी इंसान के पास हो तो वो उस इंसान को खाक से उठाकर फलक पर बिठा देता है। वो इंसान असंभव को संभव कर सकता है। पहला अटूट विश्वास परम पिता परमेश्वर पर, माता रानी पर, दूसरा अटूट विश्वास खुद पर। और मैंने इसी अटूट विश्वास से जीवन में कई लक्ष्य हासिल किए हैं। मैं बताना चाहूँगा कि सखी सहेली की सखी यानी मेरी धर्मपत्नी का विश्वास कभी कभार डगमगा जाता है, तो मैं उनको हौसला बढ़ाता हूँ ये बताने पर, आज जरूर घर पर धर्मपत्नी की डांट सुननी भी पड़ सकती है।
1: जी, एक साथी कहते हैं कि जीवन के हर क्षेत्र में विश्वास की आवश्यकता होती है, चाहे माता पिता और बच्चों का रिश्ता हो, मित्रों संबंध हो या व्यापार हो। सफलता की पहली सीढ़ी विश्वास ही है। आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस व्यक्ति को कठिन से कठिन परिस्थितियों से लड़कर आगे बढ़ने की शक्ति देता है, जबकि दूसरों पर सही विश्वास और सामाजिक जीवन को सुखमय बनाता है।
0: बिल्कुल सही कहा, हमारे बहुत सारे श्रोता विश्वास जैसे शब्द पर अपने विचार लगातार हम पर भेज रहे हैं। और एक श्रोता लिखते हैं वही जो कि विश्वास एक नींव की तरह है जिसे हमारे सामाजिक और व्यवसायिक रिश्तों की इमारत भी खड़ी होती है, और इंसान के सभी कार्यकलाप लेन देन आपसी व्यवहार विश्वास के सारे ही चलते हैं।
1: एक साथी कहते हैं विश्वासम फलदायकम एक प्रसिद्ध सूक्ति है, जिसका अर्थ है कि विश्वास हमेशा फलदायी यानी सार्थक या परिणाम देने वाला होता है। खुद पर और दूसरों पर भरोसा रखने से मानसिक शांति और जीवन के हर पहलू में सफलता मिलती है।
0: बिल्कुल मिलती है, और यही विश्वास है जो सखी सहेली के मंच पर हम कायम रखते हैं, हमारे सखी और सखाओं के साथ विश्वास बनाए रखते हैं और वो भी अपने विश्वास पर पूरा खरा उतरते हैं। तो एक गीत सुन लिया जाए,
1: सुनते हैं
0: और फिर क्या करेंगे हम,
1: व्यंजन की ओर बढ़ेंगे।

0: मित्र, उन्होंने लिखा है कि मैं करीब 25 सालों से विविध भारती सुन रहा हूँ और विविध भारती से जुड़ा हूँ। आपने जो हमारे आसाम के मेखला चादर के बारे में विस्तार से जानकारी दी सारे सखियों को, मुझे बहुत अच्छा लगा।
1: अरे वाह, अभी उससे पहले भी सोनाली आप बता रही थी कि काफी लोग आसाम से सुन रहे हैं कार्यक्रम, और मेखला चादर पर हमने बातचीत की है तो वो काफी खुश भी है
0: जी।
1: अच्छा भी लगता है ना जब हम अपने प्रांत की कोई चीज, वेशभूषा या खान पान पर बातचीत सुनते हैं तो हमें बहुत खुशी भी होती है ना।
0: और एक जैसे साबुत अनाज की बात चली है तो हमारे एक सखी ने लिखा है कि साबुत अनाज से सबसे जो पौष्टिक है ना, उसमें थोड़े से हरे मूंग या काले चने भिगा दे और उसका पानी निकाल दे और अंकुरित हो गए फिर उसमें प्याज, नमक, ककड़ी, टमाटर, नींबू मिलाकर मस्त सा सलाद बनाकर खाए, या फिर ऐसे ही खाए, हमने तो मस्ती में लिख दिया, पता ही नहीं आप पढ़ेंगी या नहीं पढ़ेंगी।
1: अरे देखिए, आपने मस्ती में लिखा और हमने इसको गंभीरता से ले भी लिया है ना, कि भाई ये एक महत्वपूर्ण बात है जो हम रोजमर्रा की रूटीन के खान पान में शामिल कर सकते हैं। बहुत ज्यादा अगर हम नहीं बना सकते साबुत अनाज का कोई व्यंजन तो हम इसे तो कम से कम शामिल कर ही सकते हैं,
0: और इसे बनाने में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं है, बस उसे रात को भिगोना है हमें
1: और सुबह ककड़ी और प्याज, टमाटर, धनिया डाल के उसको बना के हल्का बॉईल करके आप खा सकते हैं, नमक और काली मिर्च डालकर भी।
0: और अगर वो बच गए तो उसको पीस लिया, उसके चीले बन गए
1: क्या बात है। तो एक श्रोता लिखते हैं कि होल ग्रेन दलिया को, यानी साबुत गेहूं का जो दलिया है, दूध या सब्जियों के साथ पकाकर एक पौष्टिक नाश्ता तैयार किया जाता है। ये पाचन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। मसाला ओट्स, ओटमील, साबुत जई को पानी या छाछ में सब्जियों के साथ उबालकर तीखा या नमकीन दलिया भी बनाया जा सकता है। और ओट्स को पीसकर उसमें बेसन, हरी मिर्च और सब्जियां मिलाकर तवे पर चीला बनाएं तो एक झटपट हेल्दी ब्रेकफास्ट तैयार हो सकता है।
0: साथ ही रागी या मड़ुआ भी कहते हैं, इसके डोसे, लड्डू, रागी कैल्शियम का बेहतरीन स्रोत है। इसके आटे से बने कुरकुरे डोसे, कम घी, गुड़ वाले लड्डू भी बड़े चाव से खाए जाते हैं। वैसे ही जवार की रोटी, सर्दियों के मौसम में साबुत अनाज का खिचड़ा, यानी जो जवारी है या फिर बाजरा है, इसका खिचड़ा कहते हैं, इसे खिचड़ी की तरह बनाया जाता है, उसे खिचड़ा कहते हैं। और गरम गरम इसकी रोटी भी बनाई जाती है बाजरा और जवार की, और इसे गुड़ और मक्खन के साथ परोसा जाता है।
1: बिल्कुल, जब खिचड़ी की बात चली है ना तो हमारे राजस्थान में देखा जाता है कि एक अंगीठी पे बड़े पतीले पर इसको पानी में डालकर साबुत अनाज को पकाने छोड़ दिया जाता है, वो धीरे धीरे पकता रहता है, पकता रहता है घंटों। फिर उसमें नमक और देसी घी डालकर वो लोग खाते हैं, तो देसी भोजन के रूप में इसको इस्तेमाल करते हैं और काफी ताकतवर होता है।
0: बहुत ताकत होती है, बचपन में यही सब चीजें खा खा के हम लोग जो बड़े बुजुर्ग है ना, ताकतवान बने।
1: और इसके साथ वो दही या छाछ का प्रयोग भी करते हैं, हमने देखा हमारे पड़ोसी लोगों को कि वो एक बड़ा डोलू भरकर छाछ उसमें डाल के और उस खिचड़ी का सेवन करते थे, तो बाकी वो गायों का काम करते थे तो उनकी शक्ति देखने लायक होती थी।
0: एक साथ ही कहते कि साबुत अनाज के व्यंजनों के में बाजरे के आटे के लड्डू बड़े ही पौष्टिक और स्वादिष्ट होते हैं और बिल्कुल गेहूं के आटे के लड्डू की तरह ही बनाए जाते हैं, बस इसमें गुड़ डाला जाता है, तो गुड़ तो डालना ही चाहिए।
1: हाँ बिल्कुल, गुड़ डाल दीजिए वो ज्यादा अच्छा है। एक लिखते हैं, साबुत गेहूं का दलिया आप बना सकते हैं और पाचन के लिए अच्छा है। और ज्वार की रोटी के बारे में भी लोगों ने काफी कुछ लिखा है। एक लिखते हैं, भिगोए हुए इन साबुत अनाजों को आप थोड़ा थोड़ा मोटा दरदरा पीस लें और उन्हें हींग, नमक, हरी मिर्च बारीक काट कर मिला लें। अब इसके छोटे छोटे टिकिया बनाकर या तेल लगे ट्रे या थाली में लगाकर आप इसे स्टीम कर सकते हैं। ठंडा होने पर इसे चकोर टुकड़े काट लें या इन टिकियाओं का जो स्टीम है किया गया है उन्हें आप सेलो फ्राई करके भी खा सकते हैं। ये ऊपर से कुरकुरे और भीतर से सॉफ्ट होते हैं, इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें इन्हें ज्यादातर आप भाप दें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा।
0: और अच्छी मजेदार सी चटनी बना लो तो भाप वाले भी बिना तले बिना भुने वैसे ही
1: बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि डीप फ्राई अगर आप रोज खाएंगे तो फिर वो नुकसान करने लगता है। और साथ में आप कह रहे हैं कि प्याज, टमाटर, ग्रेवी डालकर इसकी सब्जी भी बना सकते हैं।
0: एक साथी ने लिखा है कि साबुत अनाज के मूंग के लड्डू, एक कटोरी खड़ा मूंग ले, उसे अच्छे से धोकर एक सूखी कढ़ाई में भून ले और जब मूंग लाल हो जाए तो धीमी आंच करके जब ठंडा हो जाए तो मिक्सी में पीस ले, छान ले, फिर आधा कटोरी शुद्ध घी में मूंग के आटे को 10 मिनट तक भूने और बाद में एक कटोरी पीसी चीनी और अपने मनपसंद सूखे मेवे डालकर लड्डू बांध ले। लड्डू बांधते समय घी कम लगे तो थोड़ा घी और डाल दे, अपने स्वादिष्ट लड्डू तैयार हो सकते हैं। साथ ही चना जोर गरम भी बना सकते हैं ना, कि काबुली चने को भिगो के उबाल लिया और बस उसको थोड़ा थोड़ा ऐसा दबा लिया, प्रेस कर लिया, उसे चपटा चपटा कर लिया और बस उसमें सारे प्याज टमाटर डाल के और उसमें चाट मसाला डाल के और वैसे ही खा सकते हैं नाश्ते में। उसको तलते भी हैं और कुछ कुछ लोग सेक लेते हैं,
1: सेक ले वो जैसा आपको पसंद हो, लेकिन अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से आप खा रहे हैं तो ज्यादातर उसको

0: डीप फ्राई नहीं करें
1: जी,
0: है ना। तो आज तो बहुत शानदार और जानदार रेसिपी हमारे श्रोताओं ने हमें लिख भेजी और हम उम्मीद करते हैं घर पे बना के खाने वाले हम सभी, है ना
1: जी।
0: और अब एक गाना सुन ले
1: जी।

0: मंदाकिनी जी, हमारी एक सखी लिखती है कि हमने मेखला पहनकर स्टूडियो में फोटो खिंचवाई थी और वहाँ से एक आसामी रेशम सिल्क की साड़ी भर लेकर ले आए थे, और एक सखी ने कहा कि हमने मेखला नहीं खरीदी पर हमने आसाम सिल्क की साड़ी भी खरीदी थी और फोटो खिंचवाई तो हमेशा के लिए वो जो हंसता हुआ नूरानी
1: चेहरा था वो कैद हो गया है। और यकीनन सोनाली, तुम्हारी खूबसूरती पता है क्या है? तुम्हारा ये हंसता हुआ नूरानी चेहरा ही,
0: और आपका भी।
1: ये तो एक दूसरे की तारीफ करना हो गया। हमारे सखी और सखा कहेंगे कि सोनाली और मंदाकिनी बस एक दूसरे की तारीफ ही कर दी है।
0: हम श्रोताओं की भी तारीफ करते हैं और उन्हें शुक्रिया कहते हैं
1: बिल्कुल,
0: कि आपके इतने सुंदर सुंदर कमेंट्स के कारण कार्यक्रम में चार चांद लग गए।
1: बिल्कुल, और उन्होंने हमें हंसने पर मजबूर भी कर दिया। तो चलिए, वो चाहे मेखला चादर पहने या किसी भी प्रांत का कोई भी आप वस्त्र पहने, लेकिन आपका चेहरा हमेशा हंसमुख होना चाहिए और
0: खिलता मुस्कुराता रहना चाहिए।
1: तो हंसिए और हंसाइए, और अब इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी और सोनाली को,
0: पाठक को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: श्रोताओं नमस्कार। आज के मेहमान कार्यक्रम में आइए सुनते हैं कार्टूनिस्ट डॉक्टर देवेंद्र शर्मा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मंदाकिनी जोशी। आज के मेहमान कार्यक्रम में आप सभी का हम स्वागत कर रहे हैं। दोस्तों कार्टून और कार्टूनिस्ट कला के ऐसे पहलू हैं जो बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाते हैं। बेजान रंगों और साधारण रेखाओं में जान फूंक कर जो दुनिया को हंसते हंसते बहुत कुछ सिखा जाए, वही असली कार्टून है और उसे बनाने वाला कार्टूनिस्ट। तो विविध भारती के स्टूडियो में आज हमने एक ऐसे ही शख्स को, ऐसी ही शख्सियत को, ऐसे ही मेहमान को आमंत्रित किया है जो कार्टूनिस्ट हैं और अपनी इस कला से हमें सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं और हंसाते भी हैं। तो आप हैं जाने माने कार्टूनिस्ट डॉक्टर देवेंद्र शर्मा। देवेंद्र जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: वाह मंदाकिनी जी, आपको भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार।
1: जी नमस्कार।
2: और विविध भारती के असंख्य श्रोता जिन्हें हम बचपन से देखते सुनते प्रेम करते आ रहे हैं, उन सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम और आपका बहुत अभिनंदन है।
1: विविध भारती में आके आपको कैसा लग रहा है?
2: मुझे विविध भारती में आकर अपने एक पुराने चिर स्वप्न को पूरे होने जैसा लग रहा है। मैंने शुरू से विविध भारती को सुना, इसके साथ ही सांसें ली और मेरे क्रिएशन के बहुत सारे जो लम्हे हैं वो विविध भारती के साथ ही बीते हैं।
1: जी जी,
2: शुरू से इसके सारे कार्यक्रम वंदन वार से लेकर हवा महल और अच्छा, छाया गीत, ये सभी देखते सुनते और ये साथ साथ हमारी पढ़ाई भी चलती थी और जब कार्टूनिंग की तब भी विविध भारती हमारा साथ ही रहा। तो आज यहाँ आकर और जब आप सब लोगों से मिल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे स्वप्न लोक में विचरण कर रहे हैं।
1: तो आपके लिए आपके सपने पूरे होने जैसा है ये।
2: जी बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल।
1: तो देवेंद्र जी, मैं अभी आपकी किताब देख रही थी धूप छांव, आप तो लेखक भी हैं और आपने इसमें उन नाटकों को लिया है जो हमारे विविध भारती के हवा महल कार्यक्रम से भी आए हैं।
2: जी हाँ जी।
1: तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कार्टून के बारे में तो आपकी बातचीत हमें करना ही है, तो लेखन की शुरुआत कब हुई?
2: लेखन की शुरुआत और ये कार्टून्स की ये कहना मुश्किल है कि कैसे, क्योंकि लगभग ये दोनों ही साथ ही चले। और शुरुआत में मैं कविताएं और लेख भी लिखा करता था अपनी समझ के हिसाब से, छोटे छोटे लेख कि लू लगने से अपने आप को कैसे बचाएं, या रक्षाबंधन के त्यौहार का महत्व, या अखबारों जो आते हैं बाल स्तंभों में आई होली आई, उस तरह के ये रचनाएं, ऐसी कविताएं लेख लिखते थे और साथ ही कार्टून्स भी बनाते थे। तो लिखने की शुरुआत का सिलसिला ऐसे जमा कि आकाशवाणी इंदौर से बच्चों की सभा प्रसारित होती थी हर संडे, तो उस वहाँ जाने का एक लिंक बना और मैं वहाँ पर जाने लगा नियमित। और वहाँ मैंने देखा किस तरह से बच्चे अपनी कविताएं पढ़ते हैं, अपनी बात कहते हैं धीरे धीरे धीरे। और वहाँ जो संयोजिका थी रंजी सतीश जी, उन्होंने विशेष मुझे स्नेह किया और उन्होंने कहा कि बेटा तुम कार्टून्स भी बनाते हो तो तुम रेडियो कार्टून बनाओ।
1: अच्छा।
2: हाँ, तो वो अपन प्रसारित करेंगे। तो रेडियो कार्टून जो है उनके मार्गदर्शन में और कुछ अपनी सूझबूझ से हम लोगों ने डेवलप किया। तो एक बहुत जल्दी जल्दी जो पात्र बोलते थे बड़ी अपनी चुलबुली भाषा में, तो उस तरह से हमने नटखट्टू नाम का एक रेडियो कार्टून बनाया था और उसकी दो तीन कड़ियां प्रसारित हुई थी। तो इस तरह आकाशवाणी का माहौल जो है उसमें घुलने मिलने का अवसर मिला और ये सब साथ साथ ही चलता रहा सिलसिला। उसके बाद में फिर जब आगे चल के फिर ये महिला सभा में या युवाणी में, तो रीजनल प्रसारण के लिए फिर नाटिकाएं मैंने लिखी और बस ये रुचि बढ़ती गई, सिलसिला चलता गया।
1: तो हम कह सकते हैं कि बहुत पहले से ही रेखाओं और आकृतियों में आपकी दिलचस्पी थी
2: जी,
1: लेखन और कार्टून के रूप में बाहर निकली।
2: बस बस यही समझ लीजिए। अब जैसे कार्टून्स में जो ऊपर कैप्शन लिखे होते हैं वो भी अपनी तरह का एक छोटा लेख ही होता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत कुछ गागर में सागर का काम करता है।
2: जी।

0: आपने बिल्कुल सही कहा।
1: जी, तो कार्टूनिस्ट बनने के लिए हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि किन-किन बातों का होना जरूरी होता है, मतलब कौन से गुण होने चाहिए कार्टून बनाते वक्त एक कार्टूनिस्ट में।
0: सबसे पहले तो उसको जिसे हम सेंस ऑफ ह्यूमर कहते हैं, हास्य की समझ, वो ज़रूरी है कि हमारे आचरण में वो चीज़ आ जाए कि हम जब बात करें तो थोड़ा हंसें बोलें, या कोई अगर हंस भी रहा है या उसने हम पे कटाक्ष भी किया तो हम रोने ना लग जाएं या तुनक मिजाजी ना बताएं, बल्कि उस चीज़ को एक कहते हैं हेल्दी वे में लेना चाहिए। और उससे ही धीरे धीरे एक वो इंसान का एक लहजा विकसित होता है, स्टाइल बनती है कि किस तरह से हम किसी को चोट पहुंचाए बिना हम कार्टून बना सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हास्य की समझ, उसके बाद में ऑब्जर्वेशन, अपने आसपास की चीज़ों को देखना, अपने रीति रिवाजों को देखना, घटनाओं पर नज़र रखना। तो ऑब्जर्वेशन और फिर पढ़ना बहुत सारा कि पहले हमारे साहित्यकार क्या लिख गए हैं, क्योंकि हम जब कार्टून बनाते हैं उसमें खबरें तो ठीक है, हमें खबर मिल गई, ताज़ा खबर उस पर बनाना है, लेकिन जो एक सलीका होता है, जो सीमा होती है, उसके लिए हम साहित्य, जो हमारे पहले के लोग काम कर गए हैं अपने कथ्य से, अपनी
1: जी
0: भाषा से,
1: जी
0: उस सबका हमको एक समझ मिलती है और समावेश करते हैं कार्टून
1: बहुत
0: में।
1: बहुत गहरी बात कह दी आपने
0: जी
1: देवेंद्र जी,
0: बिल्कुल
1: कि सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत जरूरी है और आसपास की घटनाओं पर।
0: ठीक है।
1: तो सबसे पहला कार्टून आपने कौन सा बनाया था और वो दिमाग में कैसे आया था?
0: सबसे पहला कार्टून मैंने बनाया, उसका मतलब किस्सा ये है कि पहले मैं दीवारों पे, दरवाज़ों पे, सब तरफ कार्टून्स बनाया करता था,
1: अच्छा,
0: क्योंकि छोटे थे
1: तो
0: तो
1: घर की दीवारें आपने
0: घर
1: खराब
0: की
1: कर दी
0: दीवारें
1: थी।
0: बहुत ख़राब करते थे। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो घर के बड़े थे, माता पिता, वो लोग उसको बहुत ही खेल भावना से लेते थे, कभी नाराज़ नहीं हुए।
1: अच्छा।
0: उन्हें लगा कि चलो एक कला जो है वो जन्म ले रही है और विकसित हो रही है दीवारों पर ही सही। तो ये सिलसिला चलता था और उन लोगों ने आगे बढ़ाया, लेकिन हमारे एक ट्यूटर थे, उन्होंने कहा कि भाई तुम कब तक ये दीवारें ख़राब करोगे, तो कुछ कागज़ पे बना के और अखबारों तक पहुँचो, तो ये छपने का सिलसिला होगा। तो उन्होंने ऐसी राह बताई, तो फिर हम 14 वर्ष के थे तो पहुँच गए अखबार में। तो वहाँ संपादक जी ने भी सब देखा, कार्टून्स देखे, कविताएँ देखी, तो बोले कि हम तुम्हारे बेटा कार्टून भी छापेंगे और आज से तुम बच्चों के स्तंभ के संपादक भी हुए।
1: अरे क्या बात
0: तो
1: है।
0: मैंने पूछा कि संपादक क्या होता
1: हाँ
0: है,
1: हाँ हाँ बिल्कुल,
0: तो
1: 12 साल का
0: उन्होंने,
1: बच्चा है,
0: हाँ
1: उसका
0: वही
1: सवाल
0: है,
1: यही होगा।
0: तो उन्होंने यही कहा कि जो रचनाएं आती हैं बॉक्स में इकट्ठी होती हैं, कविताएं, कहानियां, चुटकुले, उनको तुम्हें देखना है और उन्हें बहुत ज़्यादा, अगर वो लंबे चौड़े हों तो उन्हें थोड़ा छोटा करना है, उनकी अशुद्धियां दूर करना है, और सामयिकता के हिसाब से कि जैसे दिवाली आ रही है तो ऐसा नहीं हो कि तुम होली की रचना रिलीज कर दो, तो वो करना
1: जी
0: है,
1: जी
0: और कार्टून्स भी हम तुम्हारे छापेंगे। इस तरह सिलसिला शुरू हुआ। और पहला कार्टून जो था, चूंकि इन दिनों करवा चौथ आ रही थी, तो मैंने सोचा क्या बनाऊं, तो मैंने बनाया कि एक व्यक्ति है, वो घर में बैठा अखबार पढ़ रहा है, उस व्यक्ति के सिर पे बाल नहीं हैं
1: अच्छा।
0: और उनकी जो पत्नी देवी हैं वो खिड़की के बाहर खड़ी देख रही हैं, हाथ में पूजा की थाली है और वो चंद्रमा ढूंढ रही हैं चांद की
1: जी
0: तरह। तो छोटा बच्चा एक आया और वो आके कहता है कि माँ माँ आप बाहर चांद कहाँ ढूंढ रही हो, वो तो हमारे घर में मौजूद है। उसका इशारा पिता के सिर की तरफ
1: जी
0: था।
1: जी
0: ये इस तरह से कार्टून पहला बना था।
1: जी तो बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि आपका पहला कार्टून इस रूप में आया।
0: जी
1: जब बात पहले कार्टून की चली है तो इस कार्टून का पहला गीत भी आपकी पसंद का सुन लेते हैं हम,
0: जी
1: बताइए।
0: पहला गीत तकदीर फिल्म का, वो मुझे बहुत पसंद है, आइए बाहर को हम बांट लें, जिंदगी के प्यार को हम बांट लें।
1: क्या बात है, बहुत सुंदर गीत है। तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: तो देवेंद्र जी, आपने बताया कि 14 साल की उम्र में आप एक अखबार में संपादक के रूप में भी लग गए, बाल संपादक के रूप में, और आपने काम करना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे इस कला को आपने विकसित किया होगा। जब आप एक बाल संपादक बन गए, बहुत सारी चीज़ों के संपर्क में आए, खुद भी आपने कार्टून बनाना लगातार बनाए रखा, तो इस कला शैली को विकसित होने में आपकी नज़र में आपको कितना समय लगा?
1: विकसित होने में इसे समय की अवधि में इसलिए नहीं मान सकते कि ये विकास होना एक सतत प्रक्रिया है जो चलती रहती है हमेशा।
0: जी
1: हम नई चीज़ों को अपने में समाहित करते हैं कला में, और वो फिर हर दिन एक नई ताजगी, नयापन उसमें महसूस होता है। और वैसे शुरू के कुछ शायद 1-1.5 साल ऐसे लगे होंगे जब काम करते करते लगा कि ये मेरी शैली हो सकती है, मैं इस तरह ही कार्टून बनाऊं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, इसमें सब बात आ जाती है, प्रमुखता से किन पात्रों को उभारना है, बैकग्राउंड में क्या रखना है। और फिर मैं एक मेरी एक हमेशा कोशिश रहती है कि कार्टून का जो कोना कोना है उसमें से हास्य झल के, जाने कि एक गमला रखा है या कहीं ऊपर एक झाड़ फानूस भी है या कोने में एक पिल्ला बैठा हुआ है तो ये सब
0: जी, ये सभी
1: तो
0: चीजें पात्र बहुत कुछ कहते हैं
1: जी हाँ,
0: जब हम
1: बिल्कुल
0: इन
1: बिल्कुल,
0: कार्टून्स पर नजर डालते हैं। तो
1: ये
0: मतलब वो
1: बिल्कुल
0: जो
1: सही है।
0: पिल्ला बैठा हुआ है वो भी कुछ कह रहा ही होता
1: हाँ,
0: है।
1: कहता है कई बार उससे जो संवाद, मान लो हम किसी बड़े से नहीं कहलवा सकते
0: जी
1: हैं,
0: जी
1: है ना, और उसको इनडायरेक्ट वे में कहलवाना है तो कहीं पिल्ला बोल देता है, कहीं ऊपर से उड़ती हुई चिड़िया आती है वो बोल देती है
0: बिल्कुल सही कहा।
1: जी
0: तो आप जब एक खाली कैनवास या कागज आपके सामने होता है, तो हर दिन की अगर हम बात करें तो पहला विचार क्या आता है आपको?
1: कागज़ और कैनवास जब खाली होता है, पहले तो विचार आता है उसके बाद कागज़ आता है। और वैसे भी खाली कागज़ और कैनवास सहन नहीं होता, ऐसा लगता है कि अपने को बुला रहा है और कह रहा है कि आओ मुझ पर, आप कुछ ना कुछ बनाओ और रंग से आप भर दो मुझे, ताकि मैं पाठकों के अंदर में जो है रंग उसकी सृष्टि करूं, बिखेरूं रंग को
0: बहुत सुंदर। जी
1: मैं
0: जी जी तो हर
1: तो
0: दिन आप एक कार्टून बना लेते हैं या हर दिन ये रचना होती है?
1: जी हाँ, हर दिन, क्योंकि ये समय के साथ चलना होता है। जैसे अगर आप अखबार में हैं, दैनिक अखबार में हैं, तो रोज़ आपको बनाना है, और अगर आप पत्रिका में हैं, पाक्षिक पत्रिका में, तो इंसान थोड़ा सा सुस्त सा हो जाता है कि आराम से आज नहीं तो अपन फिर बना दें, 15 दिन में ही तो निकलनी है।
0: बिल्कुल
1: तो मेरा कुछ मिजाज इस तरह से डेवलप हुआ कि, और स्पीड भी ऐसी बनी कि खूब सारे कार्टून एक दिन में, तो प्रदेश का सबसे बड़ा जो अखबार है उसमें जब मेरी एंट्री हुई तो वहाँ पर यही था कि जब

0: शुरू शुरू में मैं गया तो एक पहला कार्टून बना कर दिया, संपादक जी खुश हुए कि हाँ इसको ले लेंगे। थोड़ी देर में हम दूसरा बना के फिर ले गए, वो बोले ठीक है इसे फलां पेज पे ले लेंगे। फिर पहुंच गए तो उन्होंने हंस के कहा, श्रीमान जिस गति से आप बना रहे हैं उस गति से हम नहीं छाप पाएंगे। तो अच्छा। आप थोड़ा आहिस्ता। तो मैंने कहा
1: मतलब आप इतनी तेजी से इतनी रफ्तार के साथ एक दिन में कार्टून।
0: जी हाँ जी हाँ, मेरा 17 कार्टून्स एक दिन में, इसका मतलब है हाईएस्ट जो रिकॉर्ड। हाँ,
1: 17 कार्टून आप एक दिन में
0: बना, एक दिन में बनाने का रिकॉर्ड है। मतलब कि वो भी बस तब हुआ था कि उस अखबार विशेष का जब दीपावली अंक आ रहा था, उन लोगों ने कहा कि हमें अब जल्दी से अंक निकालना है क्योंकि हम लेट हो रहे हैं। तो कल से शुरुआत, मैंने कहा आज से भी कर सकते हैं। तो उस दिन के जो अगले पन्ने का कार्टून, फिर एक जो साप्ताहिक मैडम मोहिनी आती थी, बड़ा पॉपुलर कार्टून कॉलम है वो, तो उसका स्ट्रिप उसकी तैयार की। फिर उसके बाद में अंतिम पत्र के साथ का कार्टून, फिर उसके बाद में राशि के 12 कार्टून, 12 सिंह राशि का हमने बना दिया। चपरासी आया बजट लेके, अंदर पहुंचा, वो मशीन पे जा रहा है, तब तक हमने कन्या राशि का बना दिया। इस तरह से ये सब कार्टून।
1: बहुत सुंदर। तो आपके विषय क्या रहते हैं इन कार्टून्स के, हर बार क्या विषय चुनते हैं आप?
0: विषय वही जो हमारे आसपास बिखरे होते हैं रोजाना के, जैसे खबरें अखबार की या जो बाहर की जो हम घटनाएं देखते हैं। हाँ, सामाजिक विषय होते हैं, राजनीतिक भी होते हैं, वही सब सारे विषय होते हैं। और बस वो पाठक को गुदगुदा दें, बस कोशिश यही रहती है कि बहुत ज्यादा दुरूह और जटिल ना हो।
1: हाँ।
0: और इतने भी सिंपलिसिटी उनमें, ऐसे भी ना हो कि सड़क छाप नजर आए
1: जी,
0: वो चीज है।
1: मतलब चुटकुला भी ना लगे।
0: हाँ,
1: आप वो किसी जोक को सुना रहे हैं ना, ऐसा भी ना लगना कि जोक्स नहीं है, क्योंकि ये एक बारीक अंतर है जोक्स और कार्टून के मध्य।
0: कार्टून्स में बिल्कुल
1: सही है। कार्टून कला क्या है ये जानना बेहद जरूरी है। तो कई बार ऐसा भी होता होगा देवेंद्र जी, आपने कहा कि आप एक दिन में 17 कार्टून्स बना लेते हैं या लगातार बहुत तेजी के साथ बनाते हैं, कभी ऐसा आया कि दिमाग खराब है या गुस्सा है या परेशान है और कोई विचार सूझ ही नहीं रहा है, ऐसी स्थिति कभी आई आपके सामने?
0: ऐसी आ सकती थी, लेकिन पता नहीं ईश्वर ने मुझे शाप देकर भेजा है। यानी कि घर में आप समझ लीजिए कि बुरी से बुरी दुर्घटना ऐसी कोई हुई हो।
1: हाँ।
0: जबकि हमारे यहाँ पर नानी हमारी नहीं रही, उस दौर में भी और कोई हो तो 13 दिन छुट्टी लेके बैठ जाए, लेकिन हम दूसरे दिन गए और फिर चूंकि अभी हंसी वाला मामला है तो पता नहीं कहाँ से कौन सी बत्ती जलती है और आप वही चीज़ बनाकर आते हैं और लोगों को मालूम भी नहीं रहता कि इनके परिवार में क्या हुआ है। जाके अपना काम करते हैं हंसी खुशी, क्योंकि वो काम है ईश्वर ने सौंपा है तो करना है। वो बात है। और
1: बहुत बड़ी बात, यानी आप पूरी तरह से समर्पित हैं अपनी कला के प्रति।
0: जी हाँ बिल्कुल।
1: तो इस कार्टून की अगर हम बात करें, आज मानव जीवन में क्या उपयोगिता है जब डिजिटल युग आ गया है, इतने प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, दुनिया भर के समाचार, दुनिया भर की खबरें और अनाप शनाप भरा हुआ है।
0: हाँ,
1: जहाँ ऐसे में एक छोटा सा कार्टून जो एक अखबार के कोने में, पत्रिका के कोने में कहीं होता है बैठा हुआ, उसकी क्या उपयोगिता लगती है आपको?
0: कार्टून की उपयोगिता मंदाकिनी जी शुरू से बहुत रही है और आज के समय में तो उपयोगिता इसकी काफ़ी है, क्योंकि आज हर इंसान जिसे हम देखें वो अपने तनाव में, समस्याओं में घिरा हुआ है, उसको टेंशन है। ऐसे में अगर वो किसी कार्टून के टच में आता है तो उसके चेहरे पर जो एक हल्की सी मुस्कान आती है, वो रिलैक्स हो जाता है। तो ये उस कार्टून की सफलता और उपयोगिता है, क्योंकि अगर वो हंस देता है तो उससे मतलब राहत तो मिलती है उसको, और अपने टेंशन से लड़ने के लिए, समस्याओं से लड़ने के लिए उसको एक नई शक्ति मिलती है, ताजगी मिलती है, वो कार्टून की ही देन होती है।
1: और आज भी इसकी उपयोगिता
0: बिल्कुल बिल्कुल बनी हुई, क्योंकि हम देखते हैं ना कि अगर हम हंस दिए तो माहौल कितना हल्का फुल्का हो जाता है, है ना, और नहीं हंसेंगे तो बोझिल हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज ये कि हंसने की जो देन है, हास्य का जो उपहार है, ईश्वर ने मनुष्य को ही दिया है। हमने कभी वॉल्ट डिज्नी के कार्टून के अलावा किसी कुत्ते को हंसते हुए नहीं देखा या किसी चूहे को हंसते नहीं देखा
1: है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो जब हास्य की बात चली है तो क्या कार्टून में हास्य अधिक होना चाहिए या व्यंग्य?
0: हाँ, ये प्रश्न भी आपका बहुत अच्छा है और अक्सर लोग इस अनुपात को नहीं कायम रख पाते हैं, लेकिन मैंने इसको एक अनुपात मैंने अपना तय कर रहा है कि उसमें व्यंग्य भी होना चाहिए और उसमें हास्य भी होना चाहिए, ताकि सभी को कुछ ना कुछ मसाला मिलता रहे। और फिर अपन कहते हैं ना कि कोई कड़वी बात भी हो तो उसको मीठी चाशनी में अगर लपेट कर प्रस्तुत करते हैं तो उसका असर अधिक होता है और उसका आनंद भी रहता है। तो कार्टून्स में भी यही किया जाता है। जैसे कि कोई समस्या है, मान लीजिए उसको अगर व्यंग्य

0: से हम कहें तो वो कड़वा भी हो सकता है, वो क्रूर भी हो सकता है, और उस शुष्क भी होता है वो।
1: जी
0: लेकिन अगर उसमें हास्य हमने डाला है तो फिर वो सरस हो जाएगा, और बात रहेगी वही लेकिन उसका कहने का एक तरीका बदल जाएगा, तो लोग
1: बिल्कुल
0: हंसते हंसते उस चीज़ को ग्रहण करेंगे,
1: जी,
0: और सिस्टम सुधारने के लिए हमने जो सोचा है वो बात जहाँ जानी है वो पहुँच भी
1: चली भी
0: जाएगी,
1: जाती
0: बस
1: है।
0: पहुँच
1: बिल्कुल
0: जाती
1: सही
0: है।
1: कहा आपने। और बड़ा गुदगुदाते हैं ये कार्टून्स। तो
0: हाँ वो
1: एक
0: तो
1: दो
0: है।
1: अपने कार्टून्स के बारे में बताइए आप, कि जहां आपको लगा हो कि मैंने इसमें हास्य और व्यंग्य का बहुत ही संतुलित प्रयोग किया है।
0: जी हाँ, जैसे हम सुनते हैं ना कि ये जो अक्सर देखा भी गया है कि किसी को कुर्सी मिल गई,
1: हाँ
0: मान लीजिए नेता को मिल गई, तो उस कुर्सी से उसको मोह हो जाता है, उसे सत्ता का मोह भी हम कहते हैं, प्रतीक में है कुर्सी, तो उस कुर्सी को मुश्किल से ही जब वो हासिल होती है तो छोड़ता भी इंसान मुश्किल से। इस पर
1: जी
0: मैंने एक कार्टून बनाया था कि एक नेता महोदय हैं, वो अपनी कुर्सी पर कस कर बैठे हुए हैं, उसके हैंडल वगैरह पकड़े हुए, इतने उनका नौकर आया कुर्सी झाड़ने के लिए कपड़ा लेकर, तो वो कह रहा है कि मालिक आप थोड़ा सा हट जाएं तो मैं कुर्सी को झाड़ दूँ।
1: जी
0: तो नेताजी ने क्या किया, ये 3 फ्रेम्स में कार्टून, दूसरे फ्रेम में वो ऊपर उठ गए, कुर्सी के हत्थे उनने कस के पकड़ लिए हैंडल और पूरे ऊपर उठ गए हैं, और कह रहे हैं कि लो भाई तुम कुर्सी झाड़ लो पर इसको छोड़ूंगा तुम्हें बिल्कुल नहीं। तो
1: जी
0: ये
1: जी
0: एक वृत्ति की तरफ हमने संकेत भी दिया और हंसी हंसी में वो बात भी हो गई।
1: कह दी। तो
0: जी
1: चलिए अभी एक गीत आपकी पसंद का हम सुन लेते हैं।
0: हाँ, सागर फिल्म का गीत है जिसे SB बालासुब्रमण्यम ने गाया है, सच मेरे यार है बस
1: बस
0: वही
1: यही
0: प्यार
1: प्यार
0: है।
1: है।
0: हाँ
1: बहुत सुंदर और
0: जी
1: गहरा गीत है,
0: जी
1: एक दार्शनिक गीत है। कमल हासन साहब पर्दे पर दिखाई देते
0: हाँ
1: हैं,
0: बिल्कुल
1: बहुत
0: बिल्कुल।
1: सुंदर।
0: सच

0: तो देवेंद्र जी, आपके कार्टून्स के बारे में हम बात कर रहे हैं और बहुत ही शानदार कार्टून्स है जिन्हें हम जब जब पढ़ते रहे हैं तो लगता है कि गुदगुदाहट होती ही है। कार्टून्स बनाते समय एक कार्टूनिस्ट को कैसा माहौल चाहिए होता है, मतलब वो किस तरह का माहौल पसंद करता है?
1: जैसे हर रचनाकार की पहली शर्त होती है रचना करने के लिए कि एकांत हो, शांति हो, वही कार्टून के वक्त भी बनाते वक्त भी मुझे यही लगता है कि वहाँ शोरगुल ना हो थोड़ा, ताकि कंसंट्रेशन हो सके। और उसके लिए बस मैंने सोचा, हमेशा शांति तो महसूस नहीं होती, तो वहीं फिर आपकी विविध भारती काम आती है।
0: अच्छा, कैसे?
1: रेडियो एक छोटा सा ट्रांजिस्टर है मेरे पास में, वो बजता रहता है और उसमें जो संगीत की लहरियां निकलती हैं बस उसी परिधि में हमारा ध्यान होता है और बस आराम से कार्टून बन जाता है। और यही विधि जब मैं पढ़ाई करता था तब भी यही सब चलता था कि धीमे धीमे रेडियो बज रहा है और आप पढ़ाई कर रहे हैं, अपने पाठ याद कर रहे हैं। तो कार्टून के लिए भी एक तो संगीत हल्का हल्का मध्यम संगीत हो और मंदाकिनी जी की आवाज़ हो
0: और शुक्रिया,
1: और साथ में अगर चाय का गर्म प्याला मिल जाए
0: अरे वाह,
1: तो ये बहुत अच्छी बात है।
0: आपने बहुत ही क्लासिक तरीके से बात समझाई है। वाकई ये एक माहौल एक कलाकार को चाहिए होता है, चाहे वो लेखक है, चाहे कार्टूनिस्ट है, या वो सिंगर है, कोई भी कलाकार।
1: बहुत थोड़ी सी रिक्वायरमेंट होती है, एक छोटी सी जगह में बैठ के अपना काम बस हो जाता है कंप्लीट बस।
0: तो क्या कार्टूनिस्ट के जरिए जब आप लोगों को हंसाते हैं तो आपको खुद भी क्या खुश मिजाज होना पड़ता है कार्टूनिस्ट को पहले?
1: बिल्कुल होना पड़ता है, उर्वर भूमि जो होगी उसी में तो फिर अच्छा पौधा खिलेगा, फूल खिलेगा। तो हंसना हंसाना तो बहुत ज़रूरी है, और बल्कि मुझे लगता है कि जब आइडिया हमने जब चित्रित कर लिया या आइडिया के टच में आए तो पहले हमारा खुश होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें लगता है कि हाँ हम खुल के हंस दिए, हमें रोम रोम पुलकित हो रहा है, तब लगता है कि ये अब वेल टेस्टेड हो गया और ये जाकर ये पाठकों को ज़रूर ये गुदगुदाएगा और बात जो हमारी कहना है वहाँ तक पहुँचेगी।
0: सबसे बड़ी बात
1: हाँ ये बहुत ज़रूरी,
0: मतलब दिमाग की खिड़कियाँ खुली होनी चाहिए।
1: खुली होनी चाहिए, बिल्कुल सही है, उसमें ये नाप तोल के मुस्कान वाला काम नहीं चलता है।
0: सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप किसी विधा पे काम करते हैं तो पहले खुद को उस विधा से जोड़ने के लिए वैसा बनना पड़ता है।
1: वैसा बनना पड़ता है, बिल्कुल ज़रूरी है।
0: बहुत अच्छी बात आपने बताई। जो श्रोता इस समय आपको सुन रहे हैं उनमें बहुत लोग ऐसा हो सकते हैं कि वो कार्टूनिस्ट हों, तो वो भी इस बात को ध्यान रखेंगे कि एक कार्टूनिस्ट को खुद भी वैसा मिजाज रखना पड़ता है पहले। तो अपने कार्टून में जान फूंकने के लिए देवेंद्र जी आप किन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं?
1: सबसे पहला तत्व तो है आइडिया, उसके बाद में कागज़ पर उसे उतारते हैं, वो पेंसिल की मदद से, पेंसिल, पेन, ब्रश, ये सब चीज़ें होती हैं। और उसके बाद में जब कार्टून मुकम्मल हो जाता है फिर उसे कंप्यूटर में ले जाकर वो ट्रीटमेंट देते हैं और फिर वो आगे बढ़ता है। इस तरह से कार्टून ऐसे तैयार होता है, बस ये बेसिक तो यही है। बाकी जो कला जो है अगर देखा जाए तो कला हाथ में होती है, किसी टूल्स में नहीं होती है, मतलब हर वक्त नहीं होते हैं जरूरी, लेकिन जब आप अखबार के लिए काम कर रहे हैं, मैगजीन्स के लिए कर रहे हैं, जब कर रहे हैं उस वक्त में जो मैंने आपको बताया

0: शुरुआत में कि पेंसिल से शुरू हो गई यात्रा, ये कंप्यूटर पर खत्म होती है, ये चीज़ है।
1: तो आप तो राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हर तरह के विषयों पर कार्टून बनाते हैं,
0: जी
1: क्या कार्टूनों की कोई सीमा रेखा होती है जिसके अंदर ही एक कार्टूनिस्ट को काम करना होता है?
0: बिल्कुल होती है। और सीमा
1: थोड़ा हमें
0: रेखा
1: बताइए किस तरह की ये लाइन होती है,
0: ये,
1: क्राइटेरिया जिसे हम कहते हैं
0: हाँ
1: इसको।
0: ये सीमा रेखा दरअसल वही होती है जो एक सभ्य मनुष्य को भी पालन करना चाहिए। वही कार्टून्स में भी है कि आप एक तो नैतिकता का ध्यान रखें, मानवता का रखें, और जो हम कहते हैं कि सब बराबर हैं, सारे जीव जंतु, सारे इंसान बराबर हैं, उन्हीं चीज़ों को लेकर मेंटेन करते हुए, और किसी पर हम मान लीजिए कि कटाक्ष भी करें तो हल्का फुल्का करें हंसी के साथ, लेकिन ऐसा ना हो कि वो मामला तूल पकड़ ले। और हम कहते हैं ना कि जैसे हास परिहास वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी का उपहास करना वो चीज़ बहुत बुरी है। तो कार्टून में इन चीज़ों से बचा जाता है, तो बचना चाहिए।
1: ये एक सीमा रेखा है,
0: हाँ
1: आपके
0: ये
1: सामने?
0: सीमा रेखा है, किसी का असम्मान भी ना हो किसी का, ये चीज़ भी बिल्कुल ध्यान में रखना है। और कार्टून में भाषा, किस तरह की भाषा आप ले रहे हैं वो भी देखना है, कि कोई बहुत ज़्यादा क्लिष्ट ना हो और बहुत चलता हो लैंग्वेज भी ना हो, और कार्टून का जो कैप्शन होता है वो थोड़ा छोटा हो, बहुत ज़्यादा विस्तार भी उसमें ना हो, ये सब चीज़ें हैं। एक चीज़ इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि तरह तरह की जो प्रतिक्रियाएं मिलती रहीं, शुरू में बहुत मिली, अच्छी ज़्यादा मिली, जिनसे कि इंसान प्रोत्साहित होता है और आगे बढ़ता है। आपने बालकवि बैरागी जी का नाम सुना होगा, है ना, सुप्रसिद्ध गीतकार और सांसद। तो बालकवि जी ने मेरा एक कार्टून देखा था जब मैंने बनाया था मध्य प्रदेश की सरकार को लेकर तत्कालीन, तो उस कार्टून को देखकर उन्होंने, वो कार्टून अप्रिशिएट भी बहुत हुआ था, और बालकवि जी का मुझे पत्र मिला
1: जी,
0: प्रिय देवेंद्र तुम बहुत दुष्ट हो,
1: अच्छा
0: तुम्हें पता नहीं तुम्हारा यह कार्टून लोगों ने फ्रेम करवा कर रख रखा है, और किसी भी कलाकार के खाते में यह बहुत बड़ा जन प्रतिदान है,
1: अरे
0: मेरी तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद।
1: क्या बात है सर, क्या बात है, बहुत सुंदर। मतलब बाल कवि बैरागी साहब आपको ये बात कह रहे हैं,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: और देखिए उनके कहने में भी कितना अपनत्व है और गहराई है।
0: हाँ बिल्कुल सही बात है,
1: बहुत अच्छा लगा ये सुनकर कि एक कार्टून जैसी छोटी सी विधा है, बहुत गहरी विधा है, उसे बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े साहित्यकार कलाकार भी
0: देखते
1: पढ़ते
0: हैं,
1: देखते सुनते हैं और सराहते हैं।
0: सही बात है,
1: चलिए आपकी पसंद का गीत सुनते हैं।
0: बस यहाँ बालकवि बैरागी जी का लिखा हुआ रेशमा और शेरा फिल्म का गीत कैसा रहेगा?
1: बिल्कुल अच्छा रहेगा,
0: तू चंदा मैं चांदनी।
1: आइए सुनते हैं बालकवि बैरागी का लिखा ये बहुत ही खूबसूरत गीत।
0: जी बिल्कुल।

0: तो देवेंद्र जी, बहुत ही सुंदर गीत हमने सुना अभी बैरागी साहब का लिखा हुआ। तो आप चूंकि इतने कार्टून्स बना चुके हैं, उस पर भी मैं आपसे बात करना चाहूंगी कि आपकी पसंद का कोई कार्टून जिसके बारे में आप बताना चाहें जो आपको बेहद पसंद हो।
1: मेरी पसंद के तो बहुत सारे कार्टून्स हैं। अभी मैनेजमेंट पर बनाया कार्टून याद आ रहा है मुझे,
0: बताइए
1: कि एक दादाजी हैं, ये तीन फ्रेम्स में बनाया हुआ था ये, कि एक दादाजी हैं वो लेटे हुए और अपने पोते से बोल रहे हैं, कम उम्र का पोता है, कि बेटा मेरे पैर दबा दो, बहुत दर्द कर रहे हैं मेरे पैर। तो कहता दादाजी मैं भी आता हूँ। और फिर वो जब लौटा तो उसके हाथ में आरी थी काटने वाली, आरी लेके आया वो। तो दादाजी सहम के बैठ गए पैर सिकोड़ के। आरी क्यों? बोले दादाजी हमारे मैनेजमेंट गुरु कहते हैं किसी भी काम को पहले छोटे छोटे टुकड़ों में बांटो, उसके बाद उस काम को पूरा करो।
0: वाह, बहुत खूब, बहुत खूब।
1: और एक कार्टून और भी ध्यान आ रहा है कि जैसे कार्टून कई बार ये घटनाओं पर होते हैं, खबरों पे होते हैं, ट्रेंड्स पे होते हैं, मनोविज्ञान पे भी कार्टून बनाने मुझे अच्छा लगता है। जैसे कि किसी किशोरी का मनोविज्ञान, ये मैंने ऑब्जर्व किया था, तो उस पर कार्टून मैंने बनाया जो महिलाओं के स्तंभ में छपा था
0: जी,
1: कि एक टीनेजर कन्या है, वो अपने घर में बिस्तर पर औंधी लेटी हुई कुछ कविताएं वगैरह लिख रही है
0: जी।
1: पास में गुलाब के फूल भी हैं, डायरी है ऐसा, और वो अपने सपनों में खोई हुई है, और कुछ पंक्तियाँ भी हैं जो हम बाद में देखेंगे क्या वो कह रही है। और पंक्ति ये है कि सपनों में बस गई है एक मादक गंध, सपनों में बस गई है एक मादक गंध, मानो दूध उफन गया हो कहीं। और उस कार्टून में पीछे बताया गया है कि गैस पे वास्तव में दूध चढ़ा हुआ है और उफन के और बह रहा है और पूरे फर्श पे फैला है। और इसमें मजा और कि दरवाजा खुला और उनकी माता जी सब्जी वगैरह लेके आ रही है और उन्होंने दूध देखा तो अंगारा हो गई वो।
0: जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कितनी गहरी बात आपने कही कि एक किशोरी मन की क्या जो है सोच होती है, मनोविज्ञान क्या होता है किशोरपन का, वो आपने इसमें बताया, बहुत सुंदर। एक साधारण स्केच से लेकर अंतिम प्रकाशित कार्टून तक की आपकी जो प्रक्रिया है वो क्या रहती है?
1: उस प्रक्रिया में सबसे पहले आता है विचार। उस विचार में ध्यान ये रखते हैं, क्योंकि कई बार विचार ऐसा भी आता है, मान लीजिए उसको पहले मैं कहा करता था साथियों में कि मुझे शेर जैसा विचार आता है और उसको मैं पीट पीट कर बकरी जैसा बनाकर पेश करता हूँ। तो ये जो बकरी जैसा बनाना जो है ये दरअसल एक सामंजस्य वाली चीज़ है
0: जी।
1: और ताकि जिससे सब लोग खुश रहें और उतना तीखापन महसूस ना करें कि बात बिगड़ जाए, तो उस तरह से कार्टून बनता है। तो पहले विचार आया और विचार के बाद में, जैसे हाँ आर के लक्ष्मण साहब ने भी कहा था कि पहला विचार जो आता है उसमें मत आप उलझ जाओ, वो आपको लुभाता है और ललचाता है, इसलिए उससे आप और आगे चलो, सेकंड थॉट, फाइनल थॉट, ऐसे करके, तो उसमें उसका रिफाइनमेंट होता है, आगे वो चीज़ें चलती हैं। तो ये प्रक्रिया मेरी भी है कि पहला विचार आया, उसको अलग रखा, फिर और उस पर सोच रहे हैं, अलग अलग कोण से सोच रहे हैं, अलग अलग उसमें सिचुएशंस भी बनती हैं, और फिर जब वो रिफाइन होकर वो आता है तो अच्छा लगता है, देख के मन खुद कहता है कि नहीं ये चीज़

0: बढ़िया है और ये आगे
1: जी
0: बढ़ना चाहिए ये।
1: जी बहुत सुंदर, बिल्कुल यही काम करने का भी तरीका है कि आप अगर विचार पे अटक कर रह गए
0: पहले
1: तो वहीं
0: विचार।
1: खड़े रह जाते
0: हाँ
1: हैं।
0: बस बस बस।
1: तो आज के डिजिटल युग की हम बात कर रहे हैं और इंस्टाग्राम जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, तो कार्टूनिस्ट के काम करने का क्या तरीका बदला है?
0: तरीका तो नहीं बदला है, ये है कि
1: विचार बदला होगा, सोच
0: विचार
1: बदली
0: भी
1: होगी।
0: बदला है और उनमें विचारों में भी आज जो हम कहते हैं ना, एक गरिमा उतनी नहीं, आजकल जो हो रहा है वो गरिमा उतनी नहीं, उसको मेंटेन करके चलना चाहिए, क्योंकि भाषा की भी खूबसूरती एक होती है कार्टून के अंदर, वो है। और पात्रों की जो विविधता, जो जैसे हम चुनते हैं कि हर बार रोज़ एक ही एक तरह का आप बना रहे हैं, सूटेड बूटेड ये वो, उसके बजाय आप लोक जीवन में उतरें, बाहर देखें सड़क पे कितने तरह के पात्र दिखाई देते हैं, तो कभी बात उनसे भी कहलवाएं, ये होता है, अलग अलग पात्र अलग अलग बात कह रहा है, तो उसका मज़ा आता
1: तो
0: है।
1: लोक जीवन से जुड़ा कोई कार्टून आपको याद हो, आपका बनाया हुआ?
0: लोक जीवन से जुड़ा मेरा कार्टून एक ध्यान आ रहा है मुझे, वो भी थोड़ा इस तरह का है कि जैसे जब वीमेंस लिब का जो चला था, शुरुआती जोर था, तो उसमें मैंने बताया कि एक खेत में किसान बैठा हुआ है, फुर्सत के लम्हों में हल चला के बैठा है, और पास में उसकी जो पत्नी है वो पोटली में रोटी वगैरह लेके आई है और प्याज और है ना मिर्ची ये सब अचार, तो वो खाना खा रहा है और वो पंखा चल रही है उसको बैठे हुए, है ना, कितना सुंदर दृश्य। तो इसमें तो एक तो आपने पूरा बैकग्राउंड दिखाया, झोपड़ी दिखाई, खेत दिखाया, हल दिखाया, उसका स्त्री और पुरुष का पहनावा, तो इसमें लोक जीवन की, लोक पहनावे
1: जी
0: की झलक
1: जी
0: मिली।
1: जी
0: अब उसके बाद वो सड़क से दो आधुनिकाएं जा रही हैं कार से, तो उनने कार रोकी और ये दृश्य देख के वो कह रही हैं कि ये कितनी अभागी औरत है, ये मतलब नारी स्वातंत्र्य के विचार से एकदम अनजान है, चलो इसे हम चल के और उसकी दासता से मुक्त कराएं पुरुष की दासता से। तो ये ऐसी चीजें
1: बहुत बड़ा व्यंग्य, बिल्कुल सही कहा
0: हैं।
1: आपने कि दो स्त्रियों की मनोदशा आपने बताई
0: हाँ
1: कि
0: बस
1: जो
0: बस बस।
1: ग्रामीण परिवेश की स्त्री जो सुख अनुभव कर रही है,
0: अनुभव कर रही है।
1: आधुनिक परिवेश की स्त्री उस सुख को नहीं जान पा रही है और
0: जी
1: उसको दास्ता बता रही है।
0: हाँ, तो ये जो विसंगति है बस इसको
1: हाँ
0: ये उसमें दिखाने की कोशिश
1: बहुत
0: रही है।
1: सुंदर, बहुत सुंदर देवेंद्र जी, बहुत सुंदर। तो अगर मैं देवेंद्र जी से ये पूछूं कि इतने कार्टून्स आपने बना लिए, लगभग कितने कार्टून्स बना लिए होंगे?
0: ये 60,000 से ऊपर हो चुके हैं, ये
1: 60,000 से ऊपर
0: से
1: कार्टून आप
0: ऊपर
1: बना चुके
0: हैं।
1: हैं अब
0: जी
1: तक,
0: जी जी जी
1: और
0: इनका
1: ये विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छप रहे हैं या इन पर आपने किताब भी लिख ली है?
0: ये किताब में तो ये नहीं आ सकते, अभी मेरे तो करीब 6-7 व्यंग्य संकलन ही निकले हैं, बाकी ये है कि इनके ऊपर, हाँ आपको ये बता दूं, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो भी USA का वो मिला है।
1: अरे वाह,
0: हाँ, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पब्लिश्ड कार्टून्स उसके ऊपर।
1: अच्छा, तो साठ
0: तो
1: हजार कार्टून आपने आज तक बना लिए हैं,
0: जी
1: इतने विचार, यानी 60,000 विचार तो आपको आ ही गए, और
0: आ
1: ना
0: ही
1: जाने
0: गए।
1: अभी कितने विचार और आने हैं।
0: बिल्कुल
1: कमाल
0: सही
1: है,
0: बात है।
1: बहुत सुंदर, अद्भुत है ये बात। मतलब
0: हाँ
1: 60,000
0: कि
1: कार्टून
0: हाँ
1: कोई छोटी मोटी बात नहीं
0: जी
1: है
0: हाँ
1: ना। 1,000, 2,000, 5,000, 6,000 के आंकड़े तो हम
0: हाँ
1: सुनते ही हैं 10,000 तक के, लेकिन 60,000 कार्टून बनाए रखना और उनको मेंटेन करना बिना किसी विवाद के,
0: हाँ जी
1: ये कार्टूनिस्ट की बहुत बड़ी सफलता है। चलिए आपसे और बातचीत करने वाले हैं,
0: जी
1: एक गीत सुन लेते हैं। गीत बताइए।
0: ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा, फिल्म का नाम है बातों बातों में।
1: बहुत सुंदर गीत है ये,
0: हाँ,
1: आपकी
0: अमित
1: आवाज
0: कुमार
1: में।
0: और आशा भोसले जी की आवाज है।
1: जी, तो चलिए सुनते हैं
0: जी
1: आपकी पसंद का ये गीत।

0: लगा
1: लगा
0: लगा के धूप में खिला है चांद, दिन में रात हो गई।
1: चांद की बिना तेरे सुने ही बात हो गई।
0: ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ।

0: देवेंद्र जी, जैसा कि मैं ये जानना चाह रही थी, पहले हम बचपन में चंपक और लोटपोट जैसी पत्रिकाएं पढ़ा करते थे और
1: जी।
0: उसमें एक सीरीज चला करती थी कार्टून की। तो क्या ऐसी कोई सीरीज चलाने का आपने भी काम किया है कि एक लंबी सीरीज चल रही है किसी कार्टून पर, किसी विषय पर?
1: जी हाँ, मैडम मोहिनी नाम से एक सीरीज मैंने बनाई थी। वो 600 के लगभग उसकी आवृत्तियां छपी हैं, तो वो बहुत पॉपुलर था। वो परिवारों में, महिलाओं में, सभी लोग उसे पढ़ते थे।
0: अच्छा,
1: तो उसमें मैडम मोहिनी एक बताई गई है, एक तरुणी। तो वो डबल डेकर स्ट्रिप होती है, जो एक स्ट्रिप ऊपर, एक उसके नीचे स्ट्रिप, उस तरह से। तो उसके कुछ मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैडम मोहिनी बैठी हुई हैं और वो अखबार पढ़ रही हैं, इतने में उनका भतीजा आता है कि मौसी मौसी मुझे जूते पहनना है, जल के जूते पहना दो। तो वो बोलती है कि नहीं, जूते क्या पहनना, अब 4 दिन की तो ये बारिश है और ये वो, इस तरह बरसाती जूते तुम बोल रहे हो, तो रहने दो। फिर वो कहता है कि अच्छा, तो मुझे एक नया बस्ता ही दिला दो स्कूल जाने के लिए। तो बोले, अरे 4 दिन का तो तुम्हारा सेशन है, उसमें क्या नया बस्ता लोगे? तो बोले, आप ये क्या अखबार में क्या पढ़ रही हो? बोले, अरे झपट मत, मैं तेरे लिए मौसा जी ढूंढ रही हूँ। तो अखबार लेके भाग जाता है और कहता है कि 4 दिन का तो जीवन है, इसमें जीवन साथी क्या ढूंढना।
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बिल्कुल।
1: ऐसी, इस
0: ये एक
1: तरह से
0: सीरीज लंबी
1: ये
0: चली
1: सीरीज
0: और
1: लंबी चली थी, हर हफ्ते
0: लोगों ने
1: उसमें
0: काफी पसंद किया,
1: बहुत
0: खास
1: बहुत
0: तौर से
1: पसंद किया।
0: महिलाओं ने।
1: जी।
0: तो क्या महिलाओं के खत आपके पास आए, महिलाओं के फोन आपके पास आए, कोई महिला आपसे मिलने आई कि देवेंद्र जी, आपने इतनी खूबसूरत ये सीरीज चलाई है और इसे पढ़ के हम तो गुदगुदा जाते हैं?
1: हाँ, उन्होंने कहा बिल्कुल। और उसमें अखबार में जो प्रतिक्रियाओं का एक कॉलम था, उसमें बहुत प्रतिक्रियाएं आती थी। उसमें वो लिखते थे कि आज देवेंद्र जी ने राह बताई, ये किया वो किया, ऐसे अपनी अपनी टिप्पणियां सब करते
0: बिल्कुल
1: थे।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और हमें तो लगता है कि जब हम अखबार पढ़ते हैं या आज भी पढ़ते हैं या पढ़ते थे, तो वो कार्टून जरूर तलाशते थे सबसे पहले कि अखबार में क्या आया है। ये एक निगाह रहती थी कि आज कौन सा कार्टून आया है किसी का भी, तो ये
1: हाँ
0: निगाह हमेशा रही। तो आपके परिवार में जो और अन्य लोग हैं, आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, क्या उनका भी कभी विरोध हुआ कि क्या दिन भर आप कार्टून बनाते रहते हैं और हमारी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं? आप दिन में इतने अपने रिकॉर्ड तोड़ कार्टून बना लिए हैं, तो ऐसा कभी घर पर कोई कार्टून बनाया आपने पति पत्नी विवाद पर या बच्चों के विवाद पर?
1: उन लोगों से मतलब मतभेद का ऐसा अवसर आया नहीं, क्योंकि मैंने ये अखबार में, जैसे जॉब रहता है तो उतनी देर के लिए आप बाहर गए, वहाँ कार्टून आप बना के चले आए।

0: और फिर उस चीज को घर में, मतलब फिर मैं बताता भी नहीं, कोई पूछे भी कि आप देवेंद्र हैं, तो मैं कई बार सोचना पड़ जाता है कि क्या मैं हूँ क्या। और फिर जैसे कि अपन लोग बात कर रहे थे कि सबका साथ और सबको लेके चलना, ये जो चीज होती है, तो बच्चों के साथ आप गए मान लीजिए स्कूल लेकर जा रहे हैं, उन्हें घुमा रहे हैं, तो उसमें से भी आपके लिए रॉ मटेरियल इकट्ठा होता है। पत्नी देवी को लेकर आप स्कूटर पे गए सब्जी खरीदने, तो कुछ तो वो भावताव होना, ये सब चीजें, तो वहां भी आप देखते हैं कुछ मिलता है मैटर। जैसे मैंने कार्टून बनाया था कि जैसे दल बदल वगैरह ज्यादा होता है ना, तो उसमें मैंने बनाया था कि एक सब्जी वाली बैठी हुई है, और तो जो ग्राहक है वो उससे कह रहा है कि भाई आपके जो आलू हैं या विधायक हैं, वो देखो लुढ़क कर उधर टमाटरों में मिल रहे हैं।
1: जी
0: तो
1: जी
0: ऐसी चीजें बस ये रोजमर्रा की जो होती हैं
1: जीवन में
0: उनसे बस।
1: बिल्कुल, यानी कि एक
0: हाँ
1: कार्टूनिस्ट को बहुत ही पैनी दृष्टि रखनी पड़ती है और हर समय जागरूक रहना होता है कि कब कहाँ से क्या मैटर मिल सकता है और कहाँ कैसा कार्टून बनाया जा सकता है। तो कार्टून की दुनिया में जो आना चाहते हैं, कार्टूनिंग की दुनिया में कदम रखने वाले जो नए कलाकार हैं, युवा कलाकार हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे?
0: उन्हें बस मेरा यही संदेश है कि इस विधा को आप भले ही प्रोफेशनली ना अपनाएं, लेकिन शौकिया अगर आपके अंदर वो इंस्टिंक्ट है तो उसको आप लेकर चलें। और क्योंकि ये विधा सबसे पहले आपको खुश रखेगी, फिर आपके सराउंडिंग को खुश रखेगी, इसलिए आप खुश रहने का एक बहुत अच्छा है नुस्खा है, कैप्सूल है, तो इसको लेके आप साथ में चलें। और इस विधा को साइड में भी रख सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत हमेशा है, क्योंकि हंसी की ज़रूरत हमेशा है, अच्छे संदेशों की ज़रूरत हमेशा रहेगी।
1: बिल्कुल सही कहा देवेंद्र जी, आपके आदर्श कौन है? आपने इतना लंबा समय इस दुनिया में बिताया है, कार्टून की दुनिया में, आपके अपने आदर्श कौन रहे? किन से प्रभावित होकर आप आगे बढ़ते रहे?
0: मेरे आदर्श, एक तो जीवन में सबसे पहले पिताजी से मैंने प्रेरणा ली, मेरे पिताजी जो हैं,
1: जी
0: और उन्हें मैंने कार्टूनों में बनाया भी है।
1: अच्छा
0: क्योंकि घर में जब बच्चा देखता है तो सबसे पहले पिताजी नजर आते हैं,
1: जी जी
0: तो जो कार्टून मैंने आपको अभी सुनाया था करवा चौथ वाला, उसमें हालांकि पिताजी के सिर पे बाल हैं, तो उन्हें मैंने बनाया था वहां
1: जी
0: पर,
1: जी
0: और उन्हें पिताजी को लेकर कार्टून बनाने के अलावा उनसे बहुत सी चीज़ें मैंने सीखी। एक तो जो हास्य रस, उनमें काफ़ी हर चीज़ में वो हंसते हैं, सामाजिक बहुत हैं, रिश्ते निभाते हैं, एक तो पिताजी से प्रेरित हुए, फिर उसके बाद जब आगे चलते हैं तो वही आर के लक्ष्मण जी जो सबके
1: चहेते
0: प्रेरणा
1: हैं
0: स्रोत, हाँ
1: जी
0: चहेते होते हैं, लक्ष्मण जी हुए, सुधीर दर और मारियो मिरांडा साहब ये, और बाहर के कार्टूनिस्टों में उडेर जो और डेविड लो और अपने वॉल्ट डिज्नी, वो तो हैं ही, ये सब चलते हैं, तो इन लोगों से कुछ ना कुछ देखकर और लगा, इनकी विशेषताओं को देख के लगा कि वो उनमें से कुछ हम सीखें।
1: तो क्या लगता है आपको कि जो ये हमारे विदेशी कार्टूनिस्ट हैं उनमें और हमारे देश की कार्टूनिस्ट की विधा में, सोच में, विचार में कोई अंतर महसूस किया आपने?
0: हाँ अंतर तो होता है, क्योंकि विदेशी लोग जो है उनके कार्टून्स भी विषय उनके उस तरह के होते हैं, और वहाँ के लोग अप्रिशिएट बहुत करते हैं, क्योंकि वो हास्य प्रिय होते हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर उनमें काफ़ी डेवलप्ड होता है उसकी तुलना में। अच्छा हमारे यहाँ विविधता ज़्यादा है, इतना हम लोग देखते हैं लोक जीवन में और सभी दूर,
1: वहां विविधता नहीं
0: हाँ
1: है
0: उतनी नहीं
1: लेकिन
0: है,
1: लोगों में जागरूकता बहुत है,
0: जागरूकता बहुत है।
1: आम आदमी से जुड़े हैं वो कार्टून,
0: हाँ हाँ
1: हमारे दैनिक जीवन में ये कार्टून नहीं होते हैं।
0: नहीं होते हैं, तो जैसे हम बता देंगे हमारी फिल्मों में और वहाँ की फिल्मों में जो फर्क होता है, हमारी फिल्मों में गाने भी डाले जाते हैं, ये सब चीज़ें, तो उसी तरह से कार्टून के लिए मैंने जो अपनी एक शैली विकसित की है, तो उसमें सभी की थोड़ी कविता भी होती है, थोड़ा नाट्य भी होता है, और भाषा का भी आनंद, और बाकी स्केच तो है ही, ताकि एक अच्छा भरा पूरा उसमें एक मटेरियल सबको मिले।
1: तो देवेंद्र जी, चलते चलाते हम बस आखिर में आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि भविष्य में आप अपने कार्टून के माध्यम से क्या नया संदेश देना चाहते हैं? कुछ ऐसे कार्टून्स जो अभी प्रकाशित नहीं हुए हैं जिस पर आप काम कर रही हूँ?
0: हाँ नया विचार यही है कि जो आजकल रिश्ते जो टूट रहे हैं, और यानी हम देख रहे हैं कि पहले तो केवल शादियों का मौसम आता था, है ना, उसका भी सीजन होता था कि हाँ भाई अब देव जाग गए या सो गए थे,
1: बिल्कुल
0: और अब देख रहे हैं कि हम तलाकों का मौसम चल रहा है और वो 12 मासी है, तो उन चीज़ों को लेकर कि रिश्ते ना टूटें, इंसान समझ

0: धारी सेने सहेजे, और जो हम देख रहे हैं कि माता पिता अकेले होते जा रहे हैं, ये सब चीज़ें एक बड़ी एक सामाजिक समस्याओं के तौर पर छूती हैं मन को। तो इन्हें लेकर काम करने की मेरी इच्छा है कि कार्टूनों के माध्यम से एक सीरीज़ में ऐसी तैयार करूं और वो प्रदर्शित हो, और शायद इससे कुछ असर हो, मेरा भी एक आहुति मेरी भी रहे इसमें,
1: जी
0: सुधार में।
1: जी बहुत
0: ये
1: सुंदर,
0: बात है।
1: बहुत ही शानदार और एक समसामयिक विचार और गहरे विचार हमारी भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए कि
0: जी
1: माता पिता हमारे लिए क्या मायने रखते हैं
0: हाँ
1: और हम जो है बड़ी फैमिली में रहने वाले लोग आज कैसे अलग अलग हो गए हैं और ज़िंदगी में अकेलापन महसूस कर रहे हैं। तो रिश्तों की बात आपने कही कि रिश्तों को बनाए रखना सहेजना बहुत ज़रूरी है, इस पर आप काम करना चाहते हैं, स्वागत है और आपको हम भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका,
0: जी सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम
1: शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: जी। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज के मेहमान। आज इस कार्यक्रम में आपने सुनी कार्टूनिस्ट डॉक्टर देवेंद्र शर्मा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत, रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग अंबालिका सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज का आज के मेहमान कार्यक्रम संपन्न होता है। नमस्कार।
3: आज के मेहमान।

0: ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5 बजने को हैं अब आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति प्रताप सिंह। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अधिक भीड़भाड़ वाले 7 रेलवे नेटवर्क को 4 लेन का बनाने की मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के

0: 700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 3 मल्टी ट्रैकिंग रेलवे परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। ये परियोजनाएं हैं खड़गपुर से झारसुगुड़ा चौथी लाइन, कटनी से पेंड्रा रोड चौथी लाइन और बिलासपुर से पेंड्रा रोड तक तीसरी लाइन। लाइन की क्षमता बढ़ने से आवाजाही में काफी सुधार होगा, जिससे भारतीय रेलवे की संचालन क्षमता और सेवा की विश्वसनीयता बेहतर होगी। मल्टी ट्रैकिंग के ये प्रस्ताव कामकाज को सुव्यवस्थित करने और भीड़भाड़ कम करने में सहायता करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके से मुलाकात की और दोनों देशों के कल्याण और विकास के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने क्षेत्र की सुरक्षा, शांति और समृद्धि सुनिश्चित करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रपति दिसानायके ने कहा कि श्रीलंका कभी भी अपनी धरती का इस्तेमाल ऐसी किसी भी गतिविधि के लिए नहीं होने देगा जो भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ हों। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले आज मुंबई में ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की अंतिम बैठक हो रही है। इस वर्ष ब्रिक्स वित्त चर्चाओं का विषय है मजबूत नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। इससे पहले वित्त मंत्री और गवर्नर पिछले महीने जयपुर में बैठक कर चुके हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुंबई में पिछली बैठकों के मुख्य निष्कर्षों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आज अंतर्राष्ट्रीय रुद्राक्ष सम्मेलन केंद्र में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर और उत्तर प्रदेश सरकार के अन्य मंत्री भी उपस्थित थे। सुश्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि 9वां राष्ट्रीय पोषण माह स्वस्थ और सशक्त भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने का अभियान है। वित्तीय सूचना इकाई ने धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं करने पर 15 वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति सेवा प्रदाताओं को नोटिस जारी किए हैं। इनमें बिटयूनिक्स, डिजीफिनेक्स, पायोनेक्स, व्हाइटबिट, फिक्स्ड फ्लॉट और ट्यूबिट शामिल हैं। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इन संस्थाओं को देश में अवैध रूप से संचालित एप्लीकेशन और यूआरएल हटाने के निर्देश भी दिए गए हैं। राजस्व आसूचना निदेशालय DRI ने पिछले 2 सप्ताह के दौरान देश भर में चलाए गए अभियानों में लगभग 740 किलोग्राम गांजा और चरस जब्त किया है। एजेंसी ने स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत 13 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर से 1 महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। यह अभियान प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के अवसर पर शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली में आज पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर को जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करेंगे। भारत 22 से 27 सितंबर तक चीन के शंघाई में आयोजित होने वाली 48वीं विश्व कौशल प्रतियोगिता में पहली बार 11 नई कौशल श्रेणियों में भाग लेगा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने बताया कि टीम स्किल इंडिया कुल 64 में से 63 कौशल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेगी, जिसमें लगभग 70 प्रतियोगिताओं का दल शामिल हो रहा है। मंत्रालय के अनुसार ऐसे आयोजन में यह अब तक का भारत का सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व है। बेन शेल्टन ने अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में आज शेल्टन ने मौजूदा चैंपियन कार्लोस अल्कराज को हराया। सेमीफाइनल में शेल्टन का सामना अमेरिका के फ्रांसिस टियाफो से होगा। दोनों अमेरिकी खिलाड़ी पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचने के लिए मुकाबला करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. The Union Cabinet has approved 3 multi-tracking railway projects with a total cost of more than 10,700 crore rupees. Briefing media New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said these projects covered 14 districts across West Bengal, Jharkhand, Odisha, Madhya Pradesh and Chhattisgarh, increasing the existing network of Indian railways by about 656 kilometers. The Union Cabinet also approved 5 multi-tracking projects covering 17 districts across the states of Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka and Telangana, increasing the existing network of Indian Railways by about 540 kilometers. The total estimated cost of the projects is more than 10,021 crore rupees, and they are planned to be completed up

0: गर्भ धारण करने पर माता का पहला आवश्यक चरण नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जरूर करवाएं गर्भवती महिला का पंजीकरण।
1: गर्भ अवस्था की पुष्टि हो जाने पर गर्भवती महिला नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपना पंजीकरण तथा जच्चा बच्चा कार्ड जरूर बनवाएं। प्रत्येक गर्भवती महिला को रजिस्ट्रेशन के बाद कम से कम 4 बार जाँच जरूरी है। पहली जाँच पहली माहवारी छूटते ही, दूसरी जाँच गर्भावस्था के 4th से 6th महीने में, तीसरी जाँच गर्भावस्था के 7th से 8th महीने में, चौथी जाँच गर्भावस्था के 9th महीने में।
0: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।

अभी आप सुन रहे थे सोहिनी मिश्रा व साथियों के मिलीजुली आवाजों में ये भजन। शाम के 5:25 हुए हैं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम युवा मंच।

हेलो, गुड इवनिंग युवा दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने कार्यक्रम युवा मंच में, और हमारे तमाम श्रोताओं का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन आज के इस कार्यक्रम में। और आज मैं हूँ आपके साथ आपके रेडियो दोस्त रीनमन कोडिया। जी हाँ, बहुत ही खास सेगमेंट लेकर आज भी हम हाजिर हैं स्टूडियो में। तब तक सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत, वापिस आते हैं

0: जी, कार्यक्रम है युवा मंच और आज का हमारा सेगमेंट है स्पोर्ट्स बीट्स। जी हाँ, आइए जानते हैं देश दुनिया के खेल जगत की प्रमुख और ताजा तरीन खबरें। सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट की। भारतीय क्रिकेट टीम आगामी अफगानिस्तान के विरुद्ध 3 मैचों की T20 श्रृंखला की तैयारियों में जुटी हुई है। टीम में अनुभवी खिलाड़ियों की वापसी हुई है और चयन को लेकर क्रिकेट विशेषज्ञों के बीच चर्चा जारी है। पूर्व कप्तान कृष्णमाचारी श्रीकांत ने टीम चयन पर अपनी राय भी व्यक्त की है। इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच तीसरा टेस्ट मैच आज से खेला जा रहा है, जिस पर क्रिकेट प्रेमियों की नज़रें टिकी हैं। वहीं नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक दिवसीय श्रृंखला भी जारी है।
1: Bradley getting ready to bowl to Vijay Shekhawat. Starts his run up. Bowls to Vijay. Vijay walks on the pitch.
2: Vijay Hilale on victory. Something key.

0: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ, HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस, मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: तंबाकू का किसी भी रूप में सेवन जानलेवा है। तंबाकू के इस्तेमाल से कैंसर, हार्ट अटैक, लकवा, गैंग्रीन और अंधापन जैसी अनेक खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं।
3: सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना और शिक्षण संस्थान के 100 मीटर दायरे में तंबाकू बेचना कानूनन अपराध है। प्रदेश में गुटखा, खैनी और खुली सिगरेट बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध है।
2: प्रदेश को तंबाकू मुक्त बनाने में सहयोग दें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: कार्यक्रम युवा मंच में एक बार फिर से स्वागत हमारे तमाम श्रोताओं का और हमारे खासकर युवा दोस्तों का भी। जी हाँ, अब हम बात करते हैं फुटबॉल जगत की। भारतीय फुटबॉल टीम का पनामा के साथ अंतर्राष्ट्रीय मैत्री मैच अब 25 सितंबर को बेंगलुरु में खेला जाएगा। इसके बाद भारत की टीम ब्राज़ील और उरुग्वे जैसी मजबूत टीमों के साथ भी मैत्री मुकाबले खेलेगी, जिससे खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का महत्वपूर्ण अनुभव मिलेगा। यूरोप में UEFA FA चैंपियंस लीग के मुकाबले जारी हैं। कई रोमांचक मैचों में शीर्ष क्लबों ने शानदार प्रदर्शन किया और फुटबॉल प्रेमियों को बेहतरीन मुकाबले देखने को मिले। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारियों में व्यस्त हैं। कोचिंग स्टाफ खिलाड़ियों की फिटनेस और तकनीक के सुधार पर विशेष ध्यान दे रहा है, ताकि आगामी बड़े टूर्नामेंटों में भारत बेहतर प्रदर्शन कर सके। अब बात करते हैं शतरंज की। भारतीय ग्रैंड मास्टर्स विश्व स्तर की प्रतियोगिताओं में लगातार प्रभावशाली प्रदर्शन कर रहे हैं। युवा खिलाड़ियों की सफलता से भारत का शतरंज भविष्य और भी मजबूत दिखाई दे रहा है।

0: मैं हूँ एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ, एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: कार्यक्रम युवा मंच, अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। जी हाँ, युवा मंच कार्यक्रम में आज का हमारा सेगमेंट है स्पोर्ट्स वीड्स। तो आइए

बात करते हैं टेनिस की। भारतीय टेनिस खिलाड़ी कर्ण सिंह ने ITF पुरुष एकल खिताब जीतकर देश का गौरव बढ़ाया है। यह इस सत्र का उनका तीसरा अंतर्राष्ट्रीय खिताब है। अब बात की जाए हॉकी की, तो भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीमें एशियाई खेलों की तैयारियों में जुटी हैं। कोचिंग कैंप में खिलाड़ियों की फिटनेस, रणनीति और तालमेल पर विशेष अभ्यास करवाया जा रहा है। 2026 एशियाई खेलों में भारत से शानदार प्रदर्शन की उम्मीद है।

0: म्यूजिकल ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत हमारे तमाम श्रोताओं और युवा दोस्तों का। जी हाँ, एशियाई खेल 2026 के लिए विभिन्न खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का प्रशिक्षण जारी है। एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, कुश्ती, निशानेबाजी और तीरंदाजी में भारतीय खिलाड़ियों से पदक जीतने की उम्मीद की जा रही है। युवा दोस्तों, खेल केवल जीत या हार का नाम नहीं होता, बल्कि अनुशासन, आत्मविश्वास, मेहनत और टीम भावना का दूसरा नाम है। हर खिलाड़ी हमें यही सिखाता है कि निरंतर प्रयास की सफलता की सबसे ही बड़ी कुंजी है। तो आज के खेल जगत स्पोर्ट्स वीट्स कार्यक्रम में बस इतना ही। चलते चलते हम आपको बता दें, कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह और हमें तकनीकी सहयोग मिला विकास पठानिया से। तो युवा दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, सक्रिय रहे और खेलों से भी जुड़े रहें। चलते चलते सुनवा रहे हैं एक और प्यारा सा म्यूजिकल ट्रैक।
1: शम्स की रामपुर, मेरठ और इटावा से। संगीत है सोहेल सेन का, बोल है

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा मंच, ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 5:55 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज के शेष प्रसारित और लिए जाने वाले कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी, साथ ही कल प्रसारित किए जाने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी भी।

अब से थोड़ी ही देर बाद यानी शाम 6:06 पर फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सांझ प्रसारित किया जाएगा। शाम 6:30 पर कार्यक्रम मोजांग राइंदियां सुनिएगा। विषय होगा पशुओं के चारा प्रबंधन। शाम 7:10 पर सुनिएगा कार्यक्रम खेती बाड़ी। बात की जाएगी औषधीय पौधों की खेती बाड़ी के बारे में। साथ ही होंगे मंडी भाव, मौसम की जानकारी, भेंट वार्ता और आपके मनोरंजन के लिए कुछ लोकगीत। रात्रि 8 समय है विविध संगीत के कार्यक्रम सबरस का और 8:30 पर देश गान सुनवाए जाएंगे। रात्रि 9:15 पर कार्यक्रम एक ही कलाकार पेश किया जाएगा। आज के कार्यक्रम में आप सुनिएगा गीतकार इरशाद कामिल के लिखे हुए कुछ चुनिंदा गीत। रात्रि 9:30 पर कार्यक्रम चर्चा का विषय है आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा रूपक। ये कार्यक्रम सुनिएगा रात्रि 10 और 10:30 पर चित्रपट संगीत का आनंद लीजिएगा। आकाशवाणी शिमला से शाम 6 और 7:45 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या और रात्रि 9 न्यूज 8:09। रात्रि 11 हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से कल प्रसारित किए जाने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी। कल सुबह 6:05 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कल सुबह 7:10 पर कार्यक्रम सुबह सुहानी में जानकारियों के साथ होगा मनोरंजन भी। और 8:30 पर सुनिएगा गाने सुहाने। 9 कार्यक्रम गीतांजलि और महिलाओं के कार्यक्रम सुनो सखी का प्रसारण समय रहेगा दिन में 12:30। ये थी विस्तृत जानकारी हमारे केंद्र से आज शाम प्रसारित और रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों की और कल प्रसारित किए जाने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की। FM बैंड 103.4 MHz पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 5:58 और 37 हुए हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी कि शाम 6 आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। कीजिए बस कुछ ही पलों का इंतजार।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार से लाहौल स्पीति और पांगी में लेह के हानले जैसा खगोलीय केंद्र स्थापित करने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने आज केंद्रीय विज्ञान व प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र प्रसाद से मुलाकात के दौरान ये मामला उठाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन क्षेत्रों में खगोलीय अनुसंधान और अवलोकन के लिए परिस्थितियां काफी अनुकूल हैं। उन्होंने कहा कि इस केंद्र के स्थापित होने से स्थानीय युवाओं और विद्यार्थियों को खगोल विज्ञान में रुचि विकसित करने के अवसर मिलेंगे, साथ ही जनजातीय क्षेत्रों में सतत और ज्ञान आधारित पर्यटन के नए अवसर भी सृजित होंगे। उन्होंने लेवेंडर की डेमोंस्ट्रेशन साइट्स के विस्तार

0: हुए विकास कार्यों को रोका और चलते हुए संस्थानों को बंद किया गया। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि नाहन विधानसभा क्षेत्र में भी कई संस्थान बंद किए गए, जिसका खामियाजा सरकार को भुगतना होगा।
1: कांग्रेस की वर्तमान प्रदेश सरकार प्रदेश का जोर पर धरना प्रदर्शन करने का लक्ष्य रखा है और उसी कड़ी में आज धौलकुआ में एक प्रदर्शन किया जाए और प्रदेश की जनता, नाहन विधानसभा क्षेत्र की जनता कांग्रेस ने जिस तरह से दुखी किया उसके कारण जनता सड़कों के ऊपर इलाज करने के लिए जनता की तरफ भाग भारतीय जनता पार्टी इन संस्थानों की तालाबंदी को लेकर जबरदस्त आक्रोश अंदर है।
0: राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि रोगी कल्याण समिति के माध्यम से अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं को अधिक सुदृढ़, आवश्यकता के अनुरूप संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए। जगत सिंह नेगी आज कांगपियों में क्षेत्रीय अस्पताल रोगी कल्याण समिति की बैठक की अध्यक्षता थे। उन्होंने कहा क्षेत्रीय अस्पताल में आने वाले मरीजों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवा और संवेदनशील व्यवहार किया जाना चाहिए, क्योंकि आधी बीमारी अच्छे व्यवहार से ठीक हो जाती है। बैठक में वर्ष 2026-27 के लिए रोगी कल्याण समिति के 1,68,00,000 रुपए के बजट प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कांगड़ा जिला में यातायात नियमों के पालन और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जिला पुलिस ने रात में नाकाबंदी और गश्त बढ़ा दी है। इसके अलावा पुलिस दिनभर जिले के अलग अलग स्थानों पर लोगों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक भी कर रही है। जिला पुलिस अधीक्षक कुलभूषण वर्मा ने बताया कि पुलिस की इस मुहिम का उद्देश्य लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी स्वयं नाकाबंदी और रात्रि चेकिंग का जायजा ले रहे हैं।
2: दिनभर सड़कों में यातायात अवेयरनेस के लिए नाकाबंदी की जा रही है और जो ज्यादा वायलेशन करता है उसके लिए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान भी इशू किए जा रहे हैं। इवनिंग के टाइम में लगातार पुलिस की नाकाबंदी रहती है और रात्रि के समय में भी गश्त और नाकाबंदी हमने बढ़ाई है। इसका मुख्य उद्देश्य शहर में चोरी की घटनाएं रोकने और इलीगल एक्टिविटीज को रोकना, एनडीपीएस का डिटेक्शन के लिए कोई एनडीपीएस का तस्करी तो नहीं हो रही है, चरस की तस्करी हो रही है या चिट्टे का तस्करी हो रही है, उस चीज को रोकने के लिए लगातार पुलिस की नाकाबंदी और लगातार पुलिस की गश्त जारी रखी जा रही है। सभी अधिकारी नाकाबंदी पर भी जाते हैं और रात्रि चेकिंग के लिए भी जाते हैं।
0: भाजपा प्रवक्ता संदीप ने भारद्वाज ने प्रदेश सरकार पर वित्तीय कुप्रबंधन का आरोप लगाया है। संदीप ने भारद्वाज ने आज शिमला में कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र से प्रदेश की ऋण सीमा बढ़ाने की मांग कर अपनी सरकार की आर्थिक विफलता का प्रमाण दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपने वित्तीय कुप्रबंधन से प्रदेश को आर्थिक संकट के दलदल में धकेल दिया है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता का रास्ता और अधिक कर्ज लेने से नहीं बल्कि बेहतर वित्तीय प्रबंधन, अनावश्यक खर्च पर नियंत्रण और राजस्व बढ़ाने से निकलता है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 7:45 पर। नमस्कार।
3: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:06 होने को हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सांझ। सुरमई सांझ कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं हेमलता के गाए इस गीत के साथ, जिसे हमने लिया है अखियों के झरोखों से, फिल्म से।

जी हाँ, ये संगीत है उषा खन्ना और कमल जोशी का। गीत लिखा है निदा फाजली ने, गीत गाया है मोहम्मद रफी ने। आप तो ऐसे न थे, इस फिल्म का गीत आपके रेडियो सेट्स पर।

0: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: सूचना। सहायक अभियंता विद्युत उपमंडल सिद्धपुर से मिली सूचना के अनुसार सर्वसाधारण व जनता को सूचित किया जाता है कि LT लाइन में केबल डालने के अंतर्गत दिनांक 10/9/2026 यानी कि कल सुबह 9:30 से शाम कार्य समाप्ति तक 63 KB लोअर मोली, 250 KB लोअर मोली 1 और 400 KB एजुकेशन बोर्ड कॉलोनी आदि ट्रांसफार्मरों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों, मस्जिद के आसपास तथा मोहली और सरीन होटल के आसपास के क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति पूर्णतः बाधित रहेगी। मौसम खराब होने या अन्य आकस्मिक आपदा में ये कार्य स्थगित या आंशिक रूप से किया जा सकता है। यह कार्य जनहित में करना बहुत आवश्यक है। सर्वसाधारण जनता से सहयोग की अपील की जाती है। कृपया सभी लोग बिजली विभाग को सहयोग करें। धन्यवाद। सूचना समाप्त हुई।

ये संगीत है बप्पी लहरे का, आवाजें हैं मोहम्मद अजीज और साधना सरगम की। पुलिस और मुजरिम इस फिल्म का गीत आपके रेडियो सेट्स पर।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुरमई सांझ, ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। शाम के 6:30 होने को हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मोजा ग्राइंदियां।

0: कार्यक्रम मौजा ग्राएं दियां सुना करदे सारे ही किसान बागबान भाई बहना जो बड़का चाचू की तरफा दे राम राम। किसान साथी अज टियाले पर ने मुझे सोगी लंबरदार था लंबरदार जी राम राम
1: भाई राम राम बड़का चाचू जी तुझे भी राम राम कर मेरे सारे किसान बागवान भाई बहना जो लंबरदार की तरफ से राम राम
0: जी। कहना दिखा लंबरदार जी की आज मते की मते दिन बाद तो हाँ कहना टियाले
1: बिल्कुल बिल्कुल मुझे तो बड़ी खुशी हुआ कर दी दिखा भी साढ़े जड़े बड़का चाचू है ना ये पढ़े भावें घट होंगे पर कड़े ज्यादा न तो इन्हों कन्ने बेह के जरा सा तजर्बा बड़ा खेतीबाड़ी का साढ़ा सीधा होंगे तो अज अहां आशा करनी भी कोई नौ जानकारी जी बड़के चाचू है लेके जानी है तो गल ही है बड़का चाचू जी भी जड़िया पट्टियां ना अपन धान आईया तिन्हें दिखी के रूह खुश हो जा कर दी भी सिले जड़े ने सह निसरियाई है धान कन्ने छलियां भी लगभग लगभग साढ़े किसान जरा सह तोड़ी लिया
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: मैं भी बोलना चाहूँगा कि इस बार जरा सह परम पिता परमात्मा ने बरसात जी हिसाबी किताबी रखी कन्ने खरा साढ़े किसान ने जरा सह अपना नाज सीधा कर लिया है ना
0: बिल्कुल कहने देखा कि असा जरा किसान के भी रात दिन अपने खेत खिलाना च मेहनत करता है
1: जी
0: और बड़ी खुशी की गल हों की जल उन्होंने मेहनत के भी घरे द्वारे पहुंची आए ना
1: जी जी
0: तो इस दे बदिया और क्या गल हो सकती है।
1: सोलह ने तो हाँ गल गलाई पी गल ही है दिखा पी जी बोलते पे सरा दा पर किसान जवान ना
0: कहना

0: खेते च किसान डटिया रहेगा तो साढ़े देश से कोई बाल बांका नहीं करी सकता।
1: बिल्कुल, है बिल्कुल।
0: ता भी किसाने की मेहनत भी साढ़े सैनिका बराबरी है। बी अज तुह दिखा भी लगभग एक डेढ़ दो महीने हुई है छलिया राखी करद किए साढ़े किसान फसल जी घर पजाई है सहारा किसान जानता है।
1: बिल्कुल,
0: कहने मैं तो यह बोलगा भाई जड़े ढिले है ना तिना दिखा तुह भे दूं दूं गुलूमन चौं चौं गुलूमन गुजारे करने देना है ना। बी सांझो जल अगर खेतीबाड़ी करा दे तो हाँ जो पूरी सतर्कता कन्नै पूरी वैज्ञानिक तरीके कन्नै खेतीबाड़ी करन तां हां अच्छा उत्पादन जिहड़ा से लेई सकदे हन।
1: बिल्कुल, कहने देखा कि बोलते ना कि संजो जी अजकल नवी नवी जी तकनीक कहने भी आवा करदी हन
0: जी
1: खेतीबाड़ी जी कि हुण अस दे बजुर्ग अलग तरीके कन्नै खेतीबाड़ी करदे थे और जियां जियां बोलिया जमाना बदलौंदा गया आधुनिकीकरण आउंदा गया तां उस हिसाबे नै खेतीबाड़ी दे तरीके भी
0: बदली
1: गए।
0: बिल्कुल, कहना हाँ जो जड़ा है सै आधुनिकता कन्नै सौगी चलना है इं नहीं पुराने ढर्रे भरी जी किसानी जी करते आए तो इं करते आए। हूँ तुह दिखा भी बड़का चाच भी अजकल पहले हले बाने तुह दिखा भी मतलब अद्धा ध्याड़ा लगी जाता कोई कनाल क जमीन बाहनी हो।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: है ना। तो हूँ हाँ तकनीक का इस्तेमाल करा करते जड़ा काम हाँ महीनों करा करते स घंटे चो करता तो इस तरीके का तिस च भी हाँ जो अग्गे रहना चाहिए कहना वैज्ञानिक जी हाड़े ताई खोज करा करते नई नई फसलों की खोज करा करते तिस च भी सू अगे रहना चाहिए। अज अस जी खास करके गल करनी है सै पशुओं हरे चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने ताईं तो दिखा भी अज पशु चारा जड़ा सा महंगा होंदा जा करदा चाहे सा फीडा ही गल कर लिया जड़ा भी हाँ चारा दाना पशु खवांदे न कन्नै अगर इस कन्नै हाँ हरा चारा पशु ठीक समय पर रखिए हाँ दाना जड़ा सा कटाई सकते कन्नै हरा चारा तुसी ज्यादा उपलब्ध कन्नै ये देखिया गया तो जानते हैं बड़का चाचू जी भाई अगर दुधारू पशु हरा चारा मिलता रहा तो दिखा भाई दुध दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की होंगी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो आने वाला टाइम जड़ा सा हूँ जियां साढ़े किसान जड़े अगेती बिजाई वाले हैं तो सरों शलगम मूली गाजर ये सब कुछ लाने है तैयारियां कई तो करी बैठे जड़े पोली हाउस वाले हैं लेकिन जड़े मतलब बाहर खेती करनी है सभी तैयारी करा करते है ना। तो बरखा लगभग लगभग तो हाँ बोल के भी हूँ छड़ना लगी पी।
1: बिल्कुल बिल्कुल, हूँ जी बरसाती का जो दौर के भी हूँ मुकदा दौर है और गां धीरे धीरे जी ठंड के भी बढ़ना शुरू
0: कन्नै हाँ सैर भी मना लैनी हूँ हौली हौली तेज त्यौहार भी लगा करते है ना जी। तो देखा भी सैरी की अगर हाँ गल करिए ना बड़का चाचू जी तो यह साढ़े बजुर्गों के एक संदेश है ना इन्होंने त्यौहारों का भी एक मायने हों कि बी सुख है शांति आ अगर साड़ी बरसात निकली है तो हाँ सैरी का त्यौहार मनाते थे अपनी कुकड़िया का कन्नै पूजन करना चाहे सह घरीमड़ी होवे कोई खट्टे का पूजन करना यह कितनी अहां प्रकृति मिलियो जुलियो आदमी हैं कि अहां प्रकृति सौगी लेके कने इस प्रकृति का शुक्रिया करी के अहां तिस अनाज खाते हैं। तो देखा भी आने वाले टाइम में अहां सैर भी अपने किसान साथियों के घर घर जड़े सह तल पकान होना कने नवी फसलों का भी अहां अपने देवत्यों में चढ़ाना तो यह सारिया गल् जड़ियाँ तो इस कने कने जी अहां गल करा करते थे ना पशु धन जो हरे चारे की जी आने वाले टाइम में अहां बरसीमा वगैरह जौई जौ ये सारा कुछ बहना तो तिस की तैयारी भी साढ़े किसान भाई कने कने करते रहन है ना जी। तो हूँ गां का तुम दसा बड़का चाचू जी भाई क्या तुह सुना करते हैं कने क्या करा करते हैं।
1: बिल्कुल, कने दिखा कि असा तो यह प्रयास रहा कि हाँ अपने किसान साथी जो मिठे मिठे कने प्यारे प्यारे सुनाइए तो सुन देने एक प्यारा दिया लोक गीत
0: जी।

0: किसान साथी हो। आशा करने कि ये प्यारा दे लोकगीत तुसां जरूर पसंद आए होना। और इस लोकगीत दे बाद हुण अगली जिहड़ी गलबात है लंबरदार जी।
1: जी जी भई गलबात ही है ना भई दिखा बड़का साथियों जी, अजकल ये तीज त्यौहार के दिन लगे हूँ तो हाँ जड़ी जन्माष्टमी भी मनाई है हाँ है ना जी, कने खूब साढ़े मंदिर शिव दवाल में भी रौनक जी लगी हैं। कने गल करिए हाँ साड़ा ये जड़ा हिमाचल प्रदेश है ना ये पूरा बोलते भी देवी देवतियाँ की धरती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: हर मोड़े पर हर पर्वत जड़ा है हर धार जड़ी ऐसा एक इन्हों परम पिता परमात्मा का हाँ बोल के ठिकाना है। तो साढ़े मणिमहेश की यात्रा जी ऐसा खास करके साढ़े मतलब जड़ा कांगड़ा चंबा पूरे हिमाचल कने हूँ तो अलग अलग राज्य च भी लोग जड़े से मणिमहेश की यात्रा च आवा करते हैं। तो साढ़े किसान भाई भी अजकल अहें बोलीए भी घा हो घर या भो पराल हो तो

0: किसान जब बाहर घूमना फिरना जाई सकता है। तो अजकल साढ़े किसान भाई जड़े ने मणिमहेश की यात्रा भी करते हैं, कहने किन्नर कैलाश हो गया या कई जड़े धार्मिक स्थल हैं हाड़ा। अगर हाँ इतों की गल करिए तो लमडल जड़ा है सभी यात्रा करा करते, साढ़े युवा साथी जड़े हैं सह बड़िया बड़िया इन्हों जगह च नहा जा करते। पर एक गल हाँ इस टाले के माध्यम से बड़का चाचू जी ये गलांगे भी जलू भी इन्ह धार्मिक स्थानों जाता बिल्कुल शुद्धता कने जड़ी साड़ी परंपरा है सनातन धर्म की परंपरा है तिसदा पूरा ध्यान रखा। कोई भी शरारती उपद्रव कने कोई उड़दंग मचाने की कोशिश ना करे कि इन स्थानों च कोई बाधा कोई उत्पन्न हो है, जिसते अहां दिखते रहेंगे कि कई तरह प्रकूपियां जड़ियां ने होंदियां रहियां ने। तो अहां खास करके अपने युवा साथियों ने करके भी अपनी मनोकामना लेके जा अपनी श्रद्धा ने अपने माता पिता के बारे सोची के जा, क्योंकि पिछे तो कई घटना जड़ियां ने उन्हीं कुछ समय पहले यहाँ एक द्रेणिया की घटना सुनी है भाई, ऐसी ऐसी घटना हुआ कर दी जिस जड़ी अस सोच ही नहीं सकते। अजकल मैं ये बोलगा दिखा बड़का चाचू जी भाई बच्चे जड़े ने एक एक दो दो बच्चे हैं घर च कने भाई ज्यादा भी होन तभी अहें बोलगे भाई बिल्कुल आपू भी सुरक्षित रहा कने अपने माँ बाप जो भी जड़ा ऐसा कोई कष्ट ना पहुँचाई के तुह आरामे ने यात्रा करा इन जितने भी साड़ी धारा हैं हाड़े पर्वत हैं देवी देवत्या दे स्थान हैं तिना च जाई के तुह मौज करा तिना का नज़ारा दिखा कि किया किया तिना साढ़िया बजुर्ग ये देवी देवतियां ये धरतियां सजाई के रखी हैं।
1: बिल्कुल कहने देखा कि इस जी लंबरदार जी मैं भी जी हूँ लमडल की यात्रा
0: जी जी जी मैं लगा पता मैं
1: मते सारे जो श्रद्धालु के भी अपने अपने तरीके कने चले
0: जी
1: है। तो देखा कि ये जेडे तुह ठीक ला कर दे कि साढ़े जेडे बजुर्ग न उन्हें मतलब भी एक
0: बिल्कुल जगह खोज खराब हो बिल्कुल दिखा। किसान साथी बड़ी खुशी की गल है बड़का चाचू होना उतु भंडारा लाई के आए हैं फिर लमडल के जड़े भी साढ़े यात्री जा करते तिना सुख सुविधा ताई ये भी कोशिश करा करते। इं दिखा बड़का चाचू जी कई साढ़े अज तुह दिखा भी पंजाब के लंगर जड़े न मणिमहेश अगर तुह जाते हैं तो तुहानजो एक पैसा खर्चने की जरूरत नहीं है, पानिए तो लेके खाने तो लेके सोने तक ज सारा प्रबंध जिथू लोग चलने तो मतलब डरते हैं तिथू तिना लोग इतनी इतनी दूर जाइए खाने कने सोने का इंतजाम थोड़ा करी दिया है।
1: बिल्कुल ठीक बोला लंबरदार जी थोड़ी गल
0: जी जी जी बिल्कुल
1: देखा कि जी अह लमडल की यात्रा करते हैं तो इस दे भी जड़े रस्ते कहन भी अलग अलग न। अगर मैं जी जिस रस्ते अह गए नौली हुई के
0: अच्छा
1: नौली दे बाद होंदा साड़ा एक करेरी डाल
0: जी।
1: और करेरी डाल ते करता रस्ता फिर भी मतलब भी ठीक है कोई भी मतलब बच्चा जा सकता
0: जी।
1: पर उस दे बाद जी हां बिच जड़ा बोलते ना एक बिंडी होंदी जोत होंदी तो उस जल वहां क्रॉस करना लगता है तो थोड़ी जी ऑक्सीजन की
0: कमी
1: होंदी भी पी जाती है। जल जो जोता पर बंदा पूछता तो बंदा सोचता कि जिथू एक घुट पानी का मिलिया मैं इतना रहन है लंबरदार जी कि जिथू बिंडी पर भी मतलब बंदे
0: दिखा बड़का चाचू जी इत्थे बैठे बैठे ना सांझू तो स्वर्ग नजारा कराई था बी। अज अगर कुनी स्वर्ग हिमाचल च वैसे तो हाड़ी धरती ही स्वर्ग है कने अगर और तुह गां परमात्मा दे चरणा च बह के स्वर्ग दिखना हुआ तो तुह अजकल इन्हां यात्रा पर जाई सकदे। अज जियां मणिमहेश की गल करा करदे ना बड़का चाचू तो बोलते पे बण कुकड़ी कोई तरह तरह के फुल मतलब ये चीज़ा जड़ियां ने तुहानू इन्हां पहाड़ियां पर दिखा प्रकृति ने कियां सजाई के रखियां कि साढ़े जलू यात्री इन्हां यात्रा पर जाते हैं तो इन्हां नज़ारियां का दिखने का खूबसूरती दिखने का और ही मैं बोलता भी कुछ होर सी लोग अह पुजी जाते हैं। तो अहां आशा करनी भी साढ़े युवा साथी जड़े ने इन्हां इलाकों जरूर जा अपने माता पिता भी दर्शन करा अपने जड़े भी बुजुर्ग हैं तिन्हें भी दर्शन करा लेकिन एक ही गल्ला का ध्यान रखना अह दो हाथ जोड़ी के प्रार्थना करते कि जिथू भी तुहानू सरकार द्वारा निर्देश दिते होंगे कि इस इलाके च नहीं जाना या इस तरफ नहीं जाना है तो जरूर तुह तिसा गल्ला ध्यान रखन ताकि सुखे शांति कने अपनी मनोकामना पूर्ण करके तुह अपने घर द्वार सुख शांति ने रहन। तो इस गलबात के बाद दिखा बड़का चाचू मैं दो हाथ जोड़िए थोड़े गांह भी प्रार्थना करता भी एक सोहना दिया सो शिवजी भगवान का लोग भजन तुह सुना है ताकि पूरी रौनक साढ़े

0: किसान भाइयों के घर च भी लग गया
1: बिल्कुल। तो सुनते हैं रली मिलिए शिव भजन।
0: जी।

0: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: डॉक्टर साहब, मीनू बिटिया को अक्सर चक्कर आते रहते हैं, थकान भी बहुत लगती है, इसके हाथ पैर हमेशा ठंडे ही रहते हैं। देखो ना,

0: कैसी पीली पड़ गई है।
1: इसे अनीमिया है, इसके शरीर में आयरन की बहुत कमी है। इसे पूरा करने के लिए चुकंदर, टमाटर, गाजर और हरी पत्तेदार सब्जियों को लोहे की कड़ाई में बनाकर खिलाओ, और अभी कुछ दिनों के लिए आयरन की टैबलेट भी खिला सकती हो।
0: जी डॉक्टर साहब,
1: सिर्फ इसे नहीं सभी को एनीमिया से बचने के लिए ख्याल रखना चाहिए।
2: नेशनल हेल्थ मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
4: भाई बाजवा भी अहाँ संदेश भी सुन लिया, कने बड़का चाचू भी तुहां शिव भजन जड़ा सुनाया, भी फराटी लाने का भी मजा आई है। तो गल ही है भाई, हौली हौली जड़ा अहाँ गल गलाइए ना बड़का चाचू जी, तो हूँ बरखा दी छिट्टियां भी ठंडिया लगी पियां लगना।
5: बिल्कुल
4: है, तो अहाँ आशा करनी भी हौली हौली जड़ा ऐसा मौसम बदलाव आवा करता है। कने जड़े अहाँ धाना की गल करा करते ना, फुआ इबे का फुहारा जड़ियाँ पेजियां ना, जड़ियाँ बोलते निसर दी अबरी फुहारा जरूरी होंगे, भी रात हो ही नहीं क्या अंबर आया नहीं।
5: बिल्कुल बिल्कुल,
4: कोई 10 दिन तो पिछले अगर अहाँ लदवाड़ा सापर रजोल बनोई इन्हों की गल करिए, भाई राती ज्यों फुहारा आईया तो मतलब धाना ताई तो ये अहाँ बोल गए भी दाने भरने वाली गल ही। लेकिन हूँ जलू अंबर छड़ी जाता, कने कुल्ला साड़ियाँ टुटी गई होंगे, बे जलू बड़िया बरखा पा हूँ सजो दोबारा पानी का प्रबंध जरा अपन धाना दट्टियों करना चाहिए, भी सुक्का ना रहे, कने हौली हौली जरा ऐसा मतलब पानी की देख रेख, कने हूँ जरा ऐसा जहाँ बीड़ा बाड़ा अपन बढ़ी लियां तो चूहा लगने का खतरा भी घट रहा है ना
5: जी।
4: कने तुह दिखा भी मैं जरा ऐसा कोदरा बाया है तो असें भी बड़ा शैल चलिया इस बेले, तो साढ़े कने बाही हो मैं कस्तूरी बासमती तिहाए भी नज़ारे तुह दिखा भी इं लगा भी चिट्टी चादर बिछाई हो धान पट्टियों, कने साढ़े किसान जड़े उन्नत किसान हैं तिना दियाँ दिखा तुह भी मिंजर तो इं पे जी कने बालियाँ होंगे
5: है,
4: तो भी बड़ा सुंदर दृश्य जड़ा हाँ गलाइए भी स्वर्ग रूपी दृश्य जड़ा असा पट्टियों च दिखने मिला करता। अजकल तुह दिखा भी साढ़े घीए डानिया खीरे ये भी खूब चले हुए हैं, कने साढ़े किसान अगर तुह जी हारे छमल लाइया ना तुह तो इसी अगर तुह दिखा तो भी असली चीज़ा जड़िया अहाँ बोलते हैं ना भी जड़िया पुराना बाजारियाँ तो स्वाद नहीं आता, पर जड़िया साड़िया मली दियाँ खीरे डानिया कने घीए जड़े लगा करते नज़ारा ही कुछ होर है। तो साढ़े किसान साथियों ने हाँ बोलना चाहेंगे भी अपनी जी लाई फसल है तिस भी ध्यान रखा, कने आने वाली फसलों शलगम मूली बीन ये तुह घर तैयार करा, सरों हूँ बस दिन निकलिया है उन्हें, कने तुह जे बहर खेतीबाड़ी करते तेना ताई भी दिन ठीक हूँ सरों वगैरह अपनी तैयार करिए तो वधिया तुह ताज़ा खा कने ताजा ला है ना जी। तो हूँ इस गलबात बाद फिर तो चलते रौनक की तरफ, चलते चलते सुनते प्यारा दिया लोक गीत
5: जी।

0: किसान साथियों इसी लोकगीत कन्ने कार्यक्रम मौजा कराई दियां एतु संपन्न होकर दा कार्यक्रम च तकनीकी सहयोग रिया विकास पठानिया प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह हुण अपने ट्रायल दस्त से बड़का चाचू
1: कन्ने लंबरदार जी दिया अनुमति। अच्छा जी, जय हिंद।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मोजांगराइंदियाँ। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7 बजने को हैं अब आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10,700 करोड़ रुपए से अधिक की 3 मल्टी ट्रैकिंग रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी।
2: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का एक पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे फोर्थ लाइन बन। ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
1: मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 10,021 करोड़ रुपए से अधिक है। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा करने की योजना है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सभी 7 भीड़भाड़ वाले रेलवे कॉरिडोर को 4 लेन वाला बनाने का फैसला किया है।
2: दिल्ली से मुंबई

0: दक्षिण भारत में बेहतर रेल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देंगे और इससे लाखों लोगों को लाभ होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज श्रीलंका के कोलंबो में राष्ट्रपति अनुर कुमार दिसानायक से मुलाकात की और भारत श्रीलंका के बीच बहुआयामी साझेदारी पर चर्चा की। इस दौरान दोनों पक्षों ने पुष्टि की कि भारत और श्रीलंका क्षेत्र की सुरक्षा, शांति और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त रूप से काम करते रहेंगे। दोनों पक्षों ने श्रीलंकाई वायुसेना के लिए L-70 तोपों में सुधार और दोनों देशों के राष्ट्रीय कैडेट कोर तथा राष्ट्रीय महाविद्यालयों के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापनों का भी आदान प्रदान किया। इसके अलावा भारतीय रक्षा बलों द्वारा निर्मित 3 बेली पुलों का भी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया। आज मुंबई में ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की अंतिम बैठक हो रही है। इस वर्ष ब्रिक्स वित्तीय चर्चाओं का विषय है मजबूत नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। इससे पहले वित्त मंत्री और गवर्नर पिछले महीने जयपुर में बैठक कर चुके हैं। वित्तीय आसूचना इकाई ने धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों का पालन न करने पर 15 वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति सेवा प्रदाताओं को नोटिस जारी किए हैं। इनमें बिट यूनिक्स, डीजी फिनिक्स, पायोनिक्स, वाइट बिट, फिक्स्ड फ्लोट और टू बिट शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आज अंतर्राष्ट्रीय रुद्राक्ष सम्मेलन केंद्र में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर से एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। ये अभियान प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर शुरू किया जाएगा। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना ने 2 और लोगों को जबरन गायब कर दिया है। इससे बलूच लोगों के गायब होने और प्रभावित परिवारों को जानकारी न मिलने को लेकर चिंताएं और बढ़ गई हैं। विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला के अंतिम दिन आज भारत ने 2 स्वर्ण और 4 कांस्य पदक जीते। अहमदाबाद में शीतल देवी ने कंपाउंड महिला व्यक्तिगत स्पर्धा में तथा हरविंदर और भावना ने पैरा रिकर्व मिक्स्ड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। The Union Cabinet chaired by Prime Minister Narendra Modi has approved 8 multi-tracking projects of the Railways Ministry at a total estimated cost of more than 20,700 crore rupees. Information and Broadcasting Minister Ashwani Vaishnav gave details of the decisions taken by the Union Cabinet during a media briefing in New Delhi today. Mr. Vaishnav said the Cabinet has approved 5 multi-tracking projects covering 17 districts across Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka and Telangana. Mr. Vaishnav said the government has also approved 3 multi-tracking railway projects at a total estimated cost of more than 10,700 crore rupees. These projects will cover 14 districts across West Bengal, Jharkhand, Odisha, Madhya Pradesh and Chhattisgarh and will add up to 656 kilometers to the existing railway network. The minister further informed that the government has decided to undertake 4 laning and quadrupling of all 7 high-density railway corridors. In reply to a question on Mumbai-Ahmedabad bullet train project, Information and Broadcasting Minister informed that the bullet train service will commence next year.
2: Bullet train ka inauguration 2027 mein fix hai.
3: The inauguration of the bullet train is scheduled for 2027 with construction work progressing at a very rapid pace. Initially, the plan was to open a 50-kilometer section between Surat and Bilimora. However, this has now been extended to a 100-kilometer section from Surat to Vapi, which is scheduled to be opened in 2027. Construction work is expected to be completed by around December. At the same time, work on the bullet train itself is also progressing rapidly. The first coach for testing was completed and made ready last week, and the train is expected to be brought onto the tracks for testing by May or June next year.
2: अगले साल मई जून तक ट्रेन पटरी पे आ जाएगी टेस्टिंग के लिए।
1: Prime Minister Narendra Modi has said that today's cabinet decision ensures faster passenger movement, stronger connectivity, and additional freight capacity. In a social media post, Mr. Modi highlighted that the five railway projects worth over 10,000

0: खेतीबाड़ी कार्यक्रम सुना करदे सारे किसान बागवान भाई भैणा जो लंबरदार दी तरफ ते राम राम कन्ने मेरे कन्ने आज सलाह सूत्र करा करदे हन साढ़े बड़का चाचू जी तुहानू ही मेरी तरफ ते राम राम
1: राम राम लंबरदार जी, राम राम। और जितने भी किसान बागबान भाई बहन कार्यक्रम जो सुना कर देन उन्हें सारे जो ही बड़का चाचू तरफ दे राम राम
0: जी। बिल्कुल राम राम तुहाड़ी कबूल होई कन्ने गल ही है भई अज हाँ खेतीबाड़ी कार्यक्रम च साढ़े किसान भाई जानते कि जड़ी भी साड़ियाँ अजकल खेतीबाड़ी से संबंधित भावें विज्ञानिक कोई सलाह दिया करते हैं या साढ़े किसानों कोई समस्या हुआ करती है तो यह सारी गलबात जी साढ़े सट्याले पर साझा होंगी है।
1: बिल्कुल
0: कहने दिखा जी बड़का चाचू तो हाँ बैठे हो तुहाड़े ने भी सलाह सूत्र करके कई बार जी गल गल गल खुड़ी तो हाँ जो भी तजर्बे मिलते कहने अहाँ तो खेतीबाड़ी इस्तेमाल करते तो अज जी है अहाँ गल करनी अपने किसान साथियों ने कि अपनी खेतीबाड़ी च औषधीय पौधों की खेतीबाड़ी है ना जी भी सह टाइम चली है भी हाँ सिर्फ खानी फसलों बाही सड़ियाँ कने सह खाई लिया कने सह करी लिया लेकिन अज साड़ा विज्ञानिक भी ये बोला करते कि सांजो जड़ा है साड़ा जितना भी हिमाचल प्रदेश है वैसे तो जड़ी बूटियां का ही इलाका है
1: जी जी
0: है ना जी। हर तुहां कोई भी अज दिखा जड़ी बूटी अगर तुहां दिखा करते या तुहां सुना करते तो सह सह कौन दे जड़ी बूटी है जी साढ़े हिमाचल च नहीं उगती तो लेकिन हूँ जड़ी और उन्नत तरह जड़ी औषधीय खेती जड़ियाँ आवा करदियाँ औषधीय पौधे खेतीबाड़ी तो इस विच असां अपने किसान साथियों भी बोलना चाहेंगे।

0: कि कई ऐसियां औषधीय पौधे आई होन जिन्हें वो जंगली जानवर भी नुकसान नहीं पहुंचाते,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: कन्ने तिन्हें इतना ज़्यादा मतलब खैर खबरी भी नहीं करना पौंदी, लेकिन तिन्हां दा उत्पादन भी इस इलाके च वधिया हुंदा। कन्ने तुसां तिन्हां दी खेतीबाड़ी अपनी खेती च अगर तुसां करना चाहुंदे हन तां करी सकदे हन,
1: बिल्कुल। कहना देखा कि असा दा वैज्ञानिक भी रात दिन शोध करते हैं
0: करा
1: कि
0: करदे। जी
1: भी
0: जी
1: तरह तरह के जेडे औषधीय पौधे कहने भी इसे तैयार किए जा रहे
0: जी
1: हैं। तो देखा कि जालू हाँ मतलब औषधीय पौधे की खेतीबाड़ी करनी है तो इस दे भी सांझो एक अतिरिक्त जो आमदनी का जरिया बनना है, तो सांझो सारे जो ये जी औषधीय पौधे की खेतीबाड़ी के भी करना
0: करना
1: चाहिए।
0: चाहिए। कहने दिखा तुहां बड़का चाचू जी गल ही है भी एलोपैथी जड़ा अंग्रेजी दवाई खा करते ते ना कन्ने कई सांझो बीमारियां जड़ी इसे लगा कर दी।
1: बिल्कुल
0: कन्ने
1: बिल्कुल
0: आज भी साड़ा आयुर्वैदिक जड़ा है ऐसा कुसी ना कुसी तरीके कन्ने अपना जड़ा मतलब रुतबा ऐसा बनाया है,
1: जी जी जी
0: कन्ने इस विच दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हुआ करदी। बाहरले देश भी हुण साढ़े आयुर्वैदिक का जड़ा इलाज है तुसीं अपना करदे, कन्ने इस वजह कन्ने साड़ियां जड़ियां आयुर्वैदिक दवाइयां ने इन्हां दा उत्पादन भी बड़ा करता। कहीं इसी उत्पादन बढ़ाने ताई तो सानू उत्पाद ये तैयार भी करना पौनी है।
1: जी
0: तो
1: जी जी
0: साढ़े किसान साथी जड़े हैं हरेक चीज़ा च जड़ी भी कोई चीज़ है तिसा जो मैं ये बोलगा भी रीढ़ दी हड्डी ज्यादा काम करने का काम जड़ा सा साढ़ा किसान करता है,
1: जी जी जी जी
0: तो ये जो आयुर्वेदिक है आयुर्वेदिक दवाइया ने ता ही बननी है जालू इन्हों का उत्पादन होगा आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां का,
1: बिल्कुल
0: तो इन्हों का मुल्य भी अच्छा मिलता है। कन्ने जिस विच हाँ गल करिए सफेद मूसली हुई है एलोवेरा हुई है एदियां चीज़ा साढ़े कुछ किसान उगा भी करते, कन्ने अच्छा मुनाफा इस विच लिया करते। कन्ने दूई गल अहें गलाना चाहेंगे अगर साढ़ा किसान युवा साथी जड़ा है इस विच अपना भविष्य दिखता है तो जरूर अपने ब्लॉक स्तर पर अपने कृषि अधिकारी ने मिली के इस पर तो जो प्रशिक्षण दिता जाता है तो अगर करना चाहते ने खेतीबाड़ी तो अपना एक प्रार्थना पत्र तो ब्लॉक स्तर पर जड़े हाड़े SMS या कृषि अधिकारी बैठते हैं तिन्हें दिया कि मैं इस विषय पर अपनी प्रशिक्षण जरा से लेना चाहता, कने तो निःशुल्क सह प्रशिक्षण जरा से मुहैया कराया जाना जालू भी तिसदा कैंप लगता है या
1: जी जी
0: जालू भी तिसदा आयोजन किया जाता है तो जरूर तिदा बुलावा आना, कने तिसदा प्रशिक्षण लेके अगर तिस कमे करन तो बड़ा अच्छा मुनाफा तुम कमाई सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल तो किसान साथी गल्लां बातां अगे भी जा रहे हैं, पर हुण शामिल करना एक प्यारे दे लोक गीत
0: जी
1: तां सुनदे ने लोक गीत।
0: जी

0: किसान साथियों, आशा आशा करने कि यह प्यारा दे लोकगीत पसंद आया होना। और इस लोकगीत के बाद उन्हें चलना अगली जानकारी की तरफ,
1: जी
0: तो सुनते ने जानकारी।
1: जी
0: किसान साथियों, जिया कि तुसा जानते हैं कि टियाले के माध्यम कहने असा तुहानू तिकर ढेर सारी जानकारियां कहने भी पहुंचाते रहते हैं, चाहे से जानकारी डॉक्टर दी होए, विज्ञानिक दी होए, या फिर असा दे उन्नत किसान भाई दी होए। तो अज इस कड़ी विच गलबात करनी है विज्ञानिक विधि द्वारा मशरूम उत्पादन। इस संबंध च इस वेले साडे टियाले पर मौजूद हैं डॉक्टर अरुण कुमार सूद, प्रधान प्रसार विशेषज्ञ एवं कार्यक्रम निदेशक मशरूम, चौधरी सरवण कुमार, हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर। सारे दे पहले डॉक्टर साहब तुसा दा टियाले पर बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, जिया की असा दा किसान साथी अपनी खेती बाड़ी दे कामकाज दे अलावा कई तरह दे व्यवसाय जो करता है, जिस च खुंभ उत्पादन भी शामिल है। अगर असा दा किसान साथी खुंभ उत्पादन दा काम करना चाहता है तो शुरू च किना किना जेड़ी गल्ला बातां कहन से ध्यान च रखना चाहिए जी?
1: नमस्कार, सब ते पहले तो यह है कि अगर कोई खुंभ दी खेती करना चाहता तो इसे ट्रेनिंग लेना बड़ा जरूरी है, प्रशिक्षण लेना बड़ा जरूरी है
0: जी।
1: कने ए प्रशिक्षण जेड़े ने अहां दे हिमाचल विच कृषि विज्ञान केंद्र कृषि विश्व विद्यालय ने खोलियो, हर एक जिले च एक कृषि विज्ञान केंद्र है, ता इथू जांदी या हमारा प्रसार शिक्षा निदेशालय है पालमपुर है, इथू ट्रेनिंग हो जांदी। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ऐसा है, मशरूम दा यूनिट है पालमपुर, उथू ती दी ट्रेनिंग करवाई जांदा। कने एक है प्रसार शिक्षा डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च सोलन चंबागाट स्थित है, इथू भी इहदी खुंभां दी प्रशिक्षण जे ट्रेनिंग करना चाहे ऐसा ले सकदा
0: जी। डॉक्टर साहब, अगर जिया असा दा जेड़ा किसान साथी है या फिर बेरोजगार युवा साथी है खुंभ दी खेती करना चाहता है, विभाग की तरफ अदे भी कोई मदद वगैरह दी जाती है?
1: जल तुहानी ट्रेनिंग हो जानी, तुहें सर्टिफिकेट मिलना, फिर जेड़ा बागवानी विभाग है इस वास्ते तुहें वो कमरे बनाने वास्ते भी पैसा उपलब्ध करवांदा, कहिंदे जे तुहें खाद मशरूम दी लेनी इस वास्ते भी तुहें तने कुछ ना कुछ जेड़ा सा प्रोविजन अनुदान जेड़ा सा मिलता।
0: सुरु च मतलब सिखलाई लेना बड़ी जरूरी है
1: जी,
0: क्योंकि कोई भी यहां अगर नया

0: कर देता सिखलाई लेके करेंगे तो फिर इसे काम समझो थोड़ा आसानी ने हो जाना। जालू असदा जेड़ा युवा बेरोजगार साथी या फिर किसान भाई मतलब सिखलाई लेना चाहता है तो शुरू च क्या इदे बारे च कोई प्रार्थना पत्र देना पौंदा या फिर क्या प्रक्रिया रहिंदी है?
1: प्रार्थना पत्र जेड़े ना सै जेड़ा बागवानी विभाग है इसे दे दिया, कृषि विज्ञान केंद्र ने इथू दे दिया, फिर ये ग्रुप बनाए के जेड़े ना सै हाला भिजवाई दे या बागवानी विभाग जो भिजवाई दे पालमपुर सै फिर ट्रेनिंग करवाते रहते।
0: ट्रेनिंग कितने कितने दिन दी होनी है और क्या इदी जेड़ी प्रक्रिया रहनी है?
1: 5 से 6 दिन तक ट्रेनिंग होंगी, इस च तुहें सारा मशरूम दे बारे च जानकारी दिंदे। तां जियां हुण मशरूम ही है ना, ये भी बड़ियां किस्मां दे हुंदे, जियां तुहें दसदा सफेद खुंभ हुंदे, फिर एक डिंगरी हुंदी, एक मिल्की मशरूम हुंदी, एक दाना पर लगदे मशरूम हुंदे, एक नवें शिटाके है ना, फिर एक होर है ऋषि मशरूम है, बाकी तुहें गुछिया ना तो सुने ही होना।
0: जी जी जी जी।
1: तां इस टाइप दे बड़े भारी मशरूम हन, पर हां जेड़े मेन करी सकदे सै ना वाइट बटन मशरूम, जेड़ी सफेद खुंभ है खुंभी है, कने डिंगरी।
0: जी जी।
1: इहदी खेती जेड़ी है प्रोपर ट्रेनिंग दिंदे, कने जेड़ा वाइट बटन मशरूम है ये भी 2 तरीके ने बनदी।
0: जी।
1: इहदी खाद जेड़ी है 2 तरीके ने बनदी, एक लघु विधि हुंदी कने एक लंबी विधि हुंदी, एक डिंगरी हुंदी। जेड़ी डिंगरी है ता खैर बड़ी आसान है लगाना।
0: जी जी। अच्छा, इसदे अलावा जियां अहां खाद दी भी गल कीती है, ता एक खाद कुथू जाई के मिलदी है या फिर किसान भाई के भी आपू भी बनाई सकदा ऐसा खाद जो?
1: जद तुहां जेड़ी हां ट्रेनिंग देनी ना, तिस च तुहां 2 किस्मां दीआं खादां बनाना दसणियां, लंबी विधि ने भी नहीं छोटी विधि ने। जेड़ी छोटी विधि है तिस च क्या हुंदा कि सारी मशीनरी लगदी।
0: जी जी।
1: तां कने लंबी विधि जेड़ी है तुहां आपू अपने हाथां ने अपने घरें भी बनाई सकदे, कने जेड़ी छोटी विधि है इस वास्ते जेड़ा तुहां पहले तां मटीरियल चाहिदा भी क्या मटीरियल लगना। तां इस वास्ते जियां अहां मन्नी लिया कोई 10 क्विंटल खाद बनानी है इसदी, तां 10 क्विंटल जेड़ी अहां तूड़ी चाहिदी।
0: जी जी।
1: फिर यहाँ जेड़ी बड़ूइया दी खड़े है सह 20 किलो चाहिए, फिर मुर्गिया दी बिठ हुंदी जानदे ना तुहां,
0: जी जी,
1: सह 400 किलो सह चाहिए, फिर कणका दा बरादा हुंदा है क्या कहलांदे तुहां, क्या कहलांदे जी जो चोकर,
0: जी
1: ते चोकर 50 किलो चाहिए तिस्यो, कने यूरिया भी कोई 10 से 15 किलो लगना, कने एक जिप्सम हुंदा सह तिस च पौंदा कोई 100 किलो। ते ए चीजां हर होंगीयां तां हां जेड़ी है जी छोटीयां विधियां ने मशरूम दी खाद बनाई सकदे, कने अगर तुहां घरे अपने लंबी विधि ने बनानी होए तां तिस वास्ते मन्नी लिया कि तुहां 3 क्विंटल खाद बनानी है, इस वास्ते जेड़ी है चोकर जेड़ी तुहाड़ी 15 किलो लगनी, यूरिया 3 किलो लगना, कैन है 9 किलो लगनी, मिर्ट पोटास हुंदी 3 किलो लगनी, सिंगल सुपर फास्फेट है 3 किलो लगनी, मोलासिस, मोलासिस मतलब हुंदा है गुड़े दे नहीं हुंदे हराब दे जी, पता होना तो सर 6 किलो लगनी, कने जिप्सम जेड़ी है 30 किलो लगनी, कने और कोई बीमारियां बुमारियां कोई कीटनाशक जेड़ा सब बीच पई जांदा।
0: अच्छा, तो ये जितनी भी चीजा दसी ने इन्हों का मिश्रण बनाई के इदी खाद के भी तैयार की जाती
1: है? हाँ, फिर इस दे जड़ी है जड़ा मिश्रण बनांदे इस वास्ते क्या करते जी, जियां तुहां मन्नी लिया कि छोटी विधि है नहीं दसदा मैं तुहां समझांदा थोड़ा जिहा कि कियां बनांदे, तो पहले क्या करते कि जिहड़ी तूड़ी लैनी है हां जियां मन्नी लिया 10 क्विंटल तूड़ी लई है, तो इसे पहले 4-5 दिन जिहड़ी इसे पानी ने भिगोना।
0: जी।
1: ते कई भिगोना कि जिहड़ी तूड़ी हुंदी इसे बड़ी सख्त हुंदी फिर ताकि ये नरम हो जाए, फिर इस च क्या करांदे जल 4 दिन हो जाने तो इस जिहड़ी है 400 किलो जिहड़ी दसी है मुर्गियां दी बिठ है सह पाई देनी, कन्ने जिहड़ी है बड़ूइयां दी खली दसी सह पाई देनी, कने चोकर भी पाई देनी, फिर इन्हें 4-5 दिन जेड़ी है उसी मिक्स करते रहना, कने पानी दिंदे रहना अच्छी तरह मिक्स होइए, फिर क्या करना जे उसके बाद हां जेड़ी छोट विधि विधि है ये 2 तरीके ने बनती, एक फेस बन हुंदा कने एक फेस टू हुंदा, फेस बन हुंदा मतलब बाहर बना दी, कने फेस टू हुंदा भी अहां अयो अंदर ले आनी है।
0: अच्छा।
1: टनल च पाई दे हुंदे ते फेस वन च हां क्या क्या करदे भई तिस जो 10-12 दिन लगदे, ते पहले क्या करदे जियां पाई ता सारा मिक्सचर होई गया जलू 4th दिन आउणा तालू इस च हां क्या कहंदे जिप्सम पाई देना।
0: अच्छा।
1: ठीक है, कने जल 6th दिन आना तालू के जिहड़ी है स्टैक बनांदे हुंदे आ जिहड़ी डेरियां लगांदे ते नाल है तोड़ी दाणी कने दुबारा बनाई जानी, चल 8th दिन आना तालू जिहड़ी इसे खाद जिहड़ी है भूरी होई जानी काली होई जानी, कने इसे जो हां टनल वास्ते जिहड़ी अंदर ले जाने वास्ते तैयारी हो जानी, उसे सहा सेकंड फेज गलांदे जिसे अंग्रेजी च गलांदे पास्चराइजेशन कने कंडीशनिंग। पास्चराइजेशन मतलब जिहड़ी इसे इस अंदर जिहड़ी हां इस जिहड़ी है यूरिया हरी पाए ते इस अमोनिकल अमोनियम नाइट्रेट बनी जानी ना खत्म करी के जी है प्रोटीन च बदल हो जाती, जी प्रोटीन है यूजफुल हो जाती, फिर जो होता 8 दिन जड़े हो जानी सह जल हाँ ट्रांसफर करी थी अंदर तिसते बाद क्या होता फिर 2-3 दिन जो फ्रेश एयर देंदे रहना इसे।
0: अच्छा।
1: तिसते टेम्परेचर जी है कोई 45 से 52 रखनी पौंदी, फिर 4 दिन हो जाने तो टेम्पर फिर बंद कर देनी, फिर हाँ स्टीम देनी तल टेम्परेचर कोई 59-60 डिग्री हो जाना ताकि अच्छी तरह हो जाए,
0: मतलब कमरे च
1: जी अंदर टनल जी होनी ना सुरंग जी किस्म बनाई होंगी तिस अंदर रख दे, फिर 5-6 दिन क्या करना जी अमोनिया फ्री हो जाती जी मुस्क आ जी तिस हटी जानी,

0: सतवें दिन क्या करना हा, टेम्परेचर डाउन कर देनी कने से 25 डिग्री लेनी बड़े बलोर बलार लगाई के ना डाउन लेनी कने सह जी है खाद जी सह हाँ बैगा च भरने तैयार होनी तो इस तरीके ने हाँ की सोट विधि ने जी सह खाद
1: तैयार हुई है। अच्छा डॉक्टर साहब इं दसा कि जिया खुंभ की खेती असा तो जो किसान साथी करता या फिर करना चाहता है या फिर युवा बेरोजगार साथी खुंभ की खेती करने ताई ठंड वाला मौसम बांका रहा या फिर गर्मी वाला।
0: अगर तो किसान भाई एसी लगाई लैन तो 12 महीने कर सकता करे, अगर जे किसान भाई ने नैचुरल तरीके ने करनी है तो ये सितंबर महीने ते लेके मार्च अप्रैल तक
1: अच्छा
0: वधिया खेती हो जाती है। जे ठंडा इलाका है तो थोड़ी होर ज्यादा बढ़ाई सकते कने, अगर ये जी खाद है ये जी मशरूम की खेती है इस वास्ते अहें 3 घटक बढ़वा जरूरी है जी। ये पहला पार्ट आई अहां दा खाद बनी है, दूआ है इसका बीज।
1: अच्छा
0: बीज भी अहां किसान मिलना कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर च मिलना खुंभ यूनिट च या सोलन डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च है तिथु मिली जाना तुम बीज का। त्रीया चाहिदा इस वास्ते केसिंग मिट्टी होंगी, केसिंग मिट्टी जलू मतलब हाँ जी बैगा च भरी देते स्पान पाई दे जिहड़ा बीज होंगे खुंभा का बीज इसने मिलाई दे कने दिन बैगा जिहड़ा अंधेरे कमरे च रखी इन्हें 15-20 दिन जिहड़े अंधेरे कमरे च रखने फिर इस जलू सारे फंफूदी चिटे हो जाने जलू बैग तलू एक होर चीज हाँ लेंदे केसिंग मिट्टी होंगी। केसिंग मिट्टी होंगी एक जिहड़ी हाँ दी मिट्टी होंगी आम मिट्टी कने इस 3-4 साल की गली सड़ी खाद पाते देसी।
1: अच्छा
0: कने क्या लैना जे उस च कोई जे एक रेसो लेंदे कने चौथा हिस्सा जेड़ा है तीस च फिर हाँ जेड़ी नारियल दा बुरादा होंदा ना कोर पित बोलदे उस जो सह मिलाई दे सह ताकि जो पानी जो चूसने वधिया रहिंदा तो जलू इस हिस्सा तुहाड़ी है बुथी जेड़ी है पूरी है चिटी हो जानी बैगा च तलू अहां खोलना कने 1 इंच दी लेर जेड़ी सह तीस दी कर देनी ते तीस च फिर सह पिन्ना शुरू हो जानी मशरूम दी आउणा। अच्छा साहब पिन्ना शुरू हो जानी तालू क्या करना तो हाँ एक ध्यान रखना कि संजा ब्यागा जड़ी है फ्रेश हवा देनी।
1: अच्छा
0: अगर फ्रेश हवा नहीं देंगे तो तेना है मशरूम नहीं बनने।
1: फ्रेश हवा जी मतलब दरवाजा खोली रखना चाहिए
0: जाली वाला दरवाजा होता ना
1: सब
0: ब्यागा भी खोलना संजा भी खोलना दिने बंद रखना केसिंग मिट्टी पाई ये कोई इस कोई ताकत नहीं होंगी ये सिर्फ जी मशरूम जरा फंफूंदी थी ना हेठ इसे फोर्स करके उपर जो मशरूम लगाने वास्ते जरा सह बहार भेजता इसे
1: जी।
0: इसके बाद क्या होंगे कि जड़ा अहां दी केसिंग मिट्टी है सिर्फ अहां सही भिगोनी है जे अगर तुम ज्यादा पानी दिता तो सह खुंभ जी फंफूंदी है सड़ी आनी कने घट पाएंगे तो मशरूम सुकी आना तो अगर इसे तरीके ने लगांगे कने अंदर जी है जलू जे तुम्हारा ये स्पान फैलना है तलू टेम्परेचर चाहिए 22-25 डिग्री
1: जी जी
0: ठीक है कने जलू जे तुसा स्पान फैली आ कने जलू तुम मशरूम लगने तलू के टेम्परेचर तुम 16-18 डिग्री चाहिए घट चाहिए
1: घट चाहिए मतलब
0: तां तुम्हारे सह मशरूम जेड़े सह लगने। वैसे तो लेडीज वास्ते बड़ा वधिया कम है जी घरें अनएम्प्लॉयड लेडीज आने या कुछ नहीं कराई या अनएम्प्लॉयड स्टूडेंट भी है जो भी है ना तेना वास्ते सब ते वधिया कम है ऐ संजा व्यागा दे काम
1: जी जी
0: दिने होर काम
1: भी। अच्छा इस च एक गल होर दसा डॉक्टर साहब की जियां ए खेती मतलब जेड़ी मशरूम दी है ए बंद कमरे च ही हुंदी है जियां बंद कमरे च मतलब किस किस तरह दी जेड़ी सावधानियां हन जो बरतना चाहिदी ने और इस च मतलब जियां एक टाइम च कितने आदमी जियां उस कमरे च जाई सकदे ने या फिर और किना किना जेड़ी खास गल्ला के उन्हां दा ध्यान रखना चाहिदा।
0: ए जेड़ा मशरूम दा काम है ना ए जियां हॉस्पिटल ऑपरेशन थिएटर दिखे तो
1: जी जी जी
0: तिथु कुछ ही नहीं जाना देंदे कने बिल्कुल दिखे जियां अजकल कोरोना च मास्क लगाए ना इथु असां मास्क 24 घंटे लगाना पौंदे
1: जालू कमरे हो
0: जाना। कमरे हो जाना है कने इसने हाँ बोलना भी नहीं है मुंह च भी जीवाणु होंगे।
1: अच्छा
0: सभी चली जाए तो हो सकता भी किसी को बीमारी लगी है
1: हाथों
0: चाहे ग्लव्स पाने पैर जेड़े ने जल तो है एंट्री जिथू बनानी दरवाजा जड़ा होना तिथु फार्मेलिन का गोल
1: अच्छा।
0: पाना ताकि तुम पैर डुबोई के जुते ही डुबोई के जाना अंदर इन चले जाना अंदर चले जाएंगे कने इस कोई रिश्तेदारी नहीं चलती है
1: जी जी
0: तो हाँ बोल गए चल भाई मेरे मशरूम दिखी लें तो अज तक तो हाँ मशरूम बढ़िया लगने के कल्ले गोवा तो कोई भी आदमी ज्यादा इस अंदर ना जाए जेड़ा काम करता सही अंदर जाए कने बड़ी सावधानी रखनी अगर सावधानी नहीं रखी तो हाँ कुछ हथे नहीं आना कने उइया अगर ये बड़ी चीज बढ़िया है तो थोड़ी इनकम जड़ी है सह 1 रुपया खर्च के तो 3 रुपया टिके होने 3 महीने ची
1: जी जी जी
0: कने अगर तो हाँ नहीं सावधानी बरती तो है 1 रुपया जेड़ा खर्चा है भी 0 हो जाना
1: जी। तो डॉक्टर साहब अंत च यह दसा कि खुंभ उत्पादन च बीमारी लगने की भी संभावना रहती है कने कौन कौन बीमारियां लगी सकती है और इन्हों का क्या क्या उपचार है मतलब
0: इस जी खुंभ है एक ही किस्म की वाली खाने वाली बीमारी है पर इस पर भी बीमारी लगी
1: जी
0: तो बीमारियां 2-4 बीमारियां होंगे इस ग्रीन मोल्ड होंगी फिर इंकी कैप आई जाता फिर ब्रोन मोल्ड होंगे फिर वाइट प्लास्टर मोल्ड हों, बैट बबल हों, ड्राई बबल हों, सारिया बीमारियां ने। अगर जी ग्रीन मोल्ड है, अगर थोड़ी जी है टनल च पाई है ना खाद, अगर इस हाई टेम्परेचर लग जाती है, या इस जी है डंगे नशा जी है पास्चराइज नहीं हुई, मतलब कंडीशन नहीं हुई, तमी से जी है बीमारी आ जानी। ठीक है, फिर यह हों ग्रीन मोल्ड लग जाती जी तुह मैं दसा जी केसिंग मिट्टी बनानी है, अगर इस डंगे ने स्टरलाइज नहीं करे तो क्या होना, तो इस जी है ये बीमारी आ जानी। तो इस वास्ते क्या करना, तो हाँ एक दवा होंगी मैनकोजेब या डाइथेन 45 या बेबिस्टिन होंगी। डाइथेन हो 2 ग्राम पर लीटर, बेबिस्टिन मिलती है तो 1 ग्राम पर लीटर, से गोल बनाना तिथू तिस पर स्प्रे कर देना। कहीं एक और काम करना, जिथू बीमारी लगी होंगी मन लिये पैच बीमारी है लगी उपर, तो छुरी करनी ना जी है गर्म करनी, गिठिए जी गर्म कर ले, चढ़ी कर देनी, मतलब कढ़ी देना ना है पैच दे, तिथू जी केसिंग मिट्टी नौ ही भरी देनी, कने ये जी मैं तुम्हें दवाई दसा बेबिस्टिन आई गोल।
1: डॉक्टर अरुण कुमार सूर जी, तुसा असदे सुनने वाले जो बहुत ही बांकी जानकारी दी है, तुसा दा बहुत बहुत धन्यवाद जी।
2: भाई बड़का चाचू जी, बड़ी अच्छी जानकारी जी डॉक्टर होर निकलवाई है ना
1: जी जी।
2: भाई यहाँ आशा करते भी साढ़े किसान भाई जो मशरूम की खेती करा करते हैं, तेन मतलब पूरा जानकारी जी इसते फायदा लैने की है, तो हूँ हाँ अपने किसान साथियों लेके चलना कांगड़ा सब्जी मंडी की तरफ, कने हाल जड़ा सब्जिया का भा रे सह दसने। आलू का मुल रहा 10-20 रुपये प्रति किलो, प्याज 50-55 रुपये, कने टमाटर रहा 28-30 रुपये, लहसुन 180-120 रुपये, 200 रुपये प्रति किलोग्राम, कने अदरक 120-130 रुपये प्रति किलोग्राम, शिमला मिर्च 48-50 रुपये, कने अगर मटर की गल करिए मटर का मुल रहा 130-150 रुपये प्रति किलोग्राम, फुलगोभी 40-50 रुपये प्रति किलोग्राम, बंद गोभी 30-32 रुपये प्रति किलोग्राम, कद्दू 15-18, मूली जड़ी रही से अगर गल करिए मूली 12-20 रुपये, कने पालक जड़ा है से हूँ 35-40 रुपये प्रति किलोग्राम, कने भिंडी जड़ी है 25-30 रुपये, कने फलों अगर अं गल करिए किसान साथियों, तो किसान सेब रहा 30-160 रुपये, केला 40-50 रुपये प्रति दर्जन, अनार 90-110, अनानास जड़ा रहा 40-45 रुपये, अमरूद 95-100 रुपये प्रति किलोग्राम। तो यह था कुछ सब्जी मंडी के भाव, कने हूँ इसके बाद फिरते हाँ लोकगीत की तरफ चलना, कने सुनाना अपने किसान साथियों के प्यारे दे लोकगीत
1: जी।

0: किसान साथियों, इसी लोकगीत कने खेती बाड़ी कार्यक्रम इतु संपन्न होकर दा जाण दे पहले दस दिए कि कार्यक्रम च तकनीकी सहयोग विकास पठानिया, प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह, हुण अपने ट्रायल दे सदस्य बड़का चाचू
1: कने लंबरदार जी दी अनुमति। अच्छा जी, जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती बाड़ी, ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। शाम के 7:42 हुए हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी कि 7:45 पर आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। कीजिए बस कुछ ही पलों का इंतज़ार।

0: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध हैं समाज की असली धार।
1: सीखें युवा दे सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
2: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद,
1: अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनित में जारी।
3: नमस्कार हिमाचल, प्रदेश के बर्फबारी वाले क्षेत्रों में जनगणना 2027 का द्वितीय चरण जनसंख्या गणना 1 सितंबर से 30 सितंबर 2026 तक आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान आपके घर आने वाले प्रगणक आपसे आधिकारिक रूप से प्रकाशित कुल 40 प्रश्न पूछेंगे। आपका हर एक सही उत्तर आने वाले कल की बेहतर नीतियों का आधार बनेगा। अपने घर आए प्रगणकों का सहयोग करें और पूर्णतः सही एवं सटीक जानकारी दर्ज कराएं।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार, राज्यपाल कविंद्र गुप्ता का विश्वविद्यालयों से युवाओं को अवसरों और साधनों के सृजनकर्ता के रूप में तैयार करने का आह्वान। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की केंद्र सरकार से लाहौल स्पीति और पांगी में खगोलीय केंद्र स्थापित करने की मांग। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, प्रदेश में सड़क, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं अत्यंत दयनीय स्थिति में। सांसद अनुराग ठाकुर सांसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित। और प्रदेश में धीमा पड़ा मॉनसून, 14 सितंबर से फिर पकड़ेगा रफ्तार। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री और रोजगार तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि ज्ञान, कौशल, अनुसंधान, नवाचार, उद्यमिता और चरित्र निर्माण पर भी केंद्रित होना चाहिए। राज्यपाल आज सोलन जिला के बद्दी में ICFAI विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। उन्होंने विश्वविद्यालयों से युवाओं को केवल रोजगार तलाशने वाले नहीं बल्कि अवसरों व संसाधनों के सृजनकर्ता के रूप में तैयार करने का आह्वान किया। राज्यपाल ने इस मौके पर मेधावी विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक और डिग्रियां प्रदान की। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार से लाहौल स्पीति और पांगी में लेह लद्दाख के हानले जैसा खगोलीय केंद्र स्थापित करने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने आज केंद्रीय विज्ञान व प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र प्रसाद से मुलाकात के दौरान ये मामला उठाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन क्षेत्रों में खगोलीय अनुसंधान और अवलोकन के लिए परिस्थितियां काफी अनुकूल हैं। उन्होंने कहा कि इस केंद्र के स्थापित होने से स्थानीय युवाओं और विद्यार्थियों को खगोल विज्ञान में रुचि विकसित करने के अवसर मिलेंगे।

0: साथ ही जनजातीय क्षेत्रों में सतत और ज्ञान आधारित पर्यटन के नए अवसर भी सृजित होंगे। उन्होंने लैवेंडर की डेमोस्ट्रेशन साइट्स के विस्तार के लिए भी केंद्र का सहयोग मांगा। डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद ने मुख्यमंत्री द्वारा उठाई गई सभी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि पूरे प्रदेश में सड़क, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं अत्यंत दयनीय स्थिति में हैं। जयराम ठाकुर ने आज मंडी जिला के धर्मपुर में स्थानीय नेताओं और पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि संस्थान बंद करना, लोगों को नौकरी से निकालना और जन सुविधाओं में कटौती करना प्रदेश सरकार का प्रमुख काम रह गया है। उन्होंने कहा कि धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में सड़कों की बदहाल स्थिति ने प्रदेश सरकार के विकास के दावों की पोल खोल दी है। जयराम ठाकुर ने कहा कि बरसात के बाद स्थिति और गंभीर हो गई है, लेकिन सरकार और प्रशासन की ओर से सड़कों की हालत सुधारने के लिए कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है और सरकार की इस विफलता के खिलाफ भाजपा सितंबर महीने में प्रदेश भर में 200 स्थानों पर धरना प्रदर्शन करेगी। सिरमौर जिला के धौलाकुआ में आज आयोजित विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए बिंदल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सुनियोजित तरीके से पूर्व भाजपा सरकार में शुरू हुए विकास कार्यों को रोका और चलते हुए संस्थानों को बंद किया गया। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि नाहन विधानसभा क्षेत्र में भी कई संस्थान बंद किए गए, जिसका खामियाजा सरकार को भुगतना होगा।
1: कांग्रेस की वर्तमान प्रदेश सरकार, उसके खिलाफ पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन का जोर जारी है। पिछले महीने पार्टी ने लगभग 200 स्थानों के ऊपर धरना प्रदर्शन किया। सितंबर के महीने में भी 200 स्थानों पर धरना प्रदर्शन करने का लक्ष्य रखा है और उसी कड़ी में आज धौलाकुआ में एक प्रदर्शन किया जाए। और प्रदेश की जनता, नाहन विधानसभा क्षेत्र की जनता कांग्रेस ने जिस तरह से दुखी किया, उसके कारण जनता सड़कों के ऊपर इलाज कराने के लिए सबको पौंटा की तरफ भागना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी इन संस्थानों की तालाबंदी को लेकर जबरदस्त आक्रोश के अंदर है।
0: मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू ने हमीरपुर की ग्राम पंचायत ब्राहलड़ी के गांव टिक्कर और डुढ़ाना का दौरा करके स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनी और उन्हें प्रदेश सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं व 3.5 वर्षों की उपलब्धियों की जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत ब्राहलड़ी के सभी गांवों की समस्याओं का अतिशीघ्र समाधान किया जाएगा और क्षेत्रवासियों की अन्य मांगों को भी चरणबद्ध ढंग से पूरा किया जाएगा। इस दौरान ग्रामीणों ने सुनील शर्मा बिट्टू को बारिश के कारण उत्पन्न हुई विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। उन्होंने मौके पर ही अधिकारियों को अतिशीघ्र आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश दिए। टिक्कर वासियों ने एम्बुलेंस रोड की मांग रखी, जिसके लिए सुनील शर्मा बिट्टू ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को जमीन संबंधी दस्तावेज तैयार करने के दिशा निर्देश दिए ताकि एम्बुलेंस रोड का काम शुरू किया जा सके। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। बाकी समाचार अंतराल के बाद।
2: सावधान, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, नेवला या किसी भी जानवर के काटने को कभी हल्के में न लें। रेबीज का वायरस जानवर की लार से फैलता है और समय पर इलाज न मिले तो जानलेवा साबित हो सकता है।
3: घाव को तुरंत बहते पानी के नीचे साबुन से झाग बनाकर पूरे 15 मिनट तक धोए, फिर एंटीसेप्टिक या स्पिरिट लगाएं। इससे रेबीज का वायरस नष्ट हो जाता है।
2: फिर बिना देर किए नजदीकी सरकारी अस्पताल जाएं। रेबीज से बचाव का टीका सभी सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क उपलब्ध है।
3: रेबीज जानलेवा है, लेकिन समय पर टीकाकरण से बचाव संभव है।
2: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। बाकी समाचारों में पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग सिंह ठाकुर को उत्कृष्ट संसदीय योगदान के लिए सांसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें ये सम्मान दिल्ली में आयोजित संसद रत्न पुरस्कार समारोह में मूल रिपोर्टों की प्रस्तुति में उत्कृष्ट प्रदर्शन की श्रेणी में दिया गया। अनुराग ठाकुर वर्ष 2024 से कोयला, खान और इस्पात संबंधी संसदीय स्थायी समिति की अध्यक्षता कर रहे हैं। उन्होंने इस पुरस्कार के लिए जूरी सदस्यों का आभार जताया। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा है कि प्रदेश सरकार शिक्षा में गुणवत्ता लाने के साथ साथ खेलकूद गतिविधियों के माध्यम से भी बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कृतसंकल्प है।

0: अनिरुद्ध सिंह आज कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जुग्गर में छात्राओं की चार दिवसीय खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के समापन अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने विजेता टीमों को सम्मानित भी किया। कांगड़ा जिला में यातायात नियमों के पालन और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जिला पुलिस ने रात में नाकाबंदी और गश्त बढ़ा दी है। इसके अलावा पुलिस दिनभर जिले के अलग अलग स्थानों पर लोगों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक भी कर रही है। जिला पुलिस अधीक्षक कुलभूषण वर्मा ने बताया कि पुलिस की इस मुहिम का उद्देश्य लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
1: दिनभर सड़कों में यातायात अवेयरनेस के लिए नाकाबंदी की जा रही है और जो ज्यादा वायलेशन करता है उसके लिए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान भी इशू किए जा रहे हैं। इवनिंग के टाइम में लगातार पुलिस की नाकाबंदी रहती है और रात्रि के समय में भी गश्त और नाकाबंदी हमने बढ़ाई है। इसका मुख्य उद्देश्य शहर में चोरी की घटनाएं रोकने और इलीगल एक्टिविटीज को रोकना, एनडीपीएस का डिटेक्शन के लिए कोई एनडीपीएस का तस्करी तो नहीं हो रही है, चरस की तस्करी हो रही है या चिट्टे का तस्करी हो रही है, उस चीज को रोकने के लिए लगातार पुलिस की नाकाबंदी और लगातार पुलिस की गश्त जारी रखी जा रही है। सभी अधिकारी नाकाबंदी पर भी जाते हैं और रात्रि चेकिंग के लिए भी जाते हैं।
0: प्रदेश में मॉनसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार 13 सितंबर तक राज्य में मॉनसून धीमा बना रहेगा। विभाग ने 14 और 15 सितंबर को राज्य में अधिकांश स्थानों पर वर्षा की संभावना जताई है। इस बीच प्रदेश में भूस्खलन और जमीन धंसने की घटनाओं के चलते 64 सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध हैं। सर्वाधिक 31 सड़कें मंडी जिला में अवरुद्ध हैं, जबकि कुल्लू में 11, कांगड़ा में 10 और सिरमौर जिला में 5 सड़कें बंद हैं। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2027 के लिए 15 से 30 साल के युवा माई भारत पोर्टल पर 30 सितंबर तक अपना पंजीकरण कर सकेंगे। प्रदेश के युवा सेवाएं व खेल विभाग के विशेष सचिव नवीन तंवर और माई भारत युवा कार्यक्रम व भारत सरकार के खेल मंत्रालय के राज्य निदेशक ध्रुव डोगरा ने आज शिमला में कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से चुने गए युवाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने विकसित भारत पर अपने आइडिया रखने का मौका मिलेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता का विश्वविद्यालयों से युवाओं को अवसरों और साधनों के सृजनकर्ता के रूप में तैयार करने का आह्वान। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की केंद्र सरकार से लाहौल स्पीति और पांगी में खगोलीय केंद्र स्थापित करने की मांग। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, प्रदेश में सड़क, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं अत्यंत दयनीय स्थिति में। सांसद अनुराग ठाकुर सांसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित। और प्रदेश में धीमा पड़ा मानसून 14 सितंबर से फिर पकड़ेगा रफ्तार। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
2: संतान कर्तव्य से मुख न मोड़े, माँ बाप से प्यारा नाता जोड़े।
3: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई, भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
2: यदि संतान कर्तव्य ना निभाए, कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
3: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन, 5,000 रूपए तक भरण पोषण संरक्षण।
2: जानकारी लें, अधिकार जाने।
3: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी के हमीरपुर धर्मशाला केंद्रों और FM शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। रोजगार समाचार सुनिए। निदेशालय अग्निशमन सेवाएं हिमाचल प्रदेश शिमला से प्राप्त सूचना के अनुसार हिमाचल प्रदेश अग्निशमन सेवा विभाग में प्रशामक समूह ग अराजपत्रित कर्मचारी के 42 पदों को बैचवाइज जॉब ट्रेनिंग आधार पर भरा जाना है, जिसके लिए 12,120 रुपये प्रतिमाह की दर से मानदेय दिया जाएगा। इस योजना के तहत चयनित उम्मीदवारों को शुरुआती 2 वर्षों की अवधि के लिए प्रशिक्षु नीति के तहत विभाग में व्यावहारिक कार्य अनुभव के लिए नियुक्त किया जाएगा। इन पदों के लिए इच्छुक आवेदक मुख्य अग्निशमन अधिकारी हिमाचल प्रदेश बारनेस कोर्ट शिमला 2 के कार्यालय में दिनांक 10 सितंबर 2026 को साय 5 बजे तक निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ आवेदक से

0: संबंधित आवश्यक प्रमाण पत्रों की अनुप्रमाणित प्रतियां संलग्न करना अनिवार्य होगा तथा आवेदक का संबंधित श्रेणी प्रमाण पत्र आवेदन करने की तिथि से पूर्व जारी किया हुआ होना चाहिए। पात्र उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया 21 सितंबर 2026 से प्रारंभ की जाएगी, जिसके लिए उन्हें कार्यालय में दिनांक 21 सितंबर 2026 को प्रातः 10 बजे मूल प्रमाण पत्रों व उनकी एक एक अनुप्रमाणित प्रति सहित उपस्थित होना होगा। इसके लिए अलग से कोई सूचना नहीं भेजी जाएगी और पदों का श्रेणीवार ब्यौरा इस प्रकार से हैं। सामान्य वर्ग के लिए 24 पद, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 9 पद, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 2 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 7 पद, कुल पदों की संख्या 42। आयु सीमा सामान्य वर्ग के लिए आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए उच्चतम आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी जितनी कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेशों के अधीन अनुज्ञेय है। आवेदक हिमाचल प्रदेश होमगार्ड का सदस्य होना चाहिए या फिर भूतपूर्व सैनिक होना चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से कम 10+2 स्तर की परीक्षा पास की हो या इसके समतुल्य या सेना का प्रथम श्रेणी का प्रमाण पत्र रखता हो। हिमाचल प्रदेश होमगार्ड का बुनियादी प्रशिक्षण कोर्स और हिमाचल प्रदेश अग्निशमन सेवा विभाग द्वारा संचालित एलिमेंट्री फायर कोर्स उत्तीर्ण किया हो। अधिक जानकारी के लिए दूरभाष नंबर 01772629945 या फिर 2622945 पर संपर्क कर सकते हैं। रोजगार समाचार समाप्त हुए।
1: ...103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजे हैं, आइए अब सुनते हैं विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस। सबरस कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं दिलेर मेहंदी और जसपिंदर नरूला के गाए इस गीत के साथ।

मिले जुले गीतों का कार्यक्रम सबरस अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं फाल्गुनी पाठक का गाया ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह की आवाज में ये गजल। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8:30 हुए हैं, आइए अब सुनते हैं देशभक्ति गीत।

0: बजाता आए शाम सवेरा, वो भारत देश है मेरा।
1: मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे सिकंदर आजम फिल्म से ये देशभक्ति गीत।
2: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है, रात्रि के 8:45 होने को है। अब आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।

0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टीटैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। भारत और श्रीलंका ने L-70 तोपों में सुधार और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। श्रीलंका ने भरोसा दिलाया, कभी भी अपनी धरती का इस्तेमाल भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ नहीं होने देगा। भारत ने सऊदी अरब में हौसी विद्रोहियों के हमलों की निंदा की, कहा ऐसे हमले बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य में आवाजाही के लिए खतरा। विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण संपन्न, भारत ने 4 स्वर्ण सहित 15 पदक जीते। और जूनियर एशिया कप हॉकी में भारतीय पुरुष टीम सेमीफाइनल में और महिला टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें 3 मल्टीट्रैकिंग परियोजनाएं में 10,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया, ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी।
1: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे फोर्थ लाइन बन, ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
0: मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 10,021 करोड़ रुपए से अधिक है। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा करने की योजना है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सभी 7 भीड़भाड़ वाले रेलवे कॉरिडोर को 4 लेन वाला बनाने का निर्णय लिया है।
1: रेलवे के मॉडर्नाइजेशन का जो काम पिछले 12 वर्षों में चल रहा है उसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कंप्लीट ओवरहॉलिंग जो रेलवे की हो रही है, कंप्लीट मॉडर्नाइजेशन हो रहा है उसके प्रोजेक्ट्स। दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से वापस मुंबई, ये हो गया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। 7 हाई डेंसिटी कॉरिडोर्स।

0: हैं, उन कॉरिडोर्स की फोर लाइनिंग का काम चल रहा है। तो करीब करीब 2000 किलोमीटर ऐसे हैं जो ऑलरेडी फोर लाइनिंग हो चुके हैं।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन सेवा अगले वर्ष शुरू हो जाएगी।
0: वापी से सूरत का 100 किलोमीटर का सेक्शन, पहला सेक्शन ओपन करेंगे 2027 में। कंस्ट्रक्शन करीब करीब दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा और जो ट्रेन बन रही है वो ट्रेन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। जो फर्स्ट कोच टेस्टिंग के लिए बन रहा है वो टेस्टिंग का कोच लास्ट वीक बन के रेडी हुआ है और उसको अब पहला टेस्ट होता है उसका स्क्वीज टेस्ट है, उसके बाद में उसका क्लाइमेट टेस्ट होगा, उसके बाद में फर्निशिंग और नेक्स्ट बाकी के कोच बनेंगे। अगले साल मई जून तक ट्रेन पटरी पे आ जाएगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के आज के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। श्री मोदी ने बताया कि 5 रेलवे परियोजनाएं दक्षिण भारत में बेहतर रेल संपर्क को बढ़ावा देंगी और इससे लाखों लोगों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं से रेलवे नेटवर्क बढ़ेगा और छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में संपर्क बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और संचालन की लागत भी कम होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनवर कुमार दिसानायक से मुलाकात कर भारत श्रीलंका के बीच बहुआयामी साझेदारी पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने श्रीलंकाई वायुसेना के लिए L-70 तोपों में सुधार और दोनों देशों के राष्ट्रीय कैडेट कोर तथा राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालयों के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया। भारतीय रक्षा बलों द्वारा निर्मित 3 बेली पुलों का भी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया। बैठक के दौरान राष्ट्रपति दिसानायक ने कहा कि श्रीलंका कभी भी अपनी धरती का इस्तेमाल भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ किसी भी गतिविधि के लिए नहीं होने देगा। श्री सिंह ने इस बैठक को सफल और सार्थक बताया।
5: आज मेरी हेज एक्सलेंसी द प्रेसिडेंट के साथ भी बहुत ही फ्रूटफुल और प्रोडक्टिव मीटिंग भी उनके साथ हुई है और उनका विजन और लीडरशिप हमारे दोनों देशों के बीच मैं समझता हूं कि पार्टनरशिप को और स्ट्रेंथन करने में वो कंट्रीब्यूट करेगी।
1: श्री राजनाथ ने श्रीलंका की प्रधानमंत्री हरणी अमरा सूर्या से भी मुलाकात कर विकास, सहयोग, शिक्षा तथा भारत श्रीलंका के बीच सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श किया। भारतीय वायुसेना का 8वां विमान 35 टन राहत और बचाव का सामान लेकर नेपाल के काठमांडू के लिए रवाना हो गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस मदद में NDRF का सामान, बचाव कार्य के उपकरण, फोरेंसिक का सामान और सेना की टीम के लिए जरूरी सामान शामिल है। मंत्रालय ने कहा कि भारत अपने राहत और बचाव कार्य जारी रखे हुए है। मुंबई में आज ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की अंतिम बैठक हो रही है। इस वर्ष ब्रिक्स वित्तीय चर्चाओं का विषय है मजबूत नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। इससे पहले वित्त मंत्री और गवर्नर पिछले महीने जयपुर में बैठक कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन सेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर से 1 महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। यह अभियान प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर शुरू किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि सेवा मेरा योगदान कार्यक्रम 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक

0: जन भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा विकसित भारत 2047 के संकल्प को लेते हुए हम भारत को आगे बढ़ाने में, देश को एक साथ लेकर चलने में और प्रधानमंत्री जी का जो मूल मंत्र रहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उस मूल मंत्र को इस कार्यक्रमों में हम लोगों ने लाने का प्रयास किया है।
0: महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लंदन में 3 बड़े सम्मान दिए जाएंगे। उन्हें हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कॉमनवेल्थ पब्लिक लीडरशिप रिकॉग्निशन और हाउस ऑफ कॉमन्स में स्टेट्समैनशिप अवार्ड दिया जाएगा। ये सम्मान उनके जन केंद्रित सुशासन और लोक कल्याणकारी योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री मांझी लाड़की बहन योजना, शासन अपल्यादारी और मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना के लिए दिए जा रहे हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने कहा है कि जिला प्रशासन ही विकास, सुधार और परिवर्तन के असली इंजन हैं। श्री चौधरी ने यह बात महिलाओं के लिए सतत आजीविका का निर्माण विषय पर आधारित कौशल मंथन के उद्घाटन सत्र में कही। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: ध्यान दें, आपकी मेहनत को

0: 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
3: ये आकाशवाणी है। भारत ने सऊदी अरब में हौसी विद्रोहियों के कथित हमलों की निंदा की है। भारत ने आम नागरिकों और आर्थिक ठिकानों को निशाना बनाए जाने पर चिंता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि ऐसे हमले क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले अस्वीकार्य हैं और इनसे बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य में आवाजाही प्रभावित होगी। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने दावा किया है कि उसने फारस की खाड़ी में 2 अमरीकी जहाजों और 8 तेल टैंकरों पर हमला किया है। ईरान ने यह कार्रवाई अमरीकी सेना द्वारा उसके 5 तेल टैंकरों को नष्ट किए जाने के जवाब में की है। एक रिपोर्ट।
4: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कल से और बढ़ गया है। पर्शियन गल्फ और उसके आसपास सैन्य ठिकानों के साथ साथ व्यापारिक जहाजों पर भी हमले हुए हैं। अमेरिका का कहना है कि ईरान के मिसाइल हमले के बाद उसने 5 ईरानी तेल टैंकरों को नष्ट कर दिया। वहीं ईरान का दावा है कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास 2 अमेरिकी नौसैनिक जहाजों और 8 तेल टैंकरों पर हमला किया। UKMTO ने पुष्टि की है कि गई रात कई व्यापारिक जहाजों पर हमला हुआ। इस बढ़ते तनाव का असर तेल की कीमतों पर भी पड़ा है। अगर जहाजों की आवाजाही और तेल के सप्लाई लंबे समय तक प्रभावित रहे तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। मनीष शिवा, आकाशवाणी न्यूज, दुबई।
3: थाईलैंड के गृह मंत्रालय ने कहा है कि साधारण पासपोर्ट धारक भारतीय पर्यटकों को वीजा अनिवार्यता से छूट दे दी गई है। ये छूट पर्यटकों को थाईलैंड में 30 दिन तक रहने की अनुमति देती है। ये छूट इस महीने की 15 तारीख से लागू होगी। गंगा, गंडक, कोसी, पुनपुन और सोन समेत अन्य नदियों के जलस्तर में कमी आने के बावजूद बिहार के लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। एक रिपोर्ट।
5: आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार 14 जिले पटना, भोजपुर, सारण, वैशाली, भागलपुर, बेगूसराय, बक्सर, समस्तीपुर, मुंगेर, कटिहार, लखीसराय, खगड़िया, पूर्णिया और अरवल जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। प्रभावित क्षेत्रों में 793 सामुदायिक रसोई केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। इसके अलावा 15 राहत शिविर भी संचालित किए जा रहे हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की सुविधा के लिए 1872 नावों का परिचालन हो रहा है। राहत और बचाव कार्य में एनडीआरएफ की 10 और एसडीआरएफ की 27 टीमों की तैनाती की गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
3: अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण आज संपन्न हो गया। भारत ने 4 स्वर्ण, 3 रजत और 8 कांस्य सहित कुल 15 पदक जीते। प्रतियोगिता के अंतिम दिन आज भारत ने 2 स्वर्ण और 4 कांस्य पदक हासिल किए। भारतीय पुरुष हॉकी टीम जूनियर हॉकी एशिया कप के सेमीफाइनल और महिला टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। चीन की मोकी में आज भारतीय पुरुष टीम ने कप्तान अनमोल इक्का के शानदार 6 गोल की मदद से चीनी ताइपे को 15-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। वहीं भारतीय जूनियर महिला टीम ने अपने आखिरी पूल मैच में चीन के साथ गोल रहित ड्रॉ खेला। अब क्वार्टर फाइनल में कल भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
6: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांकों में आज गिरावट आई और वे लगभग 3 महीने पहले के स्तर पर आ गए। सेंसेक्स 813 अंक गिरकर 74,764 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 204 अंक नीचे आकर 23,432 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 28 पैसे गिरकर 95.11 रुपए पर बंद हुआ।
3: भारत इस वर्ष 21 से 23 अक्टूबर तक नई दिल्ली में 7वें एग्री वोल्टेक्स विश्व सम्मेलन की मेजबानी करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। भारत और श्रीलंका ने L-70 तोपों में सुधार और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। श्रीलंका ने भरोसा दिलाया कभी भी अपनी धरती का इस्तेमाल भारत की सुरक्षा हितों के खिलाफ नहीं होने देगा। भारत ने सऊदी अरब में हौसी विद्रोहियों के हमलों की निंदा की। विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण संपन्न।

जी हाँ, आज हम आपको सुनवा रहे हैं गीतकार इरशाद कामिल के लिखे कुछ गीत, जिनके शब्द सीधे दिल को छू जाते हैं, जिनकी लेखनी में प्रेम है, दर्शन है, संवेदनाएं हैं और जीवन की गहराई भी। इरशाद कामिल का जन्म 5 सितंबर 1971 को पंजाब के मलेरकोटला में हुआ। उनका वास्तविक नाम इरशाद अहमद है। बचपन से ही उन्हें साहित्य, कविता और उर्दू हिंदी भाषा से गहरा लगाव था। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की और आगे चलकर अध्यापन का कार्य भी किया, लेकिन शब्दों से उनका प्रेम उन्हें मुंबई ले आया, जहां उन्होंने गीत लेखन को अपना जीवन बना लिया।

फिल्मी दुनिया में शुरुआती दौर आसान नहीं था। कई वर्षों तक संघर्ष करने के बाद उन्हें फिल्मों में गीत लिखने का अवसर मिला। धीरे धीरे उनकी लेखनी ने संगीतकारों और फिल्म निर्माताओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। इरशाद कामिल को सबसे बड़ी पहचान फिल्म जब भी मेट के गीतों से मिली। इसके बाद उन्होंने एक से बढ़कर एक यादगार गीत लिखे। उनके गीतों में प्रेम, विरह, उम्मीद, जीवन दर्शन और भावनाओं का सुंदर मेल देखने को मिलता है।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार, और इसके अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे थे इरशाद कामिल के लिखे हुए गीत। रात्रि के 9:30 होने को है। अब आकाशवाणी दिल्ली से कार्यक्रम चर्चा का विषय है रिले किया जाएगा।
1: चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है संपूर्ण विकास के महत्व को दर्शाता पोषण माह पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनु माहेश्वरी और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर नीना भाटिया कॉल। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
2: जब एक पौधा मिट्टी में गहराई तक अपनी जड़ें जमाता है, तभी उस पर फल और फूल लहलहाते हैं। ठीक वैसे ही जब किसी राष्ट्र की भावी पीढ़ी सेहत और पोषण से परिपूर्ण होती है, तभी वो देश आर्थिक और सामाजिक प्रगति के शिखर को छूता है। इसी सोच को धरातल पर उतारने के लिए देश भर में गूंज रहा है एक नया संकल्प, 9वां राष्ट्रीय पोषण माह 2026। और इस बार हमारा मूल विचार है पोषण से समृद्धि। बाबा विश्वनाथ की पवित्र नगरी वाराणसी से इस राष्ट्रव्यापी अभियान का बिगुल बज चुका है, लेकिन इसकी तरंगे देश के हर गांव, हर शहर और हर घर तक पहुंचनी है। सवाल ये है कि क्या हमारी थाली सिर्फ भूख मिटा रही है या देश की समृद्धि की नींव भी रख रही है। बाल कुपोषण और एनीमिया के आंकड़े आज भी हमसे एक गंभीर संवाद की मांग करते हैं। इन्हीं नीतिगत पहलुओं, शोध और चिकित्सीय समाधानों पर विस्तार से चर्चा के लिए आज हमारे साथ दो मेहमान जुड़ रही हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय की पोषण विशेषज्ञ प्रोफेसर नीना भाटिया कॉल और प्रसिद्ध बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनु माहेश्वरी। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
3: थैंक यू, धन्यवाद।
2: डॉक्टर भाटिया, आपके साथ शुरुआत करते हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि बाल कुपोषण के कारण भारत को अपनी जीडीपी का लगभग 3-11% का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। ये जो वाराणसी से अभियान शुरू हुआ है पोषण से समृद्धि, इसके तहत खाद्य सुरक्षा को केवल पेट भरने तक सीमित नहीं रखा गया है, इसमें सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता और आर्थिक उत्पादकता को भी शामिल किया गया है। आपसे ये समझना चाहेंगे कि इस अभियान को आप कैसे देखती हैं और इससे कितना बड़ा परिवर्तन होने की उम्मीद है।
3: जैसा कि हम सब जानते हैं कि केवल पेट भरने को पोषण नहीं कहा जा सकता, और जो अभी एक बदलाव आ रहा है इस पोषण की लड़ाई में हमारी, वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम सभी पोषक तत्वों को, जिसमें कि हमारे मेन मेजर पोषक तत्व जिसमें एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वसा को इंक्लूड करना है, उसके अलावा साथ ही जो विटामिन और मिनरल युक्त पदार्थ हैं, जिनमें कि प्रमुख रूप से आयरन, जिंक, विटामिन ए और कई विटामिन और मिनरल्स को शामिल करना बहुत जरूरी है। जब पोषक पदार्थों की कमी रहती है तो बच्चे के मानसिक विकास में भी कमी आती है, जिसकी वजह से उसकी आर्थिक क्षमता और उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट IQ भी कम रह जाती है और उसकी बड़े होकर कमाने की क्षमता कम होती है, जिससे कि देश के विकास में, जो आपने बताया, GDP में 3-11% कमी आ जाती है। और इसके लिए जरूरी है कि सभी पोषक तत्व उपयुक्त मात्रा में सम्मिलित किए जाएं। इस दिशा में डाइट्री डाइवर्सिटी, जो आहार में विविधता के प्रिंसिपल को अपनाकर सभी स्टेट्स अलग अलग पोषक पदार्थों को, जिसमें कि मोटा अनाज, दालें और पोषण वाटिका के थ्रू सब्जी और फलों को इंक्लूड कर रहे हैं, जिससे कि एक पूरा पूर्ण पोषण मिलेगा और सभी तरह की जो कमियां हैं

0: और माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी से होने वाले अनीमिया और जो अधिक कुपोषण की समस्या है उसको कम किया जा सकेगा और देश के पहले तो देश के नागरिकों और बच्चों के विकास में और उससे देश के आर्थिक विकास में ये एक बड़ा कदम है।
1: आपसे समझना चाहेंगे कि गर्भाधारण से लेकर बच्चे के दूसरे जन्मदिन के पहले यानी पहले 1000 दिन में सही डॉक्टरी सलाह और पोषण देकर इस स्थिति को कैसे पलटा जा सकता है।
2: इसका जवाब सिर्फ डॉक्टर दे दें कि हाँ आप ये कर लो, आपको भी पता है अगर डॉक्टर आपको एडवाइस देते हैं तो बहुत बार ना हम उस एडवाइस को 100% मानते नहीं है। सबसे जरूरी ये है कि जैसे माँ शिशु और जो माँ है दे आर नॉट इंडिविजुअल नहीं है, एक फैमिली का पार्ट होते हैं। तो जो मदर है सबसे पहले जो माँ का पोषण है और आयरन का स्टेटस है, मैडम ने बोला अनीमिया हो जाता है, जिंक की डेफिशिएंसी, माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, हमें ये ध्यान रखना है कि जो माँ है वो सक्षम होनी चाहिए एक गर्भ कैरी करने के लिए एंड इसीलिए हमारी जो प्रेगनेंसीज हैं वो प्लान्ड होनी चाहिए। और जो हम फोलिक एसिड की बात करते हैं वो प्रेगनेंसी के बाद नहीं, वो प्रेगनेंसी से पहले लेना शुरू करना चाहिए। अनीमिया की जाँच सही टाइम पे होनी चाहिए, ANC विजिट टाइम से होनी चाहिए ताकि एक गायनेकोलॉजिस्ट उनका वेट गेन और मदर ठीक ठाक कर रही है या नहीं कर रही, बच्चे की ग्रोथ हो रही है, तो शुरुआत वहां से होती है। फिर उसके बाद आती है बारी कि जब बच्चा पैदा हुआ पहले 6 महीने में जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है बच्चे की जिंदगी के लिए और उसके डेवलपमेंट के लिए वो है स्तनपान करना। वो अभी भी मतलब हमारे देश में क्या इवन वर्ल्ड में भी बहुत अच्छे आंकड़े नहीं है, बट हमारा देश में उस आंकड़े को बढ़ाने के लिए हमें बहुत संघर्ष करना पड़ता है एज डॉक्टर्स। बहुत सारी माएं, मैं गरीब तबके के सिर्फ लोगों की बात नहीं कर रही, इवन एजुकेटेड मदर्स जो हैं, जो पढ़ी लिखी माएं हैं, उनको भी कन्विंस करना कि आप बच्चे को 6 महीने तक अपना दूध दें, वो भी उनको समझ नहीं आता है कि दूध पिलाना चाहिए। तो हमें इसके लिए भी बहुत काम करना पड़ेगा कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जरूर करें। फिर आती है बारी 6 महीने से 24 महीने। अब माओं को लगता है कि 6 महीने दूध पिलाना है, लेकिन कोई ये नहीं बोल रहा कि 6 महीने पे आप बच्चे का माँ का दूध छुड़वा दीजिए। बच्चे को 2 साल तक माँ का दूध पीना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ माँ का दूध पी रहा है। अगली बाधा आती है कि जब हमें उनको खाना देना है, बहुत सारे लोग समझते हैं कि दाल का पानी दे दो, चावल का पानी दे दो, सूप दे दो, ये सब चीजें ठीक नहीं है बच्चे के लिए। तो हमें ये भी जानना है कि उनको सही मात्रा में सही प्रकार का खाना, जो कि ऊर्जा संघन जो आहार होता है अलग अलग, जैसे मैडम ने डाइटरी डाइवर्सिटी की बात करी, वो खाना बच्चे के 6 महीने पे शुरू करना है। अगर मांस मछली आप खाते हैं तो आप शुरू कर सकते हैं 8-9 महीने पे, उसमें कोई भी आपत्ति नहीं है। और एक जो माँ सोचती है ना कि चलो अब मैं दूध नहीं पिलाऊंगी और गाय का दूध पिलाना है, गाय का दूध 2 साल से पहले बच्चे के लिए तो ठीक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पिलाना चाहिए, उसके बहुत सारे नुकसान होते हैं। और सिर्फ डॉक्टरी सलाह से ना नहीं चलता है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि ब्रेस्ट फीडिंग एक सोशल प्रॉब्लम भी है। बहुत सारी माएं अब जैसे गर्भ अवस्था में उनको परिवार से सपोर्ट मिला, अब सास को भी लगता है, नानी को भी लगता है कि चलो अब तो हमने कर दिया, अब हम बच्चा पालते हैं, तुम घर का काम करो। ये बहुत जरूरी है, ये मेंटालिटी हमें इंडियन हाउस होल्ड से ये मेंटालिटी हटानी है। माँ और बच्चा एक डायड है, उनको प्यार की और उनको सपोर्ट की बहुत जरूरत है।
1: डॉक्टर भाटिया, अगर इसी चर्चा को आगे बढ़ाएं, वाराणसी और पूर्वी यूपी के संदर्भ में अगर हम देखें तो बाजरा, रागी और स्थानीय पारंपरिक अनाजों को दैनिक आहार में शामिल करके पोषण सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था दोनों को एक साथ कैसे मजबूती दी जा रही है।
0: जैसा कि हम जानते हैं कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले हम लोग सब भी मोटे अनाज को रेगुलर रूप में मतलब डे टू डे डाइट में हम इंक्लूड करते थे, और अब ये जो एक श्री अन्न करके प्रधानमंत्री जी ने मोटे अनाज को फिर से एक सम्मान दिया है और उसको सेंटर में लाया है, उसका सबसे मुख्य कारण ये है कि ये बहुत कम पानी में और बहुत कम उपजाऊ जमीन पर भी उग जाते हैं, और जैसे आपने कहा कि अगर पैसे की कमी है तो भी ये परिवार में अवेलेबल रहते हैं, और इनमें कई पोषक तत्व काफी अधिक मात्रा में मिलते हैं। जैसे कि रागी जो है वो कैल्शियम और बाजरा जो है वो आयरन में भरपूर मात्रा में इनमें मिलता है। तो इसी तरह के अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाने वाले जिन्हें हम मिलेट्स आम भाषा में कहते हैं, वो अगर हम इंक्लूड करेंगे बच्चों के खाने में, गर्भवती महिलाओं के और पूरे परिवार के खाने में, तो ये हमारे कई पोषक तत्व, खास करके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, फाइबर और इनसे इनफैक्ट नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज जो बाद में ओवरवेट, ओबेसिटी, डायबिटीज और ऐसी बीमारियां भी होती है

0: उनसे भी बचाव मिलेगा। तो छोटे छोटे किसानों के द्वारा उगाकर और लोकल प्रोक्योरमेंट के जरिए जो सरकार जैसे खासकर यूपी में और कई जगह और इसको इंक्लूड करने की बात कर रही है, ये एक डबल कह सकते हैं कि स्ट्रेटजी है जिसमें कि किसान अपनी छोटी जमीन पर इसको उगा भी सकते हैं, ये सस्टेनेबल होते हैं क्योंकि ये कम पानी में उगते हैं और हार्श कंडीशंस में भी ये उग सकते हैं, और इनको लोकल प्रोड्यूस की तरह इस्तेमाल करने से हम जो खाना दे रहे हैं अभी, जो इनफैक्ट जो हम खाना दे रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को कम करके ये अधिक पोषक तत्व वाले को देने से हमें पोषण लाभ भी मिलेगा और ये ओवरऑल इकोनॉमी के लिए भी अच्छा रहेगा।
1: डॉक्टर अनु, अगर आपसे हम समझने की कोशिश करें कि शुरुआती 6 महीने तक केवल स्तनपान न कराने के पीछे आप किस तरीके का डर देखती हैं या सामाजिक बाधाएं देखती हैं, और अगर स्तनपान के दर को बढ़ाया गया तो नवजात मृत्यु दर को घटाने में क्या भूमिका हो सकती है?
2: तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर माँ अवेयर है, बच्चे को 1 घंटे में माँ दूध पिला सकती है, माँ को उठने की भी जरूरत नहीं है, माँ लेटे लेटे बच्चे को दूध पिला सकती है, एंड जो रुकावट है ना वो मानसिक ज्यादा है रादर देन एक्चुअल प्रॉब्लम। तो सिजेरियन के बाद जो डिलीवरी होती है, जैसे सपोज हम माने कि 20-30% सिजेरियन डिलीवरी है, तो मेरे को नहीं लगता कि इनमें से कोई भी अपना ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं, तो वो आंकड़े वैसे ही कम हो गए। दूसरी चीज ये कि दादी और नानी एंड जो घर के बड़े हैं उनको बहुत प्रॉब्लम है कि जो कोलोस्ट्रम माँ का पहला दूध जो बच्चों को देते हैं वो उसको नहीं पिलाने देती हैं, वो बच्चा ले जाते हैं, वो चाय पिलाएंगी, घुट्टी पिलाएंगी, वो पारिवारिक हनी जो होता है शहद पिलाना है, क्योंकि रस में पूरे करना ज्यादा जरूरी है। हमें ये मानना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा ना निकलना पड़ेगा, हमें थोड़ा एजुकेशन और इन सब चीजों से मदर को अवेयर करना पड़ेगा। और फीमेल एम्पावरमेंट की जो आप बात कर रहे हैं ना, कि अगर माँ ठीक नहीं है, अगर बच्चे का पोषण ठीक नहीं है, तो आगे जाके दिमागी जो कैपेसिटी है बच्चे की वो तो डेफिनेटली कम होगी। अगर बच्चे को पहले 2 साल में आयरन की कमी है, जिंक की कमी है, थायराइड की कमी है, कोई भी बीमारी है, कोई भी न्यूट्रिशनली भी रिलेटेड कुछ डेफिशिएंसीज है, जैसे B12 डेफिशिएंसी है, उसका बहुत ज्यादा दिमाग पे बच्चे के असर पड़ता है। एंड आगे जाके जैसे नीना मैम ने बोला कि आगे जाके उनकी अर्निंग कैपेसिटी, उनकी इकोनॉमिकल वायबिलिटी, ये सारा प्रॉब्लम होता है। तो ये जो ब्रेस्ट फीड ना करने की प्रॉब्लम है ना, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी कि सिर्फ फैमिली वाले नहीं है, इवन डॉक्टर्स भी माँ को बोल देते हैं कि नहीं तुम अपना दूध मत पिलाओ, तो हमें अपने डॉक्टर्स को भी थोड़ा जागरूक करना पड़ेगा कि वो माँ को ऐसे स्टेटमेंट्स ना दें कि तुम्हारे दूध से कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो माँ की जो मिसकंसेप्शन है इसको हटाना बहुत जरूरी है, और अगर हम न्यूट्रिशन ठीक रखेंगे तभी हमारे बच्चे दिमागी तौर पे, फिजिकल तौर पे बच्चे इकोनॉमिकली वायबल सिटीजन्स बनेंगे। और जिन बच्चों को पहले 2 साल में अगर खाना ठीक से नहीं मिलता है, आयरन की कमी होती है, वो बच्चों की IQ पॉइंट्स तो कम होते ही हैं। एक और चीज बोलना चाहूंगी, हम सारे माँ बाप हैं, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों की IQ बहुत बढ़िया हो, नीट JEE निकाले, बच्चे बढ़िया बढ़िया कॉलेज में जाएं। अगर माँ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराती है तो उसके IQ पॉइंट्स में 20-30% की बढ़त हो सकती है। तो बहुत जरूरी है कि माएं अपने बच्चे को अपना दूध पिलाएं, क्योंकि वो दिमागी डेवलपमेंट के लिए बहुत बहुत बहुत जरूरी है।
1: जी हाँ, उम्मीद करते हैं कि जितने भी श्रोता ये कार्यक्रम सुन रहे होंगे और उनमें बहुत सारी संख्या महिलाओं की भी होंगी, तो डॉक्टर अनु जो सलाह दे रही हैं उस पर आप जरूर गौर कर रही होंगी। डॉक्टर भाटिया, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि जो पोषण ट्रैकर ऐप है उस पर 10 करोड़ से अधिक लाभार्थियों का रियल टाइम डेटा पंजीकृत है। सवाल उसी से जुड़ा है, नीति निर्धारण के स्तर पर इस विशाल डेटा का उपयोग जरूरत से ज्यादा कुपोषित बच्चों की पहचान करने और टारगेटेड फूड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी बनाने में कितना प्रभावी सिद्ध हो रहा है?
0: ये जो पोषण ट्रैकर अभी 2021 से लॉन्च किया है गवर्नमेंट ने, ये एक बिल्कुल रियल टाइम डेटा प्रोवाइड कर रहा है। और इससे जो पहले आंगनवाड़ी वर्कर को वजन लेना था, फिर उसको प्लॉट करना है, फिर वो डेटा कंपाइल होगा, वो सारा टाइम लैग रिड्यूस होकर एक बहुत इजीली उसको जो अति कुपोषित बच्चे हैं, जिन्हें हम सैम और मैम बच्चे कहते हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन, उनको पहचानने में बहुत ही मदद होती है, और उन तक जो अतिरिक्त राशन पहुंचाने की प्रक्रिया है उसमें भी इससे बहुत मदद हो रही है। और इनफैक्ट जो इतना सारा डेटा है जिसमें हम सिर्फ ना कि बच्चों को चिन्हित कर सकते हैं, मगर उनकी होम विजिट, उनकी और एक्स्ट्रा केयर के लिए भी प्रयास किया जा रहा है। अभी होम विजिट्स में और यू नो इनकी ग्रोथ के साथ

0: उनकी डेवलपमेंट के लिए 34 इंडिकेटर्स को पहचाना गया है और उस पर ट्रेनिंग हो रही है। तो ये एक जो टूल है प्लानिंग के लिए, आंगनवाड़ी वर्कर के काम के लिए और आपस में जो आशा और ANM वगैरह से मिलके काम करने के लिए इन एप्स को आगे और विकसित किया जा रहा है। सो मैं ये सोचती हूँ कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है जिससे हम हर बच्चे को, पहले अभी तक हम बात करते हैं कि इतना कुपोषण है, इतने परसेंट है, मगर यहाँ हम हर एक को एक इंडिविजुअल की तरह ट्रैक कर सकते हैं, उसकी ग्रोथ को देख सकते हैं और उसकी वजन और उसकी हाइट और ग्रोथ में जो भी उतार चढ़ाव आ रहे हैं उनके हिसाब से एक एक बच्चे के लिए इंडिविजुअली एक्शन लिया जा सकता है।
1: डॉक्टर अनु, जो बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित होते हैं और उनका इलाज भी किया जाता है, पोषण पुनर्वास केंद्रों की भूमिका इसमें अहम होती है। अब सवाल ये उठता है कि जब बच्चे का इलाज घर पर एम्बुलेटरी केयर के तहत होता है या फिर रेडी टू यूज थेरेपेटिक फूड यानी RUTF से किया जा रहा है, तो माता पिता को बच्चे के खान पान, दवा और देखभाल को लेकर किन जरूरी सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए?
2: एक्चुअली जो न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर है हमारे भी अस्पताल में NRC, अगर आप वहाँ पे देखेंगे ना तो इन बच्चों की इतनी अच्छी केयर होती है। नॉट ओनली खाना खिलाना, बच्चा सिर्फ खाने से नहीं बढ़ता है, बच्चा बढ़ता है प्यार से, उसको अच्छे तरीके से पेरेंटिंग हो, उसका प्ले थेरेपी हो, एज अप्रोप्रिएट। इनफैक्ट हमारी सरकार ने एक मदर एंड चाइल्ड हेल्थ कार्ड MCP कार्ड बनाया है, एक नया है ना, वो इतना सुंदर डॉक्यूमेंट है, वो इतनी बढ़िया चीज है। एज ए पीडियाट्रिशियन मैं चाहूंगी कि जो भी माएं हैं जो मुझे सुन रही हैं और मुझे आपने अपॉर्चुनिटी दी माओं से बात करने के लिए, वो MCP कार्ड ना आप पूरा पढ़िए। हिंदी में इतना बढ़िया दिया हुआ है ना, कौन सा बच्चा किस उम्र पे क्या करना चाहिए और अगर आपका बच्चा नहीं कर रहा तो आप क्या कर सकते हैं उस बच्चे के लिए। तो एक तो वो जो रिहैबिलिटेशन है वो कंप्लीट होती है, साइकोलॉजिकल, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल एंड फीडिंग आल्सो। जो RUTF की जो हम बात कर रहे हैं ना, इट्स जस्ट अ न्यूट्रिशनली डेंस, मतलब जिसमें बहुत सारी एनर्जी है। मुझे याद है कि जब हम इंटर्नशिप करते थे, मैं एम्स से पढ़ी हूँ, नई दिल्ली से, हम बल्लभगढ़ में अपनी इंटर्नशिप करने जाते थे तो वहाँ पे एक बल्लभगढ़ मिक्स करके हम इन बच्चों को बांटते थे पीडियाट्रिक OPD के बाहर, जो छतरी के नीचे लगता था। तो वो क्या होता था, वो बेसन, मूंगफली, सूजी और बहुत सारा उसमें घी होता था और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स होते थे और उसका ना हलवा टाइप का बना के हम बांटते थे। तो RUTF भी वैसे गाढ़ा खाना है जो रेडी टू यूज है। रेडी टू यूज का मतलब है कि वो आप खरीदिए और खिला सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि RUTF दे के काम आपका खत्म हो गया। RUTF एक सप्लीमेंट है, मतलब वो कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं पूरी डाइट को। आपको रोटी, सब्जी, दाल, फ्रूट, डेयरी प्रोडक्ट, अंडा, मांस, मच्छी अगर आप खाते हैं और आपके परिवार में बनता है, आपको वो पूरी डाइवर्सिटी से खाना खिलाना है। और RUTF बहुत गाढ़ा होता है तो आपको ना उसके साथ बच्चे को इंश्योर करना पड़ेगा कि उसको पानी अच्छे से मिले और बच्चे का वजन एक डॉक्टर या आंगनवाड़ी वर्कर या जहां भी पीडियाट्रिक OPD होती है, PHC के मेडिकल ऑफिसर होते हैं, उनके मॉनिटरिंग में होना चाहिए। जो भी जैसे पोषण ऐप मैम ने बोला कि रियल टाइम हम वेट करते हैं, तो वो संतुलित आहार का पार्ट हम बना सकते हैं RUTF का। बट अगर RUTF नहीं हम ला पा रहे या महंगा पड़ रहा है या नहीं मिल पा रहा है, तो आप ये जो अच्छी चीजें जो हमारे हिंदुस्तानी डाइट में जैसे पिन्नी है, पंजीरी है, जैसे मैंने बल्लभगढ़ मिक्स बताया, तो अलग अलग PHCs अपना खुद का भी इस तरीके का खाना बना के बच्चों में, ये कुपोषित बच्चे हैं उनको आप दे सकते हैं। क्योंकि मैं ये नहीं बोल सकती कि आप जैसे साउथ में चावल की ज्यादा चीजें बनती हैं, नॉर्थ में वीट की ज्यादा चीजें बनती हैं, सेंट्रल इंडिया में हम मिलेट्स ज्यादा खाते हैं, तो जो भी आपके एरिया का ग्रेन है उसी से आप इनोवेशन करिए, हलवा बनाइए, लड्डू बनाइए, खीर बनाइए, जो भी है आपको बैलेंस करके खिलाना है। और चीनी एंड नमक का अमाउंट थोड़ा सा बच्चों में ध्यान रखना चाहिए। बाकी तो RUTF इट्स एन ऑप्शन, बट इट इज नॉट दी ओनली ऑप्शन। सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ RUTF ही करना है, लेकिन RUTF है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो ऐसा नहीं है कि उसके बिना नहीं हो पाएगा। तो उसका थोड़ा ध्यान रखना है कि वो रिच होता है थोड़ा, तो पानी ठीक से देना है, न्यूट्रिशनली बैलेंस मील करके देना है उस तरीके से।
1: जी बिल्कुल, पहले पोषण माह से लेकर अब तक 60 करोड़ से अधिक पोषण गतिविधियों का आयोजन किया जा चुका है। डॉक्टर भाटिया, एक एकेडमिक और पोषण विशेषज्ञ के रूप में आप इस जन आंदोलन को लोगों की आदतों में स्थायी व्यवहार परिवर्तन

0: में बदलने के लिए क्या ठोस रणनीतियां देखती हैं? क्योंकि जब तक हम किसी के व्यवहार में परिवर्तन नहीं देखेंगे तब तक ऐसा लगता है कि कोई भी आंदोलन पूर्ण रूप से अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकता है।
1: जी, ये आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय को हाईलाइट किया है। जन आंदोलन पोषण अभियान की एक मेन स्ट्रेटजी में से है जो कि 2018 में लॉन्च हुआ, और जैसा आपने कहा कि अब हम नौवां पोषण माह आज से शुरू हुआ है और हम इसको मना रहे हैं। इसका रोल पोषण माह और पोषण पखवाड़ा जो हम मनाते हैं हर वर्ष, और इतनी 60 करोड़ एक्टिविटीज करी गई है इसके तहत, तो ये एक न्यूट्रिशन के बारे में जागरूकता और सभी की इन्वॉल्वमेंट का काम करता है। पर स्थायी रूप से डाइट और फूड हैबिट्स को चेंज करने के लिए, जैसे हमें 1-on-1 या काउंसलिंग की जरूरत है, या एक जो हमें चेंज लाना है उसमें सभी डॉक्टर, आंगनवाड़ी वर्कर, टीचर, सभी की रोल है। और जैसा अभी अनु मैम भी बता रही थी कि NRC में अगर बच्चे हैं तो वहां पे मदर की काउंसलिंग की जाती है, उनको सिखाया जाता है बच्चे को कैसे खिलाना है। और अभी जो हमारे ये होम बेस्ड केयर के प्रोग्राम्स हैं यंग चिल्ड्रन के लिए, उनमें भी होम विजिट्स करती हैं आशा और आंगनवाड़ी वर्कर, जो हर महीने VSSND डेज मनाए जाते हैं। तो इनके थ्रू हमें बहुत ज्यादा जागरूकता पैदा करने की जरूरत है, जिसमें हम जो एक गर्भवती महिला है, जो एक स्तनपान कराने वाली महिला है, और खासकर बच्चे, और जो एक पहले 1000 दिन की जब बात होती है तो उसमें पहले 2 साल के बच्चे इंक्लूडेड है प्रेगनेंसी के बाद, तो हमें एक तो एक्सक्लूसिव फीडिंग की हमने ऑलरेडी मैम ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बात की है, और उसके बाद जो हमें ऊपरी आहार 6 महीने से बच्चे में शुरू करना है और धीरे धीरे उस 1.25 साल तक एक नॉर्मल डाइट पे लाना है, और पहले 2 साल का पोषण है, उसमें ये इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल है कि हम काउंसलिंग पे, नर्स थ्योरी पे और लोकल जो भी फेस्टिवल्स हैं उनसे इनको जोड़कर लोगों को उस भाषा में और उस तरह से समझाएं, उनके वहां के रीजनल फूड्स को और लोकल फूड्स को इंक्लूड करके, जैसे अभी मैम भी बता रही थी कि उसको एक ही फूड देने की आवश्यकता नहीं है, हमें आहार में विविधता लाने के लिए लोकल फूड और लोकल ट्रेडिशंस को जोड़कर, और जो ये हमारे ग्रासरूट वर्कर हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, इनके थ्रू लगातार हर महीने और हर होम विजिट पर जब हम इस बदलाव की बात करेंगे और माँ को ठीक मात्रा में कितना पूरक आहार देना है, क्या खाने को देना है, ऐसे ही प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा भी नहीं देना है मगर पोषण युक्त आहार देना है, प्रोटीन युक्त आहार देना है जिसमें कि मोटा अनाज शामिल किया जा सकता है, लोकल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट शामिल किए जा सकते हैं, तो उसके साथ जब हम कंबाइन करके ये जन आंदोलन को और पोषण माह को देखेंगे तो ये एक सटीक स्ट्रेटजी हो सकती है बिहेवियर चेंज लाने के लिए।
0: जी बिल्कुल, बच्चों में जिंक, विटामिन ए और आयरन की कमी से उनके इम्यून सिस्टम और कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर बुरा असर पड़ता है। डॉक्टर अनु, एक बाल रोग विशेषज्ञ के रूप में आप बार बार होने वाले संक्रमणों जैसे निमोनिया, डायरिया और पोषण की कमी के बीच के दुष्चक्र को कैसे देखती हैं?
2: बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल है आनंद जी। एक्चुअली ये सवाल ना मेरे दिल के बहुत करीब भी है, क्योंकि मैं बाल रोग विशेषज्ञ तो है लेकिन मेरी स्पेशलिटी है इम्यूनोलॉजी एंड रूमेटोलॉजी। तो हम बहुत सारे ऐसे बच्चे देखते हैं जिनको इम्यूनिटी की प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से इनको बार बार इन्फेक्शन होते हैं, वो बच्चे दूसरे होते हैं जिनको प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसीज होती हैं, लेकिन ये वाले जो बच्चे जिनकी हम बात कर रहे हैं जिनको इम्यूनिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन कुपोषण होने के कारण एंड इनकी जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज है एस्पेशली जिंक, आपको याद होगा कि 20 साल पहले हम लोग जिंक नहीं देते थे डायरिया के साथ, है ना। जब मैं MD कर रही थी तभी इसकी गाइडलाइन आई थी, मुझे याद है कि जिंक देना है हमें डायरिया के साथ। जिंक एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो इम्यूनिटी के बहुत सेंट्रल रोल प्ले करता है, और विटामिन ए भी जो है वो भी एक सेंट्रल रोल प्ले करता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में, और जो हमारे गट है, जो गट की लाइनिंग है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की लाइनिंग है ना, जो फर्स्ट डिफेंस है इन्फेक्शन के लिए। तो अगर हम विटामिन ए और जिंक की कमी हो जाएगी तो इन्फेक्शन तो होंगे ही, एंड जब बच्चे को इन्फेक्शन होंगे तो बच्चा पनप नहीं पाएगा, एंड अगर बच्चा पनपेगा नहीं तो बच्चा खेलेगा नहीं, इंटरैक्ट नहीं करेगा, स्कूल मिस करेगा। तो बार बार इन्फेक्शन होने से फिजियोलॉजिकली तो प्रॉब्लम है ही कि बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, बच्चे का सोशल इमोशनल डेवलपमेंट भी तो नहीं होता है। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, आयरन हो गया जो कि हम अब आजकल HB भी चेक करते हैं, इंडियन पीडियाट्रिक्स ने अपनी कुछ गाइडलाइन दी है कि बच्चे जब कुछ कुछ एज पे आए तो हमें उनका हीमोग्लोबिन चेक करना है, उनको आयरन सप्लीमेंट करना है, ये सारी चीजें करनी है। तो ये बहुत ही जरूरी न्यूट्रिएंट्स हैं, क्योंकि

0: सेंट्रल रोल प्ले करते हैं बच्चे की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल डेवलपमेंट के लिए. तो ये बहुत ही जरूरी है कि अगर कोई बच्चा इसमें फंस रहा है, और ये बच्चे जनरली सैम और मैम वाले, जैसे मैडम बता रहे थे, ये सैम और मैम वाले बच्चे हैं, ये फंस जाते हैं, एक विशेष सर्कल हो जाता है. बीमार बच्चा मैल न्यूरिश्ड हुआ, बिकॉज मैल न्यूरिश्ड हुआ उसको फिर इन्फेक्शन हुआ, फिर वो इन्फेक्शन की वजह से और मैल न्यूरिश्ड हुआ. ये वर्लपूल में बच्चा जो फंस जाता है ना, उससे बच्चों को निकालना बहुत ही दिक्कत होती है. एंड इससे बेटर ये है कि हम पहले ही माँ को हेल्दी रखें, गर्भावस्था में ध्यान रखें, पहले 6 महीने में बच्चे को दूध पिलाएं माँ का, उसके बाद ठीक से खाना शुरू करें. अगर हम इन 3-4 चीजों के स्टेप्स पे ही अगर हम फोकस करें तो हम बहुत सारी चीजें अचीव कर सकते हैं बिना बहुत ज्यादा खर्चा करे हुए, या बहुत फैंसी इंटरवेंशन नहीं चाहिए हमें. बेसिक चीजें करने से बहुत बड़े चेंजेस आ सकते हैं
1: जी.
0: तो बेसिकली इन्फेक्शन प्रिवेंट करना बहुत ही जरूरी है. लेकिन अगर ये सब करने के बाद भी आपके बच्चे को बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, तो प्लीज एक एमडी डॉक्टर को, एमडी पीडियाट्रिशियन को जरूर जाके दिखाइए कि कहीं आपके बच्चे को कोई इम्यूनिटी की दिक्कत तो नहीं है.
1: जी डॉक्टर भाटिया, एनीमिया मुक्त भारत रणनीति के तहत फोर्टिफाइड चावल का वितरण एक बड़ा कदम रहा है, लेकिन दूसरा पहलू यह भी है कि इसके सुरक्षित उपयोग और आम जनता के बीच जो इसको लेकर मिसकंसेप्शन है, भ्रांतियां हैं, उसको दूर करने के लिए भी कई प्रयास किए जा रहे हैं. विश्वविद्यालय स्तर और शोध संस्थानों को किस तरीके से आगे आने की जरूरत है, कितना काम किया जा चुका है और आगे की क्या कार्य योजना चल रही है इस पर
2: मैं ये बताना चाहूंगी कि जो फोर्टिफाइड राइस है, इसको लेकर बहुत सी भ्रांतियां हैं लोगों में, और उसको कुकिंग कैसे ठीक से करनी है, पानी को नहीं फेंकना है जिसमें हम चावल को कुक कर रहे हैं, जो मांड अलग कर देते हैं चावल पकाते समय, उस तरह की जानकारी नहीं है. और कई बार उन लोगों को ये भी लगता है कि ये प्लास्टिक का चावल है, ये एक मिलावट है, ये क्यों दी जा रही है, इसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं. तो इन सब चीजों को लेकर कई विश्वविद्यालयों में इस पर रिसर्च हुआ और जाना गया कि सिर्फ 20-30% महिलाओं और लाभार्थियों को ही इसके बारे में पता भी है, और इसको कैसे ठीक से इस्तेमाल करना है वो नंबर तो और भी कम है, हार्डली 5-10% के बीच में है. तो इसके ऊपर एक काम करने की, इसकी डेमोन्स्ट्रेशन करने की और इसकी भ्रांतियों को दूर करने की बहुत आवश्यकता है, जिससे कि इसकी एक्सेप्टेबिलिटी को बढ़ाया जा सके. और उसके अलावा जब जिन लाभार्थियों को मिले, जरूरी है कि वो इसको ठीक से पकाकर ठीक से इसका सेवन कर सकें, ना कि उसको निकाल दें चावल को चुनते समय या पानी को फेंक दें, जिससे कि जो उसमें आयरन है उसका अवशोषण ठीक से नहीं होगा. पूरा पर्पस फोर्टिफिकेशन का डिफीट हो जाएगा अगर हम आयरन को कुकिंग में लूज करेंगे. इसके ऊपर विश्वविद्यालय काफी एक महत्वपूर्ण भूमिका कर सकते हैं, इसके बारे में डेमोस और भ्रांतियों को दूर करने के लिए जनता में जानकारी देने के थ्रू.
1: जितनी भी माताएं आपको इस समय सुन रही हैं या जो परिवार इस कार्यक्रम के जरिए आपकी बातों को समझ रहा है, क्या संदेश देंगी पोषण माह को लेकर, बच्चों के विकास को लेकर, और माताएं खुद अपना ध्यान कैसे रखें, बहुत संक्षेप में?
0: पहली बात तो ये, जैसे मैडम ने बोला, भ्रांतियों को दूर करना बहुत जरूरी है. और जो भी आपके मन में शंका होती है, आप डॉक्टर के पास जाइए, पढ़िए. किताब पढ़ने से ना बहुत नॉलेज आता है. मुझे लगता है कि हमारी जो माए हैं, जो यंग मदर्स हैं, वो ना कई बार बोल नहीं पाती हैं परिवार में. मेरे को लगता है कि बहुत जरूरी है कि हम अपनी लड़कियों को, जो हमारी डॉटर्स हैं, जो यंग मदर्स हैं, उनको आवाज दें. एंड उनकी जो आवाज है वो परिवार तक पहुंचे, वो बहुत जरूरी है. कई बार माओ को लगता है कि हाँ उनको पता है ये उनको करना है, लेकिन वो डर जाते हैं बिकॉज इकोनॉमिकली वो इंडिपेंडेंट नहीं है. उनको बोलने में भी लगता है कि अगर हमने बोल दिया तो हमारी सास क्या सोचेगी, या हमारी मम्मी क्या सोचेगी, हमारे पापा क्या सोचेंगे. तो पहले तो हम ये जो यंग मदर्स हैं, मैं कहना चाहूंगी आप प्लीज किताब पढ़िए, कि जो आपको भाषा समझ में आती है, हिंदी, बांग्ला, गुजराती, व्हाटएवर, वो जरूर पढ़िए. न्यूट्रिशन पे पढ़िए, थोड़ा बहुत पढ़िए. अगर आपको जरूरत है तो मदद लीजिए. आजकल तो यूट्यूब पे इतने सोर्सेस हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ICMR की गाइडलाइंस है कि हमें क्या खाना चाहिए, कैसे हमारा थाली बननी चाहिए, आधा फल सब्जियां होना चाहिए, दाल कितनी होनी चाहिए. पढ़ के एक तो एजुकेट करना ये यंग लड़कियों को बहुत जरूरी है. अगर हम उनको एम्पावर करेंगे ना आनंद जी, उसके बाद तो सब कुछ पजल की तरह फिट हो जाएगा.
1: आज की चर्चा हमें यही याद दिलाती है कि एक पौष्टिक निवाला सिर्फ भूख नहीं मिटाता, वो किसी बच्चे को ताकत देता है, किसी माँ का भरोसा बनता है और

0: परिवार के बेहतर भविष्य की नींव रखता है। इसलिए पोषण की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं, सिर्फ एक विभाग की नहीं, यह जिम्मेदारी हम सब की है, क्योंकि एक पोषित बच्चा एक मजबूत पीढ़ी है, एक स्वस्थ परिवार एक सशक्त समाज है और एक पोषित भारत एक समृद्ध भारत है। इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और अपने विचार आकाशवाणी के श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत आभार।
1: थैंक यू आनंद जी, धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे संपूर्ण विकास के महत्व को दर्शाता पोषण माह पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनु माहेश्वरी और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर नीना भाटिया कौल। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है, FM बैंड 103.4 MHz पर। रात्रि के 10 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम रूपक।

0: भारत माँ के बहादुर सपूत आजादी के मतवाले सैनिकों में एक नाम है कैप्टन राम सिंह ठाकुर। अभिनय और जादुई संगीत की गूंज से जिन्होंने खिलाफत की अपने देश में अंग्रेजी साम्राज्य की। कैप्टन राम सिंह ठाकुर ने न जाने कितने ही जवानों को प्रेरित किया और विस्तार किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में गठित आजाद हिंद फौज का
1: अमर क्रांतिवीर तथा प्रख्यात संगीतकार कैप्टन राम सिंह का जन्म धर्मशाला के निकट गांव खन्यारा में 15 अगस्त 1914 को एक फौजी परिवार में हुआ। इनके पिता श्री दिलीप सिंह ठाकुर एक कर्तव्यनिष्ठ सैनिक थे। एक कर्मठ सैनिक होने के कारण इनके पिता श्री अपने घर की ओर पूर्ण रूप से ध्यान दे पाने में असमर्थ थे। बालक राम सिंह ठाकुर का पालन पोषण इनके नाना श्री नत्थूचंद ठाकुर जी के घर पर हुआ। इनके नाना शास्त्रीय संगीत के ज्ञाता थे। इन्हीं की छत्रछाया में बालक राम सिंह ने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा प्राप्त की। बालक राम सिंह बांसुरी और हारमोनियम में लीन रहते।

0: संगीत में अपार रुचि होने के कारण केवल माध्यमिक स्तर तक ही पढ़ सके।
1: जनवरी 1928 ईस्वी में धर्मशाला छावनी में स्थित सेकेंड फर्स्ट गोरखा राइफल्स के प्रमुख सेना अधिकारी कर्नल फेरल ने बालक राम सिंह की संगीत के प्रति अथाह रुचि को देखा और उन्हें रिक्रूट बॉय बैंड में भर्ती कर लिया। सैनिक जीवन के आरंभ में ही इन्होंने सेना बैंड के अधिकारियों लेफ्टिनेंट हॉडसन तथा लेफ्टिनेंट डेनिस से ब्रास बैंड, स्ट्रिंग बैंड तथा डांस बैंड में दक्षता प्राप्त की। कैप्टन रोज ने बालक राम सिंह ठाकुर की संगीत के प्रति अपार रुचि को भांपते हुए इन्हें वायलिन बजाना सिखाया। भारतवर्ष की शाही सेना में कार्य करते हुए राम सिंह ठाकुर अपनी चतुरता, फुर्ती और जोश के कारण लोकप्रिय हो गए और वर्ष 1941 में अपनी कर्तव्य

0: सशस्त्र सेनाएं जापान से बदला लेने को आतुर थी।
1: देखते ही देखते इस युद्ध ने वर्ष 1942 में भयंकर रूप धारण कर लिया।
0: इस युद्ध में जापान मित्र सेनाओं पर हावी रहा।
1: जापान ने मित्र सेनाओं को वर्मा, मलाया, थाईलैंड, सिंगापुर तथा अंडमान निकोबार की धरती से खदेड़ना शुरू किया
0: और हजारों सैनिकों को युद्धबंदी बना लिया।
1: उनमें से एक नाम था राम सिंह ठाकुर।
0: इस युद्ध की सफलता के बाद जापान ने युद्धबंदियों को भारत की आजादी के पक्ष में करना शुरू कर दिया।
1: सबसे पहले केवल 200 ही युद्धबंदियों को स्वतंत्रता प्राप्ति के पक्ष में किया।
0: इनमें मोहन सिंह, पूर्ण सिंह तथा अल्लादिता सहित एक नाम था राम सिंह ठाकुर।
2: उधर जर्मनी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज का गठन हो ही रहा था कि यहाँ इन युद्धबंदियों को वॉलंटियर बनाकर पूज्य रास बिहारी बोस भी एक फौज का गठन करना चाहते थे। जापान सरकार समस्त युद्धबंदियों के साथ थी। जून 1942 में बैंकॉक में एक विशाल सम्मेलन का आयोजन जापानी सरकार ने करवाया। यहाँ इंडिया इंडियंस लीग की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष रास बिहारी बोस चुने गए। फिर काउंसिल ऑफ एक्शन बनी और गठन हुआ आजाद हिंद फौज का।
0: इस फौज में प्रथम 14 पंजाब रेजिमेंट के कैप्टन मोहन सिंह को सेनाध्यक्ष का पद और राम सिंह को कैप्टन के पद से विभूषित किया गया। 3 जुलाई सन 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पधारे।

0: सुभाष जी वे जाने हिंद आ गए, है नाज जिस पर हिंद को वे शाने हिंद आ गए।
1: देश प्रेम के गीतों के लिए राम सिंह ठाकुर द्वारा तैयार की गई मधुर धुनों से नेताजी का मन प्रसन्न हो उठा।
2: आजाद इन फौज की आर्जी हुकूमत जब बनने की तैयारी हुई तो नेताजी ने कहा कि जब हमारी आर्जी हुकूमत बनेगी तो हम अपना कौमी तराना गाएंगे। उस कौमी तराने को, उसकी धुन को राम सिंह आपको बनाना है। नींद आने वाले धुन की जरूरत नहीं, जगा देने वाली धुन होनी चाहिए। मैंने कहा नेताजी आपके आशीर्वाद से जैसे आप चाहते वैसा ही धुन होगा। तो जन गण मन अधिनायक जय हो के गीत को नेताजी ने, आबिद हसन साहब ने और उच्च अधिकारी ने उसकी तर्जुमा ट्रांसलेशन हिंदी में की और वो गीत हमारा कौमी तराना बना जो आपके सामने सुनाने जा रहा हूँ।
3: शुभ सुख चैन की बरखा बरसे, भारत भागे जागा, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगाल।

0: इस गीत को सुनकर नेताजी ने कैप्टन राम सिंह की पीठ थपथपाई और कहा,
1: मैं एक ऐसा गीत सुनना चाहता हूँ जिसे समस्त आजाद हिंद फौज के सेनानी और भारतवासी मिलजुल कर गाएं और उमंग में आकर आगे और आगे बढ़ते जाएं।
0: राम सिंह ठाकुर ने अपने एक साथी कवि क्रांतिवीर सेनानी मुमताज हुसैन के साथ मिलकर ये गीत लिखा और धुन बनाई

नेताजी 21 अक्टूबर सन 1943 को फिर से सिंगापुर पधारे। इस अवसर पर राम सिंह ठाकुर ने उन्हें ये गीत सहगान के रूप में सुनाया। इस गीत को सुनकर नेताजी राम सिंह ठाकुर से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने इन्हें अपनी ओर से एक जर्मन वायलिन भेंट किया।

0: इस वायलिन से वो गीत बजाया जाए जिसे बजाते हुए महात्मा गांधी के नेतृत्व में हमारी आजाद हिंद फौज दिल्ली में लाल किले पर अपना प्यारा तिरंगा झंडा फहराए।
1: हर रोज की तरह युवा कैप्टन राम सिंह ठाकुर अपने संगीत के संसार में लीन रहते। गीत संगीत और अभिनय के माध्यम से हजारों सैनिकों के मध्य मिलजुल कर लोगों को आजाद हिंद फौज में भर्ती होने के लिए प्रेरित करते। स्वतंत्रता सेनानी श्री चरण सिंह जी का कहना है,
2: मैं उनके साथ संपर्क में था जब हम सिंगापुर में पहुंचे। सिंगापुर में हम कैदी थे तो उस वक्त वो आया करते थे हमारे कैंप में। हमें आ करके वो अपना कुछ मंत्र बताते थे कि आप हम हिंदुस्तान को आज़ाद करना है तो अब हमने INA में जाना, नेताजी की फौज में जाना। नेताजी उस वक्त आ चुके थे तो उस वक्त वो आ करके हमें ये बातें बताते रहते थे। वही थे हमारे एक किस्म का गुरु समझिए, कुछ भी समझिए। उन्होंने हमें INA में आने के लिए हमें उत्साह किया। उनके कहने पर उनका यानी उसमें आ करके फिर हम भी उनके INA में हिंदुस्तान के आज़ादी के लिए छलांग लगा दिए जी। और वो बिल्कुल हठीले गठीले और बिल्कुल तकड़े और छोटा सा आदमी था वो। उस वक़्त हार्डली कोई 4.5 फुट ही होंगे उस वक़्त। तो वो आकर के बड़े रूप से वो आते थे और बड़े उनका चाल जो था बड़ा फुर्तीला, ठक ठक ठक ठक करके वो ऐसे चलते थे। तो बहुत हंसमुख थे और बड़ा जब आदमी से वो बात करते थे तो बड़े हंसमुख से और बहुत मिलनसार आदमी थे वो। तो हमें उनके संपर्क में आकर के हमने भी कुछ थोड़ा बहुत उनसे सीखा ऐसी ऐसी बातें।

रंगून और सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज ने अपने रेडियो स्टेशन स्थापित किए। राम सिंह ठाकुर को इनका संगीत निर्देशक नियुक्त किया।

0: स्वतंत्रता सेनानी श्री होशियार सिंह जी ने इनके बारे में कहा।
1: 43 में जब लड़ाई हुआ तो हम इकट्ठे थे, उसके बाद फिर हम मलाय में इकट्ठा हुआ ईपो में, ईपो के बाद हम कोलालमपुर में, कोलालमपुर में जब आज़ाद हिंद IANA खड़ा हुआ था उस टाइम में वो मिजुक का डायरेक्टर था, मिजुक का गाना गुना गाते थे और वो आम जो इंडियन आर्मी का जो जवान है उनको एडवर्टाइजमेंट करते थे कि आप आज़ाद हिंद फौज में आए और अपना देश के लिए काम करें, उनका ये प्रथम उसका कार्य था, हमारे देश के आज़ादी के लिए ये कार्य है, इसलिए हमें अपने तन मन धन कुर्बान करके काम करना चाहिए। आज़ाद हिंद फौज जब बना, सुभाष चंद्र बोस जी ने उनको म्यूजिक डायरेक्टर बनाया और उन्होंने बहुत ऐसे ऐसे गाना बनाए हैं जोशीला, जैसे उन्होंने एक गाना जवान के लिए बनाया था, कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पर लुटाए जा। हम दोनों एक ही कंपनी में था, हेडक्वार्टर कंपनी में, और हम ऐसे प्रेम से बैठते थे, वो बहुत दिलचस्प आदमी थे गाना गाने के लिए, नाचने के लिए, और हर ड्रामा में वो पार्ट लेते थे, दशहरे में पार्ट लेते थे, दुनिया को मनोरंजन देते थे, बहुत खुश करते थे, वो तरह तरह के बाजे बजाते थे, वायलिन सैक्सफोन क्लैरिनेट, और ये बजा के वो सबको मनोरंजन करते थे देश में पल्टन में, तो उनका बहुत नाम था कि राम सिंह ने सब जवानों को खुश करके रखा है बटालियन में, और बहुत अच्छा आदमी थे, बहुत ज्ञानवान विद्वान आदमी थे।
0: इस दौरान उन्होंने अनेक देश प्रेम के गीतों को मधुर संगीत में सजाकर उक्त रेडियो द्वारा प्रसारित किया। रेडियो के ये दोनों केंद्र केवल एक ही नाम रेडियो शिवनॉन के रूप में अपना दैनिक कार्यक्रम प्रसारित करते। कार्यक्रमों का शुभारंभ व समापन भारतीय राष्ट्रीय गान शुभ सुख चैन की बरखा बरसे से होता था।

0: और इस तरह रेडियो शिनॉन के माध्यम से कैप्टन राम सिंह ठाकुर समस्त भारतवासियों को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जागृत किया करते। क्रांतिवीरों ने देशभक्ति के गीत लिखे और कैप्टन राम सिंह ठाकुर ने स्वरबद्ध तथा संगीतबद्ध किया उन गीतों को।
1: वर्ष 1945 ईस्वी के मई माह में ब्रिटिश सेना ने रंगून पर अधिकार कर लिया
2: और राम सिंह ठाकुर को बंदी बनाकर भारत लाया गया।
1: यहां लाकर लाल किला दिल्ली में उनके विरुद्ध मुकदमा चलाया गया।
2: इनका कसूर था कि इन्होंने गीत संगीत और अभिनय के माध्यम से हुकूमत के विरुद्ध प्रचार प्रसार किया था।
1: अब कैप्टन राम सिंह ठाकुर के समक्ष अगर कुछ था तो वह केवल फांसी का फंदा।
2: अपील, दलील और वकील, ये तीनों ही सूत्र उनके लिए अर्थहीन सिद्ध हो चुके थे।
1: पर जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई।

0: अदालत में अंग्रेजी सरकार सहगल ढिल्लो व शाहनवाज का केस ही हार गई
1: और आपको समस्त युद्ध बंदियों के साथ रिहा कर दिया गया।
0: इसी दौरान इनकी भेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू से हुई।
1: नेहरू जी इनकी देशभक्ति व संगीत प्रतिभा से प्रभावित हुए,
0: इन्हें अपना कार्य जारी रखने के लिए कहा
1: और इस तरह कैप्टन राम सिंह ठाकुर अपने संगीत दल के साथ देश भर में भ्रमण किया करते और लोगों को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जागृत करते।
0: इसी दौरान इन्हें पुनः पुलिस ने पकड़कर दिल्ली छावनी के कारागार में डाल दिया।
1: इसी वर्ष राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल दिल्ली छावनी के कारागार में स्वतंत्रता प्रेमी बंदियों से मिलने पधारे। कैप्टन राम सिंह ने नेताजी द्वारा भेंट में दी गई वायलिन पर देशभक्ति के गीत बजाना आरंभ कर दिया। गांधी जी ने इनके सिर पर हाथ रखा और आगे बढ़ गए। इनके आगमन के फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार ने सुबह ही इन्हें जेल से रिहा कर दिया। गांधी जी के चले जाने के बाद अंग्रेजी सरकार ने कैप्टन राम सिंह को पुनः बंदी बनाकर मुल्तान की जेल में बंद कर दिया।
2: 11 अप्रैल 1946 को यहां से रिहा होने के पश्चात अपने पैतृक स्थान धर्मशाला वापस आए। योलकैंट में अपने पुराने मित्रों से मिलने गए। उन दिनों योलकैंट की सैनिक बैरकों में इटली के सैनिक बंदी भी थे जिनके पास अनेक वाद्य यंत्र थे। इटली के इन सैनिक बंदियों ने कैप्टन राम सिंह ठाकुर का भव्य स्वागत किया और अपने समस्त वाद्य यंत्र इन्हें भेंट स्वरूप प्रदान कर दिए।
1: आखिर 15 अगस्त 1947 का शुभ दिन आ गया। हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हुआ। इस शुभ अवसर पर राम सिंह ठाकुर ने अपने संगीत दल के साथ दिल्ली में लाल किले पर अपनी बनाई राष्ट्रगान की धुन बजाई और ये राष्ट्रगान था, शुभ सुख चैन की बरखा बरसे भारत भाग्य है जागा।

0: प्रथम स्वतंत्रता समारोह के अवसर पर नेहरू जी ने कैप्टन राम सिंह ठाकुर के प्रति ये कहा,
1: He is great.

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वर्ष 1948 में कैप्टन राम सिंह ठाकुर को उनके संगीत दल सही थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस सशस्त्र बल तृतीय वाहिनी में नियुक्त कर लिया। वर्ष 1974 में जब ये सेवा से निवृत्त हुए तब इन्हें इसी पुलिस सशस्त्र बल में आजीवन कार्य करने का सम्मान भी उप पुलिस अधीक्षक के रूप में प्रदान किया। उत्तर प्रदेश प्रांत के प्रथम राज्यपाल का पदक 1956 ईस्वी में तथा भारत के राष्ट्रपति का पदक इन्हें वर्ष 1971 ईस्वी में देकर राज्य तथा केंद्रीय सरकार ने सम्मानित किया।

0: कैप्टन राम सिंह ठाकुर, आकाशवाणी धर्मशाला में जुलाई 1999 में हुई भेंटवार्ता के दौरान बताते हैं।
1: नेताजी की जो भावनाएं कल्पनाएं थीं उसको सामने लाएं तो आज देश संकट में जरूर है, लेकिन हमारे आने वाले जो पीढ़ियां हैं और हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो काबिलियत पुरुष हैं, अफसरान हैं, हम उनके आदेश पर, उनके आज्ञा पर, उनके विचारधारा पर सब कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे और पिछड़े हुए लोगों को भी साथ लेकर अपने साथ आगे रखेंगे और देश को दिन दुनी चार चंदनी आगे बढ़ाते रहेंगे। और मरना जीना तो दुनिया में आता ही जाता है, लेकिन हमें उससे डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आज जो हमने सपना देखा था और नेताजी ने जो कल्पना की थी वो रूप आया नहीं, लेकिन आने की हम पूरा पूरा चेष्टा करते हैं और विश्वास करते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि हमारा देश पीछे कभी नहीं होगा, हमेशा आगे ही रहेगा। हमारा देश सारे दुनिया के देश को रास्ता बताएगा कि इस रास्ते से चलो।
0: 8 जनवरी सन 1970 ईस्वी को आजीवन उप पुलिस अधीक्षक, क्रांतिवीर संगीतकार के रूप में राम सिंह ठाकुर को लखनऊ के निवासियों ने अपनी ओर से भव्य सम्मान प्रदान किया। इस अवसर पर राज्यपाल महोदय ने उन्हें 1,00,000 रुपए व प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया। सिक्किम सरकार ने भी इन्हें 50,000 रुपए का मास्टर मित्रसेन पुरस्कार प्रदान किया।
2: पंद्रह अप्रैल 2002 ईस्वी के दिन इस अमर क्रांतिवीर संगीतकार के निधन के समाचार ने समस्त देशवासियों को शोकग्रस्त कर दिया। कैप्टन राम सिंह ठाकुर की अद्वितीय देशभक्ति और संगीत कला के माध्यम से भारतवर्ष के स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए इतिहास में उनका नाम सदैव स्मरणीय रहेगा। राष्ट्र आज भी नतमस्तक है आज़ादी के अमर क्रांतिवीर कैप्टन राम सिंह ठाकुर की अमूल्य देन को।

अभी आप सुन रहे थे रूपक, ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 10:27 और 42 सेकंड हुए हैं। आइए अब सुनते हैं चित्रपट संगीत, पुराने फिल्मों से गीत। कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं अब्दुल्ला फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है मोहम्मद रफी ने।

ये संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म का ये गीत आपके रेडियो सेट्स पर, और इस गीत को गाया है मोहम्मद रफी ने।

0: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: हिमालय की गोद में इस फिल्म से ये गीत आइए सुनते हैं मुकेश की आवाज में।

मदन मोहन के संगीत निर्देशन में आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और तलत महमूद को सुहागिन फिल्म से ये गीत आपके रेडियो सेट्स पर।

0: आई मिलन की बेला इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर को संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने और बोल लिखे थे हसरत जयपुरी ने।
1: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।

0: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: ये संगीत है रवि का, उस्तादों के उस्ताद फिल्म से। ये गीत आपके रेडियो सेट्स पर। इस गीत को गाया है मोहम्मद रफ़ी ने।

0: मोहम्मद रफ़ी के गाए इसी गीत के साथ आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए अनुमति अपने रेडियो दोस्त रेणुमन कोटिया को। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है, FM बैंड 103.4 MHz पर। रात्रि के 11 बजने को है अब आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी।
2: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का पूरा प्रोजेक्ट है, यहाँ पे फोर्थ लाइन बन। ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
1: मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 10,021 करोड़ रुपए से अधिक है। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा करने की योजना है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सभी 7 भीड़ भाड़ वाले रेलवे कॉरिडोर को 4 लेन वाला बनाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के आज के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। श्री मोदी ने बताया कि ये 5 रेलवे परियोजनाएं दक्षिण भारत में बेहतर रेल संपर्क को बढ़ावा देंगी और इससे लाखों लोगों को लाभ होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुर कुमार दिसानायके से मुलाकात कर भारत श्रीलंका के बीच बहुआयामी साझेदारी पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने श्रीलंकाई वायुसेना के लिए L-70 तोपों में सुधार और दोनों देशों के राष्ट्रीय कैडेट कोर तथा राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालयों के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापनों का भी आदान प्रदान किया। भारतीय रक्षा बलों द्वारा निर्मित 3 बेली पुलों का भी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया। बैठक के दौरान राष्ट्रपति दिसानायके ने कहा कि श्रीलंका कभी भी अपनी धरती का इस्तेमाल भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ किसी भी गतिविधि के लिए नहीं होने देगा। रक्षा मंत्री ने श्रीलंका की प्रधानमंत्री हरिणी अमरासुरिया से भी मुलाकात कर विकास सहयोग, शिक्षा तथा भारत श्रीलंका के बीच सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श किया। भारत ने सऊदी अरब में हूती विद्रोहियों के कथित हमलों की निंदा की है। भारत ने आम नागरिकों और आर्थिक ठिकानों को निशाना बनाए जाने पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले अस्वीकार्य हैं और इससे बाब अल मंदेब जल डमरू मध्य में आवाजाही प्रभावित होती है। दिल्ली नगर निगम ने शहर के सभी 12 जोन में खतरनाक इमारतों, अवैध निर्माण और दिल्ली मास्टर प्लान व निर्माण नियमों के उल्लंघन के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। आज चलाए गए अभियान के तहत दिल्ली नगर निगम के सभी 12 जोन में 34 जगहों पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई। इसके अलावा 17 प्रॉपर्टीज को सील किया गया, 22 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। राजधानी में पीजी इमारतों के एक बड़े सर्वे के तहत लगभग 1,243 ऐसी इमारतों की पहचान की गई है जहां पीजी की सुविधाएं चल रही हैं और जिनमें लगभग 24,000 लोग रह रहे हैं। यह सर्वे पूरी दिल्ली में जारी है, इसे कल तक पूरा करने के निर्देश हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने आज कहा कि जिला प्रशासन ही विकास, सुधार और परिवर्तन के असली इंजन है। श्री चौधरी ने यह बात महिलाओं के लिए सतत आजीविका निर्माण विषय पर आधारित कौशल मंथन के उद्घाटन सत्र को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि जिला आधारित योजना पद्धति के माध्यम से मंत्रालय यह सुनिश्चित कर रहा है कि कौशल विकास पहल स्थानीय जरूरतों से प्रेरित

11:10 हुए हैं। अब हमारी आज की ये प्रसारण सभा यहीं पर संपन्न होती है। कल की प्रसारण सभा में कल प्रातः 5:55 पर आपसे

11:10 हुए हैं। अब हमारी आज की ये प्रसारण सभा यहीं पर संपन्न होती है। कल की प्रसारण सभा में कल प्रातः 5:55 पर आपसे पूछे कल की प्रसारण सभा में कल प्रातः 5:55 पर आपसे